0: 14 पैसे प्रति लीटर, नोएडा 91 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर, जयपुर 93 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और पटना 94 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
1: महंगाई की मार तो है ही, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
2: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
3: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
4: जो नॉर्मल फैमिली है उसपे 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
5: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
6: पता नहीं सरकार क्या करता है।
2: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
7: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
8: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79 रुपए 9 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 87 रुपए 70 पैसे प्रति किलो, गुरुग्राम में 84 रुपए 12 पैसे प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
9: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
10: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइप तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है।
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को
0: लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर दो बार देश से अपील की, कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा, लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
12: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें,
13: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
14: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को भरने का काम करेंगे।
13: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
15: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
13: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फुकवा दिया, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
16: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
17: महंगाई पे जोर आ रहा है,
18: मुश्किल तो होगा ही,
19: बजट गड़बड़ाएगा,
20: बजट गड़बड़ाएगा भैया,
16: महंगाई बढ़ेगी।
21: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
13: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता अब सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
11: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है। क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया। क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं। क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
18: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना। अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
11: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
19: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
1: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
20: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
22: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस बहुत साल के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज बहुत साला परिसर में खड़ी,
20: अब क्या करेंगे आप?
22: अब यहाँ पर बहुत साला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
23: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
1: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
24: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
1: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
25: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
26: बाहर का जो इधर कमाल मौला
25: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
26: बाहर का जो इधर कमाल मौला
25: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था।
1: धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
25: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
26: बाहर का जो इधर कमाल मौला
25: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
1: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
27: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
1: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
28: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
1: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
2: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा
3: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
2: नहीं नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
4: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
1: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
11: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े निर्णय पर ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि इस निर्णय में बाबरी मस्जिद जैसे निर्णय की समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करेगा।
5: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने जैसा मैंने भी कहा 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
11: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
1: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
1: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
7: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब तक लिए बनेगा।
8: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
1: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया, बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा।
9: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज जिस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
10: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
10: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
11: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

न्यूज पेपर लेकर्ण में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। सीएम मोहन यादव ने फैसले का किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। देश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसी पाबंदियों का सवाल ही नहीं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने और अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। आज प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स दौरे पर, रिश्तों की मिलेगी नई उड़ान। नीदरलैंड से पहले भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई समझौते, अबू धाबी से $5 अरब निवेश पर करार।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इसराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच सीज फायर को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अमेरिका की मध्यस्थता में वॉशिंगटन में हुई अहम बातचीत के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम जारी रखने पर सहमति जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच और बातचीत होगी। दरअसल इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के चलते सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए थे और मौजूदा सीज फायर रविवार को खत्म होने वाला था। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि यह बातचीत स्थायी शांति और शांति सुरक्षा की दिशा में अहम साबित होगी। 45 दिनों के बाद सीज फायर बढ़ गया है। अमेरिका की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। और इसराइल और लेबनान जहां पर हो रहे थे गोलीबारी अभी भी, वहां भी सीज फायर बढ़ा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां काफी मेहनत करती दिखाई थी और बहुत लंबे वक्त बाद कई घंटे मेहनत की गई और उसके बाद आग को फैलने से रोकने की कोशिश अभी बताया जा रहा अभी भी जारी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, जबकि प्रशासन के मद्देनजर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था। और फिलहाल आग लगने के कारण पता नहीं चले हैं, लेकिन जैसे आमतौर पर होता है शॉर्ट सर्किट शुरुआती वजह बताई जा रही है। अब राहत यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सावेरी मार्केट से सामने आई ये भयानक तस्वीर जो आपके सामने, आप देखिए आग का दायरा कैसे तेजी के साथ फैलता गया। फर्नीचर मार्केट और अब लकड़ी है, बहुत तेजी के साथ आग फैलती चली गई। और ये टॉप एंगल से ये देखिए तस्वीर, ये वीडियो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आग कितनी तेजी के साथ फैलती और उसके बाद फैलती चली गई। सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सावेरी का फर्नीचर मार्केट काफी प्रसिद्ध है और उसके बाद जब एक जगह से आग लगना शुरू हुई तो यह आग का दायरा बढ़ता चला गया और कई गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फर्नीचर मार्केट को
1: देख रहे हैं ना,
0: ग्रेटर नोएडा का शाबेरी, एक जगह से आग की शुरुआत होती है, वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन जैसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है बिल्कुल वैसे ही कहा गया और उसके बाद यह आग बढ़ती चली गई। दमकल की कई गाड़ियां मौजूद थी मौके पर, कोशिश यही की गई कि आग को फैलने से रोका जा सके और एक जगह तक इसको रोका जा सके, लेकिन आग जब तेजी से फैल रही थी तो उसके बाद और मेहनत करनी पड़ी। चलिए बात करते हैं नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे अहम किरदार जांच टीम की गिरफ्त में है। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
2: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है। क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया। क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं। क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
3: फिर सामाजिक चुनौती है, राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
2: अब सीधा

0: इस सिद्ध हो गया था कि भोजशाला मंदिर और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसे 11वीं सदी में राजा भोज के समय बनवाया गया था, जो सरस्वती सदन के रूप में प्रसिद्ध था, जहां वेद, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और प्राकृत भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी।
1: बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
2: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
3: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
4: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
3: आप क्या करेंगे? आप
4: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
5: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
2: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने ASI के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
6: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, ASI के अधीन ये संपत्ति दी है, ASI चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो ASI को दी है।
2: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
6: पूरे कमाल मौला जो भोजशाला परिसर है
7: बाहर का, जो इधर कमाल मौला
6: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
2: अदालत ने अपने आदेश में ASI सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
6: कि जो ASI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
2: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई

0: कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
1: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
0: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
2: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है
3: जी।
2: बस राजा,
3: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की, ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को?
2: नहीं, उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है। हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
4: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको, इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, राहाल की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
0: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
5: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े फैसले पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए। कहा है कि इस फैसले में बाबरी मस्जिद फैसले जैसी समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
6: एएसआई ने 1951 में और 1952 में,
5: हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
6: एएसआई ने 1951 में और 1952 में यह क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि यह मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने, एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है, यह फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने यह आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पटिशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
5: बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर नई सरकार के आदेश के बाद पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
0: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में यह हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
8: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा। ऐसे कानून जब तब तक लिए बनेगा
9: सर। अभी क्या वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
10: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर वापस भेजा।
11: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज जिस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है। बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
9: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
10: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
3: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
10: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
5: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब भारत में पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी। अब इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। अब ऐसे में बड़ी कीमतों का असर आपकी जेब पर होने वाला है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई फरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 108 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर, नोएडा में 97 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, जयपुर में 107 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर, पटना में 108 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, मुंबई 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, नोएडा 91 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर, जयपुर 93 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और पटना 94 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
6: शनि जयंती के अवसर पर कैसे मिलेगी शनि देव की कृपा? शनि देव की कृपा से कैसे होगा समस्याओं का समाधान? कैसे मिलेगा धन संपत्ति और रोजगार का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊँगा।
12: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
13: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
14: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
15: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
13: शुभेंदु अधिकारी,
12: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
16: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
17: अनुपम मिश्र,
18: मोहित भारद्वाज,
19: पीयूष मिश्रा,
20: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के।
1: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਜੀ।
3: ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਸਭ ਕੋ।
4: ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਓ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੀ ਜੇਬ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਨਏ ਦਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਸਿੱਧਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਾ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5: बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
6: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है।
4: ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब बस समेत पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
7: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है हर तरह से, खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं, आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। सीएम मोहन यादव ने फैसले का किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। देश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसी पाबंदियों का सवाल ही नहीं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने और अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। आज प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स दौरे पर, रिश्तों की मिलेगी नई उड़ान। नीदरलैंड से पहले भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज नीदरलैंड पहुंचे हैं और यूएई से शुरू हुए इस हाई प्रोफाइल दौरे में पीएम मोदी यूरोप और खाड़ी देशों के साथ भारत रणनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी साझेदारी को नई मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। नीदरलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वो किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर रहेगा। इससे पहले यूएई में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात कर ऊर्जा, निवेश और भारतीय प्रवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। स्वीडन में एआई, स्टार्टअप और रक्षा सहयोग, नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट और इटली में रणनीतिक साझेदारी को लेकर अहम बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत के वैश्विक प्रभाव और यूरोप खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती कूटनीतिक ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो पश्चिम बंगाल से है, जहां अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और अमित शाह को धमकी देने के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसके पीछे की वजह बताई गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है और इसी मामले में उन पर अब केस दर्ज किया गया है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से कई बयान भी जारी किए गए थे जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था। टीएमसी की जीत को सुनिश्चित वो बता रहे थे, लेकिन इसी दौरान काफी आक्रामक अंदाज में बीजेपी के नेताओं पर निशाना भी साध रहे थे और अब एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 धाराओं में केस दर्ज किया है। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला की जो संरक्षित धरोहर थी वो वाघ देवी सरस्वती का मंदिर है, ना कि कमाल मौला की मस्जिद। कोर्ट ने ईएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धार में हिंदू पक्ष की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि कमाल मौला मस्जिद कमेटी के लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, कहीं पर गुलाल से होली मनाई गई तो कहीं पर आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को गले लगाया गया, बड़े बुजुर्ग सब इसमें शामिल थे, गाजे बाजे संग महिलाओं ने भी नृत्य किया।
1: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
2: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
3: कैसे फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
4: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस बहुत साल के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज बहुत साला परिसर में खड़ी,
3: आप क्या करेंगे आप?
4: अब यहाँ पर बहुत साला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
5: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
2: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
6: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
2: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
7: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
8: बाहर का जो इधर कमाल मौला
7: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
2: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
9: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
2: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
10: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
2: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
11: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा,
3: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
11: नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
12: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
2: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
0: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के दौर हाईकोर्ट के बड़े फैसले पर अजदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए और कह रहे हैं कि इस फैसले में बाबरी मस्जिद फैसले जैसी समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
13: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने जैसा मैंने भी कहा 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
0: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मामले को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई और इस विवादित स्थल को लेकर अलग अलग पक्षों की दलीलें सामने आ रही हैं। अब इसी बीच महमूद मदनी ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महमूद मदनी ने कहा कि भोजशाला को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों और कानून के दायरे में रहकर ही देखा जाना चाहिए।
14: देखिए ये जो रिपोर्ट आई है ये कुछ 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीत उल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद।
15: लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया।
14: हाँ वो आ जाने दीजिए, आ जाने
16: दीजिए।
14: वो तो यहाँ सब आपने सुना है, सब लोगों ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दी है।
17: हाईकोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक जगह मुस्लिम पक्ष का दावा।
14: अब वैकल्पिक जगह तो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ
16: क्या सर उसी को लेना चाहेंगे आप? चाहेंगे
17: आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का
14: अगर मिलेगा तो वही होगा
17: सर, नाराजगी जताएंगे?
14: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे जाना है नहीं जाना।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया और इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिससे जांच एजेंसियों ने नेटवर्क पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। अब इसी बीच जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। मांगीलाल बेवाल और उसके परिवार के 5 बच्चे जिनका 2025 में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हुआ था वो सभी अपने अपने कॉलेजों से गायब बताए जा रहे हैं जिससे मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट का री एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। परीक्षकों पर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा और इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को भी मिल रही है जबकि जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक जाने में इस वक्त जुटी हुई हैं। नीट पेपर लीक पर कबूलनामा भी हुआ। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे अहम किरदार जांच टीम की गिरफ्त में है। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
18: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
19: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
18: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: का फ्लैग मार्च निकल रहा है।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला की मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था, वो मस्जिद नहीं मंदिर ही है।
2: इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाई कोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है, और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं वो 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वागदेवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर।
1: इंदौर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा है, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसीलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वागदेवी सरस्वती का मंदिर है। ASI के सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2023 में जारी ASI की तरफ से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण ASI के पास होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है। 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल दी गई कि उसके वजूद को लेकर अदालत तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में यहाँ कभी वाग देवी की आराधना उपासना होती थी, वहाँ हवन कुंड वजू खाना बन गया था, गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्कल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थर दरो दीवारों से बोलते सबूत तौले गए तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में ASI ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने ASI से सर्वे कराया था जो 10 भागों में कुल 2089 पन्नों की दस्तावेजी रिपोर्ट थी। इसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग और गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प थे जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये था कि भोजशाला में 16 तलघर यानी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स थे जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया। इसके अलावा सर्वे में ये भी प्रमाण मिला कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई ASI की रिपोर्ट अब इस विवाद की दिशा तय करने वाली साबित हुई। इन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए हुए है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय
0: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम डिक शूफ से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोर। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने बताया अफवाह। कहा ऐसी पाबंदियों का सवाल ही नहीं, 5 दिन पहले कहा था विदेश यात्राओं से बचें। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। सीएम मोहन यादव ने फैसले का किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में FIR दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने और अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज शनि जयंती का पर्व है, आज ज्येष्ठ की अमावस्या है और आज शनि देव की जयंती मनाई जाएगी। शनि देव की जयंती पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, समस्याएं दूर हो जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 5:30 तक चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:46 तक राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज शनि देव की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। शनि जयंती की महिमा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले ग्रह शनि देव माने जाते हैं। इसीलिए ग्रहों में शनि देव की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि बिना इनकी कृपा के कुछ भी जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं है। माना जाता है कि शनि देव का प्राकट्य ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को हुआ था, सूर्य देव और छाया के संयोग से। इसीलिए ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर शनि देव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि देव की जयंती पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारी पूजा की जाती है। ये तमाम पूजा, तमाम उपाय संध्या काल में किए जाते हैं और शनि कृपा पाने के विशेष उपाय होते हैं। मंत्रों का जप होता है, दान होता है, ध्यान होता है, और ऐसा करने से माना जाता है कि जीवन में शनि देव की कृपा आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपके जीवन में शनि संबंधी कोई भी समस्या है तो आज के दिन संध्या काल में शनि देव की पूजा अवश्य करिएगा ताकि शनि देव की कृपा आपको मिल सके। शनि जयंती के उपायों पर आगे बात करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष,
वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग हैं,

नौकरी संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। आगे कुछ और विशेष उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुगंधा मिश्रा ने हमें लिखा है और ये बेंगलोर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 1995। जन्म का समय रात में 10:45। जन्म का स्थान है गोपालगंज, बिहार। सुगंधा कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह होने के क्या योग हैं और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुगंधा, आपकी कुंडली में विवाह का समय अक्टूबर 2026 में शुरू हो रहा है। साल 2027 के मध्य में आपके विवाह की संभावना बन रही है और ज्यादातर संभावना देखिए ये है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा एक बार कुंडली मिलाइएगा ताकि अगर कोई कमी हो तो उसका उपाय पहले से कर लिया जाए। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पीला पुखराज धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर शनि की वजह से कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है तो वो समस्या लंबे समय तक चलती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, शनि की वजह से सेहत की कोई दिक्कत है तो शनि जयंती

जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा, इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसी में छल्ले को डुबा लीजिएगा ताकि छल्ला शुद्ध हो जाए। इसके बाद इस कटोरी को छल्ले के साथ अपने सामने रखिएगा और शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद शनि देव से कृपा की प्रार्थना करें और लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर देंगे, काले कपड़ों का, काला कुर्ता शर्ट टी शर्ट, इसका दान कर देना बेहतर होगा। कुछ और विशेष उपाय भी आप शनि जयंती पर कर सकते हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे ये भी बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

घर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

रहेगा, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

चिंता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, शनि अगर नकारात्मक हो, शनि अगर प्रतिकूल हो, तो जीवन में धन संबंधी समस्याएं आपको काफी परेशान कर सकती हैं। अगर शनि की वजह से पैसे रुपए की मुश्किलें आपको ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो शनि जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर यानी आज शाम को एक बड़ा सा काला कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें नारियल रखिए एक जटा वाला, और कुछ पैसा 11 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जितना भी रख सकें वो रखें, और इसके बाद इसको सामने रख करके शनि मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि धन संबंधी जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, वो दूर हो जाए, और कपड़े में नारियल और पैसा लपेट करके ये किसी गरीब आदमी को सारा सामान दान कर दीजिएगा। अगर एक दिन शनि जयंती पर आप शाम को ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन की मुश्किल कम हो जाएगी। अगर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष पर 7.5 है, या ढैया चल रही है, जैसे सिंह और धनु पर ढैया चल रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती की रात को प्रयोग करिएगा। रात के समय एक दीपक जलाइएगा, तिल के तेल का या घी का, और दीपक जलाइए पश्चिम दिशा की तरफ, और खुद भी पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। अपने सामने कोई फल या कोई मिठाई रख लीजिए और इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और शनि देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगले दिन सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा। 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। शनि जयंती पर आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन आज शाम को एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जरूर जलाइएगा। आज शाम को कम से कम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा ओम शं शनैश्चराय नमः, और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, धन का अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं आज शाम को शनि जयंती के अवसर पर,
शनि संबंधी मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अभी परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग सामान्य जीवन में भी और शनि जयंती पर भी शनि देव को तेल चढ़ाते हैं, तेलाभिषेक करते हैं। क्या ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम होती है? देखिए, शनि देव को पूजा में तेल अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसी ही मूर्ति पर तेल चढ़ाना चाहिए जिस मूर्ति में शनि की आंखें ना हो, जो मूर्ति शिला के रूप में हो, और उसमें भी बहुत सारा तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत जरा सा तेल आप शनि शिला पर चढ़ा सकते हैं और बाकी तेल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि की पीड़ा कम हो जाएगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की और आपके धन की समस्या में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए,
सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को सावधान रहना होगा।

मेष राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

का अमावस्या है। आज अन्न का या वस्त्र का दान जरूर करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को, और आज थोड़ा सा समय निकाल करके हनुमान जी का अगर दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

डेट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। पुणे की ट्यूशन क्लास से जुड़ा पेपर लीक नेटवर्क, आरोपित पीवी कुलकर्णी दिल्ली लाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश तेज, लातूर के कोचिंग सेंटर निदेशक से पूछताछ और घर पर छापेमारी। मनीषा वाघमारे के साथ काम करने का आरोप, नीट पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो गई। पेपर लीक मामले में जांच तेज है, 5 आरोपी पहले से सीबीआई रिमांड में, 2 और को हिरासत में लेने की तैयारी। नीट 2026 घोटाले मामले को लेकर आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, एंटी दफ्तर का घेराव होगा। कांग्रेस के युवा नेता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पर, एनटीए से जवाबदेही की मांग। दिग्विजय सिंह का सरकार पर हमला, बोले हर साल नीट में हो रहा घोटाला। डीएमके ने फिर उठाई नीट खत्म करने की मांग, बोली छात्रों पर बढ़ रहा बोझ और पेपर लीक का खतरा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम की आधिकारिक तारीख जारी की, परीक्षा 21 जून को होगी। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन, यूएई के बाद आज नीदरलैंड्स में पीएम मोदी, द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी नई दिशा। यूएई का के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार, तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। अबुधाबी से 5 अरब डॉलर निवेश पर करार, भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरें फर्जी, पीएम मोदी ने खंडन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, विदेशी यात्रा पर किसी भी टैक्स या सेस का प्रस्ताव नहीं है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने मामले में 5 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, अमित शाह को धमकाने का भी आरोप। वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले के अंडाल में बीजेपी विजय जुलूस पर बवाल, 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस और केंद्रीय बल तैनात, 3 हिरासत में। आरजी कर रेप और हत्या मामले में शिवेंदु सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया, जांच में लापरवाही का आरोप। सीएम शिवेंदु बोले, आरजी कर केस में पूर्व सीपी विनीत गोयल समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। मध्य प्रदेश की धार भूचाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा मुस्लिम पक्ष को भी अलग से मिलेगी जमीन। धार भूचाला मामले में हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल की, कहा बिना हमें सुने ना आए कोई आदेश। एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा जताया और भूचाला में एएसआई का संरक्षण जारी रहने की बात कही। धार भूचाला विवाद में अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओबीसी बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भूचाला केस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। बॉक्सो मामले में गिरे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक नहीं। केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं तमिलनाडु के सीएम विजय, 18 मई को हो रहे समारोह। केरलम सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शशि थरूर, सॉरी बोलते हुए बताई विजय, कहा मुझे अफसोस है कि मैं उस समय बोस्टन में रहूंगा। यूपी में नए मंत्रियों के शपथ के 6 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं, पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग पर अब भी पेच फंसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बैठक के बाद मंत्रियों के विभाग आवंटन पर चर्चा तेज, जल्द फैसले की संभावना। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर से मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, कई किसानों को हिरासत में लिया। राजकोट में ट्रैफिक जाम हटाने की कार्रवाई में 12 मंदिरों पर चला बुलडोजर, 1 मंदिर बचाने को लोगों ने रामधुन गाकर विरोध किया। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की बड़ी रुचि, रणबीर कपूर ने करीब 3 करोड़ में खरीदी जमीन, अमिताभ बच्चन पहले ही कर चुके हैं निवेश। कोरो नेशनल पार्क में छोड़ी गई 2 और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16। जूनागढ़ में लोक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों पर नोटों की बारिश, पूरी रकम समाज के छात्रावास निर्माण में दान के रूप में जुटाई गई। डीजल पेट्रोल और दूध के दाम बढ़ने पर दिल्ली के नेहरू प्लेस में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रायपुर में पेट्रोल डीजल की अफवाहों से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। गाजियाबाद में सनातन संगठनों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले शक्ति स्वरूप को भी पहचाने। मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, अब अगली सुनवाई 20 मई को। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 16 जनवरी को लाइटिंग वर्ल्ड एंड होम टेक एक्सपो 2027 का आयोजन, एल्कोमा और एस एग्जीबिशन करेंगे आयोजन। भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत की खबर, 26 मई को केरला में दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग की जानकारी।
मौसम विभाग ने जानकारी दी, निर्धारित समय से 6 दिन पहले मानसून पहुंच सकता है। मानसून के पहले आने से किसानों को होगा लाभ, खरीफ फसलों की बुआई के लिए अनुकूल बनेगा मौसम। केरला में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इस साल मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका, मौसम विभाग के मुताबिक देश में हो सकती है लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, दिल्ली हज कमेटी की नई पहल, बड़े वाहनों की जगह हज यात्री अब एयरपोर्ट मेट्रो से पहुंचेंगे एयरपोर्ट। दिल्ली हज कमेटी का बड़ा फैसला, हज यात्रियों को अब एयरपोर्ट मेट्रो से भेजा जाएगा टर्मिनल 3। चेयरपर्सन कौसर चाहा ने कहा, पीएम मोदी के ऊर्जा बचत अभियान को पूरा समर्थन, देश हित में हर फैसला मंजूर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 27 दिन में करीब 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। केदारनाथ में 27,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 5,76,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ में भी कल 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की, अब तक कुल 3,65,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। उत्तराखंड का टिहरी बना एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। सीबीआई का अभय हेल्प बॉट लॉन्च, साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाना लक्ष्य। यूसी मास दिल्ली का भव्य पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ, अबेकस प्रतियोगिता में 8 मिनट में 200 सवाल हल करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। कोची में केरल के मनोनीत सीएम वीडी सतीशन से मिले गायक एमजी श्रीकुमार, कई मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में रंगरेस कार्यक्रम में गजल सूफी और फ्यूजन संगीत का शानदार संगम, राजीव व्यास की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। दिल्ली के शाहदरा में रेलवे लाइन की पार्किंग में लगी भीषण आग, धमाके के साथ कई गाड़ियां जल गई। नोएडा के सेक्टर 2 में एक फैक्ट्री में आग लग गई, भीषण आग से काला धुएं का गुबार छा गया आसमान में, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर के पास स्थित विब्रो कंपनी में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से घर में आग लगी, महिला झुलसी, पूरा मकान जल गया। चेन्नई में टेक महिंद्रा परिसर में लगी भयंकर आग, कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। मुंबई के बोरीवली ईस्ट स्थित एनएक्सी मॉल में लगी आग, मौके पर दमकल की 8 से 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। साबरकांठा में एक होटल में अचानक लगी आग की चपेट में आया मोबाइल टावर, इलाके में हड़कंप। पटना के पौश इलाके में विधानसभा के विधायक के भाई से चेन स्नैचिंग हुई, बाइक सवार बदमाश गले से चेन छीनकर फरार। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मथुरा में गांजा तस्करी में डायल 112 के सिपाही समेत 2 गिरफ्तार, 20 किलो गांजा और 2 लाख रुपए बरामद, सिपाही को निलंबित किया गया।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: बहुत टायर्ड हो गई.
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा.
5: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
1: विक्रम, एक हिंट तो देते.
6: विक्रम!
1: हिंट.
7: बड़े आराम से.
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स.
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट.
10: जेके मैक्स.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
11: मुल्तानी पश्मीना. अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ.
12: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है.
10: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
10: हमारे सीमेंट में नहीं है.
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
15: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
4: अभी NTA ने नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है. 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है. मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं. हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है. 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक NTA को NTA की ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई. गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था. तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई NTA ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया. भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है.

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो ये
0: आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: विक्रम, एक हिंट तो देते।
9: विक्रम,
8: हिंट।
10: बड़े आराम से।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
13: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट?
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।

0: फ्लैग मार्च निकल रहा है।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाईकोर्ट ने ऐलान कर दिया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला की मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं मंदिर ही है।
2: इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है, और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है, और जो माँ सरस्वती माँ वाघ देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर।
1: इंदौर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा है, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसीलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाघ देवी सरस्वती का मंदिर है। ASI के सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2023 में जारी ASI की तरफ से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण ASI के पास होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है। 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल दी गई कि उसके वजूद को लेकर अदालत तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में यहाँ कभी वाघ देवी की आराधना उपासना होती थी, वहाँ हवन कुंड वजू खाना बन गया था, गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्कल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थर दरो दीवारों से बोलते सबूत तौले गए तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में ASI ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने ASI से सर्वे कराया था जो 10 भागों में कुल 2089 पन्नों की दस्तावेजी रिपोर्ट थी। इसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग और गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प थे जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये था कि भोजशाला में 16 तलघर यानी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स थे जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया। इसके अलावा सर्वे में ये भी प्रमाण मिला कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई ASI की रिपोर्ट अब इस विवाद की दिशा तय करने वाली साबित हुई। इन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए हुए है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।
3: माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है अभी हमने उसको देखा नहीं है, हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गुमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, बात यह आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है, वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए, लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था। वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम दीक्षुव से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोर। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। सीएम मोहन यादव ने फैसले का किया स्वागत। ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज। विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने और अमित शाह को धमकाने का आरोप। 5 धाराओं में केस दर्ज। एक पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। और हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। कहा चीन हॉर्मुज खोलने में मदद को तैयार। वहीं अराकची ने अमेरिका की शांति वार्ता पर जताया संदेह। ईरान ने रूस से एनरिच्ड यूरेनियम रखने पर बातचीत की।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज नीदरलैंड पहुंचे हैं। यूएई से शुरू हुए इस हाई प्रोफाइल दौरे में पीएम मोदी यूरोप और खाड़ी देशों के साथ साथ भारत की रणनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी साझेदारी को नई मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। नीदरलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वो किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर रहेगा। इससे पहले यूएई में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की, ऊर्जा, निवेश और भारतीय प्रवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अब ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की और वहां पर छोटे बच्चों को प्यार दुलार भी दिया और कई लोग वहां पर थे जो हाथों में पेंटिंग लेकर आए थे, तिरंगा झंडा लेकर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी से बातचीत करते हुए देखे और इस दौरान मोदी के नारे भी लगे। नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। स्वीडन में यह स्टार्टअप रक्षा सहयोग, नॉर्वे में इंडिया नार्डिक समिट और इटली में रणनीतिक साझेदारी को लेकर अहम बैठकें प्रस्तावित हैं। ये दौरा वैश्विक प्रभाव, यूरोप खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती कूटनीतिक ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। देखिए, इटली में मेलोनी से भी मुलाकात होगी। अब ये तस्वीरें देखिए, नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में

विदेश यात्रा पर टैक्स की खबरों को प्रधानमंत्री मोदी ने खारिज किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब खबरें आधारहीन हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबरें चल रही थी कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की सोच रही है, जिसके बाद पीएम मोदी ने इसका संज्ञान लिया और एक्स पर लिखा कि ये सब झूठ है। हम तो नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर करने और कारोबार में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी तरह की रोक टोक का तो सवाल ही नहीं है। एक्स पर यह पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे थे जिसमें ये बात कही जा रही थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार की तरफ से विदेशी यात्रा पर टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन सरकार ने कहा यह सब झूठ है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर पाबंदी, टैक्स का कोई भी सवाल ही नहीं है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव है, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज को खुला रखने में मदद में पेशकश की है, और साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये बात बहुत दृढ़ता से कही है और उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि चीन हॉर्मुज खोलने में मदद को तैयार है। अभी ट्रंप से मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग की, और ये बात कही गई है कि शी जिनपिंग ने मदद की पेशकश की है हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए। अमेरिका और ईरान के बीच में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, तो अब जब चीन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचते हैं, उसके बाद अमेरिका का यह दावा कि चीन मदद करने को तैयार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है, उसमें ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को रखने को लेकर रूस से बात की। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है, और उस अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है कि उन्होंने रूस के अधिकारियों से ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास रखने के प्रस्ताव पर बातचीत की है। अब्बास अराची ने कहा है कि ईरान इस मामले में मदद करने की रूस की मंशा की सराहना करता है, हालांकि फिलहाल इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। ईरान और रूस में बात हुई है एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, यह जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और देखिए, मेन जो डिस्प्यूट आप कह सकते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, वो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर है। अमेरिका कह रहा है कि कैसे भी इसको खत्म करना होगा, हम ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। देश वापस लौटते हैं, बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की जो आज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की, और बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी को इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कुलकर्णी केमिस्ट्री टीचर है और यही इस खेल का बड़ा खिलाड़ी भी है। इसके आगे भी कुछ लोग होंगे। इस मामले में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसे जांच एजेंसियों ने नेटवर्क पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है।

0: बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
1: और अब एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हुई है। अभिषेक बनर्जी 3 गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा लिखा गया है। आरोप है कि 4 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह को उन्होंने धमकी दी थी चुनाव प्रचार के दौरान। तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अब फंस गए हैं। गृहमंत्री को धमकी देने के आरोप में उन पर एफआईआर हुई है। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर भी उन पर एफआईआर हुई है 5 अलग अलग धाराओं में। हालांकि अभिषेक बनर्जी की तरफ से क्या कहा गया था, मैं देखूंगा कि 4 मई को उन्हें बचाने दिल्ली से कौन आएगा, कौन गॉडफादर आता है 4 मई को उन्हें बचाने के लिए, ये मैं देखूंगा। ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया था। भारतीय न्याय संहिता की 192 दंगा भड़काने का आरोप, ये जो धाराएं पर दर्ज की गई हैं एफआईआर में, बीएनएस 196 समूहों के ही सद्भाव भंग करना, भारतीय न्याय संहिता की 353 धारा, मौके का भय पैदा करना और धमकी देना, ये इन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए, जिस बयान के आधार पर जब वो प्रचार कर रहे थे उसके बाद एफआईआर उन पर दर्ज हुई, उस दौरान उन्होंने कहा क्या था वो आप सुनिए।
2: 7 तारीख 12 टार पड़े কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। 7 তারিখ 12 টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব।
1: टीएमसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ममता बनर्जी बंगाल में फिर से टीएमसी खड़ी करने में जुट गई हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं खुद पार्टी ऑफिस के दरवाजे खिड़कियां पेंट करूंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी झुकेगी नहीं, क्योंकि बंगाल में हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, जनमत की लूट हुई है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते। हिंट
3: बड़े आराम से।
5: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते।
14: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
15: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
17: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
18: यार
19: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
20: इसमें माइक्रो फाइबर है।
19: माइक्रो फाइबर यानी
20: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
19: हमारे सीमेंट में नहीं है,
20: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
21: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के दौर हाईकोर्ट के बड़े फैसले पर अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब सवाल उठाए गए। अजहरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस फैसले में बाबरी मस्जिद फैसले जैसी समानताएं, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा। ये अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। कल इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था जिसमें धार में भोजशाला को मंदिर माना गया है।
4: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने जैसा मैंने भी कहा 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
8: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
9: विक्रम एक हिंट तो देते
10: विक्रम
9: हिंट
8: बड़े आराम से
11: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके
12: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता
13: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
14: लायन डेट नट बाइट्स
15: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
18: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही

0: ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है।
1: For it is about preparation, be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us.
0: ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है, कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही है, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल, रिक्शा, बग्घी, पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का ये हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
2: कुछ लोग बोल रहे हैं वार सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है, तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वॉर सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को, 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है। और दूसरा, स्टेट में ये जो अपोजिशन था,
3: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
4: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
5: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता नेक्स्ट करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो सुमेघ चल रहा है मोदी जी का
6: ये तबड़क तबड़क।
4: अरे आप IAS निकाल लिए होते
5: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम IAS बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पेपरली केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। पुणे के ट्यूशन क्लास से जुड़ा पेपर लीक नेटवर्क, आरोपित पीवी कुलकर्णी दिल्ली लाया जा रहा है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश तेज, लातूर के कोचिंग सेंटर निदेशक से पूछताछ और घर में छापेमारी। मनीषा वाघमारे के साथ काम करने का आरोप, नीट पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में जांच तेज, 5 आरोपित पहले से रिमांड पर हैं, 2 और को हिरासत में लेने की तैयारी। नीट 2026 घोटाले मामले को लेकर आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, एनटीए दफ्तर का होगा घेराव। कांग्रेस के युवा नेता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पर, एनटीए से जवाबदेही की मांग। दिग्विजय सिंह का सरकार पर हमला, बोले हर साल नीट में हो रहा है घोटाला। डीएमके ने फिर उठाई नीट खत्म करने की मांग, बोली छात्रों पर बढ़ रहा बोझ और पेपर लीक का खतरा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम की आधिकारिक तारीख जारी की, परीक्षा 21 जून को होगी। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन, यूएई के बाद आज नीदरलैंड में पीएम मोदी, द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी नई दिशा। यूएई के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार, तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। अबूधाबी से 5 अरब डॉलर निवेश पर करार, भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरें फर्जी, पीएम मोदी ने किया साफ खंडन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, विदेशी यात्रा पर किसी भी टैक्स या सेस का कोई प्रस्ताव नहीं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने मामले में 5 धाराओं के तहत केस दर्ज किया, अमित शाह को धमकाने का आरोप है। पश्चिम वर्धमान जिले के अंडाल में बीजेपी विजय जुलूस पर बवाल, 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस और केंद्रीय बल तैनात, 3 हिरासत में। आरजी का रेप और हत्या मामले में शिवेंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया, जांच में लापरवाही का आरोप। सीएम शिवेंदु बोले, आरजी कर केस में पूर्व सीपी विनीत गोयल समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। मध्य प्रदेश की धार भूतशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मां का मंदिर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा मुस्लिम पक्ष को भी अलग से मिलेगी जमीन। धार भूतशाला मामले में हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल की, कहा बिना हमें सुने ना आए कोई आदेश। एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा जताया और भूतशाला में एएसआई का संरक्षण जारी रहने की बात कही। धार भूतशाला विवाद में अलग जमीन की मांग पर कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भूतशाला केस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। पॉक्सो मामले में घिरे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक नहीं। केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते तमिलनाडु के सीएम विजय, 18 मई को समारोह है। केरलम सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शशि थरूर, सॉरी बोलते हुए बताई वजह, कहा मुझे अफसोस है कि मैं उस समय बॉस्टन में हूंगा। यूपी में नए मंत्रियों की शपथ के 6 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं, पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग पर अब भी पेच फंसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बैठक के बाद मंत्रियों के विभाग आवंटन पर चर्चा तेज, जल्द फैसले की संभावना। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, कई किसानों को हिरासत में लिया। राजकोट में ट्रैफिक जाम हटाने की कार्रवाई में 12 मंदिरों पर बुलडोजर चलाए, 1 मंदिर बचाने को लोगों ने रामधुन गाकर विरोध किया। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की रुचि बढ़ गई है, रणवीर कपूर ने 3 करोड़ की जमीन खरीदी, अमिताभ बच्चन पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई 2 और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर हुई 16। जूनागढ़ में लोक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों पर नोटों की बारिश, पूरी रकम समाज के छात्रावास निर्माण के दान के रूप में जुटाई गई। डीजल पेट्रोल और दूध के दाम बढ़ने पर दिल्ली के नेहरू प्लेस में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रायपुर में पेट्रोल डीजल की अफवाहों से पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, हेल्पलाइन पोस्टर जारी। गाजियाबाद में सनातन संगठनों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले शक्ति स्वरूप को भी पहचाने। मोहकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, अब 20 मई को होगी। देवरिया में 2 साल से अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद, मौके पर एसडीएम ने पहुंच के निर्माण कार्य रुकवाया, भारी पुलिस बल तैनात। भीषण गर्मी में देशभर के लिए राहत की खबर, 26 मई को केरल में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग ने जानकारी दी, निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही मानसून पहुंच सकता है। मानसून के पहले आने से किसानों को लाभ होगा, खरीफ फसलों की बुवाई के अनुकूल मौसम रहेगा। केरल में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट। इस साल मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका, मौसम विभाग के मुताबिक देश में हो सकती है लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश।
पीएम मोदी की अपील का असर, दिल्ली हज कमेटी की नई पहल, बड़े वाहनों की जगह हज यात्री अब एयरपोर्ट मेट्रो से पहुंचेंगे। दिल्ली हज कमेटी का बड़ा फैसला, हज यात्रियों को अब एयरपोर्ट मेट्रो से भेजा जाएगा। टर्मिनल 3 चेयरपर्सन कौशल झा ने कहा, पीएम मोदी के ऊर्जा बचत अभियान को पूरा समर्थन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 27 दिन में करीब 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। केदारनाथ में कल 27,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 5,76,000 से अधिक श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। बद्रीनाथ में भी अब तक 3,65,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। दिल्ली के शाहदरा में रेलवे लाइन की पार्किंग में लगी भीषण आग, धमाके के साथ जली कई गाड़ियां। नोएडा के सेक्टर 2 में एक फैक्ट्री में आग लग गई, आसमान में धुएं का गुबार छा गया, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर के पास स्थित विप्रो कंपनी में आग लगी, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से घर में लगी आग, महिला झुलसी, मकान जल गया। चेन्नई में टेक महिंद्रा परिसर में आग लगी, कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, दमकल की टीम ने काबू पाया। मुंबई के बोरीवली ईस्ट स्थित एनएक्स मॉल में आग लगी, मौके पर 8 से 10 दमकल की गाड़ियां मौजूद। साबरकांठा में एक होटल में अचानक आग लगी, मोबाइल टावर चपेट में आ गया। पटना के पौष इलाके में विधायक के भाई से चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाश गले से चेन छीनकर भाग गए। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मथुरा में गांजा तस्करी में डायल 112 के सिपाही समेत 2 गिरफ्तार, 20 किलो गांजा, 2 लाख रुपए बरामद, सिपाही को निलंबित किया। गुजरात के आणंद में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई, देर रात तक जोरदार धमाके के साथ सभी 200 इमारत। अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसा शेर, बाइक सवार का पीछा करते खौफनाक वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों में दहशत। अमरेली के एक गांव में 2 शेर शिकार की तलाश में गलियों तक पहुंचे, 1 शेर ने जानवर का शिकार किया, बाल बाल बचा युवक, वन विभाग की सतर्कता। महाराष्ट्र के पालघर में फ्लाईओवर पर चांदी से भरी वैन पलटी, 17 करोड़ कीमत की करीब 600 किलो चांदी सड़क पर बिखरी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, नए खुले पूल में हादसा, परिवार में शोक। इटावा में शॉपिंग बार की लिफ्ट में 50 मिनट तक फंसे रहे लोग, 2 बच्चों को सहित 7 लोग कैद रहे। सहारनपुर में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ, होटल कर्मचारी और मालिक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद, एक्सपायरी और उपयोगी दवाएं जब्त। महाराष्ट्र के जालना में भजन कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से कलाकार के निधन, मंच पर भजन गाते गाते गिर पड़े। लखनऊ के हजरतगंज में स्कूटी सवार युवक को कार से कुचलने की कोशिश, धक्का ने टक्कर मारने का वीडियो वायरल। वेलकम टू द जंगल का टीजर आउट हुआ, 34 सितारों की टोली संग अक्षय कुमार ने लगाया कॉमेडी का तड़का, फिल्म 26 जून को रिलीज होगी। भारत में 4 जून को होगा दुरंधर 2 ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर, 5 जून को जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे भारतीय दर्शक। तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सर्राफ, अक्षय खन्ना संग साउथ में करेंगे डेब्यू, हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में अनुपम खेर को मिला सम्मान, फिल्म कैलोरी के लिए चुने गए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लोकेश कनगराज की बहुचर्चित तमिल फिल्म डीसी का ट्रेलर जारी, वामिका गंभी और संजना कृष्णमूर्ति की मुख्य भूमिका। बढ़ते सोने के आयात पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आयात की अधिकतम लिमिट 100 किलो तय की, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत अब हर 15 दिन में सोने की आयात की जांच की जाएगी। देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर घटकर कुल क्षमता का करीब 35% पर पहुंचा, हर 5 में से 3 बड़े जलाशय 40% से कम भरे। 11 साल में पहली बार दुनिया में चावल उत्पादन घटने का अनुमान लगाया गया, भारत म्यांमार और अमेरिका समेत कई देशों में पैदावार कम होने से कीमतें बढ़ने और सप्लाई घटने की आशंका। अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल ने IIT और NIT छात्रों के लिए जॉब और इंटर्नशिप ऑफर रद्द किए, हाल ही में भारी चटनी करने वाली कंपनी ने सुस्ती के बीच फ्रेशर्स की चिंता बढ़ा दी है। नियमों का पालन नहीं करने पर RBI ने 150 NBFC कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए, दिल्ली पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कंपनियों की कार्रवाई की चपेट में आई है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग को 7 विकेट से हराया, इकाने स्टेडियम में शानदार जीत, 188 रन का लक्ष्य लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई ने पहले 20 ओवर में 187 रन बनाए थे, 188 का लक्ष्य दिया। लगातार 3 जीत के बाद चेन्नई को मिली हार, पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की दौड़ हुई और ज्यादा कड़ी। KKR का सामना गुजरात टाइटंस से आज, ईडन गार्डन में रोमांचक मुकाबला। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं लगता कि ताइवान को लेकर कोई संघर्ष। ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा ईरान अगर 20 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम रोकता है तो मुझे मंजूर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, कहा अमेरिका ईरान वार्ता में है, भरोसे की कमी, साथ ही
ये भी कहा कि किसी भी समझौते से पहले स्पष्ट तरीके से तय की जाएं शर्तें। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद जापान के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात, आर्थिक और सुरक्षा राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के नेताओं ने करीब से बात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर को करेंगे अमेरिका का दौरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीनी दौरे के जवाब में होगा जिनपिंग का अमेरिकी दौरा। चीन दौरे से लौटे ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, G2 को बताया बड़े व्यापारिक समझौते का दावा। सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजरायली हमले जारी, हमले में कम से कम 11 की मौत। अमेरिकी विदेश विभाग ने सीज फायर को 45 दिन बढ़ाने की पुष्टि की, जल्द नई वार्ता की संभावना। इसराइल का दावा, हमास के शीर्ष सैन्य कमांडर इज अली दीन मारा गया, हमास ने पुष्टि नहीं की। ईरान ने अमेरिका की मंशा पर उठाए सवाल, रूस के साथ यूरेनियम भंडारण पर बातचीत की पुष्टि।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज शनि जयंती का पर्व है, आज ज्येष्ठ की अमावस्या है और आज शनि देव की जयंती मनाई जाएगी। शनि देव की जयंती पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, समस्याएं दूर हो जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 5:30 तक चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:46 तक राहु काल का समय, प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज शनि देव की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। शनि जयंती की महिमा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले ग्रह शनि देव माने जाते हैं। इसीलिए ग्रहों में शनि देव की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि बिना इनकी कृपा के कुछ भी जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं है। माना जाता है कि शनि देव का प्राकट्य ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को हुआ था, सूर्य देव और छाया के संयोग से। इसीलिए ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर शनि देव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि देव की जयंती पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारी पूजा की जाती है। ये तमाम पूजा, तमाम उपाय संध्या काल में किए जाते हैं और शनि कृपा पाने के विशेष उपाय होते हैं। मंत्रों का जप होता है, दान होता है, ध्यान होता है, और ऐसा करने से माना जाता है कि जीवन में शनि देव की कृपा आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपके जीवन में शनि संबंधी कोई भी समस्या है तो आज के दिन संध्या काल में शनि देव की पूजा अवश्य करिएगा, ताकि शनि देव की कृपा आपको मिल सके। शनि जयंती के उपायों पर आगे बात करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष,
वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। देखिए, दुनिया भर में जितने भी लोग नौकरी करते हैं, किसी भी तरह की नौकरी करते हैं, उसमें शनि की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर नौकरी संबंधी कोई समस्या है, नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी चलाने में, तो शनि जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर यानी आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक जला करके अपने घर चले आइए या वहीं जगह मिले तो वहीं बैठ जाइए। 11 माला इसके बाद शनि देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद शनि देव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की समस्या दूर हो जाए और निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान कर दीजिएगा। अगर आज शाम को आप ये उपाय कर लेते हैं, आपकी नौकरी संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। आगे कुछ और विशेष उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुगंधा मिश्रा ने हमें लिखा है और ये बेंगलोर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 1995। जन्म का समय रात में 10:45। जन्म का स्थान है गोपालगंज बिहार। सुगंधा कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह होने के क्या योग हैं और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुगंधा, आपकी कुंडली में विवाह का समय अक्टूबर 2026 में शुरू हो रहा है। साल 2027 के मध्य में आपके विवाह की संभावना बन रही है और ज्यादातर संभावना देखिए ये है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा एक बार कुंडली मिलाइएगा ताकि अगर कोई कमी हो तो उसका उपाय पहले से कर लिया जाए। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः पीला पुखराज धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर शनि की वजह से कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है तो वो समस्या लंबे समय तक चलती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, शनि की वजह से सेहत की कोई दिक्कत है तो शनि जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा। इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसी में छल्ले को डुबा लीजिएगा ताकि छल्ला शुद्ध हो जाए। इसके बाद इस कटोरी को छल्ले के साथ अपने सामने रखिएगा और शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें।
और जप करने के बाद शनि देव से कृपा की प्रार्थना करें और लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर देंगे, काले कपड़ों का, काला कुर्ता शर्ट टी शर्ट, इसका दान कर देना बेहतर होगा। कुछ और विशेष उपाय भी आप शनि जयंती पर कर सकते हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे ये भी बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

रहेगा, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, शनि अगर नकारात्मक हो, शनि अगर प्रतिकूल हो, तो जीवन में धन संबंधी समस्याएं आपको काफी परेशान कर सकती हैं। अगर शनि की वजह से पैसे रुपए की मुश्किलें आपको ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो शनि जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर यानी आज शाम को एक बड़ा सा काला कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें नारियल रखिए एक जटा वाला, और कुछ पैसा 11 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जितना भी रख सके वो रखें, और इसके बाद इसको सामने रख करके शनि मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि धन संबंधी जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, वो दूर हो जाए। और कपड़े में नारियल और पैसा लपेट करके ये किसी गरीब आदमी को सारा सामान दान कर दीजिएगा। अगर एक दिन शनि जयंती पर आप शाम को ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन की मुश्किल कम हो जाएगी। अगर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे इस समय कुंभ मीन और मेष पर 7.5 है, या ढैया चल रही है, जैसे सिंह और धनु पर ढैया चल रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती की रात को प्रयोग करिएगा। रात के समय एक दीपक जलाइएगा तिल के तेल का या घी का, और दीपक जलाइए पश्चिम दिशा की तरफ और खुद भी पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। अपने सामने कोई फल या कोई मिठाई रख लीजिए और इसके बाद शनि देव के तांत्रिक मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और शनि देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगले दिन सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा। 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। शनि जयंती पर आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन आज शाम को एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जरूर जलाइएगा। आज शाम को कम से कम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा ओम शं शनैश्चराय नमः, और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, धन का अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं आज शाम को शनि जयंती के अवसर पर,
शनि संबंधी मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को सावधान रहना होगा।

मेष राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

का अमावस्या है। आज अन्न का या वस्त्र का दान जरूर करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को, और आज थोड़ा सा समय निकाल करके हनुमान जी का अगर दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की। कल एक ऐतिहासिक फैसला आता है इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से, और इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहली पूजा की गई। हिंदू समुदाय के लोगों ने सुबह सुबह भोजशाला पहुंचकर पूजा अर्चना शुरू की, साथ ही माला और फूल भी चढ़ाए। अब इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग मौजूद रहे। भोजशाला को लेकर कल मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला आता है, और फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर करार दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला की जो संरक्षित धरोहर थी वो वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है, न कि कमाल मौला की मस्जिद है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धार में हिंदू गुट की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से जश्न मनाया गया था, और हमने देखा था कि कल भोजशाला में धार में एक तरह से होली खेली गई थी, रंग गुलाल अबीर।

0: बुलाया गया था, महिलाएं वहां पर भजन गा रही थी और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। ये भी बताया गया कि फूल मालाएं लेकर श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और उसके बाद पूजा शुरू की। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। रवीश, कल इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला आता है और आज बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है, क्या तस्वीरें देखी गई आज?
1: जो पक्ष है वो सुबह सुबह पहुंच गया यहाँ पे, उसने उस स्थान पर जो फिलहाल खाली है, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है और इसी जमाने में जो लंदन में है तो उसी जगह पे उसी को गर्भगृह माना है।
0: जुड़ेगी हमारे सहयोगी रवीश के साथ। लेकिन रवीश, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी वो स्थान खाली है लेकिन उसी को गर्भगृह माना है, एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसका जिक्र अभी रवीश कर रहे थे। ये वो जगह, ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर माला भी पहनाई गई है और जहां पर ये फूल अर्पित किए गए हैं और बताया गया है कि यही वो गर्भगृह है। अब ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है और अभी ये जगह खाली है जैसा कि रवीश अभी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। अब देखिए, कल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची हो या बड़े बुजुर्ग हो या जो भी है, जो लोग हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, ये धार में भूतशाला में कल ऐसे ही रंग गुलाल अबीर उड़ाया गया। तब देखिए आज पूजा कैसे की जा रही है। स्वास्तिक बनाया गया है गेंदे के फूलों से, ओम बनाया गया है, माला वहां पर पहनाई गई है और बहुत लंबी लड़ाई ये हिंदू पक्ष की तरफ से लड़ी गई। बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि पूजा का अधिकार दिया जाए, जो कि पहले सप्ताह में सिर्फ एक दिन होता था, सिर्फ एक दिन, लेकिन अब पूजा का अधिकार दिया गया है। भोजशाला में नमाज बंद और अब पूजा की बात कही जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट।
2: भोजशाला को एक मंदिर माना है और किन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने आखिर ये फैसला सुनाया है? ये तथ्य थे एएसआई की उस रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें एएसआई ने 98 दिनों तक इसी भोजशाला परिसर का सर्वे किया और उसके बाद जो शिलालेख यहाँ थे, जो आकृतियां थी, उसे सनातन धर्म का मानते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसपे फैसला सुनाया है हाईकोर्ट ने और इसे मंदिर करार दिया है। आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में, जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहां घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इस पर बात करने के लिए, उनसे हम जानते हैं। दिनेश जी, आप लंबे समय से गौशाला परिसर पर लोगों को लेकर के आते हैं, तो ये आकृतियां जो है ये ठीक से तो दिख नहीं रही है, तो एसआई ने कैसे अपनी रिपोर्ट में इन्हें माना कि ये गणेश जी ही है, ये रिद्धि सिद्धि ही है?
3: जिस प्रकार से बताएं तो किसी इसको जो मस्जिद कहा जा रहा था, तो किसी भी मस्जिद में कोई भी इस प्रकार की मूर्तियों की जो आकृतियां नहीं होती है। और ये पुरातन काल से जो भोजशाला है, राजा भोज के द्वारा जो बनाई गई पाठशाला थी, तो ये भी एक मंदिर था और उनके उस काल के दौरान ये भी एक मंदिर था। अक्सर मंदिरों की चौखट रहती है, वहां गणेश जी ऊपर होते हैं, किसी भी मंदिर में घुसते हैं तो भगवान के सामने नीचे झुक के जाना होता है, इसलिए वो दरवाजा छोटा होता है। तो इसीलिए ये वो माना गया है ये मूर्तियां हैं और किसी भी मंदिर के गेट पर,
2: यहाँ पे गेट पे वो ओम नमः शिवाय लिखा है, वो
3: शिलालेख है।
2: चलिए दिनेश जी के साथ चलते हैं,
3: यहाँ पर भी
2: दीर और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही
4: जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो 104 खंबे हैं जिसका जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया है। और इसमें हाईकोर्ट ने ये भी माना है कि ये खंबों पे जो आकृतियां बनी हुई हैं ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो सभी सनातन धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं जो फिलहाल आपको यहाँ दिख जाएंगी। और ये हम आपको तस्वीर भी अगर दिखाएं तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें लिखी हुई है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये लिखा हुआ है। और इसको भी हाई कोर्ट ने एसआई की उस रिपोर्ट के आधार पे अपना फैसला सुनाया है। अच्छा दिनेश जी, अगर हम बात करें, आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे आकृतियां जो है उनमें घंटियां भी बनी हुई हैं, कुछ खंभों पे घंटियां भी बनी हुई, तो हम दिखाएंगे। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर, ये वो खंभे हैं 104 खंभे पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब घिस दिए गए हैं, आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था। और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है, केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया, तब ये निकल के सामने आया। इसका
0: तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, कुछ रिपोर्ट्स जो एसआई की तरफ से जो वहां पर दी गई थी, सबमिट की गई थी, उनमें भी इन बातों का जिक्र था, उल्लेख था। और ये आपने आज तक पर देखा, रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट में आपने देखा अंदर से, बाहर से तो आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज अंदर से आपने देख भी लिया कि कितने साक्ष्य ऐसे थे जिनको मिटाने की कोशिश की गई, जो हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी। अब आज पूजा पाठ वहां पर शुरू हो गया है, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश पाल ने।
4: गौशाला को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसके अगली ही सुबह हिंदू पक्ष के लोग पहुंच रहे हैं इस जगह पर। और अगर आप देखें तो यहाँ अगरबत्तियां लगाई जा रही हैं, पूजा हो रही है और साथ ही में यहाँ फूल चढ़ाए गए हैं, माला चढ़ाई गई है। और ये आप देखिए साष्टांग प्रणाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है इस जगह को। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, दस महिलाएं भी यहाँ में मौजूद है और आकर के माँ सरस्वती की प्रतिमा जहाँ थी, जैसा हिंदू पक्ष दावा करता आया है, वहां पे आकर के माथा टेक रही है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तस्वीरें देखिए, ये देखिए आंसू निकल पड़े हैं यहाँ पे। ये जो महिला है यहाँ पे, ये रो पड़ी है क्योंकि ये जो फैसला आया है उसके बाद इन्होंने लंबा इंतजार शायद किया होगा इस दिन का, ऐसा इनका कहना। और ये आंखों में से आंसू जो है वो इस महिला के ये बताने के लिए काफी है कि क्या ये अहमियत रखता है ये स्थान हिंदू पक्ष के लिए। और ये तस्वीरें जो हैं ये साफ तौर पे गवाही दे रही है कि कैसे अब यहाँ पे जो लोग हैं वो फैसले की अगले ही सुबह यहाँ पे पहुंच के अब माँ वाग्देवी की प्रतिमा वाले स्थान पर माथा टेक रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि लंबे संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन उन्हें इस जगह पर अब कम से कम पूजा करने का, रोज पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
0: तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि लंबे वक्त तक इंतजार किया है, जब इंतजार के बाद जब अब परिणाम सामने आया तो आंखों में से आंसू आ गए, जैसा कि अभी आप देख ही रहे थे। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवीश, श्रद्धालुओं से तो आपने बात की और हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी वहां पर शुरू कर दिया, लेकिन एक कुछ वक्त पहले आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप अंदर से बता रहे थे कि क्या कुछ सबूत एसआई की तरफ से दिए गए जिनको कोर्ट ने भी माना है।
1: बिल्कुल, और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसे देखने के बाद किसी को भी शक नहीं होगा कि ये जो चिन्ह है ये प्राचीन चिन्ह है, सैकड़ों सालों से ये चिन्ह यहाँ मौजूद थे। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो खंभे हैं, जो 104 खंभे हैं उनमें हर खंभों पर इसी तरीके से जो घंटियां हैं, जो हिंदू सनातन मंदिरों में आपने देखी होगी कभी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले घंटियां होती हैं, तो ये इस तरीके की घंटियां जो है यहाँ पे जितने भी 104 खंभे हैं उनमें ये घंटियां उकेरी गई थी। आप देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देख के अंदाजा लग जाएगा आपको, ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कैसे उन घंटियों को यहाँ पे हटाया गया, जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। आपने पिलर के दोनों तरफ जो घंटियां देखी, इस घंटी को यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे घिस दिया गया था। और जब एएसआई यहाँ पे पहुंची और उसने साइंटिफिक सर्वे किया तो ये पाया कि इन घंटियों को ज्यादातर जो खंभे हैं उन पे घिस दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ कोई घंटी नहीं दिखेगी, ये घंटी इस खंभे पे पूरी तरीके से घिस दी गई, लेकिन इस खंभे पे जो दो घंटियां थी वो जैसे तैसे बच गई, ये चूने के भीतर छुपी हुई थी ये बताया गया। और तीसरी जो घंटी जो सामने थी वो क्योंकि नजरों के सामने थी तो उसे घिस दिया गया और ये तस्वीरें हैं। और ऐसे जितने भी ये खंभे आपको दिख रहे हैं उनपे ये जो घंटियां थी बनी हुई थी और ऐसी कई आकृतियां थी। आप देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो भगवान सूर्य की आकृति बताई जा रही है लेकिन इन्हें भी यहाँ पे घिस दिया गया था। तो ऐसे तमाम शिलालेख यहाँ पे मौजूद है जिसको देखा हाईकोर्ट और उस सर्वे के बाद कहीं जाकर के रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के पेश होने के बाद हाईकोर्ट के जजेस यहां पहुंचे हार में होशाला में और उन्होंने खुद आकर के अपनी आंखों से देखा कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें और जो जज अपनी आंखों से देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और इन दोनों तथ्यों के मिलान के बाद और खुद की आंखों से यहां पर जो तस्वीरें हैं उसे देखने के बाद हाईकोर्ट ने कल यह फैसला सुनाया कि ये एक मंदिर है और उसके बाद यहां पर अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, पूजा उन्होंने की। हालांकि धीरे धीरे पुलिस बल अब यहां बढ़ रहा है तो उन लोगों
0: को रवीश आज हमने देखा कि श्रद्धालु काफी भावुक भी हुए, आंखों में से आंसू भी आ गए उनके जब वो पूजा कर रहे थे।
1: बिल्कुल, और उनके लिए वाजिब बजट ही है ये। दरअसल देखिए मध्य प्रदेश का जो ये धार शहर है और ये जो भोजशाला विवाद है इसे अयोध्या पार्ट टू कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश का अयोध्या विवाद कहा जाता था शुरू से, क्योंकि एक पक्ष इसे मस्जिद मानता था दूसरा पक्ष मंदिर मानता था। लेकिन जब कभी भी शुक्रवार पड़ता था और शुक्रवार को बसंत पंचमी अगर पड़ जाती थी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते थे। हमने इसी साल देखा, इसी साल बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़े थे, प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे, कई जिलों का फोर्स लगा था। तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जिनका ये मानना था कि ये मंदिर,
0: और बिल्कुल वो हमने देखा यहाँ पर कि भावुक यहाँ दिखाई दिए और बहुत से साक्ष्य अब वहां दिखाई दे रहे हैं जिनका जिक्र एएसआई की रिपोर्ट में किया गया था और जिनको हाईकोर्ट की तरफ से माना गया है और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। शुक्रिया रवीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त तो चला है इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

फैसले के बाद सुबह सुबह पहली पूजा, आज तक के कैमरे में दिखे हिंदू धर्म के प्रतीक भगवान गणेश की आकृति, घंटियां, रिद्धि सिद्धि। कल हाईकोर्ट ने माना था मां सरस्वती का मंदिर।

0: बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर हटाने के लिए मस्जिद पुलिस के पहुंचने पर फूटा गुस्सा। झड़प लाठीचार्ज पथराव के बाद तनाव। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर लगाई है रोक। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम टिकशूव से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोर। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार में अमित शाह को धमकाने का आरोप। दिलीप घोष बोले, तानाशाह की तरह काम किया। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां आसनसोल में बवाल हो गया। लाउड स्पीकर हटवाने गई पुलिस टीम से झड़प हुई और फिर हिंसा भड़क गई। तोड़फोड़ भी हुई और पथराव भी हुआ। रात के अंधेरे में आसनसोल में जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो कार हो। बाइक को तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। ये देखिए ये तस्वीरें, पत्थर इधर उधर बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। वजह यह है कि आसनसोल के जहांगीरपुरी में लाउड स्पीकर हटाने गई थी पुलिस और फिर ये हंगामा हुआ। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या हुआ कि हालात इतने बेकाबू हो गए?
1: ये देखिए, आपको मालूम है कि शुभेंदु सरकार की ओर से जो लाउड स्पीकर्स पे जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उस पर सख्ती से अमल करने के आदेश दिए गए हैं। कहीं भी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, अब लाउड स्पीकर तेज गति से नहीं बजाए जा सकते, ये साफ तौर पर कहा गया है। ऐसे में आसनसोल में कल पुलिस की ओर से अवेयरनेस कैंपेन किया जा रहा था। खासतौर पर जो मस्जिदें हैं वहां पर जाके बताया जा रहा था कि ये जो नया नियम लागू हुआ है इसको फॉलो किया जाए, बहुत धीमी आवाज में, तेज आवाज बिल्कुल ना हो, इस तरह से जो अवेयरनेस किया जाता। उसी दौरान जो अभी तक जो बात सामने आ रही है, बहुत सारी भीड़ जुट गई और भीड़ में से कुछ युवकों ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया। जो आउटपोस्ट था, जहांगीर मोहल्ला पुलिस आउटपोस्ट है, उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि संख्या बहुत थी जो भीड़ थी उसकी, जबकि पुलिस तो अवेयरनेस के लिए गई हुई थी। ऐसे में जब ये झमेला शुरू हुआ तब पुलिस आउटपोस्ट से खबर गई तो भारी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो पथराव कर रहे थे, जो वैंडलिज्म कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया, पुलिस के गोले छोड़े और किसी तरह हालात को काबू में लाया गया। अब लोगों का कहना है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, शायद इस वजह से हुआ है, लेकिन अब चूंकि सीसीटीवी वगैरह है वहां
0: तो वो पुलिस तलाश कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस सबकी शिनाख्त कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और अब वक्त उछला है 100 शहर 100 खबर का। केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। पुणे की ट्यूशन क्लास से जुड़ा पेपर लीक नेटवर्क आरोपित पीवी कुलकर्णी दिल्ली लाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश तेज। लातूर के कोचिंग सेंटर निदेशक से पूछताछ और घर पर की गई छापेमारी। मनीष वाघमारे के साथ काम करने का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में जांच तेज। 5 आरोपी पहले से सीबीआई रिमांड में, 2 और को हिरासत में लेने की तैयारी। नीट 2026 घोटाले मामले को लेकर आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। एनटीए दफ्तर का घिराव करेंगे। कांग्रेस के युवा नेता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पर, एनटीए से जवाबदेही की मांग है। दिग्विजय सिंह का सरकार पर हमला, बोले हर साल नीट में हो रहा घोटाला। डीएमके ने फिर उठाई नीट खत्म करने की मांग, बोली छात्रों पर बढ़ रहा बोझ और पेपर लीक का खतरा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 लीग एग्जाम की आधिकारिक तारीख जारी की, परीक्षा 21 जून को होगी। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन। यूएई के बाद आज नीदरलैंड में पीएम मोदी। यूएई के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार, तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर सहमति। अबू धाबी से 5 अरब डॉलर निवेश पर करार, भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरें फर्जी, पीएम मोदी ने खंडन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट के लिखा, विदेशी यात्रा पर किसी भी टैक्स या सेस का कोई प्रस्ताव नहीं। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के बाद की गई पहली पूजा अर्चना, भारी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग शामिल हुए, जय श्री राम के नारे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा मुस्लिम पक्ष को भी अलग से मिलेगी जमीन। धार भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की, कहा बिना हमें सुने ना आए कोई आदेश। एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा जताया और भोजशाला में एएसआई का संरक्षण जारी रहने की बात कही। धार भोजशाला विवाद में अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भोजशाला केस पर हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कई पार्टी नेताओं के बागी होने के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली जिसमें टीएमसी छोड़नी है छोड़ दे, मैं फिर से पार्टी खड़ा करूंगी। पार्टी सूत्र के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर बेबाकी से बात की और साफ संदेश दिया, संकट की इस घड़ी में पार्टी के साथ बने रहने वाले लोग अनमोल संपत्ति बनकर उभरेंगे। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से पार्टी ऑफिस को फिर से रंगाई पुताई करके दोबारा खोलने के आदेश दिए, कहा टीएमसी कभी नहीं झुकेगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शिवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले से सिलसिले में पुलिस ने टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, 2025 का मामला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन मामलों से जुड़े कई अन्य हाई प्रोफाइल संदिग्धों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने मामले में 5 धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा, अमित शाह को धमकाने का आरोप। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल में बीजेपी विजय जुलूस पर बवाल, 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस और केंद्रीय बल तैनात, 3 हिरासत। आज गर्दीप और हत्या मामले में शिवेंदु सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया, जांच में लापरवाही का आरोप है। सीएम शिवेंदु बोले आज जिगर केस में पूर्व सीपी विनीत गोयल समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। बॉक्सो मामले में घिरे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर नहीं लगी रोक, 17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ का और रेप का आरोप। वहीं केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते तमिलनाडु के सीएम विजय, 18 मई को होना है समारोह। केरलम सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शशि थरूर, सॉरी बोलते हुए बताई वजह, कहा मुझे अफसोस है कि मैं उस समय बोस्टन में रहूंगा। ईसीआई ने तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा वोट डाले जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, कई किसान हिरासत में। राजकोट में ट्रैफिक जाम हटाने की कार्रवाई में 12 मंदिरों पर बुलडोजर, 1 मंदिर बचाने को लोगों ने रामधुन गाकर विरोध किया। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की रुचि बढ़ गई, रणबीर कपूर ने 3 करोड़ की प्लॉट खरीदा है, अमिताभ बच्चन पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं। कोनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई 2 और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या 16 हुई। जूनागढ़ में लोक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों पर नोटों की बारिश, पूरी रकम समाज के छात्रावास निर्माण के दान के रूप में जुटाई गई। भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत की खबर, 26 मई को केरल में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग की जानकारी, निर्धारित समय से 6 दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। मानसून के पहले आने से किसानों को लाभ होगा, खरीफ फसलों की बुआई के लिए माहौल अनुकूल होगा।

पीएम मोदी की अपील का असर, दिल्ली हज कमेटी की नई पहल, बड़े वाहनों की जगह हज यात्री अब एयरपोर्ट मेट्रो से पहुंचेंगे एयरपोर्ट। दिल्ली हज कमेटी का बड़ा फैसला, हज यात्रियों को अब एयरपोर्ट मेट्रो से भेजा जाएगा टर्मिनल 3। चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा, पीएम मोदी के ऊर्जा बचत अभियान को पूरा देश का समर्थन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 27 दिन में करीब 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। केदारनाथ में अब तक 5,76,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन की। बद्रीनाथ में भी अब तक 3,65,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। जमशेदपुर में मोहम्मद मुमताज नाम के युवक की मौत के बाद बवाल, सड़क पर उतरे लोग, आगजनी और जमकर हंगामा। नागपुर में ऑपरेशन थंडर के तहत पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है, ओडिशा से महाराष्ट्र में हो रही थी गांजा की तस्करी, लाखों का माल जब्त। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर मार्केट में लगी भयंकर आग, दमकल विभाग 32 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर में चौकीदार हत्याकांड का आरोपित गिरफ्तार, आरोपी को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। नासिक में सराफा दुकान में हथियारों के साथ की लूटपाट की कोशिश, दो महिलाओं और एक शख्स ने चार चोरों को खदेड़ा, सीसीटीवी में कैद। बोरीवली ईस्ट स्थित एनेक्स मॉल में लगी आग, मौके पर दमकल की 8 से 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। साबरकांठा में एक होटल में अचानक आग लगी, मोबाइल टावर चपेट में आया, हड़कंप मच गया इलाके में। पटना के पौष इलाके में विधायक के भाई से चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाश गले से चेन छीन कर भाग गए। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों के दर्जन प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल सेविंग की अपील का सहरसा में दिखा असर, जिलाधिकारी दीपेश कुमार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर से पैदल दफ्तर पहुंचे। गुजरात के आनंद में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढही, देर रात एक जोरदार धमाके के साथ जमीन दोज़ हुई इमारत। अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसा शेर, बाइक सवार का पीछा करते खौफनाक वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों में दहशत। अमरेली के गांव में दो शेर शिकार की तलाश में गलियों तक पहुंचे, एक शेर ने जानवर का किया शिकार, बाल बाल बचा युवक, वन विभाग की सतर्कता बरतने की अपील। महाराष्ट्र के पालघर में फ्लाई ओवर पर चांदी से भरी वैन पलटी, 17 करोड़ कीमत की करीब 600 किलो चांदी सड़क पर बिखरी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, नए खुले पूल में हुआ हादसा। इटावा में शॉपिंग मॉल की लिफ्ट में 50 मिनट तक फंसे रहे लोग, दो बच्चे समेत 7 लोग कैद हुए। सहारनपुर में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ, होटल कर्मचारी और मालिक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद, एक्सपायरी और उपयोगी दवाएं जब्त। महाराष्ट्र के जालना में भजन कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से कलाकार का निधन, मंच पर भजन गाते गाते गिर पड़े। लखनऊ के हजरतगंज में स्कूटी सवार युवक का कार से कुचलने की कोशिश, धमकाने और टक्कर मारने का वीडियो वायरल।

और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जोरदार आंधी आई थी, तस्वीरें आपने देखी थी। अब आंधी तूफान में मारे गए लोगों के परिवार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर वितरित की गई 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया। प्रभारी मंत्रियों और जिलाधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 111 प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी गई है। सीएम योगी के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रभावित परिवारों से बातचीत कर रही है। देखिए तस्वीर आपको याद होगी, बरेली में एक शख्स 50 फीट ऊपर हवा में उड़ गया था, तो प्रयागराज में 21 लोगों की मौत हो गई थी। बदायूं और न जाने कई शहरों में कई लोगों की जान चली गई थी। ये बताया गया था कि करीब 91 लोगों की मौत हुई है और अब यह बताया गया कि 111 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। कुल 5 करोड़ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए, जिसके बाद 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने मदद पहुंचाई। ये देखिए बरेली की तस्वीर। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
4: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
5: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है,
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: The taste of success.
9: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा देते।
10: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
11: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
18: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
20: और वही कहाँ गए थे घूमने?
21: जीके मैक्स।
22: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
21: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
23: जेके वॉल मैक्स
21: बेस्ट पेंट,
22: जेके मैक्स।
21: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
0: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
0: इन एसोसिएशन विद
7: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
10: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
11: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
12: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
10: शुभेंदु अधिकारी,
9: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
13: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सेन गुप्ता,
14: अनुपम मिश्र,
15: मोहित भारद्वाज,
16: पीयूष मिश्रा,
17: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो
1: अरे
0: आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
5: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hey, Zuko, just because you're not missing shingles doesn't mean you don't have roofing damage. And trust me, that's exactly what insurance companies want you to think. Get your roof inspected for free from my friends at Allstate Exteriors. They'll inspect your roof. If they find damage, they'll walk you through every step of the process of getting it fixed. And if you need a new roof, they have financing options available. Call them today at 614-948-ROOF.
9: You can find us online at OhioRoof.com.
10: And for all you Buckeye fans, that's
11: OhioRoof.com.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
14: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
15: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहां खबर वहां खबरदार।
3: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: का फ्लैग मार्च निकल रहा है।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाईकोर्ट ने ऐलान कर दिया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला की मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था, वो मस्जिद नहीं मंदिर ही है।
2: इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है, और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है, और जो माँ सरस्वती माँ वागदेवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर।
1: इंदौर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा है, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसीलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वागदेवी सरस्वती का मंदिर है। ASI के सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2023 में जारी ASI की तरफ से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण ASI के पास होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है। 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल दी गई कि उसके वजूद को लेकर अदालत तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में यहाँ कभी वाग देवी की आराधना उपासना होती थी, वहाँ हवन कुंड वजू खाना बन गया था, गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्कल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थर दरो दीवारों से बोलते सबूत तौले गए तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में ASI ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने ASI से सर्वे कराया था जो 10 भागों में कुल 2089 पन्नों की दस्तावेजी रिपोर्ट थी। इसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग और गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प थे जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये था कि भोजशाला में 16 तलघर यानी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स थे जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया। इसके अलावा सर्वे में ये भी प्रमाण मिला कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई ASI की रिपोर्ट अब इस विवाद की दिशा तय करने वाली साबित हुई। इन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए हुए है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

भूचाला पर फैसले के बाद सुबह सुबह पहली पूजा। आज तक के कैमरे में दिखे हिंदू धर्म के प्रतीक भगवान गणेश की आकृति, घंटिया रिद्धि सिद्धि। कल हाईकोर्ट ने माना था मां सरस्वती का मंदिर। बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर हटाने के लिए मस्जिद पहुंची पुलिस, के पहुंचने पर फूटा गुस्सा, झड़प, लाठीचार्ज, पथराव के बाद तनाव। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर पर लगाई है रोक। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम टिक शूफ से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, टेक्नोलॉजी और सेमी कंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोर। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, चुनाव प्रचार में अमित शाह को धमकाने का आरोप, दिलीप घोष बोले तानाशाह की तरह

साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार।
0: मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में, हमने देखा, मेट्रो पर यात्रा की है। मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या कदम उठाए हैं?
1: देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद, मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का कारकेट कम किया। हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी। अच्छा। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खासकर अभी का संदेश, वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है। ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने, मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है।
0: मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए, वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है तो आप कार पूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन लगना चाहिए, दिल्ली में फैसला भी हुआ है। फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं। अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है।
1: देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए की डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और मैं देश को बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है। हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी, ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्यप्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोग दिखावा, इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है, जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का, जिसमें हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है, वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए।
0: अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने अपने एक, जितना मुझे याद आ रहा है, आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई, उनके उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का, तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिलाध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है।
1: नहीं, ये जो आपने कहा, हमने तुरंत इस दिशा में, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगल मंडल अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ, इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे।
0: अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत है। तो अब इस पर क्या है, क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है?
1: देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं। आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं? और उनके खर्चे में भी प्रश्न उठे, मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पर भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी, सच में मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते। आप बताइए, चुनाव यहां चलते हैं और वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी

0: बदलना होगा। ये कैसे आप देश के लोगों को, आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई इस अपील को मानेंगे, कितना मानेंगे?
1: देखिए, मैंने तो आज अपनी खुद की मीटिंग में भी ये बात कही कि हम अपने स्तर पे भी, हम सब लोग अधिकारी स्तर पे भी तय करें, सरकार के स्तर पे भी तय करें, जब तक कि बहुत आवश्यक किसी को विदेश जाना नहीं हो, किसी के कोई कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, किसी के बच्चे बच्चे का एजुकेशन का कोई विषय हो, हमको हमारे स्वदेशी भाव के बलबूते पर हमारे देश के अंदर भी अपना समय आनंद के साथ अच्छे से, आपको विदेश के अंदर के बजाय अपने स्वदेशी पर्यटन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं इसको एक तरह से इस स्वर्णिम अवसर के नाते मानता हूं कि आप केवल विदेश के, ये बात सही है कि जब हम विदेश जाते हैं तो हमारे अपने लिए कई प्रकार के इन सारी चीजों के खर्चे भी जुड़ते हैं और दूसरे तरह की बातें भी आती है। तो विदेश जाना और सोना खरीदने के बारे में आपने स्वयं ने, हमने सबने महसूस किया है कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर डॉलर पर निर्भरता तो ये खास करके 71 के बाद में गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड के जो स्टोरेज की जो वर्तमान की पॉलिसी है, जिसके बलबूते पर डॉलर के दाम के आधार पर भारत के रुपये पे इसका दबाव पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से बात सही है कि हमारे देश के अंदर तो सोने से जुड़े हुए कई घटनाक्रम में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश की आजादी के समय में तुलादान के बलबूते पर स्वर्ण दान करने का आह्वान किया था, बात के क्रम में भी हमने सबने देखा है। तो ऐसे में सोना न खरीदने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, ये 100% सही है। मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए और हम को पालन भी करना चाहिए।
0: अच्छा, ये बताइए कि केमिकल खादों का कम और जो जैविक, जो नेचुरल फार्मिंग है उस पर जोर, और शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी कृषि मंत्री हैं, वो आपके पहले वहां पर मुख्यमंत्री थे, क्या देश के बचत मंत्र में कृषि क्षेत्र में खासतौर पर मध्य प्रदेश कोई अनूठा कदम उठा सकता है?
1: निश्चित रूप से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपकी बात जानकारी के लिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। हमने अपनी सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रकार के प्रयास प्रारंभ कर दिए। कृषि कल्याण वर्ष हम पूरा वर्ष मनाने वाले हैं और कृषि के माध्यम से किसानों की आय कैसे बढ़े और खासकर किसान के साथ, खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन या अन्य प्रकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम ठोस काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा आग्रह हमारा ये खेती बागवानी के साथ हमारी प्राकृतिक खेती पे जाने का, और इस आज के जमाने में तो ऑर्गेनिक खेती की बलबूते पर आज की स्थिति में अगर मैं गेहूं की बात भी करता हूं अकेला, तो हमारा सरबती गेहूं का पूरे दुनिया में इस प्रकार से आकर्षण बढ़ा है, लोकवन का भी है, और खास करके हमारे सभी प्रकार के प्राकृतिक और प्राकृतिक खेती के उत्पाद का जो महत्व बढ़ा है, ये आज ये अवसर है जब हम इस पर बहुत तेजी से काम करें और इसका हमको लाभ भी उठाना।
0: ठीक है, अब इससे पहले कि मैं अगले विषय पर जाऊं, एक बार जल्दी से एक बार कैवलकेड पर एक और सवाल था मेरा, क्योंकि आपने भी अपने कॉन्वॉय में कमी की है, कई लोग, अब विपक्ष इसको भी उठा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, पीएम के कैवलकेड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक दिन तस्वीर आई कि पीएम की गाड़ी काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां थी, फिर 2 गाड़ियां थी, वो कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी अपैरेटस जो तय ऑपरेंडाई है कि कैसे भाई एसओपीज जो है पीएम सीएम की सिक्योरिटी को लेकर, उसको छेड़ना सही नहीं है।
1: ये देखिए, आप इस बात को समझिएगा कि ये बात सही है कि सिक्योरिटी का अपना एक महत्व है, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अपनी भावना की अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हैं। बाद में अभी होम मिनिस्ट्री और बाकी सुरक्षा वाली सारी बातों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके जो गाइडलाइन देंगे, मैं मान के चलता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मामले में आदर्श हैं। सबसे पहले वो दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हैं। और ये बात भी सही कि हमारे अपने डेमोक्रेसी में जनता से जुड़ने का अगर कोई सरलता सहजता हो सकती है तो इससे बड़ा अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है। हम क्यों लोग दिखावा करें, हम क्यों भारी आडंबर करें, क्यों हम बड़ा लवाजमा दिखाएं? हम तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो जनता के बीच में रहने के लिए अगर ये अवसर आता है तो मुझे भी आनंद आया। कल मेट्रो में गया, काफी देर तक बात की, रास्ते में मध्यप्रदेश के बारे में भी एक बहन ने हमारी धार्मिक स्थल की बात की, प्राकृतिक स्थल की बात कही, पर्यटन स्थल की बात की, वन्य जीवों पर बात की। वो प्रसन्न हो रही थी कि आपके यहां चीता आ गया, या आपके यहां चीता हमारे पूरे एशिया से खत्म हो गया था, मुझे अच्छा लगा। वो 56 दुकान की बात करें इंदौर में, वो इतने अच्छे मिष्ठान मिलते हैं पूरी रात में, आपके यहाँ ये वित्तीय अनुकूलता कैसे है, भोपाल के तालाब की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है कि हमारी निकटता आती है, हमारे देश के बाकी भाई बहनों से मौका मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि इसको इस अवसर के नाते से लेना चाहिए।
0: ठीक है।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन

0: यादव को आप सुन रहे थे। तो अब मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला की ही बात कर लेते हैं। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहली पूजा की गई और हिंदू समुदाय के लोगों ने सुबह सुबह भोजशाला जाकर पूजा अर्चना की। फूलमाला भी साथ में ले गए थे, फूल अर्पित भी किए। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग वहां मौजूद रहे। भोजशाला को लेकर कल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इसे मां सरस्वती का मंदिर करार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला की जो संरक्षित धरोहर थी वो वाग्देवी मां सरस्वती की मंदिर है, न कि कमाल मौला की मस्जिद है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धार में हिंदू समुदाय की ओर से जश्न भी मनाया गया।
1: भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसके अगली ही सुबह हिंदू पक्ष के लोग पहुंच रहे हैं इस जगह पर। और अगर आप देखें तो यहाँ अगरबत्तियां लगाई जा रही हैं, पूजा हो रही है और साथ ही में यहाँ फूल चढ़ाए गए हैं, माला चढ़ाई गई है। और ये आप देखिए साष्टांग प्रणाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है इस जगह को। ये देखिए जिनके आपको दिखाते हैं, तस्वीर महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है और आकर के माँ सरस्वती की प्रतिमा जहाँ थी जैसा हिंदू पक्ष दावा करता आया है वहाँ पे आकर के माथा टेक रही है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तस्वीरें ये देखिए आंसू निकल पड़े हैं यहाँ पे। ये जो महिला है यहाँ पे ये रो पड़ी है क्योंकि ये जो फैसला आया है उसके बाद इन्होंने लंबा इंतजार शायद किया होगा इस दिन का, ऐसा इनका कहना। और ये आंखों में से आंसू जो है वो इस महिला के ये बताने के लिए काफी है कि क्या ये अहमियत रखता है ये स्थान हिंदू पक्ष के लिए। और ये तस्वीरें जो है ये साफ तौर पे गवाही दे रही है कि कैसे अब यहाँ पे जो लोग हैं वो फैसले की अगले ही सुबह यहाँ पे पहुंच के अब माँ वाग्देवी की प्रतिमा वाले स्थान पर माथा टेक रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद ही सही लेकिन उन्हें इस जगह पर अब कम से कम पूजा करने का, रोज पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
3: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: अपनी इलेक्ट्रिक सवार।
8: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
19: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते।
20: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
21: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है।
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: I'm here with SpinQuest, where you can play and win from the comfort of your own home with hundreds of slot games and all of the table games you love with real cash prizes. Right now, $30 coin packs are on sale for $10 for new users. It's all at SpinQuest.com. That's SpinQuest.com.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
10: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
11: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: जेके मैक्स पेंट्स।
14: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
15: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
15: हमारे सीमेंट में नहीं है,
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
18: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके। जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
21: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
22: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
20: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
23: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
21: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
20: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
0: in association with
1: Monte Carlo. It's the way you make me feel.
2: E3 HDMR. ये रिश्ता लंबा चलेगा.
21: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है. इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
20: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
22: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
20: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
23: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
21: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
20: जहां खबर वहां खबरदार.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भोजाला पर फैसले के बाद सुबह सुबह पहली पूजा, आज तक के कैमरे में देखे हिंदू धर्म के प्रतीक भगवान गणेश की आकृति, घंटिया और रिद्धि सिद्धि। कल हाईकोर्ट ने माना था मां सरस्वती का मंदिर। बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर हटाने के लिए मस्जिद पहुंचने पर पुलिस पर फूटा गुस्सा, झड़प, लाठीचार्ज, पथराव के बाद तनाव। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर पर लगाई है रोक। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी, 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम टिक शूफ से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोर। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, चुनाव प्रचार में अमित शाह को धमकाने का आरोप, दिलीप घोष बोले तानाशाह की तरह किया काम।
1: हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे,
2: जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है। उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना एक साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी है, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है, लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो यह संकट कटने वाला है नहीं। क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो जनता यह भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी आपने 3-3 रुपए, दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब।
1: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं। और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है, उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं। अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्र हित के अंदर उन्होंने अपील किया है। और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग ना करें उसके बारे में हमने कहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के व्हीकल, तो किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था, कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा तो ऐसा नहीं है, देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है। और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री जी, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विषयांतर कर रही हूं। आज आपको बिल्कुल अलग रंग ढंग में हम लोग देख रहे हैं, इसकी कोई विशेष वजह?
1: विशेष वजह नहीं थी, क्योंकि आज मैं अपने सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, जिस पवित्र भूमि ते गुरु नानक देव जी समय समय पर और गुरुआ दे चरण कमल उत्थे पड़े ने, उत्थे ते एक विशेष ट्रेन हरी झंडी दिखा करके श्रद्धालुआ दी, मैंने सचखंड साहिब नंदेड़ साहिब ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
0: ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲੁੱਕ ਆਪਕਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਅੱਜ। ਚਲੇ ਵਾਪਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਆਤੇ ਹੈਂ।
1: ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਹਾਂ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ,
1: ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜੇ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਦੇਖੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਖੂਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ
0: ਦੋਨੋ ਰਾਜ ਭਾਈ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋ ਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਟੌਪਿਕ ਪਰ ਆਤੇ ਹੈਂ ਸਰ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇ ਲਿਏ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੇ ਲਿਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਟਰੋ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੈਟਰੋ ਪੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਐਸੇ ਔਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਉਠਾਏ ਹੈ ਕਿਆ? ਔਰ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਚੈਲੇਂਜ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਸੈਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇ ਵਕਤ ਲੋਗੋ ਮੇਂ ਇੱਕ ਡਰ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਅਗਰ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮਕੋ ਯੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਥੇ ਲੋਗ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸਭ ਘਰ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵਕਤ ਪਰ ਇੱਕ ਜਨ ਆੰਦੋਲਨ, ਇੱਕ ਜਨ ਅਭਿਆਨ ਆਪ ਇਸਕੋ ਬਣਾ ਪਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਗ ਇਸਕੋ ਮਾਨੇ, ਔਰ ਕੈਸੇ?
1: ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਬ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸੀ ਉਸਮੇ ਖੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਵੋ ਆਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਤੇ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਗਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਆ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਤਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀਯ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਇਸ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਔਰ ਜਨ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜੋਂ ਮੇਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਔਰ ਯਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਯੋਂ ਮੇਂ, ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਤਬ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਿਜੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਵੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬ ਦੂਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਫਿਜੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਤੋ ਅਗਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਭ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਲਈ ਸਮਝਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇੰਧਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਭ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵੀ ਹਮੇ ਸਮਝਾਨੇ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ।
0: ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਭਾਰ ਤੋ ਜਨਤਾ ਪੇ ਪੜੇਗੀ ਨਾ ਸਰ?
1: ਜੀ ਜੀ,
0: 3-3 ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਅਬ ਜਨਤਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਦੇਖੀਏ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਤਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀਯ ਮੋਦੀ ਜੀ, 11.5 ਸਾਲ ਕਾ ਕਾਰਕਾਲ ਉਨਕਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਜਬ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੰਕਟ ਥਾ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੰਕਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੜਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਦਰਣੀਯ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮਨੇ ਸਹਿਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੀ ਮੇਨ ਸੰਕਟ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਰਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਹਮ ਜੋ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਰੁਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਸੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸ ਵਰਕ ਕੇ ਉਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਯੇ ਦਿੱਕਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਆਦਰਣੀਯ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ। ਯੇ ਆਹਵਾਨ, ਯੇ ਅਪੀਲ ਆਦਰਣੀਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਆ ਹੈ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੀ ਜਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਯੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚਤ ਕੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪਰ ਮੁਹਰ ਹੈ, ਯੇ ਉਨਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੋ ਸਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ।
1: नहीं देखिए अंजना जी, मैं विपक्ष की आपने बात किया है, राहुल गांधी की बात किया है। विपक्ष ने, क्योंकि जब वैश्विक कोई संकट आता है उस संकट के अंदर विपक्ष का दायित्व होता है कि सहयोग करें, सरकार का नहीं देश का सहयोग करें, ये विपक्ष का दायित्व है। परंतु अंजना जी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का विपक्ष इतना चिड़चिड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए उसने चिड़चिड़ा, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर वैश्विक संकट आता है, अगर आप लोग देखेंगे कोरोना के समय के अंदर ना वैक्सीन ना कोई दवाई, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश को समय समय के ऊपर गाइडलाइन दिया है, उसको एक दिशा में लेकर के गए। विपक्ष की क्या भूमिका थी उस समय के अंदर जब पूरा विश्व इसकी चपेट में था? हमारा भारत का विपक्ष निराश था और वो उसके अंदर राजनीति ढूंढ रहा था। संकट के अंदर भी विपक्ष अपनी राजनीति को ढूंढने का अगर काम करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भी वही स्थिति है। विपक्ष देखिए मोदी जी के बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो बोलने वो अलग विषय है। अगर मोदी जी जो काम कर रहे हैं उन कामों की वो प्रशंसा करे या ना करे वो विषय अलग है। माले देश हित के अंदर मोदी
0: मुख्यमंत्री जी उनकी एक शिकायत है,
1: देश का सम्मान
0: सुनिए सब जी। मुख्यमंत्री जी उनकी एक शिकायत है, शरद पवार भी कह रहे हैं कि पीएम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की जाए। वो कह रहे हैं कि हमको रीच आउट ही नहीं करता, जो सरकार है वो हमसे बात ही नहीं करती, ये उनकी शिकायत है।
1: देखिए अंजना जी, जहां सर्वदलीय बैठक का सवाल आया, आपने जो कहा है ये निर्णय देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के स्तर पर ये लिया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई इस प्रकार का कभी भी, जब कोरोना का संकट आया देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये पुलवामा का घटनाक्रम हुआ, पुलवामा के घटनाक्रम के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर उसकी चर्चा की है। क्योंकि जब ये केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय है और जब देश के ऊपर इस प्रकार का संकट आता है, उनको मालूम है कि सर्वदलीय बैठक के अंदर हमें बैठ करके चर्चा करनी है। परंतु पुलवामा का जो कांड हुआ उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका थी आप जानते हैं, और सर्वदलीय बैठक हुई, कोरोना के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई, उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका थी? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं अंजना जी आज आपके माध्यम से कि इस प्रकार का निराशा का माहौल विपक्ष में नहीं होना चाहिए। जब कोई वैश्विक संकट आता है देश के साथ खड़ा हुआ दिखाई विपक्ष देना चाहिए, परंतु इतना चिड़चिड़ा होना और इतना उनके अंदर निराशा होनी ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: ठीक है, अब हरियाणा पर जरा मैं आना चाहती हूँ, हरियाणा पर फोकस करना चाहती हूँ। हरियाणा में गुरुग्राम जैसे शहर जो कि एक तरह से अगर आप देखिए तो वो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें, मतलब अनंत है ये बहस की भाई ईवी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईवी कितने इस वक्त हैं देश में जिसकी वजह से लोगों के लिए एक रास्ता निकले, ईवी प्रोडक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत कुछ बोल देना आसान होता है, उसको कार्यान्वयन करना बहुत चैलेंज रहता है। और यह भी सच है कि बहुत सारे देशों ने बहुत पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी, हमने काफी एक बफर टाइम जनता को दिया है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका होने वाला है उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर फॉर हरियाणा, और ग्रोथ इंजन वाले जो आपके गुरुग्राम जैसे शहर हैं वो कैसे कोप अप करेंगे, इस पर आपका रोडमैप क्या है?
1: देखिए अंजना जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक शब्द कहा है कि विश्व के अंदर ये बहुत पहले रेट बढ़े हैं, अभी यहाँ अब बढ़ाए गए हैं, आपने एक शब्द कहा है। परंतु मैं अंजना जी आप ध्यान करना, जब विश्व के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर टैक्सों की कमी की थी, सभी स्टेट ने भी की थी कमी, ताकि पब्लिक के ऊपर आम जन के ऊपर इसका प्रभाव न पड़े। परंतु जब ये मिडिल ईस्ट की समस्या लगातार चल रही है और लंबी चल रही है उस समय के अंदर स्वाभाविक ही है, क्योंकि रेट जब पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहे हैं तो हमारी भी यहां कोई मजबूरी इसके अंदर हुई है। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अपील भी किया है कि हम गाड़ी का अन्यथा उपयोग ना करें, हरियाणा विशेष रूप से, चाहे हमारा गुरुग्राम है,
0: पूरा कीजिए, फरीदाबाद है,
1: चाहे हमारा ये पंचकुला है, हाँ, ये चाहे पंचकुला है, ये सारे ऐसे हमारे शहर हैं देश के जो ग्रेथ इंजन के रूप में हमारी सरकार उद्योगों को स्थिर करने के लिए वातावरण बेहतर प्रदान कर रही है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक और निवेश सुविधा पर देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं।
0: नायब सिंह सैनी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा मुख्यमंत्री जी, कि देखिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर सरकार ही, केंद्र सरकार ही ले लीजिए, जब कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं या ऐसे बात जनता से कहनी पड़ती है जो कि शायद लोगों को प्रिय ना लगे, कौन चाहेगा कि उसकी व्यवस्थित जिंदगी चल रही है, वो अपना पेट्रोल से जहां से कार से जाना चाह रहा है वो जा रहा है, या सोना खरीद है, शादी है किसी की, कुछ है, या फिर अपना जो भी जिस तरह से वो खर्च करना चाहता है उस पे अगर उसको सुझाव दिया जा रहा है कि बंदिश लगाओ, आपको एज सीएम क्या इस बात का भय भी सताता है कि ऐसा ना हो कि जो कर्ण अप्रिय चीजें हैं उसका जनता की तरफ से बैकलैश झेलना पड़े?
1: नहीं, देखिए ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, राष्ट्र की मजबूती का अंजना जी ये मुद्दा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि हम अन्यथा वेस्ट ना करें, छोटी बचत और लंबा, एक बात बोलते हैं ना भी, अगर हमने छोटी आज बचत की है तो हम लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके अंदर मेन आह्वान था कि हमने छोटी छोटी चीजों से बचत करनी है, अन्यथा हम खर्च ना करें। ये प्रधानमंत्री जी लगातार जो देश के बारे में, देश की मजबूती के बारे में चिंता करते रहते हैं, मेरा विपक्षी दलों से आग्रह है कि उस कि इस समय के अंदर, ऐसे समय के अंदर राजनीति ना खोजे आप, राजनीति हम किसी अन्य विषयों पे कर ले, मैंने कहा है बहुत सारे विषय हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना की, उसके ऊपर राजनीति करें, भाई किसी को लाभ नहीं मिल रहा, आप कहे ना विपक्ष की जिम्मेवारी है कहना इसको लाभ नहीं मिल रहा, लाभ मिलना चाहिए, ये यही काम होते हैं, परंतु जब वैश्विक संकट कोई आता है उसके अंदर तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा।
0: नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा के, आप आज तक पर आए और जाहिर तौर पर जिम्मेदारी आप लोगों की बड़ी है ऐसे वक्त पर, चुनौतीपूर्ण समय है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू अंजना जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जब से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।
6: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
7: कहना ही है भाई। इतनी चुनाव क्या है, जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का।
8: ये तो ये
6: आप आईएस निकाल लिए होते
7: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सोने की चमक हिंदुस्तानियों के लिए नई बात नहीं है। शादी हो, त्योहार हो या मुश्किल वक्त, गोल्ड हमेशा से भरोसे की सबसे मजबूत निशानी रहा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है कि बाजार में हलचल मच गई है। दिलचस्प बात है कि दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन दुकानों में भारी डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। 3% IGST जोड़ने के बाद कुल टैक्स करीब 18.45% पर पहुंच गया। सरकार की कोशिश गैर जरूरी इंपोर्ट घटाने की है, क्योंकि बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। दरअसल कारोबारी साल 2025-26 में भारत ने करीब बस $72 अरब का सोना खरीदा, जो पिछले साल से करीब 25% ज्यादा है। वहीं चांदी का इंपोर्ट भी तेज रफ्तार से बढ़ा है, और ये दोनों मिलकर भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने और रुपये को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हालांकि सोने पर टैक्स बढ़ते ही बाजार में एक अलग ही तस्वीर नजर आने लगी है। एक तरफ कागजों में गोल्ड रिकॉर्ड महंगा हो गया है, तो ज्वेलरी दुकानों में इसके खरीदार कम हो गए हैं। ऐसे में पुराने स्टॉक को निकालने के लिए डीलर्स बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे देश के कई बाजारों में गोल्ड पर $200 प्रति औंस से ज्यादा का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह पीएम की अपील के बाद ग्राहकों के मार्केट से दूर होने की आशंका है। वहीं ड्यूटी बढ़ने के बाद महंगे हुए गोल्ड में मुनाफा वसूली की वजह से निवेशकों ने ETF और फिजिकल गोल्ड बेचना शुरू कर दिया है। ज्वेलर्स और रिटेल खरीदारों के पीछे हटने से बाजार में सप्लाई बढ़ गई है। इस पूरे खेल में दुबई का रोल भी तेजी से बढ़ सकता है। भारत UAE ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दुबई से आने वाले गोल्ड पर टैक्स सामान्य इंपोर्ट से कम लगता है। दुबई से तय कोटे के तहत आने वाले गोल्ड पर फिलहाल 14% ड्यूटी लगेगी। सामान्य इंपोर्ट पर ये ड्यूटी 15% है, और 2027 तक UAE कोटा बढ़कर 200 टन सालाना होने वाला है। टैक्स के इस अंतर ने बाजार में नए आर्बिट्राज के मौके पैदा कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स को डर है कि इससे ग्रे मार्केट और तस्करी का खतरा भी बढ़ सकता है। विदेश से ज्वेलरी लाने वालों के लिए भी खर्च पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। नए बैगेज प्रोसेसिंग नियमों के तहत एयरपोर्ट पर तय सीमा से ज्यादा गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी लाने पर डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा। नियमों के तहत महिलाएं 40 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम तक ज्वेलरी ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। इससे ज्यादा गोल्ड या सिल्वर पर 15% कस्टम ड्यूटी लगती है। NRI और फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स के लिए विदेश से ज्वेलरी लाना भी पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। यानी सोने की ऊंची कीमतों, सख्त टैक्स और बाजार के तेजी से बदलते मिजाज ने गोल्ड के खरीदारों को दुविधा में डाल दिया है, और फिलहाल इसका मार्केट सुस्त रहने की आशंका है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ।
1: गौशाला पर फैसले के बाद पहली पूजा। आज तक के कैमरे में दिखे हिंदू धर्म के प्रतीक भगवान गणेश की आकृति, घंटियां और रिद्धि सिद्धि, देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ पहुंचे श्रद्धालु। बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर हटाने के लिए मस्जिद पहुंचने पर पुलिस पर फूटा गुस्सा, झड़प, लाठीचार्ज, पथराव के बाद तनाव। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर पर लगाई है रोक। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा। यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम डिक शूफ से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर खास जोर। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार में अमित शाह को धमकाने का आरोप। दिलीप घोष बोले, तानाशाह की तरह काम किया।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
1: मध्य प्रदेश के धार गौशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के बाद की गई पहली पूजा अर्चना, भारी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग हुए शामिल। हाईकोर्ट के फैसले की अगली सुबह हिंदू पक्ष पहुंचे गौशाला, मां वाग्देवी की प्रतिमा के स्थान पर पूजा की, दर्शन करने पहुंचे महिलाएं भावुक हुई। गौशाला के अंदर मौजूद हिंदू चिन्ह दिखा, खंभे पर कई हिंदू देवी देवताओं की आकृति दिखी, हिंदुओं ने बताया सालों पुराने संघर्ष की जीत। मामले में हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की, कहा बिना हमें सुने कोई आदेश ना दिया जाए। धार भोजशाला विवाद में अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भोजशाला केस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। पुणे की ट्यूशन क्लास से जुड़ा पेपर लीक नेटवर्क, आरोपित पीवी कुलकर्णी दिल्ली लाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश तेज, लातूर के कोचिंग सेंटर निदेशक से पूछताछ और घर पर छापे। मनीषा वाघमारे के साथ काम करने का आरोप, नीट पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तार। पेपर लीक मामले की जांच तेज, 5 आरोपित पहले से रिमांड पर, 2 को और हिरासत में लेने की तैयारी। नीट 2026 घोटाले मामले को लेकर आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, एनटीए दफ्तर का घेराव। कांग्रेस के युवा नेता विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सड़क पर, एनटीए से जवाबदेही की मांग। दिग्विजय सिंह के सरकार पर हमला, बोले हर साल नीट में हो रहा घोटाला। डीएमके ने फिर उठाई नीट खत्म करने की मांग, बोले छात्रों पर बढ़ रहा बोझ और पेपर लीक का खतरा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम की आधिकारिक तारीख जारी की, परीक्षा 21 जून को। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन, यूएई के बाद आज नीदरलैंड में पीएम मोदी, द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी नई दिशा। यूएई के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार, तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। अबू धाबी से 5 अरब डॉलर निवेश पर करार, भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरें फर्जी, पीएम मोदी ने किया साफ खंडन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, विदेशी यात्रा पर किसी भी टैक्स या सेस का प्रस्ताव नहीं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कई पार्टी नेताओं के बागी हारने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली जिसे टीएमसी छोड़नी है तुरंत चला जाए, मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूंगी। बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर विभागी से बात की और संदेश दिया, संकट की इस घड़ी में पार्टी के साथ जो रहेगा उसे अनमोल संपत्ति बनकर वो उभरेगा। ममता ने अपने नेताओं से पार्टी ऑफिस को फिर से रंगाई पुताई करके दोबारा खोलने के आदेश दिए, कहा टीएमसी कभी नहीं झुकेगी। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में शिवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, अगस्त 2025 का मामला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले से जुड़े कई अन्य हाई प्रोफाइल संदिग्धों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने मामले में 5 धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा, अमित शाह को धमकाने का आरोप। पश्चिम वर्धमान जिले के अंडाल में बीजेपी विजय जुलूस पर बवाल, दो गुटों में झड़प के बाद पुलिस और केंद्रीय बल तैनात, तीन हिरासत में। आरजीकर कैम्प, आरजीकर रेप और हत्या मामले में शुभेंदु सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया, लापरवाही का आरोप। सीएम शुभेंदु बोले, आरजीकर केस में पूर्व सीपी विनीत गोयल समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। पॉक्सो मामले में गिरे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक नहीं, 17 साल की नाबालिग के साथ रेप। केरल के नए सीएम वी डी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं तमिलनाडु के सीएम विजय, 18 मई को होना है समारोह। केरल सीएम की शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शशि थरूर, सॉरी बोलते हुए बताई वजह, कहा मुझे अफसोस है कि मैं उस समय बोस्टन में रहूंगा। ईसीआई ने तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा वोट डाले जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए। अमित शाह ने दुनिया को दिया ड्रग्स के खिलाफ एकजुट होने का संदेश, नार्को टेरर पर भारत का सख्त रुख, बोले एक ग्राम ड्रग्स भी देश में नहीं आने देंगे। शिकोह पर जमीन सौदे मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राहत, राउल रेवन्यू कोर्ट ने जमानत दी, जमानत बॉन्ड जमा करने का आदेश। सुनवाई के दौरान ईडी ने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो और हफ्ते देने की अपील की, मामले की आगे की सुनवाई 10 जुलाई को। कांग्रेस नेता और सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को एआईएडीएमके के एमएलए को अपनी सरकार में शामिल न करने की सलाह दी, कहा छवि का हानि होगा। पूर्व सिक्किम के याकला क्षेत्र में भारी भूस्खलन होने के कारण जवाहरलाल नेहरू मार्ग पूरी तरह से बंद, प्रशासन ने जरूरी निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार नाथुला में फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, बीआरओ की टीमें मार्ग को साफ करने और सड़क से भारी पत्थर हटाने में जुटी। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, कई किसानों को हिरासत में लिया। राजकोट में ट्रैफिक जाम हटाने की कार्रवाई में 12 मंदिरों पर चला बुलडोजर, एक मंदिर बचाने के लिए लोगों ने रामधुन गाकर विरोध किया। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की बड़ी रुचि, रणबीर कपूर ने 3 करोड़ में खरीदी जमीन, अमिताभ बच्चन पहले ही निवेश कर चुके हैं। दोनों नेशनल पार्क में छोड़ी गई दो और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16 हुई। जूनागढ़ में लोक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों पर नोटों की बारिश, पूरी रकम समाज के छात्रावास निर्माण के दान के रूप में जुटाई गई। भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत की खबर, 26 मई को केरल में मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही मानसून दस्तक दे सकता है, झमाझम बारिश की संभावना। मानसून के पहले आने से किसानों को लाभ होगा, खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल मौसम बनेगा। केरल में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस साल मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका, मौसम विभाग के मुताबिक देश में हो सकती लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश। लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील बात और पेपर लीक की बात करने के लगे गंभीर आरोप, यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप। ऑडियो वायरल होने के बाद परीक्षा नियंत्रक की ओर से हसनगंज थाने में FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर अश्लील बात केस में विशाखा कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी प्रवक्ता ने कठोर कार्रवाई की बात कही। मामले में पुलिस ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। 13 मई को यूपी में आंधी तूफान से हुई तबाही पर योगी सरकार का लगातार राहत बचाव कार्य जारी, अब तक 111 प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी गई। सीएम योगी के आदेश के बाद 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया, वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रभावित परिवारों से संवाद कर रहे हैं। रोहतास में अपराधियों ने की एक युवक की हत्या, हत्या के बाद शव को घर पहुंचाया। पटना के पौष इलाके में विधायक के भाई से चैन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाश गले से चैन छीनकर भाग गए। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों का धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल सेविंग की अपील का सहरसा में दिखासा, जिलाधिकारी दीपेश कुमार अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ पैदल ही दफ्तर पहुंचे। असम के कछार में नदी पर बन रहा पुल गिरा, पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिरा, लोगों ने जांच की मांग की। नागपुर में ऑपरेशन थंडर के तहत पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की, ओडिशा से महाराष्ट्र में हो रही थी गांजा की तस्करी, लाखों का माल जब्त। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर मार्केट में लगी भयंकर आग, दमकल विभाग 32 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर में चौकीदार हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ, आरोपी को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। नासिक में सराफा दुकान में हथियारों के साथ की लूटपाट की कोशिश, 2 महिलाओं और एक शख्स ने 4 चोरों को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमकर बवाल, लाउड स्पीकर हटवाने गई पुलिस टीम से झड़प के बाद भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के साथ किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस चौकी पर हमला किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया, इसलिए बंगाल पुलिस आसनसोल की जहांगीरपुर में मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने पहुंची थी, लोग भड़क गए। इंदौर के सराफा में बदमाशों का उत्पात, सीसीटीवी में कैद 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 3 नाबालिग। पुणे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक, फर्नीचर मॉल पर तोड़फोड़ फायरिंग, फेसबुक पोस्ट से दी गोली मारने की धमकी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, नए खुले पूल में हुआ हादसा, परिवार में शोक। सहारनपुर में रोटी पर टूटने का वीडियो वायरल हुआ, होटल कर्मचारी और मालिक गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरनगर में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद, एक्सपायरी और उपयोगी दवाएं जब्त। महाराष्ट्र के जालना में भजन कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से कलाकार का निधन हुआ, मंच पर भजन गाते गाते गिर पड़े। लखनऊ के हजरतगंज में स्कूटी सवारियों को कार से कुचलने की कोशिश, धमकाने और टक्कर मारने का वीडियो वायरल। वेलकम टू द जंगल का टीजर आउट, 34 सितारों की टोली संग अक्षय ने लगाया कॉमेडी का तड़का, 26 जून को रिलीज होगी। भारत में 4 जून को होगा धुरंधर 2 ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर, 5 जून को जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे भारतीय दर्शक। तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सर्राफ, अक्षय खन्ना संग साउथ में करेंगे डेब्यू। यूकेशन फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक्टर अनुपम खेर को सम्मान मिला, फिल्म कैलोरी के लिए चुने गए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लोकेश कनगराज की बहुचर्चित तमिल फिल्म डीसी का ट्रेलर जारी, वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति में मुख्य भूमिका। LSG लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया, कैनाल स्टेडियम में शानदार जीत, 188 रन का लक्ष्य लखनऊ ने मैच 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई ने पहले 20 ओवर में 187 रन बनाए।

0: ESI की तरफ से जो सबूत दिए गए उन सबूतों को कोर्ट ने माना है कि हाँ यहां वाघ देवी मंदिर था। वर्षों की कानूनी लड़ाई थी और अब ये शुभ घड़ी आई है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे तो और भी कई तस्वीरें वहां से दिखाई गई हैं। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में लोगों ने पूजा पाठ किया, लेकिन परिसर के अंदर अभी कोई प्रतिमा लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ लोगों ने हनुमान जी और देवी सरस्वती की तस्वीरें भोजशाला के अंदर लगाना वो चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें ले जाई जा रही थी, हनुमान जी की तस्वीर थी और देवी सरस्वती की तस्वीर थी, लेकिन उनको अंदर नहीं ले जाने दिया गया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के मुताबिक कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद ही इजाजत मिलेगी।
1: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाघ देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाघ देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो लेकर के भोजशाला के भीतर जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला के परिसर से, जहां पर फिलहाल हिंदू पक्ष के लोग अपने साथ भगवान हनुमान और माँ वाघ देवी की प्रतीकात्मक फोटो लेकर के पहुंचे हैं वहां पे स्थापित करने के लिए।
0: भोजशाला पर कोर्ट का फैसला आने तक आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह ने भोजशाला के अंदर जाकर जायजा लिया। जब फैसला आ गया कोर्ट का, उसके बाद की बात की जा रही है, और इस दौरान बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जो एसआई की रिपोर्ट में थे, जिन्हें कोर्ट ने माना है।
2: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था, हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बनाया बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहां घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
1: ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो खंभे हैं, 104 खंभे पुराने शिलालेखों के साथ, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है, केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप, और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है।
0: और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बैलगाड़ी लेकर कांग्रेस वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगे पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। देखिए तीन रुपए बढ़ गए हैं, ₹3 पेट्रोल, ₹3 डीजल, और अब ये देखिए ये चल रही है बैलगाड़ी, बैल आगे। और अब देखिए कांग्रेस के कई नेता हैं और कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, हाथों में तख्तियां भी है कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, बैलगाड़ी अब सड़कों पर चलती हुई दिखाई देगी, महंगे पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है।
3: आखिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो कर रही है, दूध के दाम बढ़ रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देवेंद्र यादव जो कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हालांकि बैलगाड़ी जो है वो अलाउ नहीं है इस तरीके से सड़कों पर चलाना। इसके बाद पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उनको मना कर रही है कि इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सकते। सर क्यों प्रदर्शन आज बैलगाड़ी के?
4: देखिये आज मजबूरन लोगों को बैलगाड़ी पर आना पड़ा है,

0: पुलिस हमको रोकना चाहती है, लेकिन ये मजबूरी देवेंद्र यादव या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली की जनता की परेशानी है। क्योंकि ये वो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है ये आपके और हमारे सबके सामने है। क्रूड ऑयल जो 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करता था, तब कीमत 70 रुपए हुआ करती थी, और इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 रुपए करेंगे। आज 2026 में 12 साल बीतने के बाद जब क्रूड ऑयल की कीमत 106 रुपया है, आज हालत यह है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। आज दूध बच्चों के मुंह से छीन लिया गया है, आज खाना गरीब परिवार के मुंह से छीन लिया गया है, क्योंकि डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, सीएनजी की कीमत, एलपीजी की कीमत और यहां तक कि दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो हम इसका विरोध करेंगे और जनता के साथ जो लड़ाई है उनकी, उन जनता के साथ लगातार अपना लड़ाई लड़ेंगे। मांग हमारी सीधी है, अगर ये टेम्परेरी चाहे जो युद्ध हुआ है उसके बावजूद भी क्रूड की कीमत जो है वो 106 रुपए है, क्यों ये सरकार इसको कम नहीं करती, क्यों लगातार बढ़ाने का काम कर रही है? मैं चाहूंगा कि दिल्ली की आज
1: यहां वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Every day, too many lives in the construction industry are lost to suicide. But together, we can change that. Join the American Foundation for Suicide Prevention for the Ohio Construction Hike for Hope on May 17th at Sharon Woods in Columbus. A powerful event bringing people together to raise awareness, support one another, and save lives. Walk alongside coworkers, friends, and families, and help break the silence around mental health and construction. Register or donate today at supporting.afsp.org/ohconstruction. Together, we can build hope.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
6: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Your Saturday nights will never be the same.
5: The biggest hits back to back in the mix.
6: Get ready for the biggest mix show on the planet.
7: The Tailgate Block Party.
4: The Tailgate Block Party.
6: 6 hours non-stop. Non-stop.
7: The best DJs from around the world.
4: The Tailgate Block Party.
6: Saturday night.
4: 8 p.m. Eastern.
7: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
6: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ JK।
10: वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के। जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
11: सीधे बहुत असर पड़ेगा जी, असी तो फार्मिंग करते हैं, साढ़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जी।
12: मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको।
13: करीब 2 साल की लंबे अंतराल के बाद तेल कंपनियों ने आखिरकार बड़ा झटका दे ही दिया। सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते ही जेब पर महंगाई का तगड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो चुके हैं और इस बार सीधा 3 रुपए का बड़ा उछाल आया है। इसके साथ ही CNG भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है।
14: बढ़ोतरी तो CNG वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
15: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है।
13: ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब, बस समेत पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
16: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
13: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
17: गैस भी महंगा कर दिया, कॉमर्शियल गैस भी महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया। तो दरअसल ये सरकार पूरी तरह से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसके हित में कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो तमाशा करते हैं और उनके नीचे ग्राउंड पे उनका वर्कर उसकी जो रियलिटी देश के सामने रखता है, बस मीडिया इसको सही से दिखाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है देश समझ जाए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशे में विश्वास रखती है। उनका मकसद इस क्राइसिस से निपटना नहीं है। क्राइसिस से निपटना होता तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाते आप। आपने देश को मझधार में छोड़ा, आप खुद विदेश यात्रा पर निकल गए और दाम आपने सीधे 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए।
1: कुल मिलाकर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 40% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30-40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
18: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दुबई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी के सुपर पावर के साथ पार्टनरशिप पर जोर। आज दोपहर पीएम डिक शूफ से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खुला मोर्चा। दिल्ली में बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध। कहा बच्चों से दूध भी छीना। भोजशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीर ले जाने से रोका। आस्था के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक। बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर हटाने के लिए मस्जिद पहुंचने पर पुलिस पर फूटा गुस्सा। झड़प, लाठीचार्ज, पथराव के बाद तनाव। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर पर लगाई हरो। और नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 21 जून को होगी नीट की दोबारा परीक्षा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जिस नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है, जांच एजेंसी एक्शन में है, लगातार छापे पर छापे हो रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब दावा किया जा रहा है कि सीबीआई इस केस के मास्टरमाइंड तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने एक दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया। पीवी कुलकर्णी लातूर में अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले कई छात्रों को सवाल और उनके सही जवाब बता दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीवी कुलकर्णी खुद नीट पेपर सेटिंग की प्रोसेस में शामिल था और इसी का फायदा उठाकर उसने ये पूरा खेल रच दिया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र से गिरफ्तार चौथा आरोपित है। उसे ही सीबीआई इस केस का सबसे अहम किरदार मान रही है, मास्टरमाइंड मान रही है। हालांकि कुलकर्णी की गिरफ्तारी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीट पेपर सेटिंग से जुड़ा कोई और शख्स भी इसमें शामिल था। सीबीआई अब पीवी कुलकर्णी से पूछताछ कर रही है और यह माना जा रहा है कि इस पूछताछ में बहुत से अहम खुलासे हो सकते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़े कुछ और आरोपियों के नाम भी बहुत जल्द सामने आ सकते हैं और सीबीआई का शिकंजा उनके गिरेबान तक भी पहुंच सकता है बहुत जल्द। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि कड़ियों को बहुत तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी जड़ में कौन है। तो नीट पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जांच में यह पता चला है कि मांगीलाल के छोटे बेटे अमन ने, मांगीलाल का छोटा बेटा अमन था, उसने भी इस बार नीट की परीक्षा दी थी। अमन बेवाल 12वीं की पढ़ाई करने के बाद प्रॉपर्टी के काम में लग गया था, लेकिन जब उसे नीट का पेपर मिला तो वो भी परीक्षा में शामिल हो गया। और इस मामले में अमन का बड़ा भाई विकास पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मांगी राम के छोटे बेटे, नाम एक बार फिर हम आपको बता दें, मांगीलाल के छोटे बेटे अमन ने भी नीट की परीक्षा दी थी। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद प्रॉपर्टी के काम में लग गया, लेकिन नीट का पेपर मिला तो उसने भी सोचा क्यों ना एक सीट ले ली जाए। एक बच्चे का हक मार लिया जाए, एक छात्र का हक मार लिया जाए। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, सीबीआई फुल ऑन एक्शन मोड में है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हो गया है, अभी तक जांच कहां पहुंची और क्या नए खुलासे हुए?
1: देखिए, जांच का पूरा जो दायरा है वो अब पीवी कुलकर्णी के बाद एनटीए पर आकर टिका हुआ है। एनटीए में कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे, ये कैसे आया है और कौन इसके सिलेक्शन के पीछे है, मुझे लग रहा है कि एनटीए में जो भी जांच आगे बढ़ेगी उसमें सरकार भी शामिल होगी, क्योंकि वो जो सदस्य बनाए जाते हैं या फिर जो वहाँ पर रखा जाता है वो काफ़ी ठोक बजा कर रखा जाता है। अब देखिए, एक एसओपी होती है कि आप जब एनटीए से बाहर निकलते हैं तो आपकी पूरी जांच होती है, अगर परीक्षा हो रही होती है तो मोबाइल की स्कैनिंग होती है या मोबाइल बाहर रखवा लिया जाता है। किसी भी परीक्षा में अगर तैयारी की जाती है परीक्षा की उस संस्था के द्वारा तो एक एसओपी जारी होता है। अब ये जो शख्स है कुलकर्णी, वो अगर निकल रहा है एनटीए से या फिर एनटीए के संपर्क में था तो पेपर कैसे उसके तक चला गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर अब सीबीआई जांच करने में लगी हुई है। देखिए, जो पकड़े गए हैं वो अब सब तोते की तरह बताने लगे हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक कड़ी जो जुड़ती जा रही है, जिसकी वजह से इस बार सीबीआई ने एक काम अच्छा किया है कि कौन कौन पेपर खरीदा है इस दौड़ में पढ़ने के बजाय पेपर कहां से आया है वहां तक पहुंच रही है। पिछली दो जांचों को देखें,
0: कहा कि सीबीआई ने एक काम अच्छा किया है और हो सकता है कि इसी एक अच्छे काम की वजह से इस जड़ तक जाकर पता लगाया जा सके शुरुआत आखिर हुई कहां से, कौन कौन जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आरोपित कितने वक्त से ये सब कर रहे थे और अब तक ये पकड़े क्यों नहीं गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने अपने परिवार के 5 बच्चों का एक साथ एमबीबीएस में एडमिशन करवाया और अगले ही साल वो नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हो गया? तो शक की सुई तो उसके ऊपर जाएगी ही।

0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। विवाद परिवार सीबीआई के रडार पर है, जिसे लेकर अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। पता चला है कि मांगीलाल और दिनेश बिवाल के एमबीबीएस कर रहे सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज छोड़कर गायब हो गए हैं। पलग जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में, प्रगति नवल किशोर मेडिकल कॉलेज दौसा में, सोनिया मुंबई और गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। विकास बिवाल सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पिछले साल नीट 2025 में ही पांचों पास होकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, मांगीलाल और दिनेश पहले भी नीट का पेपर लीक कर आगे बेच चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुद ये बात स्वीकार की है। पिछले साल नीट 2025 में बवाल परिवार के सभी पांच बच्चों को नीट का पेपर परीक्षा से पहले ही मिल गया था। 2025 में बिवाल परिवार ने 65 लाख में पेपर लिया और आगे बेचा। ये लोग नीट का पेपर महाराष्ट्र नेटवर्क से खरीदते थे और आगे बेचते थे। हरियाणा का यश यादव भी सीकर में रहकर पढ़ता था। इसी दौरान मांगीलाल परिवार के संपर्क में आया। मांगीलाल का बेटा विकास बिवाल भी इस पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि 2025 में बिवाल परिवार के जिन पांच बच्चों ने नीट क्रैक किया, उनके पास पेपर पहले था। इस बीच सीबीआई की एक टीम ने जयपुर में बिवाल परिवार के घर पर धावा बोल दिया।
1: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी, उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है, उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ, कुछ आप लोगों ने जांच में? तो इस तरह से अभी ये सीबीआई के जो अधिकारी हैं, हालांकि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर यहाँ पर तफ्तीश चल रही है। जो महिलाओं के फोन हैं, वो भी फोन के भी स्कैनिंग चल रही है, और बाकी जो यहाँ पर कागजात हैं या जो भी सामान है, उन सबकी तलाशी चल रही है।
0: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, इस परिवार के तीनों सदस्य सीबीआई की गिरफ्त में हैं। मांगीलाल के घर से सीबीआई ने कुछ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए।
1: यहाँ पर अभी सीबीआई आई थी, घर से 4 फोन, 1 लैपटॉप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वो जब्त करके ले गई। अभी हम उसी घर पे खड़े हैं जहाँ पर तीन जयपुर के एक ही परिवार के तीन लोग, दिनेश, मांगीलाल और विकास की गिरफ्तारी हुई है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कई सालों से जुड़े हुए थे। आप देख लीजिए कि धनंजय हो या फिर यश हो या फिर वानखेड़े हो, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से कई सालों से जानते थे और ये पुराना काम था इनका। इसी बारे में सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सीबीआई ने इस बार पहल करते हुए जितने बच्चों को हिरासत में लिया था, सबको छोड़ दिया है कि किसने किसने पेपर खरीदा है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, किसने किसने पेपर बेचा है उस पर फोकस करना है।
0: जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि सारा खेल कोचिंग माफिया का है। पकड़े गए लोग केवल नेटवर्क का हिस्सा थे। सीकर के कोचिंग संस्थानों पर भी नजर रखी जा रही है। एजेंसी का मानना है कि ये सामान्य पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि वर्षों से व्यवस्था के समानांतर संगठित नेटवर्क की साजिश है।
1: सिर्फ 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है, ऐसी बात नहीं है। ये कुरियर का काम करते थे, बाकी जगह भी सप्लाई करते थे, और इसीलिए पिछले 4-5 सालों से सीकर में फ्लैट लेकर आ रहे थे। और सीकर के जरिए इन्होंने ही, मांगीलाल, दिनेश ने ही, ये जम्मू कश्मीर में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में ये पेपर भिजवाए हैं। इसलिए सीबीआई की एक टीम हमेशा जयपुर में कैंप करेगी और यहाँ से महाराष्ट्र एंगल पर तलाशा जा रहा है, बिहार का जो पुराना गुट है उसे भी तलाशा जा रहा है। बिहार मॉडल भी रहा है यहाँ पर, जो 2025 में पूरी तरह से खुल नहीं पाया था।
0: खुलासा ऐसा हुआ है कि सीकर की कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ छात्र और फैकल्टी मेंबर 3 मई के बाद कथित पेपर लीक की शिकायत लेकर शहर के उद्योग नगर थाने पहुंचे थे। उनका आरोप था कि परीक्षा से पहले शहर में एक गेस्ट पेपर घूम रहा था और परीक्षा में उसी पेपर के हूबहू सवाल आए हैं। सीकर की उद्योग नगर पुलिस ने इस शिकायत को हल्के में लिया, जिसके बाद छात्रों ने ईमेल के जरिए एनटीए को शिकायत भेजी। फिर एनटीए ने उस ईमेल को राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भेजा। जब एसओजी ने 8 मई की रात सीकर समेत कई शहरों में छापा मारा तो पूरा खेल उजागर हो गया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: अपडेट पेपर लीक कांड को लेकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने भी मोर्चा खोल दिया है और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने एनटीए को भंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने याचिका में वैधानिक ढांचे के माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन पुनर्गठन के लिए निर्देश देने की मांग की है। और कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में कोचिंग चलाने वाले पूर्व लेक्चरर नीट पेपर की सेट करने वाली टीम से जुड़ा तो उसने छात्रों से भविष्य से खिलवाड़ की साजिश रच डाली, पूरा प्लान तैयार किया और नीट परीक्षा से ठीक पहले कई छात्रों को पेपर आउट कर दिया और इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की, जिसकी कड़ियां अब सामने आ रही हैं।

0: एक लेक्चरर जिसने नीट पेपर लीक का प्लान बनाया, पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले ही उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। वहीं लेक्चरर अब सीबीआई की गिरफ्त में है। जांच एजेंसी उसे पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड मान रही है। उसकी गिरफ्तारी इस केस की अब सबसे अहम कड़ी है। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
1: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
0: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल पीवी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
1: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी इस केस की सबसे अहम कड़ी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज से पर्दाफाश होने की उम्मीद है। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से, जहां पर एनटीए दफ्तर के बाहर इस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, जोरदार हंगामा चल रहा है। और ये देखिए एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन है और एनटीए दफ्तर के बाहर ये जोरदार हंगामा, जोरदार प्रदर्शन, घेराव एनटीए दफ्तर का किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसा कि कहा गया था कि एनटीए दफ्तर के बाहर कांग्रेस की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और पूरी तैयारी भी यहां पर की गई थी एनएसयूआई की तरफ से। अब वही तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे एनटीए दफ्तर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। अब प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर, तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एनटीए दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। पेपर लीक और उसकी वजह से छात्रों को जो परेशानी हो रही है वो मुद्दा एनएसयूआई की तरफ से उठाया जा रहा है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर कुछ धक्का मुक्की वाले हालात भी बन रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इसी के चलते एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वहीं पर, ये देखिए एनएसयूआई कार्यकर्ता वहीं पर रोड पर बैठ चुके हैं। एनटीए दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, तालियां बजाते हुए, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए हुए एनटीए का घेराव किया जा रहा है। सुनिए एक बार। अनमोल बाली जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अनमोल, क्या हो रहा है वहां पर अभी?
3: हिमांशु, इस समय मैं आपको तस्वीरें एनटीए मुख्यालय की बाहर की दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इस समय यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स और एनएसवाई के जो कार्यकर्ता हैं उनमें धक्का मुक्की चल रही है, क्योंकि भारी संख्या में एनएसवाई के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ एनटीए का जो मुख्यालय है ओखला स्थित बिजनेस पार्क, एनएसआईसी बिजनेस पार्क है, वहां पर पहुंचे और पहला धरना प्रदर्शन इससे पहले नीट यूजी को लेकर जो एनएसवाई के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर थे। देखा गया कि शास्त्री भवन के बाहर धरना प्रदर्शन होता है, एनटीए मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन होता है, और अब जो फिर जो प्रदर्शन है वो एनटीए मुख्यालय के बाहर हो रहा है। हमारे साथ रौनक खत्री है। रौनक,
4: हम बदलाव चाहते हैं, एनटीए को बैन कराना चाहते हैं। 2000 जब लागू हुआ था एनटीए, इस मकसद के साथ लागू करा गया था कि जितनी पेपर लीक की समस्या है उसको खत्म करा जाए, उसको समाप्त करा जाए, परंतु जब से एनटीए लागू हुआ है पेपर लीक बढ़ते जा रहे। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री है अपने बयानों से भागते हैं, पेपर लीक को आम समझा हुआ है। मीडिया को कहते हैं कि हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अरे मीडिया क्या सहयोग देगी आपको? क्या आप क्या पेपरों को कंडक्ट कराने के लिए ट्रैक्टर और टेम्पो चलाने लग जाएंगे या प्रिंटिंग प्रेस ऑन?
3: सीबीआई का कहना मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया।
4: मास्टरमाइंड से क्या होता है? 2024 का मास्टरमाइंड जो था वो कहाँ है? 2026 में फिर मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। ऐसे मास्टरमाइंड पैदा ही क्यों होते हैं? ये सवाल देश की जनता का अपने गृह मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब से है।
3: तो तस्वीरें मैं हिमांशु आपको दिखाना चाहूंगा एनटीए के मुख्यालय की बाहर की, देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं यानी कि कांग्रेस की जो छात्र इकाई है यहां पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। नीट यूजी का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, तकरीबन 22 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो हवा में लटक रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर 21 जून की रीनीट की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। सीबीआई की इस मामले को लेकर जांच भी चल रही है, पर तब भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनएसयूआई जो है भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ सड़कों पर है, और पिछले 4-5 दिनों से देखा जा रहा है कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता वो ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं कैमरा सहयोगी अंकित सिंह को कहना चाहूंगा कि आपको दिखाई कि कैसे यहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी कर रखे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा रैपिड एक्शन फोर्स एंटी राइड गियर के साथ, और साथ ही दिल्ली पुलिस के जो जवान है भारी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं, साथ ही बैरिकेटिंग कर रखी है ताकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता अंदर दाखिल ना हो। पर वही तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय खींचतान चल रही है रैपिड एक्शन फोर्स और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत भारी बैरिकेटिंग यहां पर कर रहे
2: हैं। हंगामा है, प्रदर्शन है, सुरक्षा के इंतजाम है और छात्रों का विरोध है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनमोल। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में सीबीआई की टीम ने दिल्ली में रेड की है। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में ये रेड हुई है, 2 घरों में घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला है। एक शख्स की तलाश में सीबीआई की टीम पहुंची थी, वो शख्स नहीं मिला है, उसके पिता को नोटिस देके वापस टीम लौट गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम अब साथ में मौजूद थी और ये बताया जा रहा है छापेमारी जा रही, सीबीआई की टीम पहुंची थी दिल्ली, 2 घंटे तक छापेमारी चली। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: फील द गुड वाइब्स विद रूट्स रेगे। ट्यून इन इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू योर इयर्स विद द बेस्ट रेगे हिट्स। स्टिर इट अप विद बॉब मार्ली, जिमी क्लिफ, Protege, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
10: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया। Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

किचन के बजट से लेकर डाइनिंग टेबल के स्वाद तक हर चीज पर महंगाई की बुरी नजर लग चुकी है। दुनिया भर में खाने पीने की चीजें पिछले 3 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं। यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले दिनों में आपकी थाली और महंगी हो सकती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के अनुसार अप्रैल में फूड प्राइस इंडेक्स 1.6% बढ़ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5% ज्यादा है। इसकी वजह जंग के असर से ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर टूटना है। ईंधन और खाद महंगी होने से किसानों की लागत बढ़ गई है, जिसका बोझ कंज्यूमर्स पर आएगा। रिपोर्ट बता रही है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ी है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वेजिटेबल ऑयल की कीमतें मार्च के मुकाबले करीब 6% तक बढ़ गई हैं। मीट के दाम में 1.2% का इजाफा हुआ है, जो अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। अनाज की कीमतों में भी करीब 1% की तेजी दर्ज की गई है। खतरा केवल आज का नहीं, आने वाले कल का भी है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव 3 महीने से ज्यादा खिंचा तो साल के आखिर तक दुनिया को बड़े फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। खराब मौसम और गेहूं की कम बुआई ने आग में घी डालने का काम किया है। खाद महंगी होने की वजह से किसान ऐसी फसलें तलाश रहे हैं जिनमें खर्च कम हो। भारत के रिटेल मार्केट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार अप्रैल में महंगाई अगस्त 2025 के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है। जरूरी इस्तेमाल के 20 में से 16 सामानों की कीमतों में भारी उछाल आया है। खाने के तेल और टमाटर जैसी बेसिक चीजों के दाम 36% तक बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट की इस हलचल का असर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के सामानों यानी FMCG प्रोडक्ट्स पर भी पड़ने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स बता रही है कि HUL, डाबर और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कॉफी, कोको और पाम ऑयल जैसी कच्ची सामग्रियों की कीमतें बढ़ने से कंपनियों पर दबाव है। आने वाले महीनों में साबुन, शैम्पू और बिस्किट्स जैसे पैकेट बंद सामान 3-5% महंगे हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में डिमांड पहले से कम है, ऐसे में बढ़ती कीमतें मुसीबत और बढ़ाएंगी। साफ है कि कच्चा तेल और पाम ऑयल महंगा होने से फिलहाल तो राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यानी युद्ध की आग लगती तो केवल सरहदों पर है, लेकिन उसकी आंच आम आदमी की थाली और महीने के बजट तक पहुंच जाती है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रुथ।
1: यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नोलॉजी के सुपर पावर के साथ पार्टनरशिप पर जोर। आज दोपहर पीएम डिक शूट से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खुला मोर्चा, दिल्ली में बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, कहा बच्चों से दूध भी छीना। भोजशाला पर फैसले के बाद पूजा

में लाउड स्पीकर हटाने के लिए मस्जिद पहुंचने पर पुलिस पर फूटा गुस्सा, झड़प, लाठीचार्ज, पथराव के बाद तनाव। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर पर लगाई है रोक। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एनटीए के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, डॉक्टर्स फ्रंट ने भंग करने की मांग की।

0: महंगाई की मार तो है ही, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
1: हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है।
2: हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं।
3: जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया?
4: हाँ ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
5: ऑलमोस्ट को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तालियों के साथ यहाँ मौजूद युवाओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिखाइए इन तमाम चेहरों को, देश के युवा हैं जो आज सवाल दागेंगे। नेता यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका परिचय कराएं उससे पहले आपका विषय से परिचय कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 उपायों पर देश में तेजी से अमल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का अपना दौरा पूरा कर लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच समझौते हुए दस्तखत हुए हैं। साउथ आउटकम्स जो है वो विदेश मंत्रालय ने बताया है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं, थोड़ा तालियां बजा लीजिए। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ डीयू की प्रोफेसर जुड़ रही हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा। तो चर्चा हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं पहला आउटकम जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत के पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत हुए हैं। दूसरा आउटकम, एलपीजी सप्लाई पर रणनीतिक साझेदारी तय की गई है। तीसरा आउटकम, रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर समझौता, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई और भारत का। हमारे दर्शक ये जानते होंगे लगभग 35 से 40% आबादी दुबई शहर में जो यूएई में है वहां पर इंडियंस रहते हैं। तो आप समझिए कि कितना भारतीय समुदाय जो वहां पर है वो कितना बड़ा है और कितना वहां पर ताकत रखता है। चौथा आउटकम जो इस दौरे से हुआ है, गुजरात के वाडिनार में बताया जा रहा है कि वाडिनार में जो शिप रिपेयर क्लस्टर है उस पर एक समझौता किया गया है। पांचवा आउटकम, शिप रिपेयर में जो आपस में दोनों के बीच में कैसे एक डेवलपमेंट पर समझौता किया जाए और साझेदारी की जाए। छठा आउटकम, 8 सुपर कंप्यूटर क्लस्टर हब्स बनाने पर समझौता किया गया है। और सातवां आउटकम है भारत में यूएई का $5 अरब का निवेश। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूएई के साथ समझौतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मूज पर भारत का स्टैंड भी साफ किया है जो आज पूरे विश्व को सुनना चाहिए, खासतौर पर भारत में।
1: ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
0: लेकिन इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 7 ऐसी बातें गिनाई हैं जिसमें हम कैसे पेट्रोल डीजल की खपत को देश में कम करें, गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदें, विदेश 1 साल तक यात्रा नहीं करें। 7 ऐसे सुझाव उन्होंने देशवासियों को दिए। लेकिन इधर 7 आउटकम की बात हो रही है यूएई के साथ, लेकिन अब बात होगी उन पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो वृद्धि है। पश्चिम एशिया के युद्ध से बनी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसे हर देश को झेलना पड़ रहा है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर युद्ध के 76 दिनों बाद भारत ने पहली बार पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ाए हैं। 3-3 रुपए की बढ़ोतरी दोनों में ही हुई है, पेट्रोल में भी डीजल में भी। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे पहुंच गई है। देश के अन्य शहरों में राज्यों में लगने वाले वैट के आधार पर कीमतों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर जरूर देखा जाएगा। वो कीमतें भी हम लगातार आपको शो में दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल की बिक्री पर तेल कंपनियों को जानते हैं रोजाना कितना नुकसान हो रहा था। 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान पेट्रोल कंपनियों को हो रहा था। अप्रैल से जून तिमाही में 1 लाख करोड़ और 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। यानी आप सोचिए अगर एक दिन में ऐसा उनको नुकसान हो रहा था तो क्या आने वाले वक्त में उनकी परिस्थिति होती। क्योंकि एक बात तय है, हॉर्मूज में जो स्थिति बनी हुई है वो ओवरनाइट जादू से ठीक नहीं होने वाली है। अगर हॉर्मूज खुल भी जाता है तो पूरे सप्लाई चेन को व्यवस्थित रूप से चलने में काफी दिन लग सकते हैं। यानी 3 रुपए की बढ़ोतरी से कंपनियों के नुकसान की पूरी भरपाई अभी नहीं होने वाली है, लेकिन एक शुरुआत जरूर होगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको सुनाते हैं क्योंकि इस 3 रुपए की बढ़ोतरी पर विपक्ष ने सरकार की लूट से कहा है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। अजय आलोक जी, आज बड़ा सवाल यह है कि आप लोग ये कह रहे थे कि हम भाई लोगों को सुझाव दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन यहां से होते होते उनकी जेब पर भी आपके हाथ पहुंच गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ी तो ऐसी स्थिति को आप किस तरह से कहेंगे? और जो जनता को अपना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा वो पूछेगी नहीं कि काहे भाई हम काहे दे?
2: अंजना जी, आपके और आपके सारे दर्शकों को पता है कि ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, और 28 फरवरी से ही पूरे वैश्विक कीमतें बढ़ने लगी थी, और 28 फरवरी से लेके आज तक, यानी आज हम खड़े हैं 15 मई, आज सुबह कीमतें बढ़ी हैं मात्र 3 रुपये पेट्रोल और डीजल पे, विच इज 3.2 और 3.4%। और इस बीच में हमारी कंपनी, जैसे आपने अपनी ओपनिंग में बताया कि हमारी सार्वजनिक कंपनियां, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, उन्होंने पर डे लगभग 1700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। कॉरपोरेट कंपनी है, तो देश के प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट लॉस को कम तरजीह दी बनिस्बत की सिटीजन सिक्योरिटी के लिए। इसके लिए क्या एक कुशन फैक्टर 2.5 महीने का किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी देश ने दिया? नहीं दिया। आज भी हम 3% बढ़ाए हैं, हमारे कॉन्टेम्प्रेरी में अमेरिका में 48%, कहीं 20%, चाइना, जापान, किसी कंट्री का भी नाम ले लीजिए, पाकिस्तान का नाम ही लेना बेकार है, बांग्लादेश, ये वो जितने कंट्री हैं सबका 30%, 20%, 15%, 25%, 44%, इस तरह से बढ़ा, हम 3% पे बढ़े हैं। आज सवाल ये उठता है, ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों है? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये थोपा गया युद्ध है हम पे, जिसकी हम भरपाई कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाला 60% तेल हमारे पास आता है, 90% LNG हमारा वहीं से आता है। अब वो जब सप्लाई चेन इफेक्टिव होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ढुलाई का कीमत बढ़ेगा। जब ढुलाई की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज का दाम बढ़ेगा, जैसे दूध का दाम बढ़ा, सबका दाम बढ़ा। तो ये इसी खतरे के प्रति अगर प्रधानमंत्री जी आगाह कर रहे हैं, अब इसमें बोलेंगे कि चुनाव के पहले क्यों नहीं किया, तो एक महीने पूरे चुनाव के दौरान हमारी सप्लाई चेन अफेक्टेड नहीं हो रही थी। अब अगर ट्रंप का और ईरान का अगर ये वार्ता सफल नहीं हुई तो निश्चित तौर पे युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और इसमें सप्लाई चेन अफेक्टेड होंगी, तो निश्चित तौर पे इसीलिए जब समय आया उन्होंने बोला, जब तक समय था उन्होंने कुशन दिया,
0: फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, कब से सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ है, हॉर्मुज कब बंद किया ईरान?
2: बिल्कुल,
0: क्या बात कर रही
2: है, 28 फरवरी से शुरू हुआ, 6 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज को अपना वेपन बना लिया था, 6 मार्च से, लेकिन भारतीय शिप्स निकल रही थी, लेकिन कम निकल रही थी,
0: पर डे निकल रही थी,
2: एक या दो निकल रही थी, जो पर डे पहले 15 निकलती थी, तो सप्लाई तो हमारी इफेक्टेड हो गई थी। लेकिन ये विजन था हमारा कि जब से हम सत्ता में आए 74 दिन का बफर स्टॉक था हमारे पास, जो आज भी 60 दिन का स्टॉक है, उसी स्टॉक से हम चले हैं। हम शुरू से मानते हैं कि कॉरपोरेट बेनिफिट से ज्यादा जरूरी है सिटीजन सिक्योरिटी, ये प्रधानमंत्री की सोच है। पिछले 2.5 महीने उन्होंने ये किया, आज उन्होंने अपील की है, तो भाई घर में पैसे बचा लोगे तो तुम्हारी जेब में रहेंगे ना, कोई गांधी परिवार के तो घर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं।
0: प्रोफेसर साहब, अब आप आइए इस सीन में और ये बताइए कि भाई ये संकट, ये युद्ध मोदी जी ने तो शुरू नहीं किया है, अगर इसका भी श्रेय आप लोग बता दें कि मोदी जी ने युद्ध शुरू करवाया तो समझ में आए। अब ये वैश्विक संकट है, अनेकों देश, अमेरिका से लेकर हर देश, अमेरिका जैसा देश जिसका तेल सप्लाई प्रभावित भी नहीं हुआ उसने भी कीमतें बढ़ा दी, सबने इसको मौके की तरह इस्तेमाल किया कि कैसे वो कीमतें बढ़ा दें। और भारत में अगर इतने पीरियड का कुशन मिला है आपको, सिर्फ और सिर्फ संकट में भी मौका देखना है क्या?
3: एक कहावत हमारे यहाँ है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जुलाहा, यही हाल हो गया है। इस देश में सस्ता जब तेल रसा से मिल रहा था, नयारा और रिलायंस एक कंपनी है जो सस्ता तेल रसा से लेकर के और यूरोपियन मार्केट में बेचा और 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का रुपया कमाया है, अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो उस समय जब सबसे सस्ता 70 से कम था, जब पिछले 4 साल पहले तक तेल इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल, तब भारत के एक भी व्यक्ति को, जितने यहां बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, किसी को एक पाई का लाभ नहीं हुआ, दाम में कटौती नहीं की गई। किसको लाभ हुआ? कंपनियों को लाभ हुआ। देश की सरकार ने लोगों के जेब से 44 लाख करोड़ रुपए, कितना, 44 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई 10 साल के अंदर। आज ज्ञान क्या दे रहे हैं, अमेरिका में बढ़ गया, इंडोनेशिया में बढ़ गया, वहां तुर्की में बढ़ गया, भैया आपके यहाँ क्या क्यों नहीं बढ़ा? सच्चाई ये है, 4 मई की बात इन्होंने सच की है, 4 मई से पहले सब चंगा से था क्योंकि चुनाव था। 4 मई के बाद चुनाव जैसे खत्म हुआ, मोदी जी को एक बड़ी आत्मज्ञान हुई, भाई त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कहा त्याग करो, अब आप लोगों को त्याग करना होगा। त्याग कहा उन्होंने, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल, त्याग करो। त्याग करना है आपको, सोना चांदी से मोह माया क्यों रखना भाई, गहने होने में उलझने का क्या मतलब, उसका भी त्याग करो। विदेशी यात्रा में जाने की क्या जरूरत है, जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं वो लौट आए, त्याग करो, देश के लिए त्याग करना होगा। और जहां तक त्याग की बात है, खेतों में किसानों का तो दाम आमदनी बढ़ी नहीं, यूरिया

0: वहां पे केस बंद हुआ है, उसके बदले ऑपरेशन सिंदूर भी का भी त्याग, उसके बदले आपने सबने सुना किस तरह से सस्ता रसा से तेल मिल रहा था, अमेरिका ने कहा था उस समय रोक दो,
1: ठीक है, तो
0: उसका भी त्याग कर दिया।
1: प्रोफेसर साहब, हजार करोड़ रुपए का नुकसान
0: ट्रेड डील का भी कर दिया है।
1: सवाल
0: अभी
1: तो सुनिए,
0: ट्रेड डील में किसानों के हित का त्याग करने का काम किया मोदी जी ने, कम त्याग किया, मोदी जी का आदत है त्याग करने का। विदेश जा रहे हैं तो लोग को पेट में दर्द हो रहा है, भाई मोदी जी विदेश जाएंगे नहीं क्या? दो विमान है 8x16,000 करोड़ का, यहाँ रखे रखे पार्ट पुर्जा उसका खराब हो जाएगा, उसको भी तो बनवाना पड़ेगा। तो वहां गए और नार्वे में जा रहे हैं, ये तो सब कहानी बन रही है। नार्वे में ग्रीन एनर्जी देख लीजिएगा, ग्रीन एनर्जी पर बैन लगा हुआ है मोदी जी पर।
1: अनुराग जी देख रहे हैं कि सारा पॉइंट यही बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा,
0: उसको भी
1: हजार करोड़ रुपए का नुकसान तेल कंपनियों को रोजाना हो रहा है।
0: त्याग को याद रखना होगा और आपको हमको भी त्याग करना होगा।
1: आज क्या खा के आए हैं?
0: बस पे चलिए त्याग कीजिए,
1: आपका घर का राशन तो ठीक चल रहा है,
0: मेट्रो में चलिए त्याग कीजिए।
1: दुबे जी भी ऐसे देख रहे हैं
0: तो घर के अंदर रहिए,
1: दुबे जी भी साइड से देख रहे हैं,
0: चलिए बाहर।
1: अरे एक लखनऊ एक मुंबई से आया है शो के लिए, उनको भी बोल दीजिए, जवाब दीजिए, ये जब सवाल ही नहीं पूछने दिया।
2: अपने अपने 3 मिनट के वक्तव्य में मैं उम्मीद करता था कि हमारे कांग्रेस पार्टी उनके प्रवक्ता देश के लिए खड़े होंगे, देश के लिए कुछ अच्छा देंगे, कुछ अच्छा सुझाव देंगे, लेकिन ना, सिर्फ मोदी विरोध और मोदी जलन के अलावा कुछ नहीं, निहायत जलन खोटा है ये लोग। 44 करोड़ कहने 44 लाख करोड़ हम लोग खा गए। ये देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये राफेल खरीदे जा रहे हैं, ये हमारे भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ मिल रहे हैं, ये लखनऊ सूट मिल रहे हैं, ये कहां से पैसा आया? हम नहीं खाए भाई साहब, तेल उधार खरीदने की आदत हमें नहीं थी, आप में थी। ऑयल बॉन्ड खरीद के देश को कर्जे में डुबा दिया, चुका हम रहे, गए वहां ये 44 लाख करोड़। बकवास करते हैं, ये एक सजेशन नहीं आया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ओमान गए थे राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी जी ओमान गए थे, क्यों नहीं ओमान ने बात किया कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए, किससे मिलने गए थे ओमान? और ये प्राइवेट विजिट थी जिससे जवाब नहीं देते, बकवास करने के लिए खाली यहाँ पे आ गया।
1: देश किसी भी देश के पास उसका फॉरेक्स यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी सिंपल भाषा में डॉलर वो सीमित होता है, जो अभी हमारे पास 700 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि नेचुरल मतलब उसमें कोई संकट की स्थिति नहीं है। लेकिन उसी डॉलर से हम क्या क्या विदेश से खरीदते हैं, फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल कच्चा तेल जो भी हम खरीदते हैं, फर्टिलाइजर जो किसानों के लिए अनिवार्य है, उसी से हम सोना अन्य दवाइयां भी खरीदते हैं। तो अगर सोने को एक साल तक छोड़ देंगे तो हमारे पास एक कुशन रहेगा कि हम भाई कच्चे तेल के निर्यात में या खरीद में या फिर फर्टिलाइजर की खरीद में कोई दिक्कत ना आए। अगर ये सब उपाय सुझाए जा रहे हैं, हजार करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को रोज नुकसान हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें?
3: सवाल ये है कि हमने तो सुना था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मेक इन इंडिया होगा, तो जब सब मेक इन इंडिया अगर हो गया होता तो आज शायद हमें इतनी इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आज आयात का व्यापार घाटा कितना है? 240 अरब डॉलर ये हम घाटे में जी रहे हैं, क्या घाटा है? और उसके बाद आज देखिए, जब भी हम चीजें खरीदते हैं, चाहे सोना खरीदें चाहे तेल खरीदें,
2: अनुराग जी
3: डॉलर में खरीदना पड़ता है।
2: गोल्ड को मेक इन इंडिया कैसे करेंगे जरा बता दीजिए,
3: बीच में नहीं बोला मैंने आपका सम्मान किया,
2: गोल्ड को मेक इन इंडिया कैसे करेंगे बता दीजिए, छात्र जानना चाहते हैं।
3: अगर इस तरह से होगी तो मैं आपके बीच में बोल सकता था, मैंने समय मेरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब करने से कोई आनंद आ रहा है क्या? आनंद आ रहा है क्या तुमने? देश को महंगाई में ढकेल के आनंद आ रहा है क्या? नहीं, देश को महंगाई में ढकेल के आनंद आ रहा है क्या? सवाल बात करें, ये वो लोग हैं जो देश की सच्ची बात को जनता के सामने जाना नहीं देना चाहते। आज डॉलर की क्या कीमत है बताइए, रुपए के मुकाबले कहां पहुंच गया है? 95 रुपए पे पहुंच गया है। और ये सोना और कच्चा तेल हम खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं ना, इसके मतलब हमारा रुपया कितना कमजोर हो रहा है। अगर रुपया मजबूत होता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही होती, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। ऊपर से बातें कर कह रहे हैं, अभी अंजना जी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई 1000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है कंपनियों को, तो कंपनियों को जब फायदा हो रहा था 2015 में तो कच्चा तेल 52 रुपए प्रति बैरल था, तब तो आपने पेट्रोल के दाम तो कम नहीं किए थे, पेट्रोल डीजल के, तब तो कंपनियां कमा रही थी। 2016 में 44 यहां पे डॉलर प्रति बैरल था, तब पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ, तब तो कंपनियां कमा रही थी, तब कंपनियों ने क्यों नहीं वहां पे पेट्रोल डीजल का दाम कम किया, सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं। और कोरोना काल में तो सबसे निम्न स्तर पे था, 42 यहां पे 42 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, तब भी आपने कम नहीं किया, तब कंपनियां कमा रही थी। कंपनियां कमाएंगी तो ठीक, अब जरा सा थोड़ी कंपनी को दिक्कत आई है तो सजा जनता भुगतेगी, तब सरकार नहीं भुगतेगी, तब सजा जनता भुगतेगी अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कंपनी को फायदा होता है तब सरकार चुप्पी साध जाती है, ये देश के अंदर हो रहा है, कमाल की बात है। आप सारी महंगाई, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, देखिए कैसे कमाल के लोग हैं, इनसे बातें करो, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं मुद्दे से। नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, बच्चे ने सुसाइड कर लिया।

0: जब सवाल पूछा जाता है कि लखीमपुर के बच्चे ने सुसाइड किया, जिम्मेदार कौन, तो पता क्या बोलेंगे? 70 साल से तो आपकी सरकार थी, तभी 70 साल जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं, सवाल उठता है आप जिम्मेदारी से हर महंगाई। जब चुनाव हो रहा था, लास्ट बोला, जब चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पौंडीचेरी में, ये वहां केरला में क्या कर रहे थे पता आपको? हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, जहाज घूम रहे थे, तब फ्यूल खर्च हो रहा था, रैलियां हो रही थी, काफले निकल रहे थे, तब क्यों चिंता नहीं आई? अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पहले से अपने सरकार की जिम्मेदारी होती है दूर अंदेशक लगा लेना कि ईरान का युद्ध चल रहा है, कल हम तकलीफ में आएंगे। विपक्ष बार बार बोल रहा था कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, चुनाव बाद में देख लेंगे, पहले राष्ट्र बचाना है, लेकिन आपने इसकी चिंता नहीं की, आप चुनाव की चिंता करते रहे, चुनाव जीत लिए, आपने आपने ओथ ले ली, उसके बाद कह रहे हैं अब महंगाई बढ़ानी है, तब जाके डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। हम कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़े चुनाव के बाद, तब ये क्या कह रहे थे?
1: सबसे पहली बात,
0: काम है झूठ फैलाना, विपक्ष का काम है झूठ फैलाना, विपक्ष आपको आगाह कर रहा था, आप विपक्ष की बात नहीं माने, आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, आम आम आदमी इसकी सजा भुगतेगा, आपका क्या है?
1: बस हो गया ना,
2: जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, क्योंकि दुबे जी और मैडम।
1: अरे विपक्ष विपक्ष करे, विपक्ष बोलना तो सीखिए पहले।
0: विपक्ष मैंने बोला
1: जी, एक बार बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहली बात, मेक इन इंडिया बोला, मेक इन इंडिया, पेट्रोल कैसे मेक इन इंडिया करेंगे और गोल्ड कैसे मेक इन इंडिया करेंगे? आलू घुसाओ गोल्ड निकालो, आलू घुसाओ गोल्ड निकालो, मेक इन इंडिया हो गया क्या? दिमाग से ऊपर का बात करते हैं लोग। पेट्रोलियम कंपनी का प्रॉफिट, पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम किसकी है? सरकारी सार्वजनिक कंपनी है।
0: आ तो फिर जनता
1: का नाम नहीं है, अखिलेश की कंपनी नहीं है,
2: दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी,
1: भी बोल रहा है भाई, भाई
0: साहब, यहां पे कच्चा चल सस्ता मिल रहा था, तब आपने सस्ता नहीं किया पेट्रोल, और अभी रोने लग गए, कमाल की बात कर रहे हो, रोने का काम छोड़िए, जनता की बात कीजिए।
2: फडणवीस जी मोटरसाइकिल से पहुंचे विधानसभा,
0: साइकिल पे चलेंगे सब लोग, अब साइकिल पे
2: आप तो चलते नहीं, साइकिल पे
0: चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इनके कुछ नेता चलने लगे हैं, बीजेपी के चलने लगे हैं, आने वाले दिनों में सभी को साइकिल चलना पड़ेगा।
2: अभी हम सारे लोग, कितने लोग हैं? लगभग 200-300 लोग हैं।
0: आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, आपको स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगी,
2: गुरुजी को ले जाएंगे अभी बाहर,
0: आना पड़ेगा
2: कैमरे के साथ ले जाएंगे, और इनकी गाड़ी आपको दिखाएंगे, गाड़ी नहीं होती है, गाड़ी होती है इनकी, जिससे ये आए होंगे।
0: भगवान भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, बोल तो रहा हूँ।
2: दुबे जी मोर्चा संभालिए, और पहले बता दीजिए किधर से बैटिंग करने वाले हैं। आजकल आप बहुत राष्ट्रवाद के नाम पर इधर झुके झुके से नजर आते हैं, लेकिन ये 3-3 रुपए की जो लोगों की बोझ पर असर पड़ रहा है, सीधा
3: अंजना जी, अंजना जी नमस्ते, एक गाने से शुरू करता हूँ, गाने के बोल है, हम पागल नहीं है भैया, न हमारा दिमाग खराब है, हम सिर्फ दुखी तब होते हैं जब ये भाजपाई कहते हैं सरकार हमारी है समस्या तुम्हारी है, तब दुख होता है कि अरे भैया भैया सरकार में आप आए हो, दुख दुख आपने हमें दिया है, हम आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो भाजपाइयों की बात बहुत है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, इनके आंसू हैं गड़ियाली, और ये विपक्ष को कहते हैं कि हम लोग हैं बवाली और मवाली। नहीं मेरे भाई, हम लोग करेंगे इस देश की रखवाली। प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों और बहनों, ये जो रुपया है ना, ये लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, और 2026 में रुपया सो रहा है, रुपया 95 पार हो गया। अगर जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता आपको सौंपी थी और वो 60 रुपए का जो डॉलर था वो अगर आपने 40 में किया होता, ये आनंद दुबे आपके पैरों में अजय भाई ऐसे नतमस्तक हो जाता। लेकिन नहीं, नहीं, आपने आपने हमारे सपनों को तोड़ा है। आपने हमें क्या कहा मालूम है? लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी से, मार्च गया, अप्रैल गया, और मोदी साहब कह रहे थे, भाइयों और बहनों, 4 मई ममता गई। अरे ममता तो गई, लेकिन जब आया 10 मई, तब आपकी चिंता बढ़ गई, तब समझ में आया कि अब तेल नहीं मिलेगा।
2: दुबे जी बड़े अच्छे स्टार हैं, तो आपकी मिमिक्री तो हम लोगों ने देख ली, थोड़ा अपने नेता की भी करके सुनाइए। डर लगता है क्या? डर लगता है?
1: वो बात नहीं है,
2: डर लगता है, एक सेकंड, डर लगता है?
1: डर नहीं लगता,
2: करके दिखाइए,
1: प्रैक्टिस ही नहीं कर पा।
2: अरे उनके स्टाइल की भी नकल हो जाए जरा,
3: हमारा कहना ये मेरे भाई और बहनों,
2: बड़ा सवाल ये है कि जब पूरा कर लीजिए,
3: जब जब इस देश पर संकट आएगा, इस देश के लिए खून देने के लिए विपक्ष आएगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
2: क्या चाहिए आपका?
3: एक मिनट,
0: क्यों नहीं चाहिए?
3: एक मिनट अंजना जी, हमें सबसे पहले आपत्ति, हमें सबसे पहले आपत्ति,
0: विपक्ष देश के साथ खड़ा है।
3: एक मिनट, हमें आपत्ति ये है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में काहे कमी की गई भाई। हमने कहा था क्या, हम लोग भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री देश के हैं, वो एसपीजी की जो ब्लू बुक होती है, वो जो कहेगी वो हम मानेंगे। हम साइकिल पे चलेंगे, हम मेट्रो में चलेंगे, पैदल चलेंगे, घोड़े पे चलेंगे,
0: नेता भी चलें, ऐसा नहीं, हम तो चलेंगे साइकिल पे, वो भी चलें, दिक्कत ये है ना, वो गाड़ी पे चलेंगे और हम लोग साइकिल पे चलते रहेंगे।
3: साइकिल
0: की भी तो जिम्मेदारी है। तो
2: जल्दी से माइक उठाइए और बताइए कि एक्चुअली जब इकोनॉमिक्स के नजरिए से हम देखें, एक तो ये संकट हमारा लाया हुआ नहीं है, हॉर्मूज और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी वजह से जो परिस्थिति बनी है, भारत को कैसे मुकाबला करना चाहिए? क्योंकि ये बात सच है कि काफिले में गाड़ी कम करने से कितना असर होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन पूरे देश में एक मूवमेंट की जरूरत है।
4: बिल्कुल, नमस्कार अंजना जी, सभी को पैनलिस्ट को भी, यहाँ बैठे दर्शकों को और टीवी के दर्शकों को भी। दुबे जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि, मैं आप ही की बात से शुरुआत करूंगी, बहुत बढ़िया बात बोली कि संकट था इनका, झेलें ये। आप उससे पहले की कड़ी कैसे भूल गए? संकट था अमेरिका और ईरान का, झेल रहा है पूरा देश, ये पूरा विश्व, ये कड़ी आप भूल जाते हो, पार्शल एमनीशिया के साथ यहाँ आते हो। भाई वो कड़ी भी तो जोड़ लो, वो सबसे अहम कड़ी तो वही है। उसी कड़ी में आपको समझाती हूँ बच्चों, अगर इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और आप ही ने आनंद दुबे जी बहुत अच्छा अपने वक्तव्य में ही अपना जवाब दे दिया कि चिंता बढ़ी 10 मई को, दाम बढ़े हैं 15 मई को, चिंता बढ़ी 10 मई को, बिल्कुल, क्योंकि 10 मई का वो दिन था जिस दिन लग रहा था कि ईरान और अमेरिका की जो पीस टॉक है वो फाइनलाइज हो जाएगी, उस दिन हॉर्मूज खुल जाएगा, लेकिन नहीं खुला। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब भैया जनता तुम अपना इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म
0: तो
4: जो
0: है।
4: सर मैं आपके बीच में तो नहीं बोली थी ना,
0: मैंने नई खबर
4: बोली थी ना,
0: मैंने खबर नहीं बताया,
4: खबर नहीं, नहीं आप थोड़ा रिसर्च करके आओ सर। 10 मई को टॉक्स फाइनलाइज होने की कगार पे थी, खैर वो पाकिस्तान से होने नहीं पाल वाली थी, वो एक अलग बात है क्योंकि चाइना में जाना था। तो 10 मई का जवाब आनंद जी ने बहुत सही दिया। अब मैं आपको इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य से समझाती हूँ। अगर इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन हम इतना कर रहे हैं तो 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था, तब हमारे जो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़े थे $78 से $130, और 24 फरवरी के बाद 22 मार्च को जाके सरकार ने ₹10 आपका पेट्रोल का दाम बढ़ाया, लेकिन 15 मई को वो वापस ₹8 घटा दिया। अब 15 मई 2022 को ये लोग तो सारे नेता लोग हैं, ये बताएंगे कौन सा इलेक्शन था,
0: नेता बगल वाले
4: होने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मुंह में घी शक्कर। अब तो मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों के चुनाव फरवरी 2022 में होके चुके थे और दिसंबर 2022 में आने थे दिल्ली, गुजरात और हिमाचल के। तो भाई साहब ऐसा मई 2022 में क्या था जो दाम घटाने पड़े? और अंजना जी इसी का ही, 2011 में $95 से $125 हुआ पर बैरल, तब अचानक सरकार ने एक हफ्ते के अंदर अंदर 58 से 68 रुपीस पेट्रोल का दाम बढ़ाया। तो तब भाई साहब वैश्विक संकट क्यों भूल जाते हो? ये सब इतिहास
0: क्या
4: में क्यों चाहते?
0: अच्छा हुआ बढ़ा दिया, क्या कहना चाह रहे हैं?
4: मैं ये कहना चाह रही
0: हूं, कहना चाह रहे हैं कि महंगाई होगी, अच्छा हो गया।
4: आप ही के बात का जवाब
0: नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे आप बीजेपी की तरफ से। आप तो प्रवक्ता
2: की तरह बोल रहे हैं अनुराग जी, स्टॉप दिस,
0: नहीं नहीं
2: स्टॉप दिस, जो आपके हां में हां ना मिला है वो बीजेपी का हो गया।
0: लेट अस स्पीक ना, वो क्या बोल रहे हैं?
2: फैक्ट ही तो बोल रही हूं, गलत तो बताइए,
0: सुनना चाह रहा
4: हूं, फैक्ट ही बता रही हूं। इन्होंने क्योंकि सवाल पूछा कि प्रॉफिट क्यों कंपनियों को दिया, 2024 में ये जो सारी पीएसयूज थी, हाईएस्ट प्रॉफिट अंजना जी इन्होंने कमाया $81,000 पर एनम का। हाँ। और अभी आप जान रहे हो, आप ही ने बोला, 1,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, 60 दिन में वही $60,000 करोड़ हो गया। तो ये जो 81,000 करोड़ था, इससे आपके टैक्सेस हुए। हाँ। जो अभी आलोक भाई साहब ने बात बताई, रफेल आया, रेलवे इलेक्ट्रिक हुआ, सब कुछ हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए की लागत इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती थी, वो 17 लाख करोड़ रुपए हुई है।
0: मैंने बोला था जब कच्चे दाल के नहीं कच्चे तेल के दाम कम थे, जब प्रॉफिट कमाया था, तब क्या हुआ?
4: बता तो रही हूँ, यही तो बता रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर 3 लाख करोड़
0: ऐसा नहीं होता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, आप कमा भी लेंगे, उसके बाद आप जनता को राहत नहीं देंगे। आज जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो फिर जनता के ऊपर डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ नहीं चलती है।
5: आप दो तीन सवाल जल्दी जल्दी ले रहे हैं, माइक छोड़ दीजिए।
6: मेरा नाम श्रीनांश मलिक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब 60% $60 था बैरल, तब कंपनीज को कितना प्रॉफिट हो रहा था वो नहीं बता रहा जा रहा है।
5: अब उन्होंने वही बता रहे,
6: अब बताया ना मैम ने, जब था वो, जब किसी ने उस पर बात नहीं की, अब जब इसकी बात आ रही है कि कंपनीज को इतना घाटा हो रहा है, तब इस बात को उठाया जा रहा है।
7: प्राइवेट कंपनी जो कमाई है।
8: मैम, मेरा नाम अक्षत वाजपेयी है। मेरा कहना ये है, जो आज पेट्रोल के ऊपर इतनी बहसबाजी कर रहे हैं, क्या उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई रोड मैप दिया आज तक?
5: किससे चाहिए आपको रोड मैप?
8: मैम, जो विपक्ष है हमारा, जो अभी ऑपोजिशन है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब उनका उनकी सरकार थी,
5: मतलब प्रोफेसर साहब से पूछ रहे हैं, ठीक है, इधर से जल्दी है, जल्दी पूछे।
9: मैम, मेरा नाम ऋषिका शर्मा है। मेरा क्वेश्चन है कि जब 2010 और 2014 में भी कांग्रेस के रूल थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी प्राइसेस बढ़े गए थे इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशन के वजह से, तो ये ब्लेम करना कि बीजेपी के आने के बाद अभी प्राइसेस बढ़ रहे, उस टाइम भी बढ़े गए थे। और
5: छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे, जल्दी से।
10: मैम, विपक्ष से सवाल है, जब देश ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पलता है तो ये विपक्ष के लोग अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ के साथ आगे काम करना चाहिए?
11: मेरा ये कहना है कि ये जो बात मेरे मित्र ने कही ये बिल्कुल सही थी, लेकिन विपक्ष अभी जैसे डरा रहा है कि साइकिल से जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब कोविड आया था तो मास्क लगाना एक प्रिवेंटिव मेजर था, और अभी पीएम ने यही कहा है कि आप अभी कम ट्रेवल कीजिए।
5: सुझाव दिया है। तीन सवाल इधर से, फिर उधर आ रही, छोटे से, जल्दी से।
12: सवाल जो है आपसे है अजय आलोक जी, आपने कहा कि मोदी जी का बहुत वर्चस्व है, कल ही वेडनेसडे को हमारा जहाज कार्गो शिप, उसको ड्रोन अटैक में वो ध्वस्त हो गया और सिंक हो गया, और आपने, आपकी 3 बार से सरकार है, आपने एक बार भी अपने इंश्योरेंस कंपनी, जो अपनी देश की कंपनी होती है, आपने नहीं बनाया है। आपने 12 मई 2026 को जाके BMIP बनाया है, तो अभी तक आप कहाँ थे?
5: ठीक है, जल्दी से नीचे आइए,
12: तीनों नीचे आइए, जल्दी आइए। हाँ, ओके। सो मैम, 2013 की जब बात हुई थी, उस टाइम पे 12 आवर्स के लिए जब देश में पेट्रोल पंप्स बंद होते थे, तो उस टाइम पे क्राइसिस भी इतने हाई लेवल के नहीं थे, तो अब जब एक्चुअल हाई लेवल के क्राइसिस हैं, तब इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं ना?
13: फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2013 पीछे, उन्होंने कहा था कि गोल्ड आप खरीदना बंद कर दीजिए, जबकि कोई क्राइसिस नहीं थी उस समय। हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने, कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, तो अब तो क्राइसिस है, तो अपोजिशन को उसको साथ देना चाहिए, ना कि भड़कना चाहिए।
14: जब हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो इतने कारीगर हैं, इतने जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा?
5: जो लोग काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनका क्या?
15: इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने के बजाय अगर आप किसी भी पार्टी को टारगेट कर रहे हो तो वो तो गलत है ना?
16: मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ।
5: पढ़ाते हैं?
16: नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ता हूँ मैं।
5: अच्छा, अभी पढ़ रहे
16: हैं? हंसराज कॉलेज में पॉडकास्ट स्टूडेंट।
5: सर क्या बात है सर, तो कमाल ही कर दिया सर।
16: मैं वैसे तो माननीय मोदी जी के हर कदम के साथ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का ग्रामीण भारत है और पहले का भी, क्या उसको फोकस करके कोई योजना बनाई गई है? मैं खुद गांव से आता हूं।
5: जल्दी आइए, नीचे आइए। हाँ, जल्दी, माइक मैंने पकड़ा है,
17: सॉरी। तो मैं तो फेवर में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फैमिली की बॉन्डिंग जैसे होती है, तो अगर फादर या ब्रेडविनर नहीं अरेंज कर पा रहा, प्रोएक्टिवली वो सिक्योर करना पड़ता है, फैमिली को करना चाहता है, तो वो कुछ बातें फैमिली से बोलता है कि बच्चों ये करो ये करो, तो
18: जैसे कि सर ने बोला कि गोल्ड और पेट्रोलियम को मेक इन इंडिया नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेक इन इंडिया कर क्या रहे हो फिर? किसान को और मजदूर को कहीं नहीं दिख रहा है आपका मेक इन इंडिया। अगर ये मेक इन इंडिया सही में होता तो आप देखिए ना, $112 अरब का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और अगर मैं सरकार के खर्च के कंपेयर में बता दूं तो ये 21% होता है, तो फिर भाई मेक इन इंडिया हो क्या रहा है? दिख तो नहीं रहा।
0: जुमला बनता है जुमले,
15: ठीक है। मेरा कहना ये है कि अभी हाल ही में हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस टाइम पे तो खूब जेट आए, एरोप्लेन आए, सब कुछ हुआ, पर चुनाव शपथ के 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया?
11: हाँ, मेरा सवाल ये है कि 1965 में जब भुखमरी आई, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद पहले अन्न छोड़ा, हफ्ते में एक दिन खाना छोड़ा, उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील करी। आज जब मतलब मोदी जी ने जब 7 अपीलें की, उसमें से एक अपील थी कि हमें विदेश जाना कम करना चाहिए। आज सुबह सुबह ही वो विदेश निकल गए।
5: आपको लग रहा है वो घूमने गए हैं?
11: घूमने नहीं गए, लेकिन
5: आपको लग रहा है वो घूमने गए?
11: लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी कि
5: मैं आपसे पूछ रही हूं।
11: नहीं नहीं, वो उनका काम है।
5: तो फिर और वो UAE गए हैं, वहां पर वो मीटिंग करके 3 घंटे में अगले देश चले गए।
11: मेरा सवाल अजय आलोक जी से, युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया 90 तक पहुंच गया था प्रति डॉलर, और अभी भी लगातार रुपया डॉलर के प्रति गिर रहा है, तो क्या 100 रुपए प्रति डॉलर का शतक इनके कार्यकाल में ही हो जाएगा या उसके लिए हमको समय मिलेगा?
2: सेंचुरी लगाने वाले हैं क्या अजय आलोक जी? जवाब दीजिए। चलिए आप इसे शुरू करते हैं, क्योंकि इधर के जो सवाल थे वो आप ही के लिए थे। देखिए बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे हैं, 4 मई प्रॉब्लम आई।
1: देखिए कोई 4 मई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम अभी आया नहीं है, प्रॉब्लम आने की आशंका है जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आशान्वित होना देश में हमेशा सबको चाहिए, और डिप्रेसिव थॉट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए ना कि समस्या को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। फर्क उनमें और हम में यही है। जहां तक गिरता हुआ रुपया है, हम बार बार ये कह रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए, हमारा सबसे बड़ा रीजन है गिरता हुआ रुपया का, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा, हमारा रुपया गिरेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या ये जायज है कि पिछले एक साल में 24 बिलियन डॉलर से और सॉरी 38 बिलियन डॉलर से 71 बिलियन डॉलर हम सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा रुपया गिरेगा क्योंकि हम 135 बिलियन डॉलर का अप्रोक्सीमेटली ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो करना ही हमें, कोई उपाय नहीं हमारे पास। मैंने बोला ना, तेल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकते हैं, गोल्ड की नहीं। मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि 1 करोड़ कारीगर है, मैं मानता हूँ 1 से 1.5 करोड़ कारीगर उनका क्या होगा? बहुत जल्दी रिजर्व बैंक पॉलिसी लेके आ रही है, हम लोग गोल्ड रिसाइकलिंग शुरू कर सकते हैं। एक अनुमान के तहत बता दूं, भारत में इस वक्त 30,000 करोड़ टन सोना बैंक में रखा हुआ है। 30,000, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का हटा दीजिए, तो सिर्फ बिस्किट और कॉइन के फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 5,000 टन सोना है। अगर उसको हम निकाल के रिसाइकिल कर सके तो सारे मजदूरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। विजन होना चाहिए ना, तो वहाँ विजन नहीं है ना।
2: ठीक है, तो जवाब दीजिए। और उनका सवाल जो बच्चे का था, अरे सुनिए ना, क्या कर रहे हैं, या तो मैं चली जाती हूँ सर, आप लोग लड़ लीजिए, इतना शौक है लड़ने का।
19: बहुत अच्छा प्रश्न किया है,
2: कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं ऐसे वक्त पर, ये संकट
19: के समय पूरा देश, एक एक नागरिक, पक्ष और विपक्ष नहीं, सभी लोग साथ हैं और रहेंगे। लेकिन जब सहयोग की बात आएगी तो सभी लोग, आप और जनता सब सहयोग करेगी, और जवाबदेही तय कौन करेगा? सरकार में जो है उसी की जवाबदेही होगी ना। लाभ होगा तो प्राइवेट लोगों को लाभ होगा, लाभ का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और जब हानि होगी तो लॉस का। चुप रहिए, अभी बीच में नहीं बोला, अभी गलत बात,
20: बीच में नहीं।
19: और जब हानि होगी तो उसका लॉस जो होगा उसका सबको जो है राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ये चल रहा है, ये पॉलिसी चल रही है इस देश में। 65% जो तेल अभी है बाहर से, जो तेल आ रहा है 65% हमारे उपयोग में है, और 35% अभी भी है प्राइवेट कंपनी देश से विदेश भेज रही है रिफाइनिंग करके और उसका लाभ कमा रही है। क्यों नहीं मोदी जी को पहले उसको रोकना चाहिए था इस देश में? देश के लोगों का तो तेल आप बढ़ा रहे हो, उनका तेल कर रहे हो, और ये प्राइवेट कंपनी न्यारा और रिलायंस का क्यों नहीं, कितना लाभ हुआ? आज जब जरूरत संकट में है उसको भी उसका लाभ का जो चीजें होनी चाहिए। 16 लाख करोड़ रुपए का जो आपने राइट ऑफ किया उसको प्राइवेट कारपोरेट को क्यों किया? कारपोरेट टैक्स 1,45,000 करोड़ आपने क्यों कम कर दिया? 12% विश्व में दो देशों का करेंसी सबसे ज्यादा डिवेल्यूएट हुआ है एक साल में, तुर्की है और दूसरा भारत है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? 12% डिवेल्यूएट हुआ, इसके कारण इकोनॉमी की क्राइसिस हो रही है, और ये आज की नहीं है, ये साल भर के अंदर पूरा गिरा है। अभी 38 बिलियन डॉलर जो है इस देश से लोग लेकर के चले जा रहे हैं, FII निकल गए सिर्फ एक महीने में।
2: फॉरेन रिजर्व को एक प्रोटेक्ट करने का ये भी तरीका है ना, कि आप अपने विदेशी मुद्रा भंडार में, अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहेगा, एक डीवैल्यू होता रहेगा, तो जाहिर तौर पर आपका डॉलर ज्यादा खर्च होगा।
19: सरकार क्यों नहीं इस बात को कर रही है?
2: सरकार क्या कर रही है कि हम डॉलर के मुकाबले अपने रुपया को रोके जिस तरह से गिर रहा है?
4: अजय जी, मैं अजय जी के बातों का ही जवाब दूंगी। अजय जी, आप मुस्कुराते हुए जब पूछ रहे थे ना तो ज्यादा लॉजिकल बातें कर रहे थे, जब आपने गुस्से में बोलना शुरू किया ना तो अपनी ही बातों में आप उलझ गए। तो आपने जो ये सवाल पूछा, अगर 10 साल में डीवैल्यू हुआ है तो वो 10 साल
19: के अंदर 12%।
4: अरे भाई बोलने तो दो, मैं नहीं बोली थी ना बीच में अजय जी, अब मुस्कुरा के जवाब दे देती हूँ अगर देना चाहते हो तो। भाई बता रही हूँ 10% हुआ था जब वैश्विक संकट नहीं था, और अब वैश्विक संकट है बेटा। आपने जो सवाल पूछा अजय जी,
19: आप इकोनॉमिस्ट,
4: अरे भाई
19: कौन प्रोफेसर भी,
4: अरे भाई को जवाब ही तो दे रही हूँ प्रोफेसर भाई, मुझे बोलने दो।
19: अरे भाई
4: प्रोफेसर प्रोफेसर हो गया। जब आपने पूछा कि क्या मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वही वहीं से जवाब आ जाता है। मैं आपको उसका आंकड़ों में ही समझाती हूँ। करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो आप दे रहे हो वर्सेस जो आप ले रहे हो, जब हमने 2014 में सरकार शुरू हुई थी करेंट अकाउंट डेफिसिट था था बेटा 4.8%, तब हम जो था वो ज्यादा ले रहे थे और इतना मतलब हमारा डेफिसिट इतना बड़ा था, और अब 27 फरवरी को हमारा डेफिसिट था 1.2%। तो मेक इन इंडिया से ही तो वो बना बना के बाहर दिया, अब जो चीजें ले रहे हैं वो तो यहाँ है ही नहीं ना, तेल गोल्ड ये सब कैसे प्रोड्यूस कर ले, जैसे भाई ने कहा सोने से थोड़ी। नहीं नहीं मैं अभी अभी अभी
0: हो गया, जल्दी है, टाइम कम है।
4: चलो बोल दीजिए,
0: देखिए अब सवाल ये है,
4: तो अजय जी की बात का जवाब ये था, अजय जी की बात का जवाब ये था, वो तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे टैक्स कमा रहे हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहे हैं।
0: सवाल ये है, चलिए आपकी बात मान ली, गोल्ड आप नहीं बना पाते यहाँ पे, आप तेल कच्चा तेल यहाँ नहीं
4: पैदा कर पाते। चलो ये बात तो मानी,
0: बात
4: को
0: बोलने दीजिए,
4: इस पे ताली,
0: अरे बोलने दीजिए भाई, अभी आधी बात,
4: अच्छी बात,
0: चलिए माना आपकी, अरे सुन तो लीजिए भाई, देखिए माना आपकी बात, लेकिन आप कहते हो ईवी गाड़ी पे, आप ईवी गाड़ियां चलेंगी, आप कम से कम अगर यहाँ से किसी भी हाईवे पे चले जाओ, आपने चार्जिंग पॉइंट भी नहीं लगा पाए, ये भी नहीं लगा पाते क्या आप, इसमें भी क्या हमको, एक बात सुनिए, वो भी नहीं लगा पाए आज तक, आप चले जाइए किसी हाईवे पे चले जाएगा, ईवी गाड़ी आप ले लीजिए तो आप मेरी बात पूरा, और 75%
1: दिल्ली से
0: उसका, अरे यार फिर बीच में हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं है, खोलूंगा रुको, अभी
4: पोल खोलने
0: दो, इनका पोल खोलने दो, उसके बाद अरे देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए मेरी बात, सबको पता है कि ईवी गाड़ी आप जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ईवी गाड़ी पे चलने की आप नसीहत देंगे, ईवी गाड़ी पे लोग चलेंगे तो ईवी गाड़ी कैसे चलेगी, आपको पता है कि उसके चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है, और उसके ऊपर 70-75% उसमें जो बैटरी में चार्ज होने के लिए लिथियम कोबाल्ट निकल जो उसमें लगता है ना, वो भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। आपने ऐसी कौन सी चीज की है देश के अंदर में जो देश को मेड इन इंडिया करते रहे, आप तो और तो चाइना से क्या नहीं इंपोर्ट करते बताइए, आप कपड़े तक इंपोर्ट करने लगे हो, सोचो आप हर चीज चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, जैसा उसने बताया अभी उन्होंने, तो हर चीज आप विदेश से इंपोर्ट कर रहे हो, और जब आप आए थे तब क्या कहते थे, मेक इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा।
4: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
6: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
11: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
9: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा. मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक. कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। @aajtak.com

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
8: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं.
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप.
10: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही.
11: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर.
12: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए. ओके,
10: शुभेंदु अधिकारी.
9: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.
13: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
14: अनुपम मिश्र,
13: मेहमत भारद्वाज,
15: पीयूष मिश्रा,
16: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक.
17: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है. विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर रीनीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है. ये सारे को ध्यान में रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है. सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है. इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है. राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे. सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसकी लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है. हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे. परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे. हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा. हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं. हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है एक बार एनटीएक विस्तार से एनटीएक एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक, फिर एनटीए के पब्लिक मैंने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
14: Naam, lecturer P.B. Kulkarni. Kaam NTA ka hissa. Aarop, NEET ka paper leak.
15: पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी। अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: नीट पेपर लीक कांड को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर तक मार्च, पुलिस ने की बैरिकेटिंग, एनटीए दफ्तर पर प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, दिल्ली में बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, कहा बच्चों से दूध भी छीना। यूएई के बाद नीदरलैंड्स के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नोलॉजी के सुपर पावर के साथ पार्टनरशिप पर जोर, आज दोपहर पीएम दीक्षुब से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दो टूक, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए, वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। और भोजशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीर ले जाने से रोका, आज तक के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।
1: साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।

0: अब हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद पनग्रिया जो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, वो जुड़ गए हैं, वो सीधे न्यूयॉर्क सिटी से हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रोफेसर पनग्रिया, आप प्रधानमंत्री के जो बचत मंत्र है, जो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि भारतीय वर्क फ्रॉम होम करें, अपना जो गैर जरूरी ट्रैवल है वो ना करें, गोल्ड ना खरीदें, सोना ना खरीदें, आप इस तरह के जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं?
1: तो मारिया, ये जो है हम इसको कहते हैं मॉरल सुएशन, कि जो नागरिक हैं भारत के, उनको स्वयं को ये याद दिलाएं कि अगर देश के सामने कोई मुश्किल इस वक्त है तो उसमें जो है अपना योगदान देने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपना योगदान देने के लिए सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पहला कदम है, बजाय इसके कि और भी जो है दूसरे रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करें या प्राइसेस बढ़ाना शुरू करें, उसके पहले सबसे पहला कदम ऐसी परिस्थिति में मॉरल सुवेशन बिल्कुल सही होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये अच्छा पहला कदम उठाया है और वो अब इस बात का इंतजार करेंगे कि समस्या अगर आगे बढ़ती है, उसका प्रकोप ज्यादा होता है, तो फिर और दूसरे कदम भी उठाए जाएंगे जो कि ज्यादा सब्सटेंटिव होंगे, यानी कि जिनका असर लोगों पे ज्यादा डायरेक्टली होगा। ये वॉलेंटरी है अभी जो
0: एक महीने में। प्रोफेसर पनग्रिया, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर जो है वो दो गुना से भी ज्यादा हो गई है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, जिसे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी सरकार, जो संभव नहीं है, तो आपके हिसाब से भारत में महंगाई कहां तक पहुंच सकती है?
1: सो ये थोक दर जो है हमारे यहाँ पर भारत में जो है फ्लक्चुएट काफी करती है। अगर आप पहले भी इसकी जो पूरी सीरीज है अगर उसको देखें, तो इस थोक दर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखे गए हैं। क्यों ऐसा है ये मैं नहीं जानता कि क्यों ये पर्टिकुलर इंडेक्स का डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि ये इतना जो है उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। पर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, या हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिहाज से जो सही इंडेक्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो जिसको हम खुदरा वाला कहते हैं, रिटेल जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अभी तक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफी कुछ जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4% का प्लस माइनस 2%, उसके अंतर उसी के अंदर अभी है। तो देखना यह है कि अब इसका ट्रांसलेशन जो है, इसका आगे असर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे क्या पड़ता है, क्योंकि जनरल ऑब्जर्वेशन पहले से जो है, अगर पिछले महीनों का, पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, तो इनमें कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स।
0: सोने की चर्चा करते हैं। पीएम की अपील है कि जो भारतीय सोना खरीदने में से परहेज करें, तो इस अपील को आपको क्या लगता है, वो मौजूदा जो परिस्थिति है वो क्या संभाल पाएगी? ये जो अपील है, अगर जो लोग हैं सोना खरीदना चाहते हैं, अगर वो नहीं खरीदेंगे तो कितना अर्थव्यवस्था को फायदा होगा?
1: हाँ, तो इसमें प्रधानमंत्री का जो है एफर्ट है, वो पहला जो एफर्ट है वो इसमें है कि नागरिकों को स्वयं को जागरूक करें, नागरिकों के जो देशभक्ति है उसको जगाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नेता को, राष्ट्र के एक अच्छे नेता को, जब भी समस्या, बाहर की कोई समस्या खड़ी हो, तो वो उस समस्या के से जूझने के लिए पहला कदम ये बिल्कुल सही होता है। अब इसका कितना असर पड़ पाएगा, क्योंकि जो भी इसमें सारा वॉलेंटरी है, अगर कोई राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर जो है करना चाहे और करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसका उसको खुद को भी सेटिस्फेक्शन है और देश को भी उसका फायदा है। कितना असर होगा ये कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्री में जो लोग हैं खासतौर से, उनको तो सोना लाकर उसका फिर जो है ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट करना होता है, तो उनके लिए कट करना मुश्किल रहेगा। पर जैसे जो कंज्यूमर हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो जरूर अपना सोने की जो है परचेजेस को कम कर सकते हैं, खरीद को कम कर सकते हैं, उसके साथ साथ उस हिसाब से फिर उसका जो है आयात।
0: ये जो सेक्टर है उसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां हैं, तो आपको नहीं लगता ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में जो चेंजेस हो रहे हैं इसके वजह से ये सेक्टर में जो नौकरियां हैं लोगों की उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पर असर पड़ेगा?
1: सो अभी देखिए ऐसा है कि अभी तो कोई प्रधानमंत्री ने विशेष कदम जो आयात को एकदम रोकने के लिए हो सकते हैं वो ऐसे उठाए नहीं है। अभी सिर्फ राष्ट्रभक्ति को जगाकर जो है उसके आधार पर लोगों को अपना इंपोर्ट कम करने के लिए कहा है। तो ज्यादातर उसमें जो कम करेंगे वो वही होंगे जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं। जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको तो इंपोर्ट करना ही होगा, तो इसलिए उसका सीधा असर अभी जॉब्स पर नहीं हो, मैं नहीं समझता कोई विशेष होगा। पर आगे के जो कदम है उसके विषय में हमें ज्यादा सोचना चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि ये समस्या जो है हमारे सामने वो काफी लंबे समय तक चलती है, तो उस समय जो है हमें बजाय इसके कि किसी विशेष कमोडिटी को जैसे गोल्ड को सिंगल आउट करें या ऑयल को सिंगल आउट करें, मैं समझता हूं कि सभी अक्रॉस द बोर्ड हमें जो है आयात को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए जो सही इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वो एक्सचेंज रेट होता है कि भाई रुपए की जो कीमत है वो क्या है। अगर अगर अगर जो डॉलर है उसको हम थोड़ा महंगा कर देंगे तो उससे निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर महंगा है तो उस वहां पर बेचेंगे सब लोग, जो निर्यात करना है वो बढ़ेगा, और डॉलर अगर महंगा होता है तो आयात भी कम होगा क्योंकि लोगों को इंपोर्ट महंगा होगा।
0: हाँ, जो सोना ना खरीदने से डॉलर के मुकाबले रुपया जरूर मजबूत होगा, उसका महंगाई से आप कैसे देखते हैं मुकाबला करने में कितना फायदेमंद होगा ये पूरा मूव?
1: नहीं, अभी जो असर होने वाला है, अभी तक जो कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री ने उनका असर इतना बहुत अधिक नहीं होगा, तो आप शायद कोई विशेष उसका असर कीमतों पर नहीं देखेंगे। हो सकता है स्पेसिफिक जो कमोडिटी जैसे गोल्ड इटसेल्फ है उस पर थोड़ा सा मार्जिन पे असर हो थोड़ा, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है अगर आप जो हमारा खुदरा मुद्रा स्फीति है उस पर अगर देखेंगे तो उस पर असर इसका भी इतना आपको विशेष नहीं मिलेगा।
0: प्रोफेसर पनग्रिया, आखिरी सवाल, बचत भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, 2008 की मंदी में भी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था लुढ़क गई लेकिन भारतीय इकोनॉमी बचत की वजह से टिकी रही, लेकिन 2026 की जरूर परिस्थितियां जो हैं 2008 के मुकाबले बहुत ही अलग हैं, क्या इस बार भी बचत भारत का जो हथियार है या एक वेपन साबित होगा?
1: निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा है आपने तो सिर्फ 2008 वाले जो है एक्सटर्नल शॉक की बात करी, पर हमारे दो दूसरे शॉक भी थे इस बीच में। कोविड का शॉक हुआ था, वो भी बहुत बड़ा शॉक था अर्थव्यवस्था को, और उसके पहले जो है हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी बैंक की उसका भी शॉक लगा था, क्रेडिट ग्रोथ हमारी काफी उस वक्त गिर गई थी। पर इन सब के बावजूद जो है हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती रही है। अगर 2003 से लेकर 2024-25 तक अगर आप देखें तो हमारी एवरेज ग्रोथ अच्छी खासी, और डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स तो बल्कि 7-7.5% चलती रही है। सो अगर हम उन बड़े बड़े जो शॉक्स थे उनको हम झेल पाए तो मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस शॉक को भी हम झेल पाए और हमारी ग्रोथ चली

0: तो आज सुबह सुबह बढ़ी हुई कीमतों का झटका लोगों को लगा और जिसका डर था वही हुआ। पेट्रोल डीजल सीएनजी तीनों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा देखा।
1: वेतन बढ़ रही है, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के, जो बढ़ा है ठीक है और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਜੀ।
3: ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਸਭ ਕੋ।
4: ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੀ ਜੇਬ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਨਏ ਦਾਮ ਆਜ ਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਸੀਧਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਾ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5: ਬੜੋਤਰੀ ਤਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਮਾਈ ਮੇ ਤੋ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹਾ।
6: ਇਤਨਾ ਹਮੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਹਮ ਸਬਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।
4: ਯੇ ਬੜੋਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਬਜਟ ਕਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਗਾੜਨੇ ਕਾ ਡਰ ਬੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਗਾ ਬਲਕਿ ਕੈਬ ਬੱਸ ਸਮੇਤ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਸੀਐਨਜੀ ਸੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
7: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं, आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: तो सभी खास पैनलिस्ट इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं, डॉली शर्मा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार जी अर्थशास्त्री हैं, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिसिस हैं और इसके साथ ही प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्या जो ये 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है ये इजाफे की पहली किश्त माने धीरे धीरे करके कंज्यूमर को झटका दिया जा रहा है?
8: देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि जो वैश्विक संकट पूरे दुनिया पर आया हुआ है उसकी जानकारी देश के सभी लोगों को है। पूरी दुनिया देख पा रही है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पा रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके कारण से तेल को लेकर के खास तौर पर पूरी दुनिया में कंस्ट्रेंट है। हमारी सरकार ने लगभग 2.5 महीने तक उस तनाव को देश की जनता से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में बताया जहां पर दुनिया के अंदर 20-100% के दाम बढ़ रहे थे पर भारत में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। 2024 से लेकर अब तक लगभग हमारी जो दाम थे वो बराबर रहे और इंपैक्ट को कर्टेल करने के लिए 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम भी करी। अब क्योंकि इसका इंपैक्ट लंबा है और हम लोग सब जो यहां भी लोग मौजूद हैं सब शिक्षित लोग हैं, भारत अब एक बहुत प्रगतिशील शिक्षित देश है जो सब चीजों को जानता है, इसका इंपैक्ट क्योंकि बड़ा है उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट कंज्यूमर तक भी आएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के नाते देश के सभी लोगों से अपील करी है कि हम ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी उसका कंजम्पशन कुछ कम करें, हम इंपोर्ट्स में जो बड़ा गोल्ड इंपोर्ट होता है हम उसका कंजम्पशन कुछ कम करें, हम उसको खरीदने से बचें, फॉरेन ट्रेवल से बचें। ये चीजें वो हैं कि हमको देश के नाते सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस वैश्विक संकट के साथ लड़ाई लड़नी है। हमारी सरकार ने जो प्रभाव देश की जनता पर 2.5 महीने पहले आ सकता था और बड़ा प्रभाव हो सकता था, ये 3 रुपए आज जो तेल का दाम बढ़ा है।
0: सर चुनाव चल रहे थे ना डॉली जी,
8: चुनाव ये तो बहुत कन्वीनियंट पोजीशन हुई
0: कहने की, प्रधानमंत्री ने अपील करी, कारण चीजें नहीं होती देश के कारण होती। अपील करी उन्होंने, आपको लग रहा था एक बेस सेट किया जा रहा था, लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल किया जा रहा था ताकि जिस

0: तरह का इजाफा हो, उस पर लोग थोड़ा सा वाकिफ हो जाएं, पहले से ही एंटिसिपेट कर लें, और चुनाव होते होते ये अनाउंसमेंट हो गया।
1: देखिए, बंगाल में चुनाव था और कई जगह चुनाव था और पूरा अमली जामा और हर चीज वहां लगानी थी, तो तब तक वैश्विक संकट और पूरे विश्व का संकट नहीं था। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी को भी याद आया कि देश में संकट चला है। यही प्रधानमंत्री जी, इनकी जरा एक वीडियो मैं सुनाना चाहूंगी, बच्चों ध्यान से सुनना। 2014 से जो प्रधानमंत्री जी के बयान शुरू हुए थे और अब अच्छे दिन।
2: वॉल्यूम बढ़ाइए।
3: 60 महीने दीजिए, 60 महीने
0: 14 का बयान।
3: मैं आपको सुखचैन की जिंदगी दूंगा, ये बाधा करने आया।
0: तो वक्त की कमी रहती है, सभी पायलट बोलेंगे।
4: जब हमने कहा था सिलेंडर की किल्लत हो रही है,
2: सुनाएंगे तो सुनेंगे,
4: आज दिक्कत हो रही है, आज वॉर की वजह से ये परेशानी आ रही है, तो कह रहे थे विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है। जब हम लाइनें दिखा रहे थे सिलेंडर की, तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे विपक्ष क्या कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। अगर हम आज भी कहेंगे तो ये देशभक्त हो जाएंगे और हम अफवाह फैला रहे हैं।
0: सिद्धार्थ जी, लेकिन
4: सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने देश को बताई, बंगाल के चुनाव से पहले संसद में बताई। उत्तर देने की जल्दी इतनी मत करिए, पहले मुझे बोल लेने।
2: उत्तर नहीं दे मतलब।
4: उसके बाद अब आज जो महंगाई की मार पड़ रही ना, वो आपके नेताओं पर नहीं पड़ती। जब आप विधायक खरीदते और पूरे के पूरे रिजॉर्ट खरीद कर अपने विधायकों को खरीद बेच कर सरकार गिराते, तब नहीं पड़ती। लेकिन महंगाई तब होती है क्योंकि महंगाई की मार आम जनता के घर पर जाती है। दूध जब महंगा होता है, सिलेंडर जब महंगा होता है, जब और बाकी चीजें महंगी होती है। मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा फोन करके, मैडम 4,000 में सिलेंडर मिल रहा है, आप फीस बढ़ा दो। ये हर घर की मुझे लगता है आज दिक्कत है। तो आज उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, सरकार वो बताए। पापा वॉर रुकवा देंगे तो आप पापा हॉर्मूज खुलवा दे।
0: जब कंजम्पशन किसी चीज का कम करने के लिए कहा जाए, और इसकी अपील दो बार की गई कि आप विदेश यात्रा से बचें, आप ईंधन की कम खपत करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जो खाने का तेल है वो कम खाएं, ये किस तरह का संकेत इकोनॉमी के लिए देता है? क्या ये एक नेगेटिव संकेत है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आप कम करने को कहते हैं?
5: नहीं, नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। ये एक्चुअली एक जागरूकता लाने की बात है। लोगों के अंदर ये समझना चाहिए कि जब कोई भी संकट आता है तो हम लोग को सबको एकत्रित होकर एक साथ फेस करना होगा उसको। और केवल हम खाली सरकार करेंगे तो नहीं होगा। सरकार का केवल अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कौन है? आप लोग सब हैं सरकार, ये समझ लीजिए। ये पॉलिटिकल भाषा में मत आइए आप लोग।
0: ठीक है, नेगेटिव संकेत नहीं है। अब सिद्धार्थ जी, आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ये सुना था। और ये युद्ध का संकट तो फरवरी एंड से चल रहा है, फरवरी एंड से लेकर अब मई में हम आ गए हैं। अचानक से ये संकट आया है या फिर आपके पेट्रोलियम मंत्री ने ये संकट माना ही नहीं? पर्याप्त ईंधन था, बार बार लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यही कह रहे थे।
6: देखिए, सबसे पहले जब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कोई भी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है। देखो देखो इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, देखो देखो इनके पास समस्या आ रही है, देखो देखो
0: बीच में नहीं आया। जब वो बोल रहे थे
6: भाई, एक शिक्षा मंत्री, भाई मैच्योरिटी से भी डिबेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, शांति से डिबेट हो सकती है।
4: शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं
0: बोला,
4: पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे,
6: क्या करेंगे? मैंने तो इन पर बात दूंगी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बढ़िया सुनना नहीं चाहते। अब इनको सुनने में समस्या है। आप बोल लीजिए 10-12 बीस
4: वो भी विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए।
6: ज्यादा आने की आदत हो
0: डॉली जी, सिद्धार्थ जी का जवाब भी तो सुनिए, दोनों एक साथ बोलेंगे
6: ज्यादा
0: तो
6: आना है। नीट
4: पे बोल,
6: सुन लिया आपके नेता ने,
0: राहुल
6: जी सुन रहे हैं अभी, सुन लिया। मैं एक तो आग्रह करूंगा, बहुत गंभीर विषय, हम मेच्योरिटी से भी डिबेट कर सकते हैं। मैं भी जब इनकी बात सुन रहा था, बिल्कुल ऐसा ही आदत है, एक पड़ोसी जरूर कहता है देखो देखो मजा लेने लगता है। ये समय छटकारे लेने का नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2.5 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था? सरकार ने यह आर्थिक बोझ देश की जनता पर नहीं आए 2.5 महीने तक उसको रिजिस्ट किया, गलत किया, ये कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी।
4: जब तक आप रिजिस्ट, अरे फिर से आपको मिर्ची गिरती है।
6: मेरी एक लाइन में इतनी तेज मिर्ची लगती है कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मूज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में,
4: कूद कूद के गिरती थी।
6: अरे सुन लीजिए,
0: हॉर्मूज जा चुके हैं,
6: सुन लीजिए, हॉर्मूज गए होंगे वहां से टैंकर निकलवाने। समस्या दूसरी है, देखिए समस्या ये है, आज के समय पर जैसा सर ने अभी कहा, ये किसी भी देश के लिए, मेरे पास ये आंकड़े हैं हर देश के।
0: मैं आपको
6: उदाहरण के लिए बता देता हूं, फिलीपींस 53%, श्रीलंका 41%, साउथ अफ्रीका 63%, कनाडा 32%, न्यूजीलैंड 88%, थाईलैंड 32%, बेल्जियम 30%, वियतनाम 50%। इतने दाम बढ़े हैं, हर देश की लिस्ट है। गल्फ के बाहर कोई प्रोग्रेसिव इकॉनमी, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।
0: हमारा फटा कम है, वो चीजों को
6: ये तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग
0: कोई इकॉनमी की बात करिए,
6: हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं है नेहा जी, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं। ये कैसी बात हुई, पूरी दुनिया बढ़ा रही है, 99% देशों ने हमसे ज्यादा बढ़ा दिया, भारत में उसकी तुलना मत करिए। क्यों मत करिए, ये संकट कोई भारत का संकट है, ये संकट कोई भारत लाए हुआ संकट है। वैश्विक संकट में मैच्योरिटी से देश को सामने आना है, भारत मैच्योरिटी से काम कर रहा है। ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं, मैं फिर दोहराता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये क्राइसिस के मेजर्स नहीं है। और भारत 2013 वाला भारत नहीं है जहां फिजिकल डेफिसिट 6% हो, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ हो, फॉरेन एक्सचेंज ना हो, हम लोग मैच्योर हैं, मजबूत हैं और मजबूती से इसको लड़ेंगे।
4: और राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं छोटी सी बात,
0: प्रोफेसर अरुण जवाब देंगे, प्रीएम्प्टिव मेजर है सर या फिर आनंद फानंद में लिया गया एक आकस्मिक कदम जिसे कहते हैं।
7: देखिए, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उसके दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, एक तो एनर्जी की शॉर्टेज और दूसरा क्रूड सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, उन सब की भी शॉर्टेज है, सल्फर भी निकलता है इसमें से, फर्टिलाइजर भी इससे निकलता है वगैरह। तो जब इसकी शॉर्टेज होगी, क्योंकि दुनिया में 20% जो क्रूड और जो ये गैस आती थी वो रुक गई, तो शॉर्टेज तो होगी होगी।
0: तो ये 3 रुपए सर बस शुरुआत है ना, अभी
7: ये शुरुआत है। लेकिन अभी ये भी प्रॉब्लम है कि जो शुरू में हम एक्सपोर्ट करते थे 20%, 25%, वो रोक देना चाहिए था, नहीं तो हमारी शॉर्टेज बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें पता है 15% कम आ रहा था जो मार्च के महीने में, जो पहले साल के मार्च के तुलना में, तो एक तो वो कम आ रहा है, 25% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 40% जो क्रूड हमारे अपने इस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो शॉर्टेज जल्दी होगी। तो इसलिए अब 2.5 महीने में जो हमारे स्टॉक्स थे, जो कहा जा रहा था 40-50 दिन के, वो खत्म होने लगेंगे। जब वो खत्म होंगे तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमको शुरू में ही कुछ कदम लेने चाहिए थे। और अभी मैं कह रहा हूँ 73 दिन हमने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि अब जो आने वाली स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है अगर हमारे
0: क्रूड के तो मान ही नहीं लेट हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो जनता की भलाई थी कि हमने
6: इतनी लेट किया। देखिए, हमारी सरकार अगर रेजिस्ट कर सकती थी तो हमने किया, क्षमता थी इसलिए किया,
0: इन्होंने टाइम
6: उसको कंटेन कर सकते थे इसलिए किया,
0: अपील करके किया,
6: क्षमता ही नहीं होता है तो कैसे करते, कांग्रेस की तरह थोड़ी
7: सर हमारे ऊपर अब ज्यादा पड़ेगा क्योंकि हमने सही समय पर कदम नहीं लिया। अभी अगर देखें तो 80 देशों में उन्होंने पहले हफ्ते में मार्च में कदम उठाए, उन्होंने कहीं उन्होंने दाम की दाम बढ़ाए, कहीं उन्होंने राशनिंग किया, कहीं उन्होंने 4 दिन का वर्क वीक, क्योंकि सभी जानते थे कि लंबा चलेगा। अगर ये 10 दिन की बात होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ये ऑलरेडी 75 दिन हो गए और अभी तो पता नहीं और कितना चलेगा, और अगर आज भी खुलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कम से कम 3-4 महीने लगेंगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में, तो आपकी ये परेशानी बढ़ती जाएगी और शॉर्टेज आपकी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने उसको रोका नहीं था। तो सही समय कदम उठाना बेहतर है बनिस्पत इसके कि उस समय हम नहीं करें और बाद में।
0: जी, वार्निंग बेल्स बज गई हैं या फिर ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे हैं?
8: अगर इसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स करें तो फिर क्राइसिस मेजर्स क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं एक चीज जरूर समझता हूं कि जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड के दाम बढ़े हैं, तो जब $60 था तब हमारे यहाँ 90 रुपए या 95 रुपए का पेट्रोल क्यों बिक रहा था? अगर आज 110 के आसपास है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब $60 से कम पर बिक कच्चा रहा था पेट्रोल, कच्चा तेल बिक रहा था, तब हमारे और आपकी जेब से 90 रुपए 95 रुपए 100 रुपए क्यों लिए जा रहे थे? सीधी सी बात यह है कि कायदे से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय नहीं करती, सरकार क्रेडिट ले रही, कायदे से मार्केट तय करती है। लेकिन चूंकि सरकार का इतना जबरदस्त शिकंजा है कि ये बेचारी कंपनियां सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए इनके ऊपर यह दबाव था कि मार्केट के हिसाब से आप पेट्रोल डीजल के दाम देश के अंदर सस्ता मत करो, अगर सस्ता किया होता तो आज ये हालत नहीं होती।
0: क्या आप आंकड़े बता सकते हैं हमारे दर्शकों को?
6: दो बातें अभी आशुतोष जी ने
0: पिछले 2 क्वार्टर्स का ही बता दीजिए,
6: क्या चीज
0: दो तेल कंपनियों को कितना घाटा हुआ।
6: मैं दो बातें पहले आशुतोष जी ने कही और वो बिल्कुल बिना ईमानदारी के कही, मैं पहले उनको बता देता हूँ। पहला, आशुतोष जी ने कहा कि तेल कंपनियां जो है सरकार क्रेडिट ले रही है, तेल कंपनियां खुद इसको करती है। आशुतोष जी हमेशा से नहीं करती है, हमारी सरकार ने आकर के इसको मार्केट फ्री किया, उससे पहले ऑयल बॉन्ड्स देकर के सब्सिडी देकर के 1,34,000
8: करती नहीं तय करती। मैं आपसे पूछ रहा
6: हूं, अरे भैया सुनिए आशुतोष जी, आप 2014 के बाद नहीं पैदा हुए आशुतोष जी, आप 14 से पहले भी थे यहाँ,
8: और ये जो
6: काम हमारी सरकार ने किया आप उसको भी ईमानदारी
8: से। मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा
6: हूं आशुतोष
8: जी, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करता है या सरकार तय करती है, बताइए
6: आशुतोष जी। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने बोला कि आप ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं। जो काम हमारी सरकार ने किया वो हम पर ही बता रहे हैं।
0: झूठ नहीं बोल रहे हैं पर सच भी नहीं बोल रहे हैं।
6: ईमानदारी से
9: मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा,
6: उत्तर भी सुनेंगे।
9: एक मिनट, हाँ आलम जब आप दीजिए ना,
6: आम आदमी वाले फॉर्म में क्यों आ जाते हैं?
9: मार्केट तय करती है, सरकार तय करती है,
6: आप पार्टी वाले फॉर्म में आ रहे हैं।
9: अरे भाई आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे
6: हैं। क्वेश्चन पूछा मेरे को,
9: मैंने आपसे जब तक पूछ रहा हूँ आपसे बता, हाँ आलम जब आप दीजिए ना,
4: $60 प्रति बैरल था तो आपने 90 क्यों दिया?
9: पेट्रोल डीजल का दाम सरकार तय करती है, मार्केट तय करती है। आप बोल दीजिए सरकार तय करती है, मार्केट तय करती है, आप जवाब नहीं दे रहे।
0: आशुतोष जी आप
9: मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर, भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मुझे देखते हैं इनका
6: प्रॉब्लम हमारी बताएंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं,
9: इनका ब्लड बॉइल करने लगा है। जैसे आशुतोष को देखते हैं ब्लड बॉइल करने लगा
0: है। क्वेश्चन का ये था कि मार्केट तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम या सरकार तय?
6: देखिए अभी उन्होंने जो प्रश्न पूछा और जिस बात पे वो बहुत असहज हो रहे हैं, मैं उसका उत्तर
9: नहीं आसान नहीं हो रहा। मैंने आपसे सवाल सुनिए,
6: आम आदमी पार्टी का मंच नहीं
9: है, केजरीवाल नहीं हूँ। आप उनसे पूछिए ना,
6: मैं अरविंद केजरीवाल
9: डीजल के दाम
6: मेरे पे क्यों चल रहा
9: है? सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
0: पूछिए जरा, जवाब दे रहे हैं वो।
6: मैं केजरीवाल हूँ क्या? मेरे पे चले जा रहे
9: हो ना,
6: हद हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ,
9: मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ,
6: उनको सुनने को दीजिए।
9: मैं नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट लूंगा।
6: नहीं आप नरेंद्र मोदी,
9: नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट
6: मुझे पता है।
9: लेकिन सरकार तय करती है नहीं तय करती है बता दीजिए मुझे।
0: अब ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए, सरकार तय करती है या मार्केट फोर्सेस?
6: निश्चित तौर सरकार नहीं तय करती, ये हमारी सरकार ने आकर के किया, बस इतनी बात थी।
9: मान लिया,
6: ये ईमानदारी बोलते तो
9: प्रधानमंत्री जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? क्रेडिट ले रहे हैं,
6: अरे
9: तब आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं भाई? अगर सरकार तय नहीं करती है
6: तो आप
9: क्रेडिट क्यों ले रहे
6: हैं? अब
0: चुनाव नहीं लड़ेंगे वो,
6: मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आपने एक प्रश्न पूछा और दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर बैरल के दाम कम थे तो सरकार ज्यादा क्यों लेती थी। 2013 में जब हम सरकार में 14 में आए, हमारे पास 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए थे वो जो बीच में बैठे, क्योंकि 2010 से पहले आप हंसिए मत, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, बजट में से प्रोविजन ना करके आप सब्सिडी दे देकर ऑयल कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा बढ़ाकर आप अगली सरकार को दे गए। आपको पता था हम तो जा रहे हैं ये ठीकरा फोड़ेंगे अगले साल। 83,000 करोड़ इंटरेस्ट में भरा हमने उस पैसे का,
4: 83,000 करोड़
6: उसका केवल इंटरेस्ट दिया है हमने, उसका प्रिंसिपल हम लास्ट ईयर तक चुका रहे हैं। अब आप चाहेंगे, अब मिर्ची लग गई इनको एक्सपोज हुए तो, अब आप चाहेंगे कि जब हम सत्ता में थे हम 7,25,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, पर ये जब सत्ता में आए अब ये उसका पैसा ये तो इन्हीं के,
4: अरे नोटबंदी की लाइन लगा दो
9: प्रधानमंत्री जी का बड़ा शानदार बयान था जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तब अचानक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, $100 से बढ़ के करीब 60 पे आए। बोले मैं तो बड़ा नसीब वाला हूं, अब मनमोहन जी बंद नसीब वाले थे तो मैं क्या करूं?
6: अब मैं उत्तर,
9: अब अगर पेट्रोल भी डीजल के दाम 100 से ज्यादा हो रहे तो कौन नसीब वाला है, कौन बद नसीब वाला है?
0: कांग्रेस ने गड्ढे बनाए, आप
6: मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूँ, मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूँ, दीदी बोल रही है, मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूँ।
0: दीप्ति जी का
6: नाम, अरे तो हमारे सब दीदी है यहाँ पे, सब इसमें कोई इतनी आपत्ति की तो बात नहीं थी। मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूँ। 2013 में कौन सा युद्ध था जो भारत पर इतना डेफिसिट आया वो बता दें आशुतोष जी, कौन सी
9: डीजल के दाम? आज तो युद्ध चल रहा है,
6: आज तो युद्ध चल रहा है
9: मार्केट में, बताइए ना।
6: अरे कौन सी
9: मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे?
6: प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे,
9: आप बताइए ना।
6: मनमोहन सिंह ने बात बोली थी कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते
4: हैं।
6: जब 2013 में मनमोहन सिंह कह रहे थे सोना मत खरीदिए, तेल का कंजम्पशन कम करिए, कौन सा युद्ध था दुनिया में? ये ईमानदारी मत छोड़िए।
9: मार्केट में क्या दाम था?
6: समस्या ये है भाई,
9: अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या दाम था?
6: ये जिनको आप देख रहे हैं
9: मार्केट में क्या दाम था?
6: चटकारे लेने वाले लोग हैं,
9: चटकारे नहीं,
6: चटकारे लेकर के देश को पीछे धकेल,
9: सच्चाई नहीं बता रहे।
6: एक साथ आइए, क्राइसिस का वैश्विक संकट का समय है, पूरी दुनिया झेल रही है, पूरा देश एक साथ आके लड़ेंगे, क्या हो जाएगा? उन्होंने साथ
0: आपके पास इतने सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों से जवाब दीजिए ना।
6: बताइए
0: अगर फैक्ट्स हैं इतने सारे आपने देख लिए, इतना
9: बता दीजिए, 2013 में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्या
0: जरूरत है? फैक्ट्स दीजिए,
6: बताइए। मैं आप आंकड़ा बताता हूं। ये इन्होंने बोला कि हमने 2013 में क्या था, मैंने आपको 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड बताए, 83,000 करोड़ का हमने उस पर इंटरेस्ट दिया, मैंने वो बताया। अब फिजिकल डेफिसिट सुन लीजिए, 2009-10 में क्या था? 6.4%, आज क्या है? 4%। क्यों भाई? कौन सा क्राइसिस?
0: रुपी कितना था? रुपी
6: बताता हूँ, 2013 के अंदर 20% डेप्रिशिएट हुआ, आज हमारे डिफेंस पर
4: डॉलर की
6: आप बात कर रहे हैं उसकी, आप बात कर रहे हैं उसकी, जब एक वैश्विक संकट पूरी दुनिया को घेरे खड़ा है, भारत अगर उसको रेजिस्ट कर रहा है 2.5 महीने तक दाम नहीं बढ़ा रहा, तो आपका आर्ग्यूमेंट है पहले दिन दाम बढ़ाना था।
0: हाई पे है, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है।
6: एक साल में 20% डेप्रिशिएट होने वाला साल 2026 नहीं है, वो 2013 था। एक साल में 20% स्टेडी इंक्रीज अगर होगा, आज हमारे पास 650 का फिजिकल डेफिसिट हमारे पास फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज कितना था आपके समय में?
9: मैं जवाब दे दूं,
6: 300
9: मैं जवाब दे दूं।
6: क्यों भाई?
9: एक
6: तब कौन सा संकट था? ये जो ईमानदारी आप छोड़ के हैं वो समस्या।
0: ये जो 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, उसका कितना और कैसा इम्पैक्ट होगा? क्या आप ये सोचते हैं या मानते हैं कि और ज्यादा ये बढ़ सकता है?
10: जी मैम, मेरा
0: क्या नाम है?
10: मेरा नाम उमंग दुबे हुआ, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा सवाल डॉली मैम से, जो कांग्रेस का यहाँ पे स्टैंड रख रही हैं। मैम जैसे कि अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है, आपको यहाँ पे सरकार का सहयोग करना चाहिए, आप सरकार को डांट डपट रहे हैं, आप सरकार को कुछ आइडिया दीजिए कि आप ये बेटरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मैम 1,44,000 की आईफोन लेकर के आप बात कर रही हैं कि मतलब
0: उस पर मत जाइए, अपना सवाल
10: नहीं। लेकिन ये देखिए कि अगर कोई आदमी गरीब हो वो इतना महंगा फोन कैसे ले सकता है, और आप इतनी महंगी सामान को लेकर के तब आप महंगाई के ऊपर आप ड्रामा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना?
0: जवाब दीजिए।
4: जब हम बोलते हैं कि सिलेंडर के लिए कतारें लगी हैं, इंतजाम करिए, इसी डिबेट में थी, इसी मंच पे थी, एंकर दूसरे थे, तो इन्हीं के प्रवक्ता यहाँ आकर कह रहे थे हम अफवाह फैला रहे हैं।
0: बिल्कुल आप झूठ
4: हम ये कह रहे थे,
0: तो कहा था 75 दिन का डील ही नहीं है।
4: देखिए 75 दिन
0: ठीक है, नहीं चलिए अगले सवाल से जवाब नहीं देना चाह रही हूं, सवाल ले लीजिए। मछली बाजार नहीं है
9: ये लोगों की भाषा।
5: मेरा नाम नरेश कुमार है, मेरा सवाल मेरी सरकार से है क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट किया है। जो सरकार आज जनता को खर्च कम करने के लिए बोल रही है, वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव में 151 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये तो वही बात,
0: ये तो वाजिब सवाल है।
5: ये तो वही बात हुई ना कि बिल्ली सोच चूहे खा के अजगर ने चली, तो इस पे क्या कहना?
0: भव्य आयोजन हुआ सिद्धार्थ जी, खर्चा हुआ उसमें, इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आए उसमें खर्चा हुआ, सब प्राइवेट जेट चॉपर से आए उसपे खर्चा हुआ, तब नहीं एक्सपेंडिचर हो रहा था।
5: देखिए मोदी जी
0: एक सवाल
6: मैं उत्तर दे देता हूँ।
5: मोदी जी एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते थे इस इलेक्शन में अपनी पार्टी के खर्चे को कम करके।
4: इसी महंगाई का जवाब दीजिए, 4 बार
6: देखिए मुझे लगता है
4: उत्तराखंड जाके,
6: अरे भाई देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लीड बाय एग्जांपल करने का काम कर रहे हैं। अगर अपने सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्वॉय को कट डाउन करने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके प्रेरणा लेकर के देश भर के अगर मुख्यमंत्रियों ने काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री ने काम किया। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो मंडे बनाया जा रहा है, आज दिल्ली के अंदर जो ऑयल कंजम्पशन का
4: गुजरात में 100 गाड़ियों के साथ रोड शो किया,
6: अरे किसने किया? आपके नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी निकल रहे हैं घर से बाहर 20 गाड़ियां लेकर के। आप नहीं इस देश के नागरिक, आप नहीं रुक सकते, आपको जाना है विदेशों में। हमने चुनाव में क्या किया वो ठीक है, आप चुनावों में मस्कट घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे ये कोई बात हुई?
0: अरे दो दो लोग बोलेंगे कैसे सुनाई देगा?
6: बारी तो मेरी थी, मैंने तो इनके ऊपर नहीं बोला।
0: डाइवर्ट हो गए ना टेप पर, एक बड़ा डेंट, क्या उसके लिए तैयार है हम, और क्या 3 रुपए बढ़ोतरी सिर्फ एक पहली किस्त है? देखते रहिए आज तक।

और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड में है और नीदरलैंड में भी आप देखिए भारतीय रंग आपको दिखाई देंगे। पांच देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले यूएई से शुरुआत हुई, उसके बाद नीदरलैंड और नीदरलैंड से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे भारतीय रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं और साथ ही बातचीत भी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन छात्रों से बातचीत की और इनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। ये देखिए भारतीय समुदाय का ये खास कार्यक्रम हेग में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और यहां पर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड में है लेकिन यहां पर पंजाब भी दिखेगा, यहां पर महाराष्ट्र भी दिखेगा, यहां पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, सारे रंग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप और ये वो तस्वीरें हैं, आप यहां पर ये देखिए, ये महाराष्ट्र के रंग आपको दिखाई देंगे। इससे पहले आपने देखा जो छोटे छोटे बच्चे भारत की संस्कृति को दिखा रहे थे, अब यहां पर देखिए महाराष्ट्र के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं।

देखिए दूसरा आधिकारिक दौर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहला 2017 में था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहाँ यूएई के बाद पांच देश जिसमें यूएई फिर नीदरलैंड अभी हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद स्वीडन, फिर नॉर्वे, फिर इटली जहां वो मेलोनी से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय टूर का ये दूसरा चरण है। अब ये देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि आपको पंजाब भी दिखेगा, गुजरात भी दिखेगा, हिमाचल भी दिखेगा, आपको महाराष्ट्र भी दिखेगा और अब आप देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर रंग दिखाई देंगे।

तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। नया इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्मलाइज होने की यहां उम्मीद है। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर पर मजबूत किया जाएगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों देशों के बीच ट्रेड अभी 27 से 30 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। नीदरलैंड भारत का यूरोप में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और डच एफडीआई अगर इंडिया में बात करें तो 55 बिलियन डॉलर से ज्यादा। तो ऐसे में हाईटेक इनोवेशन पर फोकस हो सकता है। सेमीकंडक्टर चिप, अब आपको याद होगा मध्य प्रदेश, जब गुजरात की बात की जाती है, गुजरात में धौलेरा सेमीकंडक्टर चिप और इसका हब बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर भी फोकस हो सकता है। भारत और नीदरलैंड के बीच इस पर भी ट्रेड हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। अब ये देखिए, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय रंग आपको दिखाई देगा, और इसीलिए कहते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां भी आपको एक भारत दिखाई देगा और लोगों में भारतीयता भी दिखाई देगी। ये देखिए,

0: की भी तस्वीरें आपने देखी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया गया, जहां भारतीय कलाकारों ने नृत्य पेश किया और स्वागत सत्कार हुआ। छोटे बच्चे भी वहां पर थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। पीएम मोदी भी उन्हें दुलार कर रहे थे और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई, काफी बात भी की। अब मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश है नीदरलैंड से भारत की। क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर टेक्नोलॉजी पर सहयोग बढ़ाने की बात यहां पर की जाएगी। साथ ही डिफेंस टेक्नोलॉजी और भी कई मुद्दों पर यहां बात की जाएगी। डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक में और गहरा सहयोग यहां पर होगा। प्रणय हमारे सहयोगी विदेशी मामलों के जानकार प्रणय उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, यूएई में हमने देखा और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री नीदरलैंड में है, अब यहां पर क्या उम्मीद की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से, कैसे देखते हैं?
1: देखिए हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। यूएई का जिक्र आपने किया और अब वो यूरोप पहुंच चुके हैं। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ जनवरी 2026 में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूरोप यात्रा है। और नीदरलैंड का जिक्र, जैसे आप भी कह रहे थे, भारत का जो है यूरोप के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी भारतीय उत्पादों का जितना निर्यात होता है करीब करीब 27 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, जिसमें से 22 अरब डॉलर के साजो सामान का, वस्तुओं का भारत निर्यात नीदरलैंड्स को करता है और इस लिहाज से भारत के लिए काफी अहमियत रखता है नीदरलैंड्स। इसके अलावा कल्चर से लेकर कारोबार तक बहुत व्यापक है भारत और नीदरलैंड की दोस्ती का, उनकी आपसी साझेदारी का दायरा, और उसमें अक्सर वाह नीदरलैंड कहा जाता है। वाह हिंदी वाले वाह को भी आप मान सकते हैं और साथ ही अंग्रेजी में इसे एक्रोनिम के तौर पर भी मान सकते हैं, क्योंकि WAH इसका जिक्र काफी होता है। वाटर, एग्रीकल्चर और हेल्थ, इस क्षेत्र के अंदर भारत और नीदरलैंड के बीच में साझेदारी को लेकर बहुत सारे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। किस तरीके से भारत और नीदरलैंड मिलकर गंगा, जो नमामि गंगे मिशन है, उसके अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। जो रिवर सिटीज का भारत ने एक समूह बनाया है, उसमें भी महत्वपूर्ण सदस्य है भारत के साथ साथ नीदरलैंड। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से जो तकनीक है वो भारत के अंदर लाई जा सकती है, इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी कैसे भारत को मिल सकती है, और जैसा आपने जिक्र किया, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, यानी ऊर्जा के संकट को लेकर जितनी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, उसमें हर कोई सोच रहा है कि अब ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का भी विकास तेजी से करना चाहिए, और उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार जो है वो नीदरलैंड बनकर उभर रहा है।
0: अब ये आपने जो बताया, अब इस पर भी मैं वाह कहूंगा, क्योंकि आपने वाह की जो परिभाषा दी है वो बेहद ही मतलब कम शब्दों में अच्छे से लोग समझ पाएंगे, और ये तस्वीरें हम यहां पर दिखाते रहेंगे। हर एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़ी दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
3: Bharat ki apni electric sawari.
4: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Flexibility is the foundation of WGU School of Education. With WGU, you have the option to take courses when it works for you. And while our programs are centered around you and your schedule, you'll never go it alone. You'll have one-on-one mentorship and support from faculty every step of the way, from day one to graduation. WGU empowers you to become the best teacher you can be. Learn more at wgu.edu.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music,
6: news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
10: It's your boy,
9: just
10: Jay-Z.
9: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
13: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील टीएमटी से बना
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
18: इसमें माइक्रोफाइबर है
17: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
17: हमारे सीमेंट में नहीं है
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, और मेरो प्यारो राजस्थान, और ए फॉर असम, साथियों आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राव यतिन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नेदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं, मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, यह एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले, अपनापन नहीं बदला। आपने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपने पुरखों की भाषा को भी छोड़ा नहीं। हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस यहां बहुत पॉपुलर है। ऑन इन स्टेशंस के माध्यम से भारत का संगीत और संस्कृति भी डच फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। द गांधी सेंटर हो या फिर अलग अलग शहरों के स्कूल, आप अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। सोच रहे हैं ना? सोचिए, जरा और सोचिए। आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। और समर्पित भाव से आप सबके आशीर्वाद से कुछ न कुछ करता रहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में है, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा काल, 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए?

और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हां,
चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।

धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है, डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डिजी लॉकर है, ट्रेवल करना है तो डिजी यात्रा है, हेल्थ केयर का लाभ लेना हो तो डिजिटल हेल्थ आईडी है। साथियों, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ।2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में 125,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं। साथियों, भारत चिप मेकिंग में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है। अभी भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर काम चल रहा है। इनमें से 2 प्लांट्स में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, यानी अब चिप भी डिजाइन इंडिया

0: मेड इन इंडिया होगी। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। ।2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नेदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नेदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नेदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नेदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नेदरलैंड भी है और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है। ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नेदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। साथियों, भारत और नेदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी हैं। आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु हैं, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। मैं इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतने गर्मजोशी भरे वेलकम के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देवियों और सज्जनों बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमसे सूचना मिलने तक
2: मोदी को आप सुन रहे थे। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जानकारी दी उसमें नीदरलैंड और भारत की दोस्ती के बारे में बताया, कहा है दोस्ती का प्रतीक बन गया है और एक और गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अंत में दी गई और ये भी बताया कि आने वाले वक्त में दोनों देशों की मजबूती से मजबूती अर्थव्यवस्था को मिलेगी। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। बंगाल चुनावों का भी जिक्र किया, 16 मई 2024 का भी जिक्र किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्या हुआ भारत में।

0: और अब हमारी सहयोगी नवजोत के साथ देखिए हमारी खास पेशकश कृष्ण अवतार।
1: सब कर्म के अधीन है या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
2: मत जाओ काना, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा।
1: ओपे वारु उर्वशी, सुनो राधिके सुझा, तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समा।
2: गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।

0: राधा नाम का इतना महत्व केवल बताते हो या मानते भी हो?
1: कृष्ण के जीवन का सार है राधा।
2: तारम रिलीज हो चुकी है और किस तरीके से दर्शकों के दिलों पर छा गई है, ये सब आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि फिल्म की स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा।
3: जय श्री कृष्णा।
2: एक बार परिचय करा देती हूँ। सिद्धार्थ गुप्ता एक्टर, संस्कृति हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सत्यभामा का किरदार निभाया और संस्कृति की ये डेब्यू फिल्म है, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं साजन राज जी, ये प्रोड्यूसर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डेब्यू और वो भी कृष्णा अवतारम में एक ऐसी फिल्म में जिसको खूब लोग पसंद भी कर रहे हैं और बहुत आई थिंक उत्तर प्रदेश में तो टैक्स फ्री भी हो चुकी है।
4: यस, बस बहुत ओवरवेल्म्ड हूं। मैंने अगर सपना भी देखा होता तो ऐसा किरदार नहीं मिलता, तो इट्स जस्ट अ ड्रीम दैट आई एम लिविंग राइट नाउ।
2: आप बताइए कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? अच्छा लग रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कि हम एक अच्छा ही फिल्म बना रहे हैं, एक अच्छे मैसेज के साथ, और हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा प्रसन्नता, इतना ज्यादा अभिनंदन मिलेगा।
2: आज किसी ने रोक के आपसे सेल्फी भी लिया है ना, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप।
3: तो हम कहीं जाते हैं प्रमोशन करने तो पता है क्राउड आएगा तो सेल्फी लेता है, बट स्पॉट करके हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, एक आंटी थी बाइक पे बैठी हुई अपने हस्बैंड के पीछे, और वो देखे जाए ऐसे देखे जाए कृष्ण अवतार। सो वो आई थिंक मेरा मार्लिन मुनरो मोमेंट था कि आई गॉट स्पॉटेड, किसी ने मुझे स्पॉट किया बिकॉज ऑफ द वर्क आई हैव डन, जिस काम की वजह से हम इतना।
2: बिल्कुल, चलिए साजन जी अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, पहले तो मैं आपको दर्शकों को ये बताते चले हम कि ये पार्ट वन है और जो मुझे पता चला है पार्ट टू एंड पार्ट थ्री भी आने वाला है जिसमें आप कृष्ण के जीवन की हर लीला को बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। पार्ट वन की हम बात करते हैं क्योंकि अलग अलग फिल्में आ रही हैं, लेकिन आजकल मैथोलॉजिकल फिल्मों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है, पसंद भी कर रहे हैं लोग। अभी हाल फिलहाल में एक और फिल्म आई थी जिसको लेकर चर्चा भी हो रही थी, अब कृष्णावतारम वन आई है और उसका रिस्पांस मतलब गुजरात में तो लोग, अच्छा आप तो गुजरात से ही, उस पर मैं आती हूँ, लेकिन गुजरात में तो लोग एक्चुअली इसको फील कर रहे हैं, शंकराचार्य हो, इस्कॉन कम्युनिटी हो, हर कोई बहुत पसंद कर रहा है इसको।
5: पहले तो ये माइथोलॉजी नहीं है हमारा। अच्छा। माइथोलॉजी शब्द हमारा जो है, और मेरे मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है। सो हम इनफैक्ट ये एक मुद्दा भी हम रख रहे हैं कि व्हाई शुड हिंदू बी माइथोलॉजी, राइट? इट इज अ हिंदू हिस्ट्री। कृष्ण भगवान हमारे है, वी हैव यू नो बेट द्वारका, हमारे जो द्वारका अंदर there's a lot of
2: प्रमाण
5: तो है। तो ये है इन टर्म्स ऑफ ये जो वर्ल्ड हम जो बिल्ड कर रहे हैं कृष्ण अवतारम का वर्ल्ड, कृष्ण भगवान के बारे में आप जितने एपिसोड्स बनाएं, जितने सिर्फ ट्रिलजी बनाओ, उससे कम ही पड़ेगा, राइट? मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से इसको रिसेप्शन मिला है। जब हम जैसे हम कितने बार थिएटर में जाते हैं, जब लोग देखते हैं तो साक्षात कृष्ण उनको नजर आता है, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम कहीं ना कहीं हमारा कास्टिंग राइट किया हुआ है हर एक कैरेक्टर के बारे में। द वल्नरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सत्यभामा इज़ वेरी क्लियर, लाइक जो राधा का जो वाइवेसिटी है दैट वॉज वेरी वेरी क्लियर, रुक्मिणी का जो एक रानी का जो भाव होता है इट वॉज वेरी वेरी क्लियर। सो एवरी बिट ऑफ दैट इज रियली, पीपल आर रियली प्लेइंग इट बैक। कितने बार आज मुझे इनफैक्ट कितने मैसेजेस आए कि माई मदर हैड गॉन देयर एंड शी ब्रोक डाउन एंड शी क्राइड एंड शी यू नो वॉच्ड द एंटायर थिंग, इज ब्यूटीफुल। लोग भावुक हो जाते पहले 7 मिनट में, जब जैसे आप घुस जाते फिल्म के अंदर, और जो लास्ट की जो 16 मिनट्स में द वे जो द्वारका का जो प्रलय है, आई हैव सीन पर्सनली सीन पीपल मेल्टिंग राइट इन द थिएटर। और ये एक नहीं, ये एक ऐसा स्पोरैडिक इंसिडेंट नहीं है, इट्स कंसिस्टेंटली मैडम ये होता जा रहा है, विच इज
2: एक चीज। आप जिस तरीके से जिन भावों की बात कर रहे हैं वो भाव दर्शकों के हैं, वो भाव दिख भी रहे हैं, और जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप इस पूरी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, आपने बिल्कुल फ्रेशर्स, आपकी तो शायद एक फिल्म आ चुकी है, इन दोनों का आपने बोला कि आपकी डेब्यू ही है एक तरीके से, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं मंझे हुए कलाकारों को लूं क्योंकि वो अपने भावों को ज्यादा अच्छे से स्क्रीन पर व्यक्त कर पाएंगे?
5: ये क्या है, कृष्ण भगवान के साथ मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहता था।
2: हाँ।
5: हम कोई भी स्टार को लेके आ सकते थे, लेकिन वो दर्शकों के लिए वो धोखा हो जाता है, क्योंकि आप कृष्ण भगवान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. हालांकि मुझे बहुत लोगों ने कहा यार आप इतने रिस्क ले रहे हो.
2: हाँ.
5: लेकिन ये फिल्म की एक एक एक जरूरत थी, क्योंकि ये भारत देश में अगर कोई कृष्ण का किरदार निभा रहा है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने पहले वो कृष्ण दिखे.
2: हाँ,
5: ना कि कोई exactly. कलाकार स्टार दिखे.
2: हाँ,
5: राइट.
2: ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में अभी आ भी रही हैं इसको लेकर, और हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम अगर किसी को एक पर्टिकुलर रोल में देख लेते हैं, एक फिल्म के किसी रोल में देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको एक देवता एक भगवान के किरदार में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो छवि रह जाती है. तो ये आपकी सोच, आपने कहा कि इसके पीछे थी. कितनी मेहनत की है आपने इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए?
3: मैम मैंने मेरी प्रेपरेशन काफी रही इसमें. पहले तो मैंने ऑडिशन,
2: सबसे टफेस्ट पार्ट बताइए कौन सा था.
3: टफेस्ट तो नहीं था, आई थिंक शुरू करना वो था, जब आई थिंक मैं अनजान था मैं किस चीज में जा रहा हूँ. जिस सिद्धार्थ को ये कैरेक्टर मिला था और जो आज मैं हूँ, आई थिंक वो दो अलग अलग इंसान है. मेरे लिए प्रोसेस बहुत सिंपल था. मैं किसी को देखना नहीं चाहता था जिसने पहले ये किरदार निभाया है, और मैं सच बताऊं तो मैंने देखा भी नहीं था जब तक मुझे कैरेक्टर मिला. तो थोड़ा आयरोनिकल भी था कि मुझे मिला ये. उसके बाद मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, मैंने किताबों से पढ़ा है जितना मैं पढ़ पाया हूँ. जो हमारे एक्टिंग टीचर थे उन्होंने मुझे टेक्स्ट दिया था, उन्होंने मुझे एक ट्रांसलेशन भी दिया था श्रीमद् भगवद गीता का और भगवत पुराण का, और मैं उन्हीं के थ्रू जितना पढ़ता गया, जितना कृष्ण को समझता गया, कृष्ण जी भगवान को समझता गया, मैंने अपने दिमाग में उनकी अपनी ही छवि बनाई. और मैंने कोशिश करी कि मैं वही पर्दे पर उतारने की कोशिश करूं जिससे कि कुछ फ्रेश दिखे, ऐसा ना लगे कि किसी ने इस तरीके से पहले
2: तो
3: किया हुआ.
2: सिद्धार्थ बिफोर कृष्णा उतारा मैं, नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर प्लेइंग दिस रोल, क्या चेंज आया आपने, अपने खुद में क्या चेंज देखा है?
3: आई थिंक मैं काफी काम हो गया हूँ, थोड़ा रिजल्ट से डिटैच हो गया हूँ. बिकॉज गीता का सार है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. तो कर्म अगर आप सही करेंगे, कर्म जो आपके हाथ में कंट्रोलेबल्स हैं, आप उस पर स्ट्रेस ले सकते हैं. लेकिन आप सही सब कुछ करके भी आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट उस पर स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है. तो ये चीज़ मेरी जिंदगी में, मेरी जीवन में का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है. इसलिए डिटैचमेंट ही प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है जब आप किसी चीज को ओन नहीं करते. ये सब मेरी जिंदगी में आ गया है आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस.
2: माय गॉड, हम माइथोलॉजिकल फिल्म कह रहे थे, आपने कहा नहीं ये हमारा इतिहास है. तो चलिए एक बार फिर से अपने इस इतिहास को देख लेते हैं.
6: पहले ये आंखें उनके दरस को तरसती थी, अब पाने को. भामा की आंखों में सपने जगते ही है इसलिए कि वो पूरे हो सके. गोपियों के प्रेम की तरह तुम्हारा प्रेम भी अधूरा ना रह जाए. या क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का?
7: मैंने विवाह किया, रुक्मणी मेरी भार्य है. संसार रथ के दोनों पहिए एक समान होने चाहिए.
6: और राधा, हरे मुरारी वृंदावन, वो आपसे प्रेम करती है.
7: कौन नहीं. क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
8: अंत में आरंभ है,
7: एक और प्रेम है.
8: आरंभ में ये अंत,
7: और दूसरी ओर कर्तव्य.
9: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा दे, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा.
7: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा. हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप.
10: ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र.
2: तो हम सत्यभामा से बात करते हैं. श्री कृष्ण की आठ पत्नियों और उनकी तीसरी पत्नी सत्यभामा. द्वारका में ये काफी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और आप तो खुद अहमदाबाद से हैं. कितना आप स्पेशली, मैं जब शुरुआत कर रही थी क्योंकि मैंने देखा कि गुजरात की ऑडियंस बहुत खुद को इससे अटैच करके देख रही है.
4: मेरे लिए एक्चुअली, मैं गुजरात से हूँ तो ऑफकोर्स हम घर के बाहर निकलते तो जय श्री कृष्ण बोल के ही निकलते हैं. तो कृष्ण भगवान हम सब के घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. पर तो भी बहुत एम्बेरसिंग बात है कि मैंने जब ये फिल्म पहली बार सुनी, मुझे नहीं पता था सत्यभामा कौन है. एंड जैसे राज ने कहा कि हमारी हिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो यूथ को नहीं पता, इसीलिए ऐसी फिल्म के माध्यम से ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था. फिर मैंने पढ़ा कि उनका कितना बड़ा योगदान था हमारे कल्चर में. हम छोटी दिवाली मनाते हैं क्योंकि कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था, पर हमें इसके पीछे का मीनिंग नहीं पता. तो आई थिंक ऐसी स्टोरीज काफी बननी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जैसे यूथ को हमारी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता चले.
2: हम जब कहते हैं कि जेंजी जो है पूरी तरह से डिटैच हो गया है धर्म से, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो वो खुद को उसके साथ जोड़ के देखता है, उनको पता चलता है हमारा इतिहास क्या है. स्पेशली जिस तरह का पूरा VFX इसमें आप लोगों ने दिखाया है, वो एक तरीके से जो आज की जेनरेशन की फिल्में, चाहे मॉडर्न फिल्मों की जैसे धुरंधर की बात कर ले, अब तमाम जो दूसरी फिल्में, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, उसमें अगर वैसा ही VFX के साथ इस तरह की फिल्म आती है तो यूथ कितना खुद को कनेक्ट करता है.
5: काफी. और इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे मेहनत काफी जाती है. 7.5 acres का सेट बनाया हमने. टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, जितना ग्लैडिएटर ने बनाया वेस्ट में उतना बड़ा सेट हमने यहाँ बनाया है, राइट. और VFX का खूबी यह है कि उसका एब्सेंस ही उसका प्रेजेंस रहता है, आपको दिखना नहीं चाहिए. तो उस तरह से हमने बनाया हुआ है, तो वो एक ऑप्टिमल वे से बनाया हुआ है. यंग यूथ जब देखते हैं ना द ग्रैंड्योर, वो जब देखते हैं वो स्केल में, हमारे यहाँ पे जब हम हैरी पॉटर देखते हैं या कुछ देखते हैं, वो एक अलग वर्ल्ड बन जाता है. ये वर्ल्ड के साथ यू नो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अगर वाकिफ कराना है तो उनको बिल्कुल वो ग्रैंड्योर दिखाओ. जो हम बेडरूम्स बनाए हैं, हमने जो शूट किया है वो 80 feet by 100 feet का बेडरूम, लाइक 35 feet tall, लाइक सो वो जो एक्सपैंस वो स्पेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो इन टू स्टोरी टेलिंग, राइट. तो उसके ऊपर जब आप करेक्ट VFX करते हैं, जो पानी, यू हैव टू गेट द वाटर राइट, राइट, यू नो व्हेन द यू नो वाटर सिमुलेशन जब करते हैं, गेटिंग ऑल दोज लिटिल डिटेल्स राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज वेयर दे कनेक्ट. जो और इसमें क्या कि अगेन व्हाट संस्कृति जस्ट सेड, ये प्रीचे नहीं बनाया हमने, राइट. और ये एक इनफैक्ट जो एक इन फिल्म में है, एक गुरुजी बैठे हैं और वो कथा सुना रहे हैं. एक्चुअली वो कथा सुनाते वक्त एक बच्चा है कंफ्यूज है, यंगस्टर आके बोलता है कि मुझे सब पता है कृष्ण भगवान के बारे में, मैंने तो महाभारत पढ़ी है. और वो जिस तरह से बोलते हैं ना, महाभारत पढ़ने से कृष्ण समझ में नहीं आते. और वो जिस तरह से उन्होंने वो एक एग्जाम्पल जिस तरह से लिखा हुआ है इज ऑल यू नो कीपिंग देम इन माइंड, एक फ्रेंडली यू नो. उनके फादर उनको टोकते हैं जब वो गुरुजी के साथ इस बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करो, बोलते नहीं नहीं डोंट वरी यू नो. एंड विच इज व्हाट आर हमारे यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस पूछना, ये संदेह करना, डाउट करना हर किसी का हक है. हम किसी को नीचे रोकते नहीं है, इसलिए हम भी बोलते थे कि इसमें क्वेश्चन करो हमको किसी भी चीज में, वी आर विलिंग टू ऑलवेज आंसर द एंटायर थिंग. क्योंकि ये क्या कृष्ण क्या है, एक भावना है इस देश की, राइट. इट्स नॉट वन कैरेक्टर, इट्स अ फीलिंग ऑफ दिस कंट्री. मणिपुर के कृष्ण अलग होते हैं, लाइक ओडिशा के कृष्ण अलग है, केरल में जो कृष्ण है वो अलग है, गुजरात के अलग है, राइट. हम कितने मथुरा के अलग हो जाते हैं, द्वारकाधीश हैं, क्या क्या नहीं है. तो ये जब बना रहे, यू नो दिस इज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच वी डू इट, वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, एवरीथिंग इज रिसर्च.
2: बिल्कुल. और जितनी जिम्मेदारी से आपने इस फिल्म को बनाया है, आप पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तो खुद उस किरदार में हैं.
11: जी जी जी. मैं सच्ची बोलूंगा, मैंने ज्यादा प्रेशर इस बात का लिया नहीं. मुझे लगा,
2: मुझे लग रहा है आपने गीता पढ़ ली. फिर गीता पढ़ने के बाद इन्होंने डाला.
11: मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्चुअल प्रोसेस है ये, कि शुरू में मुझे ऐसा लगता है डर हटता था जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल प्योर हो. जितना आप प्रिपेयर करते जाएंगे उतना डर आपका हटता जाएगा. तो मेरा एक रूटीन था, मैं पढ़ता था सोने से पहले 2 घंटे और उठने के बाद, और जितना मैं पढ़ता गया उतना मेरा डर हटता गया, जितना मुझे समझ आती गई उस कैरेक्टर की. और मुझे लगता है अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत प्योर हो और बिना मैलिस हो, बिना कोई मिलावट हो, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो.
2: एक चीज और देखिए, आप जेंजी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों
11: जी,
2: क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत रिसर्च की और आपने इस बात का जवाब भी दिया कि श्री कृष्ण का किरदार प्ले करने से पहले वाले सिद्धांत और बाद वाले सिद्धांत में बहुत बदलाव आया.
11: जी जी.
2: आज के जेंजी को यहां से एक मैसेज दीजिए. आज के जेंजी को अगर हम कहें कि हमें श्री कृष्ण को समझना है,
11: हाँ जी,
2: तो जेंजी को कहां से शुरू करना चाहिए? हालांकि वो समझने का तो कोई अंत है ही नहीं, शुरुआत कहां से करें?
11: मैं वही बोल रहा था कि आई थिंक जेंजी तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा प्रीची नहीं होना, क्योंकि वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है. जब आप एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप श्री कृष्ण को इंट्रोड्यूस करेंगे, श्री कृष्ण एक सिर्फ भगवान ही एक आइडिया भी है ऑफ लाइफ, सोचना, एक स्पिरिचुअलिटी. देखो मैं स्पिरिचुअली अवेयर था, इंक्लाइंड नहीं था. आप इंक्लाइन कैसे करेंगे वो इस एंटरटेनमेंट के माध्यम से है. और इस वजह से भी मुझे ये फिल्म का हिस्सा होना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक अच्छा मैसेज प्रोपोगेट कर रहा हूँ. अब अगर यहाँ से आई एम प्रीटी श्योर अगर जेन जी आके फिल्म देखेगी, मेरा अभी आने से पहले मेरे कजन से बात हो रही थी दुबई में, वो देख के आए फिल्म, उन्होंने कहा फिल्म देखते ही मैंने जाके चैट जीपीटी पे कृष्ण भगवान के बारे में और पढ़ा, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है।
2: नोटिस कीजिए, आई मीन आई वी शुड बी थैंकफुल टू यू कि कम से कम ऐसी फिल्में तो बन रही है, हमारा यूथ एटलीस्ट चैट जीपीटी से हमारे भगवानों को हमारे इतिहास को नहीं समझ रहा है।
5: चैट जीपीटी सीख जाएगा सब कुछ, सोचिए।
11: मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ऐसे 10 लोगों ने बोला होगा मुझे कि हमने फिल्म देखने के बाद जाके और पढ़ा है 2-3 घंटे, तो हमारी तो विन है। हम वो आइडिया एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट आर हिस्ट्री हम वो प्रोपोगेट करने में सफल हो रहे हैं।
2: मेरे ख्याल से आगे आप चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 आप लेकर आ रहे, 2 और 3 भी लेकर आ रहे हैं। एक बार जल्दी से एक मैसेज हमारे यूथ के लिए कि अगर हम श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए?
4: मेरे लिए, मैं मेरी पर्सनल बात करूंगी, मेरे लिए आई थिंक मैं कृष्ण इन्फॉर्मेशन तो सब जगह पे, बुक्स पढ़ेंगे, ऐसे फिल्म देखेंगे, चैट जीपीटी, लोगों से बात करेंगे, पॉडकास्ट से, बहुत सारे कृष्ण पे सब कुछ है, बट ऑल्सो आई थिंक कृष्ण अंदर है, दिल में है। तो मेरे लिए वो जर्नी वही थी कृष्ण भगवान को जानने की, कि मैं कैसे इंटरनली बिकमिंग अ बेटर पर्सन उनके पास जा पाऊँ और उनके वैल्यूज को फॉलो कर पाऊँ। हमने कृष्ण जन्मभूमि में हमारा ट्रेलर लॉन्च किया और उस दिन हमारा सेलिब्रेशन पूरा दिन यही था कि हम कृष्ण भगवान की वैल्यूज के काम करें। हम गौशाला गए, यशोदा माओ के बीच में गए, तो मुझे वही है कि अगर कृष्ण को समझना है तो उनकी वैल्यूज को समझना।
2: बिल्कुल, और उनको केवल एक, हम एक फिल्म तक सीमित नहीं रख सकते, और हम उम्मीद करेंगे कि 2 और 3 जल्दी आए और हमारे दर्शक बिल्कुल उनको समझ पाए, उनको जी पाए, उनको फील कर पाए। तो चलिए एक बार फिर से चलते चलते आपको दिखा देते हैं फिल्म का ये ट्रेलर।
9: मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा।
7: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा, हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप।
10: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र।
7: ये बंसी सब कर्म के अधीन है, ये मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार।
6: मत जाओ काना, तुम गए तो
2: साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे सेकंड और थर्ड में भी आपसे इसी तरीके से मुलाकात हो।
11: थैंक यू।
2: तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।
7: तू है उर्वशी समा।
6: गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच in association with
13: Bharat ki apni electric sawari.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
15: Thank God I get to wake
14: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
17: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
18: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक। जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रोफाइबर है।
13: माइक्रोफाइबर यानी?
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
17: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
18: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
21: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम, ये आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी, थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर जोर।

को पना देने से बाज आए, वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। नीट पेपर लीक कांड को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर तक मार्च, पुलिस ने की बैरिकेडिंग, एनटीए दफ्तर तक प्रोटेस्ट। बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने पर फूटा गुस्सा, पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव, अब तक 7 गिरफ्तार। और भोजशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीर ले जाने से रोका, आज तक के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।

0: करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में आपके शहर की खबर, 100 शहर 100 खबर में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: पीएम मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के तहत यूएस से नीदरलैंड्स पहुंचे। 9 साल के बाद नीदरलैंड्स के इस दौरे पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत। भारतीय समुदाय ने दी हेग में होटल पहुंचने पर पीएम का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक भी दिखी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यहां लोगों का प्यार और उत्साह देखकर उन्हें लगा जैसे वो भारत के ही किसी उत्सव में शामिल है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है न थकने देता है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे सपने बड़े देखने ही होंगे। 25 वर्ष तक करोड़ों वोटर्स का समर्थन मेरे लिए सौभाग्य की बात। नीट यूजी परीक्षा 2026 में हुए धांधली के वास्ते सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल की गई। ये जनहित याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दाखिल की गई। याचिका में एनडीए को भंग करने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि संसद में कानून लाकर एक सेचिट्री नेशनल टेस्टिंग बॉडी बनाई जाए। याचिका में आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए भी कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाए जाने की मांग की गई जिससे यह तय हो सके परीक्षा जीरो लीक के साथ। नीट पेपर लीक 2026 मामले में नया खुलासा, बिवाल परिवार के दो बच्चों ने परीक्षा दी थी। अमन बिवाल 12th की पढ़ाई की मांग की गई जिससे यह तय हो सके परीक्षा जीरो लीक के साथ। नीट पेपर लीक 2026 मामले में नया खुलासा, बिवाल परिवार के दो बच्चों ने परीक्षा दी थी। अमन बिवाल 12th की पढ़ाई करने के बाद प्रॉपर्टी के काम में लग गया था लेकिन पेपर मिला तो उसे भी नीट परीक्षा में बिठा दिया गया था। विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का प्रथम वर्ष का एमबीबीएस का छात्र है। सूत्रों के मुताबिक नीट 2025 का पेपर परीक्षा से पहले मिलने की बात उसने मानी है। एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर ओखला स्थित एनटीए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जुटे थे छात्र। प्रदर्शनकारियों के द्वारा अंदर घुसने की कोशिश पर सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग की गई। ओखला में एनएसयूआई के बाद दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यकर्ता पहुंचे बड़ी संख्या में। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एनटीए को भंग करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। हाथ में ताला चेन लेकर सड़क पर उतरे एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद झाकर। नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन तेज, बैरिकेडिंग थी लेकिन उसके बावजूद भी जमकर नारेबाजी। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। आज बीजेपी के संरक्षण में पेपर लीक माफिया बच्चों का भविष्य तबाह कर रहे हैं। नीट परीक्षा लीक को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र। एसोसिएशन ने तत्काल सुधारात्मक उपायों की मांग की। नीट एग्जाम पास करवाने का झांसा देने वाले गिरोह का मास्टर माइंड खुद को बताता था। आरजेडी का लीडर एमबीबीएस में एडमिशन करवाने का झांसा देकर करोड़ों की कमाई कर चुका है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर जांच लगातार तेज। अब तक उस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। एनसीबी ने पहली बार सीज की जिहादी ड्रग ऑपरेशन रिच पिल में मिली बड़ी कामयाबी। गृहमंत्री शाह ने भी इसकी जमकर की तारीफ। पहली बार जिहादी ड्रग की 180 करोड़ रुपए की कीमत की खेप भारत में बरामद। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में तेजी से फैल रहा एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। भारतीय थलसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी, कहा कि आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखने पर उसे भूगोल या इतिहास का हिस्सा बनने का फैसला करना होगा।
2: इफ यू हैव हर्ड मी अर्लियर व्हाट आई हैव सेड दैट पाकिस्तान इफ इट कंटिन्यूज टू हार्बर टेररिस्ट एंड ऑपरेट अगेंस्ट इंडिया देन दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और।
0: आजम खान को बड़ा झटका। साल 2019 में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई 2 साल की सजा। एसपी नेता को कोर्ट ने लगाया 5,000 का जुर्माना भी। मध्य प्रदेश के धान भोटशाला विवाद में हिंदू पक्ष के बड़ी जीत के बाद से पहली बार पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग शामिल। जय श्री राम के नारों की गूंज। हाईकोर्ट के फैसले की अगली सुबह हिंदू पक्ष भोटशाला में मां बाघ देवी की प्रतिमा के साथ पूजा और दर्शन करने के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। भावुक भोटशाला के अंदर हिंदू चिन्ह भी दिखे। खंभे पर कई हिंदू देवी देवताओं की आकृति दिखी। हिंदुओं ने बताया सालों पुराने संघर्ष की यह जीत। धार भोटशाला मामले में हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की, कहा कि बिना हमें सुने ना कोई आदेश दिया जाए। धान भोजशाला विवाद में अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष। ओबैसी बोले कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भोजशाला केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद से कई पार्टी नेताओं के बागी होने के बीच ममता बनर्जी का बयान, बोले कि जिसे टीएमसी छोड़नी है तुरंत बाहर जाए, मैं फिर से पार्टी खड़ा कर दूं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर बेबाकी से बात की और स्पष्ट संदेश दिया कि संकट की घड़ी में साथ बने रहने वाले लोग अनमोल संपत्ति बनकर उभरेंगे। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से पार्टी ऑफिस को फिर से रंगाई पुताई करके दोबारा खोलने का आदेश दिया, कहा कि टीएमसी कभी नहीं झुकेगी। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष को किया गिरफ्तार, अगस्त 2025 का मामला है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए कई हाई प्रोफाइल संदिग्धों को पकड़ने के लिए भी बड़े पैमाने पर छापेमारी हो रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पश्चिम बर्धमान जिले में अंडाल बीजेपी विजय जुलूस पर जमकर बवाल, दो गुटों में झड़प के बाद पुलिस और केंद्रीय बल तैनात, तीन हिरासत में मिले। पॉक्सो मामले में फिर गिरे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर नहीं लगी रोक। ईसीआई ने तमिलनाडु में हाल ही में विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा वोट डाले जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए। अमित शाह ने दुनिया को दिया ड्रग के खिलाफ एकजुट होने का संदेश, नार्को टेरर पर भारत का सख्त रुख, बोले कि एक ग्राम ड्रग भी देश में हम आने नहीं देंगे। शिकोहपुर जमीन सौदा मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राहत, राव सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, राव बॉन्ड जमा करने का आदेश भी दिया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए दो और हफ्तों का समय मांगा था। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को एआईएडीएमके के एमएलए को अपनी सरकार में शामिल न करने की सलाह दी, कहा कि छवि को इससे नुकसान होगा। पूर्वी सिक्किम के वाकला इलाके में भारी भूस्खलन के चलते जवाहरलाल नेहरू मार्ग पूरी तरह से बंद, प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश किए जा रहे। सूत्रों के मुताबिक नाथुला में फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, बीआरओ की टीमें मार्ग को साफ करने में जुटी है, भारी पत्थरों को हटाने का काम जारी। पेट्रोल डीजल दूध के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, बैल गाड़ी को लेकर आए और प्रदर्शन किया। काफी संख्या में सड़क पर उतरे देखे कांग्रेस के लोग, मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में आंकड़ा मौत का 6 पहुंचा, बिहार के मजदूरों समेत कई लोग जिंदा इसमें चल गए। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर पर एनएसए फरार आरोपियों की अब तलाश तेज, देवास धमाके में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। दुबई में युद्ध के दौरान जहाज पर फोटो खींचने पर गोपालगंज का एक युवक गिरफ्तार, मिली 10 साल की सजा, बुजुर्ग मां बाप ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील बात और पेपर लीक की बात करने के लगे गंभीर आरोप, यूनिवर्सिटी प्रशासन में मचा हड़कंप। ऑडियो वायरल होने के बाद परीक्षा नियंत्रक की ओर से हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर अश्लील बात केस में विशाखा कमेटी ने जांच शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटी प्रवक्ता ने कठोर कार्रवाई की बात भी कही है। मामले में पुलिस ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। 13 मई को यूपी माधी तूफान से हुई तबाही पर योगी सरकार लगातार राहत बचाव का काम कर रही है, अब तक 111 प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी गई। सीएम योगी के आदेश के बाद से 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने किया दौरा, वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रभावित परिवारों से संवाद कर रहे हैं। ये मोदी की पेट्रोल डीजल सेविंग की अपील को सहरसा में बड़ा इसका इंपैक्ट दिखा, जिलाधिकारी दीपेश कुमार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर से पैदल ही दफ्तर पहुंचे। इंदौर में प्लास्टिक दानव फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी दिखी, जेसीबी मशीन से फैक्ट्री में तोड़फोड़ करके अंदर घुसने की कोशिशें जारी की, करोड़ों के नुकसान का भी अनुमान। रोहतास में अपराधियों ने की एक युवक की हत्या, हत्या के बाद से शव को घर पहुंचा शव। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर एक बार फिर से एक्शन, पटना समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी में काफी संख्या में नकदी और ज्वेलरी बरामद। चरखी दादरी में गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में एक होटल में छिपा हुआ कैमरा बरामद, पुलिस ने छापा मारकर 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी कर और अंतर्राज्यीय एक गैंग है उसका खुलासा, 95 लाख रुपए नकद और नोट गिनने वाली मशीन बरामद। कन्नौज में सत्यनारायण कथा का प्रसाद खाने के बाद लगभग 60 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, डीएम के आदेश के बाद गांव में भेजे गए एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम। यूपी के बांदा में दो बच्चे नदी में नहाते समय डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोनों के शव ही बरामद। चंद्रपुर में हमलावरों ने युवक को सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फरार, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के औरंगाबाद में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं छात्रा के साथ, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूल वैन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। असम के कछार में नदी पर बन रहा पुल गिर गया, पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा, लोगों ने जांच की मांग की। नागपुर में ऑपरेशन थंडर के तहत पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। ओडिशा से महाराष्ट्र गांजे की तस्करी हो रही थी, लाखों का माल भी जब्त। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने 32 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर में चौकीदार हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अस्पताल भी पहुंचाया। नासिक के सराफा दुकान में हथियारों के साथ लूटपाट की कोशिश, दो महिला और एक शख्स ने चार चोरों को खदेड़ दिया, घटना सीसीटीवी में भी कैद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमकर बवाल, लाउडस्पीकर हटवाने के लिए गई पुलिस की टीम के साथ जो है हिंसा हुई, झड़प हुई है, सात लोग इसमें गिरफ्तार। उपद्रवी ने तोड़फोड़ के साथ पथराव भी किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस चौकी पर भी हमला। मामले को काबू करने के लिए पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे। बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है, इसलिए बंगाल पुलिस आसनसोल में जहांगीरपुर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए पहुंची थी, जिससे लोग भड़क गए। इंदौर के सराफा में बदमाशों का जमकर उत्पात, सीसीटीवी में पांच आरोपी कैद, आरोपियों में तीन तो नाबालिग है। पुणे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक, फर्नीचर मॉल पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फेसबुक पोस्ट करके गोली मारने की धमकी भी थी। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का त्यौहार, सुबह से बरगद के पेड़ की परिक्रमा और पूजा करती दिखी महिलाएं। दिल्ली में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का त्यौहार, व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। आज देश भर में मनाई जा रही शनिदेव की जयंती, 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शनि जयंती पर दिल्ली में शनिधाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 23 साल के बाद एक ही दिन पड़ी है शनि अमावस्या और शनि जयंती। चारधाम में दर्शनों के लिए लगातार उमड़ रहे श्रद्धालु, 27 दिन में लगभग 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से, ईडन गार्डन्स में रोमांचक मुकाबला। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए

0: जो मास्टरमाइंड है वो तो लेक्चरर ही है, लेकिन एक और जो गिरफ्तारी हुई है ये मनीषा नाम की महिला बताई जा रही है, और ये भी शिक्षिका है, ये भी टीचर ही है। नीट पेपर लीक मामले में मनीषा गुरुनाथ को गिरफ्तार किया गया है। तो नीट पेपर लीक को लेकर सियासी संग्राम भी बढ़ता जा रहा है, और आज दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए दफ्तर का विरोध प्रदर्शन किया, घेराव किया, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करने की कोशिश की, शिक्षा मंत्री का सीधा इस्तीफे की मांग की जा रही है। एनएसयूआई का प्रोटेस्ट पहले भी देखने को मिला था, और एक बार फिर से आज एनएसयूआई सड़कों पर उतरी दिखाई दी, बैरिकेडिंग भी की हुई थी, उसके बावजूद वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। एनटीए को भंग करने की मांग लगातार की जा रही है, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया गया, धर्मेंद्र प्रधान लगातार सवालों में। एनटीए के दफ्तर के बाद भी प्रदर्शन, एक संस्था बनाई गई और वो एक एग्जाम सही से नहीं करवा पा रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मांग, ऐसी संस्था को भंग कर दिया जाना चाहिए।
1: नीट पेपर लीक को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के पास घेराव करने पहुंचे थे, और नकली नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही है आईआईसी कार्यकर्ताओं द्वारा, और पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। पुलिस ने पहले अनाउंसमेंट किया कि कैसे यहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया इंडियन यूथ पुलिस द्वारा। जो कार्यकर्ता है वो इस तरह से कुछ नकली नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर के बाहर नकली नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही है विरोध प्रदर्शन के तौर पर, और वहीं पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। ये कहा गया कि बीएनएस की 163 की धारा यहां पर लागू, यानी कि कोई भी विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं है इस इलाके में, और उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू, डिटेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईवाईसी के जो कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए थे धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करने के लिए, उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तारी हो गई, सीबीआई जांच कर रही है। विरोध प्रदर्शन
2: किसलिए? उन 22 लाख बच्चे जो दिन रात पढ़ रहे थे, 18-18 घंटे पढ़ रहे थे, उनको पता लगता है जब पेपर देने जाते पेपर लीक हो गया, ये काहे की सरकार है? एनटीए को बैन करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, कब तक होगा?
1: सर देखिए, आप किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन करने वाले आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। उदय भानु चिब जो आईवाईसी के अध्यक्ष हैं उनको भी डिटेन किया जा रहा है।
0: सीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, जांच एजेंसी एक्शन में लगातार छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, और अब दावा किया जा रहा है कि सीबीआई इस केस के मास्टरमाइंड तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। पीवी कुलकर्णी लातूर में अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता है, आरोप यह है कि उसी ने परीक्षा से पहले कई स्टूडेंट्स को सवाल और उनके सही सही जवाब बताए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीवी कुलकर्णी खुद नीट पेपर सेटिंग के प्री प्रोसेस में शामिल था, और इसी का फायदा उठाकर उसने पूरा का पूरा खेल किया। नीट पेपर लीक के मामले में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीवी कुलकर्णी जो कि महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी है, और सीबीआई इस केस में उसे बहुत बहुत अहम किरदार मान रहे हैं। हालांकि कुलकर्णी की गिरफ्तारी के बाद से सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीट पेपर सेटिंग से जुड़ा हुआ कोई और शख्स भी इसमें शामिल था। सीबीआई अब पीवी कुलकर्णी से पूछताछ कर रही है, माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़े कुछ और आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है, विपक्ष हमलावर है। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री का उन्होंने घेराव भी किया। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
5: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
6: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं.
7: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप.
8: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही.
9: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर.
10: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए. ओके,
8: शुभेंदु अधिकारी.
7: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.
11: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
12: अनुपम मिश्र,
13: अमित भारद्वाज,
14: पीयूष मिश्रा,
15: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: नोएडा से बड़ी खबर अब आपको देते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी और इस बीच में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एक बार फिर से आग लगी और एक कपड़ा फैक्ट्री बताई जा रही है, वहां ये भीषण आग लगी। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये विश्वास डरा देने वाले हैं। धुएं का गुबार देखिए, कितने कल धुएं का गुबार इस फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद हैं। नोएडा सेक्टर 63 नोएडा सेक्टर 63 की ये घटना है। ये कपड़ा फैक्ट्री है और आसपास ये चूंकि पूरा का पूरा कमर्शियल एरिया ही है, तो इसलिए बहुत संवेदनशील ये जगह हो जाती है। कपड़ा फैक्ट्री है तो भीतर ज्वलनशील और केमिकल्स, कपड़े और आग बढ़ती चली गई। आप देखेंगे तस्वीरों में। और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
4: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, ये आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर जोर। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दो टूक आतंकियों को पनाह देने से बाज आए, वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा बना रहना है या नहीं।

दफ्तर के पास भी प्रदर्शन, पुणे के शिक्षिका की पूछताछ के बाद दिल्ली में गिरफ्तारी। बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर हटाने पर फूटा गुस्सा, पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव, अब तक 7 गिरफ्तार। और भोजशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीर ले जाने से रोका, आज तक के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।

और अब बात धार के भोजशाला की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से आज पहला दिन है जब एमपी के धार में भोजशाला में पूजा पाठ हुआ। भोजशाला में हिंदू पूजा तो पहले भी होती थी, आते थे श्रद्धालु पूजा करते थे, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन। अब हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मान लिया है, जिसके बाद से भोजशाला में पूजा पाठ शुरू हो गया है।

0: भोजशाला मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला, हिंदुओं की भोजशाला, सनातन और संस्कृत अध्ययन का उत्कृष्ट केंद्र भोजशाला, मध्यकाल में सनातन परंपरा की ध्वजवाहक भोजशाला, हिंदुओं की आस्था का पवित्र केंद्र है भोजशाला। जिस जगह पर सदियों से पूजा पाठ के लिए हिंदू संघर्ष करता रहा, अब वो स्थल हिंदुओं का हो गया है।
1: हिंदू पक्ष के लोग पहुंच रहे हैं इस जगह पर, और अगर आप देखें तो यहाँ अगरबत्तियां लगाई जा रही हैं, पूजा हो रही है, और साथ ही में यहाँ फूल चढ़ाए गए हैं, माला चढ़ाई गई है।
0: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये भोजशाला की पहली तस्वीर है।
1: देखिए आंसू निकल पड़े हैं यहाँ पे, ये जो महिला है यहाँ पे ये रो पड़ी है, क्योंकि ये जो फैसला आया है उसके बाद इन्होंने लंबा इंतजार शायद किया होगा इस दिन।
0: धार भोजशाला हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, इसके निशान आज भी मौजूद है।
1: ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है।
0: भोजशाला की दीवारें, भोजशाला का वो हवन कुंड, अध्ययन का वो केंद्र, हिंदू देवी देवताओं की वो आकृतियां, सब कुछ आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
1: एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो खींच दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें खींच दिया गया है।
0: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की जीत के साथ ही धार की भोजशाला अब हर दिन पूजा पाठ के लिए खुल गई है। तो आज चलिए हमारे साथ धार की भोजशाला।
2: धार की भोजशाला 11वीं सदी की है। लंबे समय से वहां पर हिंदू पूजा करते रहे, मुस्लिम पक्ष भी नमाज करता रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं था। मुस्लिम पक्ष से मस्जिद कहता है तो हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर, लेकिन अब हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष गया है। और आज हम आपको धार भोजशाला के अंदर भी लिए चलते हैं। आज तक के कैमरे से आप पूरी भोजशाला को देखिए।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: भोशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार पर घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: भोजशाला में कई ऐसे कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे यह साबित हुआ कि यह स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं और हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए हैं, उनको तोड़ा गया, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटे, काल सर्प और भी बहुत कुछ आज तक के कैमरे पर दिखाई दिया है।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के प्रवचन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
3: MP के CM मोहन यादव ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, MP में सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे राम मंदिर के फैसले को सभी ने स्वीकार किया था वैसे ही इसको भी करना चाहिए।
4: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने ASI के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
5: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी, और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न, लेकिन ये तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं, न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है, और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
3: और वक्त चला, छोटे से ब्रेक का फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
9: Thank God I get to wake
8: and everything
9: up
8: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long.
11: This guitar about as hard as a cane.
10: To top 40 hits you just can't get enough of.
9: Thank God I get to.
10: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
10: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

किचन के बजट से लेकर डाइनिंग टेबल के स्वाद तक हर चीज पर महंगाई की बुरी नजर लग चुकी है। दुनिया भर में खाने पीने की चीजें पिछले 3 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं। यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले दिनों में आपकी थाली और महंगी हो सकती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के अनुसार अप्रैल में फूड प्राइस इंडेक्स 1.6% बढ़ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5% ज्यादा है। इसकी वजह जंग के असर से ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर टूटना है। ईंधन और खाद महंगी होने से किसानों की लागत बढ़ गई है, जिसका बोझ कंज्यूमर्स पर आएगा। रिपोर्ट बता रही है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ी है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वेजिटेबल ऑयल की कीमतें मार्च के मुकाबले करीब 6% तक बढ़ गई हैं। मीट के दाम में 1.2% का इजाफा हुआ है, जो अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। अनाज की कीमतों में भी करीब 1% की तेजी दर्ज की गई है। खतरा केवल आज का नहीं, आने वाले कल का भी है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव 3 महीने से ज्यादा खिंचा तो साल के आखिर तक दुनिया को बड़े फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। खराब मौसम और गेहूं की कम बुआई ने आग में घी डालने का काम किया है। खाद महंगी होने की वजह से किसान ऐसी फसलें तलाश रहे हैं जिनमें खर्च कम हो। भारत के रिटेल मार्केट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार अप्रैल में महंगाई अगस्त 2025 के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है। जरूरी इस्तेमाल के 20 में से 16 सामानों की कीमतों में भारी उछाल आया है। खाने के तेल और टमाटर जैसी बेसिक चीजों के दाम 36% तक बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट की इस हलचल का असर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के सामानों यानी FMCG प्रोडक्ट्स पर भी पड़ने वाला है। ताज़ा रिपोर्ट्स बता रही है कि HUL, डाबर और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कॉफी, कोको और पाम ऑयल जैसी कच्ची सामग्रियों की कीमतें बढ़ने से कंपनियों पर दबाव है। आने वाले महीनों में साबुन, शैम्पू और बिस्किट जैसे पैकेट बंद सामान 3-5% महंगे हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में डिमांड पहले से कम है, ऐसे में बढ़ती कीमतें मुसीबत और बढ़ाएंगी। साफ है कि कच्चा तेल और पाम ऑयल महंगा होने से फिलहाल तो राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यानी युद्ध की आग लगती तो केवल सरहदों पर है, लेकिन उसकी आंच आम आदमी की थाली और महीने के बजट तक पहुंच जाती है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
0: नमस्कार रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 48 घंटे यहां अगले 48 घंटे दुनिया भर पर भारी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। चीन के दौरे के तुरंत बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान पर अमेरिका को सिर्फ महज 75% ही टारगेट हासिल कर पाया है और अपनी जीत के लिए वो जल्द नए हमलों का ऐलान भी कर सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पूरे दौरे के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि अगले 48 घंटों पर अमेरिका तैयारियों के बाद एक बार फिर से ईरान पर नए और घातक हमले कर सकता है। लेकिन रणभूमि स्पेशल में और भी बड़ी खबरें होंगी जिनका जिक्र हम करेंगे। रणभूमि स्पेशल में आज दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों पर हम जो हमारी नजरें होंगी उस पर आप जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम आप बताएंगे कि अमेरिका ईरान तनाव में भी जानकारी देंगे। वहीं उसके बाद विदेशी दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड में वैश्विक मंच की बात भी करेंगे। रणभूमि स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि चीन से लौटने के बाद ट्रंप का ईरान पर हमले का प्लान क्या है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रणभूमि स्पेशल में एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि कब हॉर्मूज को लेकर अमेरिका आर पार के मूड में आ चुका है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा जारी है जिसे खोलने के लिए ट्रंप कोई खतरनाक ऑर्डर दे सकते हैं। रणभूमि स्पेशल में आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि चीन प्रस्ताव वास्तव में ईरान के साथ खड़ा है या फिर ईरान को धोखा देने की तैयारी में। यह सुगबुगाहट ट्रंप के चीनी दौरे के बाद लगातार बढ़ गई है। रणभूमि स्पेशल में एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि गाजा में इसराइल ने फिर से हमले कर दिए और दावा किया जा रहा है कि गाजा में उसने हमास के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। रणभूमि स्पेशल में एक और बड़ा अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे नीदरलैंड्स में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया और भारत को विकास गाथा पर भी जोर दिया। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। मेजर जनरल विशंबर दयाल सर हमारे साथ जुड़े होंगे। इसके अलावा विदेशी मामलों के जानकार एक्सपर्ट रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। जी हां, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड दौरे में जहां अब से कुछ देर पहले उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार जानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिसमें उन्होंने मुलाकात भी की और वहां मौजूद भारतीयों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेग में प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण भी दिया और उनको संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियां भी गिनाई जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो किस गर्मजोशी के साथ किस शानदार जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे और भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास इंजन के साथ साथ भारत ने पिछले कई समय से क्या प्रगति की है इसका जिक्र भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी 16 मई का खास जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन भारत में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे और वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
3: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के राजनीतिक सफर, यानी उन्होंने मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 25 साल का जिक्र भी किया। इसके साथ ही भारत की विकास गाथा का जिक्र भी संबोधन के दौरान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया जाता है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का वो खास हिस्सा।
0: आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने।
1: नीदरलैंड को यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है और भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो नीदरलैंड वो ऐसी कंट्री है जो लगातार भारत में एफडीआई के तहत चौथी सबसे बड़ी निवेशक है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम मानी जा रही। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान तनाव को लेकर, बड़ी खबरों को लेकर, जहां से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अमेरिका का ईरान पर फिर से हमला करने का प्लान तैयार कर लिया जा चुका है। जी हां, खुद डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर चुके हैं कि अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन ईरान में कभी भी शुरुआत की जा सकती है। चीन के दौरे से निकलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक और दौर शुरू होने वाला है। आपको ट्रंप का सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं।
2: But we're sort of finished militarily pretty much. But we, you know, David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. And by the way, and more than that. Yes.
1: ऐसा नहीं है कि ये संकेत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से आ रहे हो, ये संकेत इजराइल से भी आ रहे हैं। इजराइल से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि ट्रंप ईरान पर सीमित हमले के लिए सहमत हो चुके हैं और उनका ऑर्डर कभी भी जारी किया जा सकता है। इजराइल का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से लौटने के बाद ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। इजराइल सुरक्षा बलों और अमेरिकी केंद्रीय कमान के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी और इसी बैठक में सभी संभावनाओं को रिव्यू किया गया, प्लान को ओके कर किया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को इस प्लान के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद अमेरिका जल्दी नए फेज ऑफ ऑपरेशंस के ऐलान कर सकता है। ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, अपने परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से ये हमले किए जा सकते हैं। और देखिए, आपको यह भी बता दें कि लगातार ये ऑपरेशन सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ना सिर्फ उनके बिजली संयंत्रणों पर, उनके परमाणु इंस्टॉलेशंस पर, यानी इनरिच जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं उन पर, बल्कि जो ईरान की जो आप कह सकते हैं ऑयल लाइफलाइन है उस पर भी टारगेट किए जा सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिसमें अमेरिकी दूतावास पर अब इसराइल में तेल अवीव में अमेरिकी नागरिकों को तत्काल निकलने के निर्देश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ईरान से युद्ध शुरू होता है तो फिर से तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकलने के आदेश दिए जा सकते हैं। इसी आशंका को लेकर अमेरिका से बड़ा फैसला लेने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, हम आपको दोनों चीजें बता रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चीनी दौरे के बाद लगातार इसका जिक्र किया, प्रेस के साथ ये बात कही कि देखिए 75% से ज्यादा उन्होंने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया है, लेकिन अब भी कुछ ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना या फिर उनको ऑब्टेन करना अब बाकी है। इसके बाद इसराइल से भी खबर आई और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अमेरिका अपने दूतावास से ये जारी कर सकता है एडवाइजरी कि अमेरिकी नागरिक जो तेल अवीव में मौजूद है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। और इन तमाम बड़ी खबरों के बीच ये सवाल उठ रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह क्यों नहीं हो पा रही। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार ईरान की तरफ से कौन कौन सी ऐसी 5 शर्तें थी जिसे अमेरिका ने मानने से इंकार कर दिया और इसकी पुख्ता जानकारी खुद तेहरान टाइम्स ने दी है कि देखिए सभी मोर्चों पर चल रहा युद्ध बंद हो। सबसे और महत्वपूर्ण जो शर्त ईरान की तरफ से अमेरिका को रखी गई थी कि देखिए सभी मोर्चों पर, यानी सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर नहीं, लेबनन के अंदर या इधर उधर के इलाकों में सारी जगह से अमेरिका अपने जो वॉर है उसको रोके, ईरान पर लगी सारी पाबंदियां हटाई जाए, यानी सैंक्शंस की बात की जा रही है। 1200 से ऊपर के सैंक्शंस हैं, जिन सभी सैंक्शंस को हटाने की बात ईरान इस समय कर रहा है और फेज वाइज तरीके से हटाने की बात कर रहा है। अब तीसरी बड़ी शर्त क्या थी वो भी आपको बताते हैं। ईरान की जब्त संपत्ति रिलीज की जाए, यानी जो एसेट्स हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका में सबसे ज्यादा अमेरिका में 52 बिलियन के करीब इनके एसेट्स हैं जो सिर्फ अमेरिका में। ईरान का कहना है कि कम से कम अमेरिका मिडल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका में जो सीज प्रॉपर्टीज है उनको रिलीज करे। चौथी बड़ी शर्त क्या है, ईरान को युद्ध से नुकसान का मुआवजा मिले। ये बात ईरान लगातार कहता है कि हमको जो हमारे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को इसराइल को करनी पड़ेगी। ये चौथी बड़ी शर्त। या पांचवी बड़ी शर्त, हॉर्मूज पर ईरान के संप्रभु अधिकार को मान्यता मिले, यानी पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है, ये बात अमेरिका और इजराइल एक्सेप्ट कर ले। और इन्हीं पांचों शर्तों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है, यानी आप मानिए कि ईरान की उन तमाम शर्तों को अमेरिका ने मानने से इंकार कर दिया जो कह रहे थे कि इन्हीं शर्तों के बेसिस पे शायद शांति बहाली हो सकती है। अभी आपने देखा कि ईरान ने अमेरिका के सामने कौन सी पांच शर्तों को रखा था, लेकिन अभी तेहरान न्यूज की तरफ से एक और बड़ी खबर मिल रही है कि ईरान के सभी पांच प्रस्तावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया। हम आपको बता रहे थे कि देखिए तेहरान टाइम्स की तरफ से यह जानकारी दी गई ये कि ये सारे प्रस्ताव अमेरिका ने मानने से इंकार कर दिए हैं।

0: आपने खूब मारा जो मार सकते थे आपने, और आप उसके बाद आपने ब्लॉकेट भी लगा दिया, लेकिन ईरान अपने कुछ बलबूते पे लड़ाया, और वो बलबूता उसका, उसकी मिसाइल पावर है, उसकी ड्रोन पावर
1: बिल्कुल।
0: है, और मैं समझता हूँ ड्रोन पावर में वो काफी हद तक सेल्फ सफिशियंट है, और मिसाइल तो उसकी 1980s में चाइना तो जब उभरा भी
1: और
0: था जब
1: शायद
0: इन्होंने
1: शायद सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद अमेरिका को यह अंदाजा लग गया कि देखिए इसको पार पार पाना तो मुश्किल है, क्योंकि यह ताकत तो हम कितना भी लंबी लड़ाई लड़ सकें हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। रविंदर सचदेव सर, मैं आपको इसी प्रश्न से दूसरे एंगल से पूछना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप गए थे चीन इस बात को, चीन को प्रेशराइज करने के लिए कि आप ईरान को मनाइए, चीन ने मना कर दिया और फिर उनके पास एक ही विकल्प बचा कि अब आपको दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने पड़ेंगे। क्या ये मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो ईरान को बातचीत के लिए नहीं मना पा रहे, इसलिए एक बार फिर से मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ वो जा सकते हैं?
2: देखिए, जहां तक रही बात चाइना की, जनरल यार सही कह रहे हैं, पर मेरा उसी के आगे मैं बात बढ़ाता हूँ। भाई कोई किसी देश को फेवर क्यों करेगा? अगर ये कहते हैं आप ईरान को मदद मत करो, तो चाइना ये कहेगा ना कि आप ताइवान को मदद मत करो,
1: हाँ
2: राइट?
1: बिल्कुल,
2: तो वो गिव एंड टेक होता है, तो इसलिए अभी चाइना का अलग रखिए। जहां तक बात है ईरान को लेकर के, देखिए अगर ये अटैक करते हैं दोबारा, तो ये इंडिकेट करता है एक, इनका इकोनॉमिक ब्लॉकेट काम नहीं करा। भाई जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट अमेरिका का था, तो उसका पर्पस यही तो था कि ईरान की इकोनॉमिक कमर तोड़ दो, ताकि ईरान टेबल पे आए और बोले मैं हाथ खड़े कर दिए। वन सेकेंड, इनकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी जिसको मैं कहता हूं पेट्रो कैनिबलिज्म, जिसमें था कि हमने ब्लॉकेट करा हुआ है, ईरान तेल पंप किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है, उसकी स्टोरेज भर गई है, और जब स्टोरेज इतनी भर जाती है तो वो फिर वापस ऑयल वेल्स को बर्बाद कर देती है ओवरफ्लो करके। इसका मतलब वो भी नहीं हुआ अभी तक, पेट्रो कैनिबलिज्म। तो ब्लॉकेट काम नहीं कर रहा है, शायद शायद का दिख रहा है अगर ये वॉर में जाते हैं, पेट्रो कैनिबलिज्म काम नहीं कर रहा है। तीसरी बात, अगर ये अटैक करते हैं, मुझे एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है, अब की बार हो सकता है अब की बार इनके साथ यूएई भी आए के, क्योंकि खबरें आ चुकी हैं कि जो फर्स्ट फेज था उसमें यूएई बल्कि सऊदी भी था, राइट? उन्होंने भी अटैक किए थे, उनकी एयरफोर्स वगैरह ने। अब ये जो राउंड होता है, हो सकता है इसमें अमेरिका तो करेगा ही करेगा, इसराइल तो करेगा ही करेगा, बट हो सकता है कि यूएई भी खुल के या ज्यादा करे,
1: सामने आ
2: क्योंकि
1: जाए।
2: ये जो अटैक होगा इसमें ईरान अगर रिटेलिएट ऑब्वियसली करेगा, सबसे ज्यादा बर्बादी वो जो होगी इधर गल्फ की कंट्रीज में होगी। अभी आप बता रहे हैं कि वो शायद उनकी पेट्रो और ऑयल लाइफलाइन को बर्बाद करेंगे, तो ईरान जितना हो इनकी डीसैलिनेशन, वाटर
1: बिल्कुल,
2: प्लांट्स, ऑयल प्रोडक्शन, तो ये बहुत ही तबाही वाला टाइप होगा। बट एक और चीज है जो आप कह रहे हैं, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अगर ये लिमिटेड स्ट्राइक करते हैं, तो लिमिटेड स्ट्राइक करके ये क्या कर लेंगे जो इन्होंने अभी तक नहीं कर पाए,
1: और सर बार
2: राइट?
1: बार वही लिमिटेड स्ट्राइक्स उसी तरीके के पैटर्न पे। विशंबर दयाल सर, आप तो इन चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं, आप समझते हैं रशिया की भी स्ट्रेटजी, आप रशिया में डीए के तौर पर काम कर चुके हैं, आप लगातार चीन की चीजों को भी समझते हैं। अभी अगर देखा जाए कि अभी तक अमेरिका और सिर्फ इसराइल मिलकर लड़ रहे थे, अब मिडिल ईस्ट के देश, यूएई खासतौर पर, यहां तक कि फ्रांस से भी खबरें आई, फिर कहा गया कि देखिए कई और यूरोप के देश जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, अगर ये सारी ताकत मिल भी जाए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा पाएंगे? क्योंकि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही बना हुआ है।
0: देखिए दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, लेकिन ईरान भी तो कह रहा है कि आप ब्लॉकेट क्यों लगा रहे हैं, आखिर जब आप ब्लॉकेट लगाते हैं तो उसमें भी मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है ना, और मसल पावर से नहीं। देखिए आप सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एज ए पैसेज ऑफ शिप्स देख रहे हैं, आप पैसेज ऑफ कम्युनिकेशन भी तो देखिए, दुनिया की जो अंडरग्राउंड, जो अंडर सी कम्युनिकेशन लाइन है वो यहीं से तो जा रही है। तो ईरान तो जब मरता क्या ना करता कुछ भी तबाही कर देगा,
1: बिल्कुल
0: और मैं मुझे मुझे पूरा ये है कि अगर इसमें खुल के यूएई और कतर और ये सब होंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा
1: ज्यादा
0: यूएई का
1: होगा।
0: होगा, ईरान का होगा, और ये चाहता है, और ये तमाशबीन इसका पूरा का पूरा इसराइल रहेगा, वो चाहता है ये मार एक दूसरे को तबाह कर ले, इनके पास है
1: बिल्कुल
0: ही क्या,
1: विशंबर सर, बात तो यही है कि देखिए इस
0: तेल
1: जंग
0: के सिवाय
1: में,
0: इनके पास कुछ है ही नहीं, और
1: बिल्कुल
0: अगर ये
1: सर,
0: उसी को तबाह कर देते तो ये तो सब कंगाल है, फिर तो वैसे इसराइल मतलब डोमिनेंट फोर्स है, तो इनको थोड़ा सा समझदारी
1: बिल्कुल
0: बरतनी
1: सर, माफ
0: पड़ेगी।
1: कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे युद्ध में, इस पूरे कंफ्लिक्ट में सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को मिल रहा है, तमाम देश लगातार अपने आर्थिक रूप से अपने इस बोझ को झेल रहे हैं, लेकिन इसराइल को उसके स्ट्रेटेजिक असर्ट या फिर आप कह सकते हैं उसको उपलब्धियां इस मामले पर मिलती जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको रणभूमि में बताएंगे कि आखिरकार कैसे यह जंग आने वाले 48 घंटे के बाद और ज्यादा विध्वंसक होगी।
3: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
5: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: Character, the taste of success.
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
16: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
20: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छोड़ दिए अपने फॉरेन ट्रिप पर, और कितने ने हो इस वक्त, कितने ने प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड गए हुए ने, मेरे ख्याल जाकर तीन चार मुल्कों का होर दौरा है। लोगों को मना करके आप चले जाते हैं, हर एक चीज तुम शट डाउन कर दो, सोना ना खरीदो है जी, विदेश यात्रा ना करो, घरों काम करो, प्रधानमंत्री घरों काम कर ले, प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना। ये सिर्फ लुकाउन वाली गल्लां ने, 3 रुपए लीटर तेल का रेट बढ़ाता, डीजल का, पेट्रोल का, ठीक है ना, ताकि बस प्रधानमंत्री ने कहता तो शुक्र है, हजे थालियां ते तालियां नहीं कहा है ना, हो सकता कोई होर जादू टूना करन कह देना भी इदा करया करो। सो देश नू चलाउणा है जी, असीं तां बिशप गुरु बनना सी, बिशप चेले बना के रखते, जंग किते होर लगी है, पाबंदियां साडे मुल्क च लगी जांदियां, होर किसे मुल्क च क्यों नहीं लगियां, नेपाल च क्यों नहीं कीता इदां, यही गल्लां किसे होर मुल्क दे विच क्यों नहीं होईयां, क्योंकि तेल मुक गया उदों इलैक्शनां वेले अनाउंस नहीं कर सकदे सी, हुण इलैक्शनां हो गईयां, हुण तूं कौन ते मैं कौन।
9: कुछ लोग बोल रहा है वार सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है, तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वार सिचुएशन चल रहा है, 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को, 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है। और दूसरा, स्टेट में ये जो अपोजिशन था,
10: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तो तबड़क तबड़क
1: थोड़ा नहीं तबड़ा है।
0: अरे आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, यह आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी रहेंगे। थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी जोर।

चीफ उपेंद्र त्रिवेदी की पाकिस्तान को दो टूक, आतंकियों को पनाह देने से बचे पाकिस्तान, वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे की दिल्ली से गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने मांगी 14 दिन की रिमांड। दिल्ली में शिक्षा मंत्री के घर तक कांग्रेस का मार्च।

पथराव के बाद तनाव, अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। गौशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीरें ले जाने से रोका। आज तक के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।

0: रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या अमेरिका ईरान के खार्क द्वीप पर हमला करने वाला है? जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका अगले कुछ दिनों में ईरान के खार्क द्वीप पर हमला कर सकता है और उसे अपने कब्जे में ले सकता है। ये दावा अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु संसाधनों को भी निशाना बना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है कि देखिए, खार्क द्वीप पर लगातार अमेरिका की नजर पहले भी थी और माना यह जा रहा है कि इसी द्वीप पर अब अमेरिका नए हमले करेगा। इस द्वीप को ईरान के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि यहां पर 90% से ज्यादा ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट इसी द्वीप से किया जाता है। इसके अलावा यहां पर कई ऐसे स्टोरेज पंप्स भी है या फिर फैसिलिटीज भी है जो ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट यह मिल रहा है जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एक ट्रेनर AK-47 के सबसे अहम बुनियादी बातों को लेकर ऑन स्क्रीन यानी टीवी पर समझाते हुए नजर आया। दरअसल इसके उपयोग के तरीके के बारे में वो लगातार टीवी पर लोगों को ये जानकारी साझा कर रहा था। ये वीडियो एक ईरानी टेलीविजन ने ब्रॉडकास्ट किया है और लगातार एक लाइव टेलीविजन चैनल के दौरान ये AK-47 के उपयोग, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में जानकारी देता हुआ दिखा। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि इस समय ये डिबेट चल रही थी कि ईरान और यूएई के रिलेशनशिप को लेकर, लगातार उनके बीच में बढ़ती तल्खियों को लेकर, और ये कहा गया कि अगर ईरान और यूएई के बीच में भी अगर जंग के हालात बनते हैं तो फिर उसके लिए आम लोगों को कैसे तैयार रहना है, इसके लिए ये परीक्षण आम लोगों को दिया जा रहा था। और इसी बीच प्रेजेंटर भी जो है, यानी जो न्यूज प्रेजेंटर था, वो भी इसकी जानकारी लोगों तक साझा करता रहा लाइव टेलीविजन के दौरान। AK-47 के उपयोग के बारे में यह जानकारी दी जा रही थी। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रस्तावित यानी कभी भी बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप का एक प्रस्तावित सैन्य बजट भी सामने आया और माना जा रहा है कि ये बजट इतना ज्यादा है कि 35 देशों के रक्षा बजट के बराबर इसको माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का रक्षा विभाग $1.5 trillion का बजट पेश कर रहा है, लेकिन कई अमेरिका के लोग या पार्टीज उसका विरोध कर रहे हैं। इसे बहुत खर्चीला माना जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि यह अगर ज्वाइंट किया जाए या फिर इस पूरे रक्षा बजट को देखा जाए, जो प्रपोज बजट है, तो वो चीन, रूस और अन्य देशों के सहित करीबन 35 देशों के संयुक्त सैन्य बजट के बराबर होगा। दरअसल ईरान के साथ लंबी जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनको लगता है कि खजाने के अंदर किसी तरीके की कमी ना हो तो रक्षा बजट के अंदर बड़े बदलाव किए गए और इस रक्षा बजट को $1.5 trillion का बताया जा रहा है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि अमेरिकी नेवल सेना की मौजूदगी कहां कहां पर स्थित है और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय जब हम बात कर रहे हैं कि अभी के ताजा हालातों में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के बाद नई सैन्य कार्रवाई के ऊपर जोर देते हैं, तो ऐसे में अभी अमेरिका की प्रेजेंस कहां कहां पर है। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस समय यहां पर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है अमेरिका के। सबसे पहले अगर बात करें USS अब्राहम लिंकन, जो गल्फ ऑफ ओमान में सबसे पहले आकर तैनात किया गया था, उसके बाद अगर आप देखें जो इस तरफ इलाका है यानी जो इसराइल की तरफ का है, यहां पर भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रैंड आर्टफोर्ड मौजूद है। अब उसके बाद USS अब्राहम लिंकन के पास USS जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये भी लगातार यहां पहुंच चुका है। USS त्रिपोली जो डिस्ट्रॉयर है उसका, इसको छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, इसमें भी करीबन 2500 से 3000 मरीन्स रहते हैं। USS मिलेनियस भी एक डिस्ट्रॉयर यहां पे तैनात किया गया है। USS जॉर्ज फिन डिस्ट्रॉयर, यानी अगर आप देखें यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका, यानी यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और जब हम गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आते हैं तो यहां पर अमेरिका की मौजूदगी कैसी है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह अगर सैन्य तैनाती, अगर अमेरिका इनको पुल बैक नहीं कर रहा है, यानी अगर इनको पीछे नहीं हटा रहा है और यहां पर लगातार री इन्फोर्समेंट भेजे जा रहा है, तो इसके पीछे का मकसद साफ है कि अमेरिका लंबी जंग की तैयारियों में है। और शायद इसी वजह से जो पहले हमने खबर आपको दिखाई थी, वो इसी अंदाजे को आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब आर्थिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो इस जंग को अगर लंबा खींचता है तो फिर उसे और ज्यादा पैसे की और ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत होगी। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब अपने रक्षा बजट के अंदर बड़े बदलाव करना चाह रहे हैं, उनको अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। और ये तैनाती कोई 2-3 हफ्ते की नहीं, ये लंबी तैनाती हो सकती है, शायद इसी वजह से इनको पीछे नहीं खींचा जा रहा, इनको लगातार और ज्यादा बढ़ाया जा रहा। अब एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है, लेकिन इस बीच ईरान से भी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अब दावा किया है कि अमेरिका अब नई विश्व व्यवस्था का केंद्र नहीं बचा है। देखिए लगातार ईरान जो है वो अमेरिका की सुप्रीमेसी को लेकर टारगेट कर रहा है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं बची है, ईरान ने उसको असली चेहरा, उसकी असली ताकत उसको दिखा दी। पूर्व IRGC के प्रमुख कमांडर मोहसिन रेजाई का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान से जुड़े अपने ही द्वारा पैदा किए गए संकट को सुलझाने में चीन से मदद की अपील की गई, यानी वो चीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, और यही वजह है कि अब अमेरिका की वो सुप्रीम पावर वाली इमेज हट चुकी है, उसकी ऐसी इमेज अब नहीं बची है। अब देखिए ये खबरें लगातार मिलती आई है कि ईरान को चीन सैन्य मदद कर रहा है। इसकी पूरी डिटेल आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हम आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों ये बार बार दावा किया जा रहा है कि जो ताकत है उसके पीछे चीन मौजूद है। सबसे पहले ईरान से हथियारों की बिक्री पर चीनी कंपनियों की बात, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है। आखिरकार चीन कैसे मदद कर रहा है ईरान की? अब ये तो सारी बातें हैं कि ये कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों को भेजने की भी खबर है, यानी जो आप कह सकते हैं जो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं उनकी भी तैनाती है। ये तब होता है जब मिसाइल जो है या फिर जो आपके आपके एयर स्पेस के अंदर कोई आपके एयर स्पेस में घुसा है, तब इनका इस्तेमाल किया जाए। कम ऊंचाई वाले विमानों को मार गिराने में सक्षम रहती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगातार इसराइल और अमेरिका ये दावा कर रहे थे कि ईरान के जो एयर स्पेस है उनकी सुप्रीमेसी, और ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए इन मिसाइलों का लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हथियारों की दूसरी खेप भी भेज सकता है चीन। देखिए डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो चीन को मनवाने के लिए कि आप ईरान को मदद ना दीजिए, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसी वजह से इन खबरों की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से की जा रही है। दूसरे देशों के जरिए हथियार भेजने की योजना भी है, यानी वाया रूट। हमेशा ये देखते हैं आप कि स्मगल किए हुए हथियार वाया रूट से ही पहुंचते हैं, लेकिन ईरान के पास ये आप कह सकते हैं ईरान ऐसा पहले भी करता है। ईरान को भेजे गए हथियारों की तादाद साफ नहीं है कि आखिरकार कितनी संख्या में कितने बड़े कंसाइनमेंट ये हो सकते हैं। सैन्य सहायता के स्रोतों को छिपाने की प्लानिंग की जा रही है और ये वाया रूट इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप एक दूसरी कंट्री में अपना कार्गो भेजिए, वहां से वाया होते हुए वो ईरान पहुंचेंगे, या फिर लैंड बॉर्डर्स की मदद से लगातार वो ईरान भेजे जा सकते हैं। अब लगातार हम आपको ये तमाम बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त ईरान अमेरिकी नाकेबंदी से घिरा हुआ है। ऐसे में ईरान के सामने क्या क्या वैकल्पिक विकल्प है, यानी ऑप्शंस क्या है, आपको एक बार फिर से LED स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कर सकता है ईरान। अब पाकिस्तान और तुर्की में से ट्रकों के सामान की आवाजाही की जा सकती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से 6 रूट्स खोले गए थे, यानी ईरान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं ये अफगानिस्तान है, और यहां के इन रूट्स को खोला गया था और माना जा रहा था कि ईरान पाकिस्तान से अपने नए रूट्स को खोलने के पीछे का मकसद यह है कि वो साजो सामान वहां से मंगवा सके। अब दूसरा तुर्की का रूट, तुर्की के साथ भी ईरान की आप कह सकते हैं बॉर्डर्स लगते हैं और रूस से कैस्पियन सागर के रास्ते भेजे जा सकते हैं, यानी अगर रूस को मदद करनी हो, चीन को मदद करनी हो, तो चीन इस रूट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से, यानी ऊपर से अगर आप देखें सीपेक जहां से जाता है, यहां से आप ईरान भेजे जा सकते हैं, और उसके बाद फिर अगर ऊपर से अगर आप देखें कैप्सिकन सी की तरफ से तुर्की के लैंड बॉर्डर्स में भेजकर वो ईरान साजो सामान भेजा जा सकता है। अब मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इसके पीछे चीन और रूस की स्ट्रेटजीज है। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि चीन ने तेहरान तक या फिर एक और इंपॉर्टेंट अपने सीधे रेल लिंक लगातार ईरान के साथ एस्टेब्लिश कर लिए थे। कुछ समय पहले उन्होंने करीबन 22 कंटेनर से ज्यादा बड़ी एक ट्रेन को सीधे तौर पर ईरान भी भेजा था, और माना जा रहा है कि यही रेल रूट ईरान के लिए एक बड़ी उपलब्धि या संजीवनी भी साबित हुआ, क्योंकि इसी रूट से लगातार चीन ने कई साजो सामान ईरान को भेजे थे। अब कराची बंदरगाह पर 3,000 कंटेनर मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान की ऑप्शन है। आपको क्यों बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के रास्ते भी अगर चीन ने यहां तक सामान भेजा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से फिर वो ईरान के पाकिस्तान के रूट से ईरान भी जा सकता है। कराची पोर्ट भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कराची या फिर आप कह सकते हैं कि इन रूट्स को वहां से वो चाबहार या दूसरे रूट पर भेजा सकता है। कराची से ईरान जा सकते हैं जहाज, यानी यहां से आपने अगर यहां पे सामान भेजा तो यहां से वो लैंड रूट से या सड़कों के रास्ते वो इन इलाकों से अपने साजो सामान को भेज सकता है। देखिए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से ईरान को एक डेडलॉक कर दे, यानी समुद्र के रास्ते उसने अपने बैरिकेड्स लगा दिया, ब्लॉकेट लगा दिया, और जमीनी तौर पर भी कोई देश उसकी मदद ना करे तभी वो ईरान को प्रेशराइज कर सकता है। लेकिन ईरान लगातार अपने अपने अपने आप कह सकते हैं कि अपने अपने अपने साथी देशों के लिए, अपने साथी देशों से, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ईरान चीन हो, इनसे मदद के लिए नए रूट तैयार पहले ही कर चुका था। और शायद इसी वजह से ये अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विशंबर दयाल सर। सर क्या अभी, क्योंकि हम ईरान की ताकत को समझ गए, करीबन 40 दिन के युद्ध में हमने देख लिया कि अमेरिका ने पूर जोर कोशिश कर ली, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर नहीं टिका पाए। लेकिन अगर वो चीन को प्रेशराइज करे या फिर रूस को प्रेशराइज करे या दोनों की तरफ से लगातार इन लैंड रूट्स को खोल दिया जाए, क्या अमेरिका के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी इन ऑपरेशंस में?
1: देखिए, अभी अमेरिका की जो ब्लॉकेड है, अभी सिर्फ ब्लॉकेड इफेक्टिव, बाकी ईरान पर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं। और मेरा मानना यह है कि चाहे कोई परमिट करे ना करे, पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ देन लेन होएगा इस टाइम पे, पाकिस्तान और ईरान और तुर्की के बीच में। आखिर पॉपुलेशन बहुत कॉमन है, उनके इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान कॉरिडोर को यूज कर सकता है आप, जो आज के दिन किसी को भी ध्यान नहीं है। आर्मेनिया शायद ना करे, क्योंकि आर्मेनिया आजकल अमेरिकन काफी इन्फ्लुएंस के नीचे है। तो और कैस्पियन सी के थ्रू रशिया और ईरान के बीच में ट्रेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली एक अमेरिका एक वे आउट देख रहा है यहाँ से, एक इज्जत के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ डोनाल्ड ट्रंप चले जाए, जो उनकी छवि है, जो उनकी, जो उनका दबदबा है दुनिया में, वो बना रहे, और बैक होम उनको जो है वो अनपॉपुलर ना हो कि वो मिट्टम हार जाए। उनके दो मकसद है, किसी तरह से अमेरिका की छवि इतनी खराब ना हो जाए कि अमेरिका एक सुपर पावर की बजाय दुनिया में कोई बॉदर ही ना रहे, राइट, जो कि हो सकता है अगर ये ब्लॉकेट चलेंगे, अगर आप फिर से लड़ाई स्टार्ट कर देंगे, दुनिया में तबाही तो होगी ना, ये रीजन में तबाही होगी, गरीबी आएगी दुनिया में, इन्फ्लेशन आएगी, तो कौन, कितने दिन अमेरिका के लोग गीत गाएंगे, गीत मतलब अमेरिका अमेरिका करते रहेंगे। आखिर ये एक मैं समझता हूं एक बहुत ही दलदल में फंस चुका है अमेरिका, अब एक रास्ता ढूंढ रहा है, उसमें कोई उसकी मदद नहीं करेगा। बेस्ट ऑप्शन उसके लिए ये है कि प्रेजेंटली मेजर दो तीन चीजों पे एग्रीमेंट करके और यहां से निकल जाए, और टाइम बाउंड। ईरान भी कोई ऐसा नहीं है कि ईरान ने यहां पे, देखिए टू फ्रंट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, एक अमेरिका और ईरान की, और एक ईरान एंड अदर गल्फ कंट्रीज की, जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके बीच में भी तो एक सुलह, एक लंबे दौर के लिए एक समझौता होना चाहिए ना। तो ये जो है दुनिया को, ये यही एक दुनिया को बचा सकता, वरना इन्फ्लेशन होगी।
0: रविंदर सर, सर हमारे साथ रविंदर सर भी मौजूद हैं। रविंदर सर, हम तमाम बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, देखिए अमेरिका को ये नुकसान हो गया, अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी खोल दी, लेकिन अमेरिका ने एक चीज अचीव की है जिसको हम शायद भूल रहे हैं, वो ये है कि जो क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी मिडिल ईस्ट के देशों की, खासतौर पर ईरान के साथ में, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, वो अब खत्म हो गए। वो ऐसा लगता है कि अगले 15 साल 20 साल वो होने वाली नहीं है दोबारा, और शायद अमेरिका को यही चाहिए था कि वो डर बरकरार रहे मिडिल ईस्ट के देशों में, तभी तो उसकी सुप्रीमेसी या फिर उसकी जो डिफेंस सेक्टर्स है वो उन इलाकों में अपने साजो सामान को बेच सकेंगे।
2: तो बिल्कुल सही, प्लस उसके साथ इसके द्वारा यह हुआ है कि गल्फ के देशों में आपस में दुश्मनी बढ़ गई है। सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स की बीच में दुश्मनी खुल के सामने आ रही है। अरब एमिरेट्स ने ओपेक छोड़ दिया, जो कि सऊदी डोमिनेटेड है, दुनिया भर की ऑयल कार्टेल की प्राइस डोमिनेट करता है। एमिरेट्स और सऊदी के डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल भी। येमन में ये लोग दोनों अलग अलग रूप से सपोर्ट करते हैं, सूडान में अलग अलग रूप से सपोर्ट करते हैं, सोमालिया में अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, सोमाली लैंड को एमिरेट्स करता है। एमिरेट्स जो है इस समय ज्यादा तेजी से इजराइल के निकट जा रहा है। ओके, सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ है, पर इतना खिलाफ नहीं भी है। तो इस पूरी जो ये हो रहा है इसके आने वाले वक्त में, केवल यही नहीं कि ईरान से डिफरेंसेस बढ़े हैं, एमिरेट्स के अंदर भी आपस में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दैट इज अ बिग वन आल्सो व्हिच इज हैपनिंग। जहां तक बात रही दूसरी और चीजें,
0: बात यही कही जाती है, देखिए माफ कीजिएगा आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सही बात यह है कि देखिए जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती है, जब भी युद्ध आता है, तो एक ऐसे डायनामिक्स को, एक नए ऐसी चीज को जन्म देता है जो दशकों तक सुधारा नहीं जा सकता। शायद इसी युद्ध के बाद यह भी आशंका की जा रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में समीकरण बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
9: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
10: पश्चिम एशिया क्षेत्र युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जब से जब शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रैटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, यह आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी, थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी जोर। आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी की पाकिस्तान को दो टूक, आतंकवादियों को पनाह देने से बाज आए पाकिस्तान, वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, पुणे की लेक्चरर मनीषा मंदारे की दिल्ली से गिरफ्तारी, कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने मांगी 14 दिन की रिमांड, दिल्ली में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने पर फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव, अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। गौशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीरें ले जाने से रोका, आज तक के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू सभ्यता के प्रतीक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश के सामने आई महंगाई की चुनौती और जनता की तैयारी को लेकर होगा। ईरान की जंग के कारण भारत की इकोनॉमी पर संकट के बादल घिर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद देश में कुछ लोग एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करने को तैयार दिखते हैं, तो ज्यादातर लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में न जाने क्या मुसीबतें देखने पड़ेगी, इसका कोई अंदाजा जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जब से पीएम की काफिलों की कारें कम हुई है, मंत्री, सांसद, विधायक, राज्यपाल किफायती कदम उठाने लगे हैं, कोई रिक्शा में चल रहा है, कोई साइकिल पर चल रहा है, कोई पैदल चलने लगा है, तो जनता कहीं ना कहीं सहम गई कि पता नहीं पेट्रोल डीजल मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलने की शिकायतें आने लगी। ऊपर से जब 15 मई को तेल और सीएनजी के दाम बढ़ गए तो लोगों में आशंका और बढ़ गई। ऐसे में देश की जनता इस वक्त क्या सोच रही है? जनता की नब्ज टटोलने वाला एक स्नैप पोल सर्वे हमने करवाया। सी वोटर का यह स्नैप पोल देश भर में 14 मई को 1563 लोगों के बीच किया गया है, जिसमें मार्जिन एरर प्लस या माइनस 5 का हो सकता है। हमने देश के सभी क्षेत्र, वर्ग, आयु, लिंग, शिक्षा, राजनीतिक रुझान वाले लोगों से सवाल पूछे हैं। वो सवाल और उनके जवाब हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद जनता इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है। पहला सवाल जो हमने पूछा, डॉलर बचाने के लिए एक साल तक सोना नहीं खरीदने और तेल बचाने की अपील पर क्या कहेंगे, यह सवाल पूछा गया था। 52% लोगों ने, करीब 52.3% लोगों ने कहा हमारा पूर्ण समर्थन है। कुछ हद तक हम इससे सहमत है कहने वाले 14.9% लोग थे। पूरी तरीके से असहमत है ये कहने वाले 25.2% लोग थे। और पता नहीं क्या अपील की है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम क्या करेंगे, पता नहीं कहने वाले भी 7.5% लोग। दूसरा सवाल जो विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि इतनी देरी क्यों की गई, टू लिटिल टू लेट, ये जो आरोप लगाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने तक सरकार ने इंतजार किया और उसके बाद दाम बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद ये अपील आना शुरू हो गया। तो यह भी सवाल पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के कारण सरकार ने गैस, तेल, डॉलर के गंभीर मुद्दे क्या नजरअंदाज किए। हां कहने वाले लोग हैं 53.4% लोग, नहीं कहने वाले लोग हैं 26.7% लोग, पता नहीं कहने वाले भी 19.9% लोग। यानी ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि हां विधानसभा चुनाव तक सरकार ने रोकने का फैसला किया था, यह भी कई लोगों को लगता है। तीसरा अहम सवाल, ईरान जंग के कारण तेल महंगा हुआ तो सबसे बड़ी फिक्र आम लोगों के दिलों में क्या होगी, दैनिक सफर महंगा हो जाएगा, 22.7% लोग कहते हैं, खाना पीना किल्लत हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, 31.3% लोग, नौकरी और कारोबार पर उसका असर पड़ेगा, 12.6% लोग इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा असर इन तीन चीजों पर पड़ सकता है, दैनिक सफर, खाना पीना, नौकरी और कारोबार। चौथा सवाल, तेल और गैस संकट से निपटने में सरकार की कोशिशों से क्या वो संतुष्ट है, यह भी सवाल पूछा गया। पूर्ण संतुष्ट 36.6% लोग कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट है, थोड़ा ही संतुष्ट है 20.8%, यानी करीब 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक चल रहा है, जो कोशिशें कर रही है वो ठीक चल रही है, बिल्कुल असंतुष्ट है ये कहने वाले 31.9% और पता नहीं कहने वाले 10.7% लोग यहां पर नजर आते हैं। यानी करीब 40% से ज्यादा आबादी को यह भी लगता है कि हाँ सरकार के जो कदम है वो ठीक नहीं है। और भी चार सवाल हमने पूछे, वो भी हम चर्चा के दौरान लोगों के सामने रखेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि ये अहम सवाल हमने जनता से पूछने की कोशिश की थी। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी इकोनॉमिस्ट है, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। सैयद जफर इस्लाम जी, चार सवाल फिलहाल हमने सामने रखे हुए हैं, लोग तैयार नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उनका कहना है कि हाँ हमें यह करना चाहिए और इसके लिए हम तैयार हैं। यहां पर जरा वो सवाल भी बगल में दिखाते रहिएगा ताकि पता चले कि हम किस चीज पर चर्चा यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि 3 महीने का इंतजार सरकार ने कहीं ना कहीं किया है, राजनीति भी नजर आ रही है उसमें।
1: देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं, आपने जो सर्वे दिखाया है, इवन दो बहुत छोटा सैंपल है 1500 लोगों का, लेकिन फिर भी इस पूरे सैंपल में, सैंपल सर्वे जो है उसके जो एनालिसिस है कि 2/3 लोग, जो मेजोरिटी जो है वो सरकार के नियत और नीति दोनों से बिल्कुल संतुष्ट है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये 3 महीने का वक्फा जो आप बोल रहे हैं, जो भी इंसान और देश की जनता जागरूक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिक्स का समय नहीं, ये देश नीति का समय है। इसलिए कह रहे हैं जब दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है, ग्लोबल क्राइसिस है, एक कठिन समय से पूरी दुनिया गुजर रही है, उस कठोर समय में पूरी दुनिया ने अलग अलग के, अलग कंट्रीज ने अलग अलग एक्शन लिए हैं, लेकिन भारत की सरकार किसी से तरह से भी ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन से रिलेटेड है, मोटिवेटेड है। बट ये एक जो संवेदनशील सरकार की जो नीति होती है कि जनता पे कम से कम भार पड़े। अब इसका देखिए उदाहरण देता हूं मैं आपको कि 3 महीने में आप देखिए, अगर कोई भी आदमी मॉनिटर कर रहा हो कि पूरे कारण जो ये जो क्राइसिस जो आई है पूरी दुनिया में कहां से आई है, ये हॉर्मुज के क्लोज होने से, ईरान इजराइल और यूएस के वॉर के वजह से, तो उस पूरे समय में कभी सीज फायर होता है, कभी सीज फायर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं, इतने जो असमंजस का समय, ऐसे अनसर्टेनिटी का समय कि कभी एकदम रिजॉल्व हो गया इशू और कभी नहीं रिजॉल्व हुआ। तो हमने देखा हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, हमने कोई भी कटौती नहीं की, चाहे वेलफेयर स्कीम में, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, किसी तरह की भी जो भी बजटरी एलोकेशन है वो सही है, हर तरह के पैरामीटर सही है, लेकिन जनता को व्यवहार कम पड़े इसलिए अब्सॉर्ब जो है कॉस्ट जो अब्सॉर्ब कर रही थी वो सरकार की, सरकार कर रही थी या कंपनियां कर रही थी जो ओएमसीज है। लेकिन ये बात आपको बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि इस सरकार ने जनता पे भार दिया है और खुद जो है वो भार को सरकार ने उठा लिया है। अब उसकी मिसाल देते हैं, आप जो कह रहे हैं 3 महीने के बाद, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया ने तेल के दाम बढ़ा दिए, अभी भी जो अमेरिकन ब्लॉकेड है और ईरान की ब्लॉकेड है वो कहीं खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसे में सबसे कम आप देखिए 90% लोगों, 90% से 20% से 90% जो है अलग अलग कंट्रीज ने बढ़ाया है, सिर्फ भारत एक ऐसा विशाल जनता और देशहित में सोचने वाली जनता के लिए कम से कम भार किया। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ अभय दुबे जी हमारे मित्र बैठे हैं, उनको मजबूरन ये जानते हुए भी कि ये गलत बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा कि देश हित में नहीं है राजनीति के करना चाहिए। अरे राजनीति का समय होता है, देश नीति होनी चाहिए।
0: अभय दुबे जी क्या बोलने वाले हैं उसका भी प्रेडिक्शन सैयद जफर इस्लाम जी आपने कर दिया है, लेकिन
1: साहिल भाई
0: एक हफ्ते पहले
2: डर अच्छा है,
1: मैं आज सुबह से डिबेट जब से, तो वो हर डिबेट में इन लोग जो है देश नीति छोड़ के देश हित में सोचने के बजाय बाहर दुनिया में, पूरे दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, वहां सबसे कम भार देश की जनता को मिला,
0: लेकिन कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी, कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी, एक हफ्ते पहले जब हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तब कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, तब तो ये कहा जा रहा था कि देखिए सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे 15 तारीख तक दाम बढ़ जाएंगे, कहां बढ़े दाम, लेकिन ऐसा हुआ। ये मैं मानता हूं कि फिलहाल तो हम 3.5% ही दाम बढ़ा पाए हैं, बाकी देशों में आपने सही कहा कि 20-90% तक दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन इस बात को मानने में सरकार को देर लगी कि हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, ये बात भी यहां पर नजर आती है। लेकिन ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले जरा अभय दुबे जी से
1: देखिए,
0: जो भी चाहे कहे आप, हाँ जी बोल लीजिए, चलिए
1: जबरदस्त कह रहा हूं कि देखिए वक्त जो है ना, टाइमिंग जो है वो सरकार जो है वो सिचुएशन को, इवॉल्विंग सिचुएशन है साहिल भाई, हालात हर दिन बदल रहे हैं,
0: ठीक है,
1: सरकार अपनी अर्थव्यवस्था समझती है और अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ कैसी नीति रखनी चाहिए ताकि जनता को उसका पूरा पूरा जो है बेनिफिट मिले, इसलिए सरकार ने बहुत छोटा सा कदम उठाया, लेकिन इसलिए कि इस क्वार्टर में हो सकता है कि कोई सोल्यूशन आ जाए, तो फिर आप अगर देखिए तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे, इकोनॉमिस्ट बैठे इसलिए बोल रहा हूं कि जो आज स्पॉट पे प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है दोनों में अंतर देखिए, गैप बहुत बड़ा जो था पहले जो एकदम निकट एक दूसरे के थे, अब गैप बहुत बढ़ गया। इसका समझ में आता है कि जैसे रेजोल्यूशन होगा कटाक से जो है स्पॉट के प्राइस तेल के, कच्चे तेल के दाम गिर जाएंगे एकदम से, और जो एक क्वार्टर में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है वो अगले क्वार्टर में सारा जो है,
0: हालांकि इसके बावजूद, और ये चर्चा मैं इकोनॉमिस्ट जो हमारे साथ बैठे हुए उनके पास भी ले जाऊंगा, लेकिन हालांकि इसके बावजूद आज की स्थिति में इंडिया इंक इंडस्ट्रियल बॉडी भी ये कहना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अभी तो हमें झटका लगा ही नहीं है, झटका लगेगा और ऐसा लगेगा कि सहना मुश्किल हो सकता है, और खास करके मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। खुद उदय कोटक का ये स्टेटमेंट सी आया है कि कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो कहा था वो सारी जगह पर आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा इस बात को लेकर। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आज की स्थिति में यहां पर नजर आता है अभय दुबे जी, बाकी राजनीति तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं कि स्थिति किसी के हाथ में नहीं है, जो युद्ध के वजह से स्थिति पैदा हुई है इसके लिए सरकार उस तरीके से अपील को समर्थन भी दे रहे हैं कि हाँ ये अपील की है उसके पीछे कोई कारण है और ये करना होगा। राजनीति भी समझ रहे हैं लेकिन अपील भी समझ रहे हैं।
2: नहीं नहीं कोई राजनीति नहीं, मैं अपेक्षा सिर्फ इतना करता हूं थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, चाहे एक ही बार डिबेट में दें। हॉर्मोस कब बंद हुआ? 28 फरवरी को। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा देशवासियों से? जबकि राहुल गांधी जी 1.5 माह पहले ये बात कह चुके थे सार्वजनिक रूप से, पांचों राज्यों के चुनाव की प्रतीक्षा की खत्म होने की। 5,000 बस भर के वेस्ट बंगाल में असम में लोगों को लेकर आए, अपना उन्होंने एयर शो भी देखा उसके बाद ही अनाउंसमेंट के बाद एयर शो देखा। देश के लोगों इस डिबेट के दो हिस्से हैं, एक क्या सरकार को दाम बढ़ाने चाहिए, बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, सरकार 25 रुपए बढ़ाएगी 20 रुपए बढ़ाएगी। 26 मई 2014 को क्रूड ऑयल के प्राइस $108 थे, पेट्रोल कांग्रेस पार्टी की सरकार में 71 रुपीज था, डीजल 56 रुपीज था, आज 90 और 100 रुपए डीजल और पेट्रोल है। 27 मार्च को मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 13 से 10 रुपए की और पेट्रोल पर और डीजल पर 10 से 0 रुपए की। इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ रिलायंस को और नाइरा को, क्योंकि सरकार चाहती तो जो कंपनियां हैं इनकी, जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको अलग से भुगतान कर सकती थी। 2014 में एलपीजी का प्राइस सऊदी अरामको में, जहां से भाव तय होता है, $850 पर एमटी था और एलपीजी की प्राइस 412 रुपए थी। आज 2026 मार्च में वो $542 पर एमटी हो गया है सऊदी अरामको में भाव, और गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है। कमर्शियल 541 रुपए थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में 19 किलो की, और आज 3071 रुपए है। कितना बड़ा इजाफा और डाका डाला, 4,00,000 करोड़ रुपए पर एनम, 43,00,000 करोड़ रुपए इस मोदी सरकार ने जेब से निकाले। कांग्रेस पार्टी 1,64,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी और 1,60,000 टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, डिविडेंड के रूप में कलेक्ट करती थी। तो ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मुझे लगता है रिलायंस के पंपों को फायदा पहुंचाने के लिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किफायत से उसका उपयोग करना है, उसमें पूरा देश राजी है, प्रधानमंत्री जी हम सहयोग करेंगे। दो आखिरी बातें,
0: तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो आप दाम नहीं बढ़ा दे?
2: बिल्कुल, अरे दाम कैसे बढ़ाओगे आप, मुझे बता, कोई तो एक तर्क दो। चलिए आप एक जो पर बैरल में क्रूड ऑयल कितना आता है, 159 लीटर आता है क्रूड ऑयल, अगर 95 रुपीज जो डॉलर की कीमत आज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो एक लीटर क्रूड ऑयल पड़ता है 59 रुपीज का, उसमें आप 10 रुपए अगर जोड़ लें उसकी रिफाइनरी के, उसके फ्रेट के, उसके डीलर के कमीशन के, तो कितना हो गया 69 रुपीज, मतलब 70 रुपए, तो आज भी 30 रुपए ज्यादा ले रहे हो। कब? जब $100 अगर होगा तो रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये लोगों की, नागरिकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 38 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन था क्रूड ऑयल का भारत का इंडिजीनियस, वो 27 मिलियन मेट्रिक टन पर आ गया। आपने कहा था कि मैं इंपोर्ट,
0: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी इस बात को कह चुके हैं कि दाम नहीं घटाए थे, जब दाम कम थे तब पेट्रोलियम कंपनियों ने इजाफा लिया, उसका फायदा हुआ, और इसी के वजह से आज पेट्रोलियम कंपनियां ये झेल पा रही है जो दबाव उन पर आ रहा है। लेकिन कब तक झेलेगी? दो दिन पहले का स्टेटमेंट है उनका, दो दिन पहले का स्टेटमेंट है।
1: देखिए दो तीन चीजें कहूंगा साहिल भाई, मैं इसके बारे में दो तीन बातें कर इनके जवाब देना चाहता हूँ।
2: एक मिनट साहिल जी, जवाब
0: बस अभय दुबे खत्म कर रहे हैं, अभय दुबे खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जफर इस्लाम जी।
2: बिल्कुल नहीं
0: जी, अभय दुबे, अभय दुबे,
2: इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं। ये डरी हुई मोदी सरकार अमेरिका से ऐसी है कि अभी एक एलएनजी का कंटेनर हमारा आकर, जो हमने रशिया से मंगाया उसको ट्रैक कर लिया अमेरिका ने, और इनको कहा कि आप वो नहीं मंगाओगे तो वो सिंगापुर में खड़ा हुआ है। दो हिस्से इसके, एक पेट्रोलियम कंपनी का फायदा, एक मोदी सरकार ने जो हमारी जेब से लूटा है वो। तो दोनों दो दो बातें मैं यहां कर रहा हूं। 43 लाख करोड़ रुपए किसको कहते हैं आप समझते हैं? आज फर्टिलाइजर की यह स्थिति है कि 390 मिलियन मेट्रिक टन की आवश्यकता है, 199 मिलियन मेट्रिक टन लाख मेट्रिक टन सॉरी हमारे पास पड़ा हुआ है और 90 लाख मेट्रिक टन और जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है। अब खरीफ के समय क्या करेगा किसान हमारा? त्राहिमाम करेगा।

0: इंटरनेशनल प्राइजेस से लिंक हो चुकी है, वहां पर प्राइजेस बढ़ेगी तो हमारे यहां पर भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने डीजल प्राइजेस को भी लिंक कर दिया। ये तो आपने भी कहा था उस वक्त, आपको याद होगा, जब वो सिलेंडर को लेकर आप कहते थे कि देखिए यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, क्या कर सकते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय प्राइजेस से लिंक किया हुआ है
1: हमने। नहीं, दो महत्वपूर्ण बातें आखिरी करता हूं मैं। एक तो जो सिलेंडर का रोना रोते हैं, देश के लोग गौर से सुनो, 16 करोड़ हमारे समय कनेक्शन सिलेंडर के थे, 412 रुपए में एक सिलेंडर देते थे। उज्ज्वला बहनों के नाम पे इन्होंने 6 करोड़ कम कर दिए और 613 रुपए कर दिए, और सामान्य 913 रुपए कर दिए इन लोगों ने सिलेंडर। अब बड़ा प्रश्न देश के सामने यह है कि जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए 2017 में धर्मेंद्र प्रधान, हम तो सब्सिडी देते थे, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे, सीधे जनता की जेब में डाल देंगे। अरे $20 हो गए तब भी भाव कम नहीं किए, और आपने कहा था दाम बढ़ जाएंगे तो उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, रोज दाम बढ़ा रहे हैं, रोज
0: बारह बार दाम जब बढ़ रहे थे उस वक्त अगर पहले से इस पूरे मामले को लेकर दाम बढ़ाना शुरू होता तो आज इतनी जरूरत नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। अब जो लोगों में कहीं ना कहीं डर तो साफ नजर आ रहा है, आप लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई डर नजर आ रहा है, कह रहा है कि खाना पीना, दैनिक सफर, नौकरी कारोबार, उस पर असर पड़ सकता है। सैयद जफर इस्लाम,
2: देखिए ऐसा है साहिल जी, ये टेम्पररी फेज आप मान के चलिए कि अगर ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये सारी चीजें जो है अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ये अभी प्रेशर है, और ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, दुनिया के हर कंट्री को ये फेस करना पड़ रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उनके यहाँ भी आप देखा, आप UAE में दाम बढ़ा है, आपने देखा अमेरिका में दाम बढ़ा है, आपने देखा चाइना और जापान के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वहां भी 21% और 9% दाम बढ़ा है।
1: आप तो उन्होंने 12 साल में कितने दाम बढ़ा है बताओ।
2: एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में हम नहीं बोल रहे थे, आपने समय बोलिएगा।
1: तो सबने सब
2: अभी कल तक ये देखिए, अब ये कल तक ये बोले थे, आर्गुमेंट बदलता रहता है। हकीकत ये है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने समय में ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो खर्चा, बहुत छोटा सा रकम एलोकेट करते थे, आम नागरिक की जीवन को
1: क्या इंफ्रास्ट्रक्चर
2: अच्छी नहीं बनाते थे। अभी हमने जो इनका देखिए 2014 में 1 लाख करोड़ का, 1 लाख कुछ करोड़ का इनका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर,
1: सारी सड़कें
2: इलेक्शन
1: पर बना रहे,
2: 12.5 लाख करोड़ का
1: तो
2: जो मुनाफा हुआ जनता के हितों के लिए खर्चा, स्कीम चलाए किसको, जनता का हाथ थाम के उनको बेहतर उनको मजबूत बनाया, ये तो खुद को मजबूत बना, धन जनपद के आगे निकलते नहीं थे और हम जनता की चिंता करते रहते हैं, ये देश के बारे में नहीं सोचते, राजनीति सोचते, हम देश नीति सोचते हैं, ये फर्क रहेगा। इनको सिर्फ सत्ता का जो मलाई चाहिए, हमें जनता की भलाई चाहिए, ये
0: प्रोफेसर अखिल स्वामी नहीं, आता हूँ अभय दुबे जी, आता हूँ आपके पास प्रोफेसर अखिल स्वामी, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती, देखिए जनता तो समझ रही है कि यहां पर दाम तो बढ़ाने पड़ सकते हैं, और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, हम उसको ऑस्टेरिटी मेजर्स कहने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन जो आह्वान किया गया है कम से कम इस्तेमाल करिएगा, उसका असर क्या होगा, वो सही कदम है और वो उठाने पड़ेंगे, ये मानने को तैयार है जनता, लेकिन क्या सचमुच में कोई और ऑप्शन है, दाम बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा है आज की स्थिति में?
3: साहिल जी ऑप्शन है। असल में दो तरह के स्टेप्स लिए जा सकते थे, एक जायंट स्टेप्स होते, एक बेबी स्टेप्स होते। जायंट स्टेप ये होता जब आपको रूस 25% डिस्काउंट पे तेल दे रहा था और रुपए में ट्रेड कर रहा था, ईरान आपसे कह रहा था कि 25% हम आपको डिस्काउंट देंगे और रुपए में लेंगे, तो डॉलर पे इतना दबाव ना बनता, डॉलर की इतनी आवश्यकता ना होती, और डॉलर इतना मजबूत ना होता, और रुपया इतना कमजोर ना होता, और देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब ना होती। आपने किस कारण से, आई डोंट नो, हमारे देश इतना महान देश है, इतना ताकतवर देश है, हमने किसके दबाव में रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, सबको डॉलर में खरीदना शुरू कर दिया, और सबको डॉलर में खरीदेंगे तो रुपया कमजोर होगा और हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी। अच्छा दूसरा, 2014 में जो टैक्स स्ट्रक्चर था, एक इकोनॉमिस्ट था उस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री, उस समय की जो टैक्स स्ट्रक्चर था और उस समय जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, आज कर दी जाए, हमारे उपभोक्ताओं पे 1 रुपए का भाव नहीं पड़ेगा, एक दाम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे सरकार की ये नीति समझ में नहीं आती है कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देती है, GST को बढ़ा देती है, हमारे

0: देश के गरीबों पे बोझ डाल देती है। जो हमारे देश का श्रमिक है, जो 12,000 रुपए में नहीं बेचारा अपना घर चला पा रहा था, वो पहले 100 रुपए की गैस जो उसको
1: लेकिन
0: चार
1: जब
0: सौ रुपए पर
1: अंतर्राष्ट्रीय
0: केजी की मिल रही
1: मार्केट में,
0: थी।
1: प्रोफेसर स्वामी आप इस बात को समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 52% से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं, 52
0: मनमोहन सिंह के
1: परसेंट से,
0: जमाने में कितने थे और
1: कब
0: आज
1: तक
0: कितने
1: यहां की
0: हैं?
1: कंपनियां उस बात को झेल पाएगी?
0: नहीं, कंपनियां नहीं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में तेल इससे भी महंगा था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। आप अगर कहते हैं थर्ड इकोनॉमी है, इंडियन एक्सप्रेस कहता है सिक्स्थ इकोनॉमी है, आप कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप कहते हैं आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, तो गरीबों को लाभ दे दीजिए ना, उपभोक्ताओं को लाभ दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, सब्सिडाइज कर दीजिए ऑयल कंपनीज को। सरकार के पास जो पैसा है वो क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए है क्या? वो
1: प्रोफेसर
0: क्या
1: तनेजा,
0: विदेश यात्रा करने के लिए है? देश के
1: जो
0: गरीबों को कुछ नहीं देना चाहते?
1: प्रोफेसर तनेजा जो प्रोफेसर स्वामी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहले ही सब्सिडी, एक तो वो कह रहे हैं कि सब्सिडी जारी रखिएगा, जो पहले दी जाती थी, जो लिंक किया गया उसको हटा दीजिएगा, लेकिन जो बाकी चीजें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, अगर पहले से दाम घटाए होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती, एक एडेड दिक्कत हमारे इकोनॉमी पर पड़ गई है, ये कहने की वहां उनकी कोशिश है। क्या आप इससे सहमत है?
2: नमस्कार साहिल जी, सभी को, पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी आपके। देखिए, ये जो बातें हैं, मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि किस टाइप के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, किस टाइप के तर्क दिए जा रहे हैं। मैं अभी जी की बात से पहले स्टार्ट करती हूँ। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया जनता का कि आपको ये कदम, ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसका आपने सही नाम दिया साहिल जी, तब तो ये त्राहिमाम मचा रखा था कि भैया पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, पेट्रोल के दाम बढ़ने चाहिए, पहले बढ़ने चाहिए, बाद में बढ़ने चाहिए। अब बढ़े हैं तो भैया क्यों बढ़ा दिए, ऐसे क्यों बढ़ा दिए, ये क्यों नहीं करा? कहीं ना कहीं तो सही होगा ना, या तो बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। तो पहले तो ये नहीं ऑपोजिशन तय कर पा रही है कि उनको बोलना क्या है। फिर बात आती है कि जो मनमोहन सिंह जी के टाइम के जो तेल के भाव थे, सबसे बड़ी चीज जो हम भूल रहे हैं साहिल यहां पे, वो है ऑयल बॉन्ड्स की विरासत। ऑयल बॉन्ड्स ये थे कि जब तेल की कंपनियों को नुकसान हो रहा था, जब 2004 में 3 में पहले तेल के दाम जब बढ़े थे पूरे वैश्विक बाजार में, तो उस कच्चे तेल के दाम कंपनियों को ना नुकसान पहुंचे उसके चलते एक ऑयल बॉन्ड की विरासत खड़ी कर ली। 1,03,00,000 करोड़ के वो कम से कम ऑयल
1: कितने
2: बॉन्ड्स थे,
1: कितने पैसे की?
2: जिसका सर बता तो रही हूं, सर आपको बीच में नहीं बोली थी ना, आपकी बातों का जवाब ही दे रही हूं, जिसकी लागत हमने 3.5 लाख करोड़ की करी। तो आप सोचिए, ये
1: हाँ
2: था इंटरेस्ट अमाउंट। दूसरी जो इन्होंने बात करी कि 43 लाख करोड़ के तकरीबन प्रॉफिट और इसका एक्साइज टैक्स से कमाया, तो सर ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये पूरे भारत के आंकड़े हैं। 3 लाख करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था 2014 में, जो अब 17 लाख करोड़ हो गया है। तो सर ये पैसा जो एक्साइज से आता है, ये जनता की भलाई में जाता है। जो आप बात कर रहे हो कि बीओटी प्रिंसिपल पर, सर बीओटी प्रिंसिपल ब्रेक इवन प्रिंसिपल नहीं है, ये
1: प्रोफेसर
2: बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है।
1: तनेजा,
2: आपके समय पे जो
1: इकोनॉमी की
2: इलेक्ट्रिफिकेशन
1: साइज
2: थी,
1: भी तो बढ़ गई है ना, लोग इस बारे में भी देखते हैं कि इकोनॉमी की साइज भी बढ़ गई है।
2: साहिल बिल्कुल,
1: आप जब तीन
2: मैं
1: लाख
2: उसी
1: करोड़
2: परसेंटेज
1: के,
2: पे आ रही हूँ, मैं उसी परसेंटेज पे आ रही हूँ कि
1: हाँ
2: 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन हुई। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले हमारा 2% था 2014 में, जो अब 4.4% है।
1: जी
2: तो अगर इकोनॉमी साइज डबल होती है, तो केवल डबल नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का
1: लेकिन
2: ही आप
1: इसके
2: एग्जाम्पल ले
1: बावजूद
2: लीजिए।
1: प्रोफेसर तनेजा सवाल यहां पर यह रहता है कि आज की स्थिति में जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, क्या भारत कुछ अलग संकट थोड़ी झेल रहा है? पूरे देश, दुनिया में इस तरीके का संकट पैदा हुआ है। अभय दुबे जी आप इसका जवाब देंगे, लेकिन बाकी चार सवाल भी मैं जरा लोगों के सामने रख दूं ताकि हम चर्चा सभी सवालों पर कर दें। पांचवा सवाल जो हमने पूछा था, जरा सभी सवाल सबके सामने रख देते हैं। चार सवाल हमने इससे पहले पूछे थे, पांचवा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पांचवा सवाल यह था कि ईरान जंग के बाद तेल, गैस, खाने के तेल की दिक्कत महसूस हुई क्या? जनता को पूछा, हो रही है क्या दिक्कत महसूस? बहुत ज्यादा, 40% लोग कह रहे हैं कि हाँ, तेल, गैस और खाने के तेल की दिक्कत महसूस हो रही है, थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। 31% लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो रही है, 21.3% लोग कह रहे हैं। ज्यादातर जो लोग, 40 या 31% लोग जो कह रहे हैं, वो ज्यादातर मध्यम कमाई करने वाले लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप उसको हम कह सकते हैं। छठवां सवाल जो हमने पूछा था, यह बहुत बड़ी बात है, लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। छठवां सवाल, पीएम की बचत वाली अपील को कैसे देखते हैं? संकट से निपटने का सामूहिक प्रयास के तौर पर देख रहे हैं, 28.8% लोग इस बात को मानते हैं। गैस और तेल की किल्लत के संकेत इससे मिलते हैं, 23.9% लोग इसको मानते हैं। और गैस और तेल के दाम बढ़ाने का एक बहाना के तौर पर देखते हैं, 17.6% लोग इसको देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि किल्लत होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से बचत की अपील इस वक्त की गई है और एक सामूहिक प्रयास के तौर पर भी उसे देख रहे हैं। पीएम की बचत वाली अपील को कैसे देखते हैं? विदेश नीति में भारत की नाकामी 7.6% लोग मान रहे हैं, सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश 11.6%, पता नहीं कहने वाले 10.5% लोग। सातवां सवाल, अनावश्यक ईंधन खर्च कटौती के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है क्या? हां, 44.3% लोग कहते हैं कि हां, ईंधन खर्च कटौती के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है, नहीं कहने वाले 37.5, पता नहीं कहने वाले 18.2% लोग। और आठवां आखिरी सवाल यह पूछा गया था, तेल गैस की किल्लत के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं लोग? ईरान जंग, 42.5% लोग मानते हैं कि ईरान के जंग के वजह से यह किल्लत महसूस हो रही है। केंद्र की कमजोर नीतियां 31.5, जमाखोरी 4%, विदेश नीति 4.8, अमेरिकी दबाव मानने वाले लोग भी 9.3% लोग यहां पर है। अभय दुबे जी, जनता को अभी भी लगता है कि ईरान जंग के वजह से यह संकट लग रहा है, बाकी आंकड़े चर्चा बाकी चीजें तो होती रहेगी, लेकिन लोग देख रहे हैं कि ईरान की जंग के बाद यह महसूस हो रहा है और पूरी दुनिया को यह महसूस हो रहा है। अभय दुबे,
3: बहुत स्वाभाविक बात है। एक बात महत्वपूर्ण कही, मैं साधुवाद देता हूं मैडम तनेजा को कि जिन्होंने ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया और 1.3 लाख करोड़ बताया, वो थोड़ा अमाउंट उससे ज्यादा था। अगले मोदी सरकार के आने के 2.5 साल बाद ही इनका कलेक्शन 2 से 2.5 लाख, सुन लीजिए ना, 1.35 है वो, आप 1.3 जो बोल रही थी 1.35 है। अब सुनिए, अब 9000 करोड़ रुपए उसका इंटरेस्ट था, अब मोदी सरकार के आने के 2.5 साल बाद ही 2.5 लाख करोड़ रुपए पर एनम कलेक्ट करने लगे थे, 2.5 लाख करोड़, जो हमारी सरकार में 4000 करोड़ रुपए टैक्स के अलावा एडिशनल सब्सिडी देते थे। अब एक स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, ईरान और रशिया से तेल खरीदने का, मई 2012 में क्या सरकार होती है, क्या बैकबोन होती है, मनमोहन सिंह जी ने दिखाया। हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान आई हुई थी, एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप बताइए क्या ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा है, इसलिए आप आई है, तो उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि इसका जवाब भारत के विदेश मंत्री देंगे। एम कृष्णा जी ने जवाब दिया कि कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है प्रतिबंध लगाना, हम इसको अस्वीकार करते हैं, हमने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, रशिया से हम ये बिल्कुल ठीक कहा, लोकल करेंसी में हम ट्रेड करने लगे थे, हमने ब्रिक्स बैंक बनाने की बात भारत ने की, भारत ने ब्रिक्स बैंक, अरे बीच में मत बोलिए साहब, ब्रिक्स बैंक,
1: अभय दुबे जी खत्म करिए, लंबा नहीं होना चाहिए, अभय दुबे जल्दी,
3: अरे वही कह रहा हूं मैं, मोदी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज सरकार है ये, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, अडानी जी का मुकदमा था, एपस्टीन फाइल का केस था,
1: कुल मिलाकर तितली तनेजा कहने की कोशिश, अभय दुबे और प्रोफेसर स्वामी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रशिया से खरीदारी हमारी जारी होती रहती, ईरान से खरीदारी हमारी जारी रहती, तो शायद हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पता नहीं बाकी देश रशिया और ईरान से खरीद रहे कि नहीं कर रहे, जिसमें चीन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बाकी सारे देश है जहां पर कीमतें बढ़ी हुई है आज की स्थिति में,
3: इन्होंने
1: पता नहीं ये कहां पर इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन दीप्ति तनेजा आप जवाब दीजिए, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे।
2: 10 सेकंड में इसका जवाब दूंगी, मैं साधुवाद करूंगी अभय दुबे जी का कि उन्होंने 2012 का जिक्र किया, सर जी 2012 में सबसे पहले हमने ईरान से लेना आधा कर दिया था, आप अपना फैक्ट चेक करो, 2019 में पूरा बंद किया है लेकिन 2012 में सबसे पहले आपने, थैंक यू सो मच हिलेरी क्लिंटन का जिक्र किया।
1: अभय दुबे जी जवाब भी सुन लीजिए ना, आपका आपका मुद्दा समझ में आ गया,
2: कर लीजिए
1: जवाब सुन लीजिए,
2: बहुत साधुवाद
1: डिस्कशन है अभय दुबे जी, प्लीज इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, दीप्ति तनेजा आपकी बात खत्म करिए पहले, जी बोलिए।
2: मैं आपको यही बोल रही थी कि मैं बहुत साधुवाद करूंगी अभय दुबे जी का कि इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया 2012 का, ईरान से सबसे पहले तेल लेना,
3: कम किया था? कितने
2: सर मैं
3: कम किया
2: बता रही हूँ
3: बताइए ना,
2: सर, आपने अगर
3: कितने
2: अगर
3: कम
2: आपने सभ्य
3: किया
2: तरीके से नहीं
3: बताइए,
2: करनी है
3: क्वांटिटी
2: डिबेट तो फिर आप ही बोल
1: बताइए।
2: लीजिए ना सर,
1: सुन तो
2: आप
1: लीजिए
2: ही बोल
1: अभय दुबे
2: लीजिए
1: जी, वो बता रही है, सुन लीजिए
3: नहीं
1: सुन लीजिए
3: असभ्यता,
1: सुन लीजिए
3: प्रश्न
1: प्लीज।
3: करना असभ्यता कैसे हो गया
2: सर?
1: नहीं नहीं
2: सर
1: प्लीज
2: जब
1: प्लीज
2: आप बोल
1: प्लीज
2: रहे थे
1: प्लीज,
2: हम चुप
1: मामला
2: थे
1: नहीं
2: ना सर।
1: भटकेगा। नहीं नहीं सुन लीजिए
2: सर दो
1: प्रोफेसर तनिजा,
2: सर
1: आप अपनी बात रहे प्लीज।
2: जो इन्होंने कृष्णा जी की स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का अपना एक मायने है कि क्या ये लगा सकते थे सैंक्शन या नहीं, लेकिन उसका असर कितना हुआ? हमने सबसे पहली बार ईरान से तेल लेना बंद 2012 में किया सर, तब भी यूपीए की सरकार थी, तब तक एनडीए नहीं आई थी,
3: नहीं झूठ,
2: 2019 में
3: बिल्कुल
2: फाइनली
3: झूठ बोल रहे हैं,
2: सर। चलिए
3: बिल्कुल
2: आपके पास भी
3: झूठ।
2: गूगल है, आपके दर्शकों के पास भी है
3: 19 में
2: क्या?
3: किया
2: अच्छा
3: है हमने,
2: 2012 में
3: 12 में
2: हमने
3: नहीं,
2: तेल लेना कब नहीं किया
3: ये रहा। अरे ये कह रहा, एमईए का स्टेटमेंट है, एज फार
2: सर?
3: एज
2: एमईए का
3: इंडिया इज
2: स्टेटमेंट ये
3: कंसर्न वी
2: कहता है कि
3: सब्सक्राइब
2: वो नहीं
3: टू
2: लगा
3: एंड
2: सकते
3: विगरसली
2: सैंक्शन
3: इंप्लीमेंटिंग
2: सर,
3: द
2: फैक्ट
3: यूएन
2: चेक कर
3: सिक्योरिटी काउंसिल
2: लीजिए
3: रिजोल्यूशन द इशू। नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, हमने कोई सेंक्शन नहीं लगाया, हिस्ट्री इतिहास गवाह है इसका।
2: आप तो
3: मोदी
2: सैंक्शन
3: सरकार
2: लगा
3: ने
2: भी नहीं
3: 19
2: सकते
3: में
2: थे
3: लगाया
2: सर,
1: आज की
2: भारत
1: स्थिति
2: उसकी
1: में,
2: स्थिति ही नहीं था,
3: और
2: आप
3: आज
2: सैंक्शन
3: तक
2: नहीं
3: भी
2: लगा
1: आज
2: सकते
1: की
2: थे
1: स्थिति
2: अभी
1: में
2: भी। आप बहुत कंफ्यूज
3: हमने
2: हो, आप
3: प्रतिबंध
2: क्या
3: नहीं
2: क्या स्टेटमेंट्स
3: लगाया।
2: दे रहे हो सर? हम सैंक्शन नहीं
3: नहीं
2: लगाते,
3: आप
2: हमने आज
3: कंफ्यूज
2: भी
3: हो,
2: सैंक्शन नहीं
3: आप
2: लगाया।
3: बंद भक्तो
1: ठीक है
3: अनभक्त,
1: सैयद
3: मोदी
1: जफर इस्लाम,
3: सरकार के लिए के समर्थन में
1: नहीं नहीं
3: खड़े
1: प्लीज
3: होने
1: प्लीज
2: सर,
1: प्लीज
2: आप कहां से
1: प्लीज
2: अपनी
1: प्लीज
2: बातें
1: अभय दुबे जी,
2: लाते हो
1: अभय
2: क्या
1: दुबे जी
2: वक्तव्य करते
1: चर्चा
2: हो?
1: इस
2: आप
1: तरफ
2: कभी
1: नहीं
2: फैक्ट
1: जाएगी,
2: चेक कर लो
1: चर्चा
2: सर,
1: इस तरफ
2: भारत
1: नहीं
2: में
1: जाएगी।
2: कभी सैंक्शन
1: एक
2: लगाने
1: मिनट
2: की
1: प्लीज प्लीज
2: हैसियत ही नहीं थी
1: अभय दुबे
2: सर।
1: जी प्लीज, चर्चा इस तरफ नहीं जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट है चर्चा इस तरफ नहीं जाएगी, यह बहुत ही गंभीर मामला है, आपके मुद्दे हो सकते हैं और वो सुनने के लिए हम तैयार भी है, लेकिन चर्चा इस तरफ नहीं जाएगी। सैयद जफर इस्लाम, कुल मिलाकर आरोप यह लग रहा है कि अगर रशिया और ईरान से हम लोग तेल खरीदते रहते तो शायद यह नौबत नहीं आती। अर्थशास्त्री भी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं।
4: अरे साहिल जी देखिए, जब स्टूडेंट को रिजल्ट मिलता है तो उसका सब कुछ हाथ समझ में आ जाता है क्या होता है। 2012 की बात कर रहे हैं, क्या किया, ये किया मैंने, वो किया, इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ बोला, चरमा क्या छोड़ के गए, चरमराती इकोनॉमी, सारे मैक्रोस जो है टेरिबल शेप में, वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस, स्कैम्स एंड स्कैम्स वाली सरकार, दुनिया में सबसे बदनाम देश, 11वें स्थिति में फ्रेजाइल इकोनॉमी, तो कुछ आप कहिए मत। आपने क्या छोड़ा, तो उसको मजबूत करके आज पूरे दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इकोनॉमी है, इसलिए कि हमने वो पॉलिसी मेजर्स लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, तो देश की जरूरत ही थी। और आपने क्या किया, मलाई खाया, जनता की भलाई नहीं किया, हमने भलाई की जनता के। अगर
1: रशियन तेल, रशियन तेल
4: नहीं, देखिए हमने सही सब हर समय पे सही जो देश के हित पे फैसला था वो लिया, जब हमको लेना था तेल हमने लिया, और हमें यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने भी और लोगों ने भी जो भी कहा, तो देश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, पॉलिसी हम बना, हमारी जो पॉलिसी है हमारे देश के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए पॉलिसी, और उसने कहा दो टोक होके बात किया, और हमने वही किया जो देश हित में था और देशवासियों के हित में था। लेकिन आज देखिए, आज जो अपील की प्रधानमंत्री जी ने उससे क्या फायदा, दूसरे को बोलते हैं, खुद बीच में बोलते हैं, सुन तो लीजिए। आज देखिए हमारी जो इंपोर्ट बिल है तेल की वजह से, अगर हमने थोड़ा उस पर संयम भरता, मान लिया 25% हमारी खपत कम हुई, वो लोग कितने लोगों ने कम करने की कोशिश की, और उसका अगर 25% खपत कम हुई तेल की, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए कि अगर हमको अगर हमने फॉरेन ट्रेवल से बचाया, अब हमने थोड़ा संयम भरता और भी किसी चीज में संयम भरता, तो कुल मिला के हमारी जो स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमने 50-60-70 बिलियन डॉलर जो है हमारा इंपोर्ट बिल कम हो
1: एक,
4: जाएगा।
1: एक,
4: तो
1: एक सवाल जफर इस्लाम जी यहाँ पर बीच में, एक सवाल यहाँ पर बीच में, एक सवाल यहाँ पर बीच में, क्योंकि लोग इस बात को भी देख रहे हैं, जरा वो आंकड़े चलाइएगा, लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि संकट से निपटने की तैयारी और ये सारी चीज तो है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि हाँ इस अपील के पीछे ये भी कारण छुपा हुआ है कि शायद दिक्कत हो सकती है, किल्लत हो सकती है, ये भी डर लोगों के बीच पे नजर
4: आ रहा है,
1: इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम।
4: नहीं, आपके चैनल पे इस बात को मैं बड़े साफ गोई से, संजीदगी से और साफ सुथरे लफ्जों में कहता हूँ कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, फिर से कह रहा हूँ कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, कुछ ऐसे मौके पे एडवाइजरी जरूरी है, कोई बैन नहीं लगा के रखा है, लेकिन सरकार खुद को अगर उस कटघरे में डाल के अगर दुनिया के लिए मिसाल बनती है, देश के लिए, देशवासियों के लिए मिसाल बनती है, इसलिए कि संवेदनशील सरकार है, ये कांग्रेस के जैसा थोड़ी है कि जनता नहीं, जनपद 10 जनपद को ध्यान रखना है भाई, सरकार
1: आखिर में, अभय दुबे जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास है क्योंकि मुझे प्रोफेसर स्वामी के पास भी जाना है। 10 सेकंड आपके पास है।
3: ठीक है, मैं इन्होंने एसपीआर तक नहीं बनाए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के जो कांग्रेस ने बनाए थे विशाखापट्टनम में, पोद्दूर में, मैंगलूर में। इन्होंने अनाउंस किया चांदीखोल का और पोद्दूर का 6.5 मिलियन मेट्रिक टन का, उसकी जमीन तक अधिग्रहित नहीं की प्रधानमंत्री जी ने, सिर्फ चुनावी रैलियों में लगे रहते हैं, भारत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। भारत एकमात्र देश है जिसने
1: आज की स्थिति में सबसे ज्यादा रिजर्व
3: बढ़ाए जब शांति का,
1: ये चीज मालूम होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा था कि चीन के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के रिजर्व्स है, एक साल तक के रिजर्व्स उनके पास है, ये भी बात कही जा रही थी। लेकिन आज की स्थिति में चीन के भीतर भी 30% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं, यह आज की स्थिति है। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, सबसे बड़ी बात आज जो जो लोग यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, डर किस बात का है सबसे ज्यादा? खाना पीना, नौकरी, कारोबार, क्या हम उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए? एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप क्या सोचते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर तनेजा अंतिम में जी।
0: देखिए साहिल जी, सोशल मीडिया पे एक मजाक चल रहा है कि आप समझते हैं 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पे चलते हैं ये सोना खरीदते हैं, या हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदते हैं? मुकेश अंबानी से नीता अंबानी मजाक में कहती हैं, ये बात सीधे मुझसे कह देते हैं या मोदी जी से कहलाने की क्या जरूरत थी? कितने लोग सोना खरीद रहे हैं आज के तारीख में देश में? लोगों के मंगल सूत्र छीन लिए गए, शादी होनी बंद हो गई है, लड़कियों को लोग चांदी के ऊपर सोना चढ़ा के दे रहे हैं।
1: तेल के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो सोना ही होता है इस देश में।
0: अरे कौन खरीद रहा है
1: तेल के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो सोना ही होता है?
0: अरे आरबीआई खरीद रहा है या बड़े बड़े पूंजीपति खरीद रहे हैं? हमारे गरीब लोग सोना खरीद रहे हैं क्या? मुकेश अंबानी साहब से सीधे कह देते वो खरीदना बंद कर देते, अडानी जी खरीदना बंद कर देते, देश की गरीब जनता सोना खरीद रही है क्या? उसके पेट पे लात क्यों मार रहा है?
1: प्रोफेसर तनेजा, एक बार फिर, खाना पीना, नौकरी, कारोबार, लोगों के मन में इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है दैनिक सफर के साथ साथ।
2: जी बिल्कुल साहिल जी, क्योंकि ये वैश्विक संकट है और जनता इस चीज के लिए तैयार है और वो ये बात समझती है। मैं बस एक 10 सेकंड ये लूंगी सर, ये फैक्ट चेक है, आपके पास भी है, आप भी देख सकते हो। जो आपने कहा ना कि नहीं किया था, मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थी इसलिए मैंने इसको निकाला है। 2011-12 में हम 17.44 मिलियन टन लेते थे ईरान से, जिसको हमने इमीडिएटली रिड्यूस किया, और 2012-13 तक आते आते सर वो 13.3 मिलियन हो गया था, 26.5% का ड्रॉप। ये फैक्ट चेक एक तो आप कर लीजिएगा। दूसरा फैक्ट चेक, जो अगर आज हम युद्ध के 75वें दिन पे हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, तो डे वन से तो हमें ये भी बोला गया था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ही नहीं है, इमीडिएटली भारत का तेल खत्म हो जाएगा, भारत के पास अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है। तो आज 75वें दिन तक भी, साहिल आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बार बार हरदीप पुरी जी के माध्यम से ये जिक्र भी आ रहा है कि अभी भी अगले 60 दिन के लिए हम कंफर्टेबल पोजिशन में हैं। तो ये जनता समझती है कि ये होना चाहिए। और अगर इसको हम इतिहास के पन्नों में के देखें तो जब 2008 और 2011 में एकदम वैश्विक तेल के दाम बढ़े थे, तो तब यूपीए की सरकार में 5 रुपए 2008 में और 10 रुपए 2011 में तेल के दामों में वृद्धि आई थी। तो ये ऐतिहासिक बातें क्यों भूल जाती है यूपीए सरकार? और ये आंकड़े हैं, ये मेरे मैन्युफैक्चर
1: मतलब नहीं है। हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए प्रोफेसर तनेजा, हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए उसी तर्ज पर।
2: देखिए सरकार ने देखिए इस समय ऑयल बॉन्ड जैसी चीज नहीं करी। मार्च में ही तुरंत सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड निकाल दिया था 1 लाख करोड़ रुपए का। फिर हमने जो अपने रिजर्व्स थे उसको
1: बात तो गोल्ड बॉन्ड्स की भी होनी चाहिए। गोल्ड बॉन्ड्स जिस तरीके से बंद कर दिए गए हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। गोल्ड बॉन्ड इसीलिए बनाए गए थे ताकि गोल्ड खरीदारी कहीं ना कहीं कम हो, लेकिन उसके बावजूद आज गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए गए क्योंकि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है। ये भी तो दिक्कत यहाँ पर हुई है।
2: स्कीम इसीलिए प्रमोट कर रही है सरकार, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, और
1: कुल मिलाकर आज की स्थिति में
2: इसीलिए प्रमोट।
1: आखिर में सैयद जफर इस्लाम, आखिर में जनता इस बात को देखकर कहीं ना कहीं चिंतित है कि क्या खाने पीने की चीजें और सबसे बड़ी बात नौकरी और कारोबार पर इसका असर कितना पड़ेगा? क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी में है? क्योंकि ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री की तरफ से देश के नाम संदेश नहीं दिया गया है कि क्या इसमें आखिरकार करना है। ये तो बस एक उन्होंने जिक्र किया है, कहा है, लोगों से अपील की है।
4: देखिए इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। पैनिक सिचुएशन होता तो जाहिर है उसके बारे में देश की जनता जागरूक जनता से साझा किया जाता है। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, ये तेल के दाम बढ़ने घटने यूपीए सरकार में भी हुए, अभी हमारे सरकार में भी हुए, ये एक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, कभी जब हालात के हिसाब से ओएमसीज बढ़ाती हैं घटाती हैं। इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कोई पैनिक सिचुएशन है, देश में अर्थव्यवस्था सही है और इसी वजह से जितने भी वेलफेयर स्कीम, उसी का एक मापदंड है, वेलफेयर स्कीम सरकार की है, वो पूरे तौर से उसमें कोई कटौती नहीं, और जो
1: जनता चर्चा तो देखती है, जनता अपील भी देखती है, जनता काउंटर इंपैक्ट भी देखती है, और इस पर विपक्ष की भूमिका भी जनता देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के भीतर जो डर है वो भी इस सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में खतरा है, उनको लगता है कि क्या किल्लत का सामना करना पड़ेगा, और इस पर सरकार क्या करेगी उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी क्योंकि फिलहाल 3 रुपए से दाम बढ़े हुए हैं, आगे क्या होगा इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ हमारे देश के असली हीरो के हाथ जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान देश का हीरो।
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके।
9: यार
10: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रो फाइबर है।
10: माइक्रो फाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है।
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
3: जहां खबर वहां खबरदार.
7: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी. ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं. आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
8: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा. हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना. मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की. नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया. देश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं. न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए. तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए. मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है.
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
8: हमारे सीमेंट में नहीं है?
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
11: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है. जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है. बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है. ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है. ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा. एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया. हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया. हादसे के बाद जहाज में आग लग गई. हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से $108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है. कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा न मचाए। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू। जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुँच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
2: माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अभी हमने उसको देखा नहीं है। हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गूमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, बात यह आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है, वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए। लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था। वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।

0: नीट पेपर लीक मामले में नौवी गिरफ्तारी, पुणे के लेक्चरर मनीषा मंधाने की दिल्ली से गिरफ्तारी, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री, ये आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो कई सालों तक असर, एम्स्टर्डम में किंग और क्वीन से मुलाकात। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के पाकिस्तान को 2-2 आतंकियों को पनाह देने से बाज आए, वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। बंगाल के आसनसोल में मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने पर फूटा गुस्सा, पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव, अब तक 7 गिरफ्तार। और भोजशाला पर फैसले के बाद पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, पुलिस ने देवी देवताओं की तस्वीर ले जाने से रोका, आज तक के कैमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, अमूल दूध के दाम बढ़ गए। लोग आशंका ये जता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, क्या आगे और भी महंगाई की बरसात है। मैं आपको महंगाई के ताजा जो आंकड़े हैं वो दिखाना चाहती हूं। अप्रैल महीने का खुदरा महंगाई दर यानी जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है, 3.5% है। लेकिन पिछले 13 महीनों में ये सबसे ज्यादा है, ये भी आपको जानना चाहिए। वहीं जब आप होलसेल इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, थोक महंगाई दर ये 8.3% है, जो कि पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। अब सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो क्या होगा, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अन्य चीजों पर होता है, क्योंकि माल ढुलाई में जब ज्यादा खर्च होता है तो जितने भी सामान है सबकी कीमत थोड़ी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। सवाल है कि इस हालात का सामना देश कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के 7 मंत्र दिए हैं, लेकिन क्या देश बजट के लिए तैयार है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आज हल्ला बोल का मुद्दा है, बचत से बचोगे वरना महंगाई में पिसोगे।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा न मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये वैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज विषय गंभीर है, पूरे देश के सामने है और भारत कैसे इससे उभरेगा इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और अंशु जोशी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में। शहजाद जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बचत का मंत्र तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन कोविड का संकट काल अलग था। अब कोविड में ऐसी स्थिति थी कि लोग अपनी जान को लेकर भी चिंता में थे और लोग ये खुद ही सहज होकर घर में ही रहने को चूज कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। कैसे आप ये करेंगे, क्योंकि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहली बार इतने ऊपर गया है 8.3% पर। रिटेल जो इन्फ्लेशन रेट है 3.3 या 4% पर पहुंचा है, वो भी 3.5 साल में पहली बार यहां पहुंचा है। कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा?
13: देखिए, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन से शुरू की, तो एक समय ऐसा भी था कि देश में 12% इन्फ्लेशन हुआ करती थी यूपीए के जमाने में, और पिछले 10-12 वर्षों में 3 वैश्विक परिस्थितियां होने के बावजूद भी, चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे कोविड हो या चाहे ईरान इसराइल वॉर हो, उसके बावजूद भी एवरेज इन्फ्लेशन 4-4.5%। आपकी बात बिल्कुल सही है कि डब्ल्यूपीआई पहली बार 8% पे गया है, पर यही डब्ल्यूपीआई पहली बार माइनस में भी गया था, ये इसी सरकार के दौरान था। मैं आपको दूसरा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। आप जब 2014 में एंकरिंग करती थी अंजना जी, 2 लाख की इनकम पे इनकम टैक्स था, आज 12 लाख पर है, बचत होगी नहीं होगी। दूसरी बात, जीएसटी रिलीफ 2.0, तो सैनिटरी पैड से लेकर सीमेंट से लेकर टीवी से लेकर मोबाइल फोन, जिस पे 30% का टैक्स था, आज उस पे 18% या उससे कम का टैक्स है। इंटरनेट, 1 GB डेटा आपका 350 रुपए का था, एवरेज कंजम्पशन 150 GB है, आज वही जो है 10 रुपए का आता है, तो मतलब 1500 रुपए का खर्च होता है 150 GB के आधार पर अगर देखा जाए। इन्फ्लेशन का तो मैंने बता दिया आपको। मिल्क की आपको एक बेसिक आइटम की बात बताता हूं, 2004 में 16 रुपए लीटर था, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते 2014 में आ गया 50 रुपए लीटर, आज भी बढ़ा है, परंतु उस समय पर 185% मिल्क, राइस, पोटेटो, इस चीज के दाम बढ़ते थे। ईएमआई हाउस के 10% रेट था इंटरेस्ट रेट, आज जो है वो 7.5% इंटरेस्ट रेट है। पर कैपिटल इनकम इसी समय पर डबल हुई है। तो मैं कुल मिलाकर सिर्फ इतना
12: कह रहा हूं कि मतलब उनकी महंगाई हमारी महंगाई से ज्यादा बढ़ी
13: नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि 4 वर्षों से पेट्रोल डीजल के दाम फ्रीज थे, बढ़े नहीं। 75 दिन में एक भी पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत नहीं आई। 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने की बातें होती थी। हां, यह बात जरूर हुई कि 10 रुपए प्रधानमंत्री एक्साइज ड्यूटी पे काटे, उसमें से 3 रुपए, केवल 3 रुपए कम कर दे तो 7 रुपए की छूट है, पर हिमाचल में तो 5 रुपए बढ़ा है। अच्छा, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, सुनिए। सबसे ज्यादा वैट किधर है? तेलंगाना, 35%, 110 रुपए लीटर है। अंजना जी, शुक्र है आप नोएडा में, 100 रुपीज से कम में भराएंगे 1 लीटर पेट्रोल। उनसे पूछे, ये महंगाई कर रहे हैं ना, इनसे पूछे कि वैट क्यों नहीं घटाते तेलंगाना का। हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा दिए, 5 रुपए।
12: आलोक जी, अब आप अपनी तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, जाहिर तौर पर अगर ये मार पड़ रही है तो उसके पीछे जो वैश्विक संकट है वो भी एक बड़ी बड़ी वजह है, और ऐसे में तमाम देशों ने कीमतें बढ़ाई हैं। आलोक जी
14: देखिए अंजना जी, बहुत ही दुखद है कि सरकार इस वैश्विक संकट में भी अपनी नाकामियों को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर शहजाद जी की बात पूरी सुन लें तो फिर तो कहीं महंगाई है ही नहीं, और महंगाई नहीं है ना कोई कमी है ना कोई दिक्कत है, फिर मोदी जी बचत की बात क्यों कर रहे हैं, फिर तो देश जानना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। नीति में अगर देखें तो आप रशिया से आपने क्यों तेल खरीदना बंद किया, ईरान से क्यों बंद किया, यूएसए का क्या दबाव था, ये तो नीति की बात हो गई कि इनकी कोई नीति नहीं है इस मामले में। नियत का मामला है, 30 लाख करोड़ से ज्यादा इन कंपनियों ने पैसे कमाए, 4 साल में नहीं बढ़े, 4 साल में, अरे भाई 4 साल में तो लोएस्ट प्राइस भी गए हैं, 2020-21 में तो बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे, तब तो आपने जनता को तो कोई राहत नहीं दी। जनता को राहत नहीं मिल रही है 4 साल से, ये भी तो बता दीजिए। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आपने 8 से 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और उसमें बार बार आप एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि शेयर जो है वो राज्यों को देना होता है, तो आप सेस लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सेस जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की झोली में जाता है। आपने तो जब राजस्थान में चुनाव लड़ा तब भी अंजना जी के शो में था कि श्री गंगानगर में कितने प्राइस हैं, क्या कम किए थे आपने 2023 में आने के बाद? 2023 में तो कोई वैश्विक घटना नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा कि ये महंगाई और बेरोजगारी हमारे तक पहुंचेगी, इस युद्ध का असर हमारे तक पहुंचेगा, लेकिन 10 दिन पहले ही अमित शाह जी ने कहा कि सब चंगा सी,

0: का आंदोलन वो आपने देखा था, आज उसी तरह का हरिद्वार में बीएचईएल में हो रहा है। आज हरिद्वार के सराफा व्यापारी सड़कों पर हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि हम भी विपक्ष में हैं, हम जो बात कह रहे हैं उसका सही जवाब दीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस को कोसने से बाकी कोई काम नहीं करते, इनके प्रवक्ता भी मानने को ही तैयार नहीं। हम बार बार कह रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगी, और एनर्जी सिक्योरिटी के बाद फूड सिक्योरिटी का नंबर आएगा। बार बार कह रहे हैं कि साहब खाद कम इस्तेमाल कीजिए। भाई खाद अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। जैविक खाद अभी इस्तेमाल करके कहां से जैविक खाद लेकर आएंगे, कौन से जैविक खाद के भंडार हैं कि हम प्रोडक्शन को मैच कर पाएंगे, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद तेल जो है कम यूज कीजिए। पिछले 3 दिन में सरसों के दाम 400 से 500 रुपए पर क्विंटल बढ़ गए। इस महंगाई को कौन झेलेगा? एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पूरी तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं बीजेपी वाले, आईएमएफ ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये बेस ईयर कब बदल दें, कब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कब कौन सी बास्केट को बदल दें, क्योंकि कोई चीज सस्ती होती नहीं, नजर नहीं आती है। अरे भाई आपने तो जीएसटी किताबों पर भी लगा दिया था, बच्चों की पेंसिल पर भी लगा दिया था, दूध दही सब चीजों पर लगा दिया था, उसके बाद भी अगर महंगाई बढ़ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। और मोदी जी की सरकार की नाकामी है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से वापस खिसक के छठी पर पहुंच गए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं।
1: ठीक है,
0: कोरोना में भी मानने को तैयार नहीं। जी
1: सुझाव मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नाकामी है। राहुल गांधी ने भी यही पोस्ट किया है।
2: अंजना जी पता है
1: देश नहीं नाकामी है कह रहे हैं।
2: आपको पता है सिचुएशन क्या हुई है इस देश में? सिचुएशन ये हुई है कि इनकी एक साथी प्रवक्ता शमा मोहम्मद राजदीप सरदेसाई के शो में जाके एक झूठा पिक्चर दिखाती है तो राजदीप करेक्ट करते हैं।
3: नाउ मैडम यू मस्ट लिसन टू मी, इट इज एन एआई जनरेटेड इमेज।
2: अब ये हालत हो चुकी है कि राजदीप सरदेसाई भी इनको करेक्ट कर रहे हैं और ये मुझे झूठा आंकड़ा रचन ऑयल के बारे में मैंने पूरा डेटा दिया, मैंने बीच में नहीं बोला। आलोक जी आपकी बड़ी बुराई है, आप दूसरों को कोसते हैं, हम सुनते हैं चुप करके, आपकी बारी आती है सुनने की तो आप बीच में भावा भाव करते। सुन लीजिए पूरा, मुझे एक बात बताइए, मैंने रशियन ऑयल का आंकड़ों के साथ बताया और ईरान ऑयल कब बंद किया वो भी बताया, इस पे जवाब दिए नहीं, भाग गए वहां से, गोलपोस्ट शिफ्ट कर दिया। अच्छा इनके ही आंकड़े को लेते हैं, ये कह रहे ना महंगाई है बहुत, 12% इन्फ्लेशन महंगाई नहीं थी, 4% है। चलिए तो फिर आपने हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाया, उसका एक तो जवाब दो। क्यों तेलंगाना में 35% वैट लगा रहे, एक तो जवाब दो। चलो ये अपील कर दो कि तेलंगाना हिमाचल की ओर से कर्नाटक की ओर से हम जीएसटी में लाने को तैयार है तेल को, एक बार ऐलान कर दो जी।
0: तीसरी बात
2: पूरा होने दो,
1: ठीक है जीएसटी वाले पे मैं जवाब लूंगी आपसे, जीएसटी वाले पे लूंगी क्योंकि मेरा भी सवाल है, मेरा भी ये सवाल है, क्योंकि बीजेपी अभी तक यही कहती है कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा जीएसटी कमेटी में तब तक हम नहीं कर सकते। आपके भी अभी 3-4 राज्यों में सरकार है।
2: एक लास्ट पॉइंट
1: जल्दी,
2: जब दो
1: कम्प्लीट, बाकी दोनों चेहरा देखने नहीं आए उनके पास भी जाना है।
2: 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल का प्राइस 33 से बढ़कर 73 रुपए हुआ, मतलब 114% इंक्रीज। डीजल का 21 से बढ़कर 56 रुपए हुआ, मतलब 155% इंक्रीज। आज इतनी परिस्थितियों के बाद भी पेट्रोल और डीजल का इंक्रीज हुआ है 35-50%। किसने बेटर मैनेज किया
1: जी जल्दी से इस पर,
2: जबकि
1: जीएसटी पर सहमत है कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वो सहमत होंगे कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोल डीजल? बोलिए,
0: सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन होता है। 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उसके साथ साथ जो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी वोटिंग है। 21 राज्यों में इनकी सरकार है, कंसेंसस की जरूरत कहां है, किसके कंसेंसस की जरूरत? 33% वोटिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है।
1: स्टैंड क्या है आलोक जी, वो इसके साथ है या नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए?
0: हम तो कह रहे हैं कल ही आ जाना चाहिए,
2: ये ऑफिशियल स्टैंड है।
1: कह रहे हैं कि आना चाहिए।
2: अंजना जी आपके सभी दर्शक चेक करें, हिमाचल कर्नाटक और तेलंगाना ऑन रिकॉर्ड अपोज करते हैं। मुझे नहीं पता ये अगर ये है तो मैं अंजना जी आपसे अपील कर रहा हूँ, सुनिए अंजना जी मैं रिक्वेस्ट करूँ, मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए अंजना जी। अंजना जी क्रॉस टॉक की आवश्यकता ही नहीं है,
0: कांग्रेस के कहने से आपने पेपर
2: अंजना जी क्रॉस टॉक की आवश्यकता ही नहीं है,
0: हमारे कहने से लगाया था,
2: क्रॉस टॉक की आवश्यकता ही नहीं है, मेरी बात हो जाने दीजिए। अगर ये इनका कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, मंडे को आप बुला लीजिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम केरलम या फ्रॉम तेलंगाना या फ्रॉम हिमाचल, एक स्टेट कर्नाटका, और उनसे ये बुलवा लीजिए। ये आकर एक बात बोलते हैं शमा मोहम्मद, एक बात बोलती है राजदीप, राहुल गांधी एक बात बोलते हैं, वो फैक्ट चेक हो जाता है।
0: विपक्षी अगर सरकार चलाएगा, विपक्षी अगर 4 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं, अगर वही सब कुछ तय कर रहे हैं तो सरकार तो बहुत निकम्मी है।
1: ठीक है, सुनील सिंह यादव जी, सुनील सिंह यादव
2: ने लिया पर
1: संकट

0: संकट की स्थिति है,
1: ले रहा हूं मैं,
0: संकट की स्थिति है।
1: काउंसिल में इस बिल को लेकर आइए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेंगे।
2: अच्छा,
0: वो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में लाइए, सपोर्ट।
2: स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई जीएसटी नहीं आना चाहिए।
0: चलिए ठीक है, जल्दी इस बार इम्तिहान होगा इस बात का, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा सरकारें इस वक्त हैं देश में, राज्यों में। सुनील जी, ये संकट की स्थिति है, ये युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया है, ना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऐसे में स्थिति में देश को उबारना है, क्या मिलजुल कर सारे लोग एक तरफ बढ़ सकते हैं, एक हित में कर सकते हैं? सभी देशों में आप देखिए, मतलब अमेरिका तक ने फायदा, जिसका बहुत कम पेट्रोल वहां से जाता है, कच्चा तेल, उसने भी सोची कीमतें बढ़ा दी इसी बहाने, युद्ध के बहाने। लेकिन भारत,
3: अंजना जी, अंजना जी, इस देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी ये देश संकट में आता है, तो देश का एक एक व्यक्ति देश के उबारने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए जुट जाता है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। सवाल यह है कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, हमें क्यों उनके मंत्र पर शंका है? क्योंकि उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का, उनका मंत्र कोविड में आया था थाली बजाने का। तो हम ये जानते हैं कि जो लॉजिक देते हैं, उन लॉजिक से देश बर्बाद होता है।
0: ठीक है सुनील जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। सुनील जी, एक काउंटर क्वेश्चन है
3: जी,
0: ये बात अक्सर विपक्ष की तरफ से फैलाया जाता है कि ताली से कोविड को भगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या आपको याद भी है कि उस वक्त क्यों ताली बजाई गई थी?
3: ठीक है, अगर ताली बजाने से हौसला बढ़ता,
0: हाँ
3: ठीक,
0: मतलब आपको पता था, मैं बस एक क्रॉस चेक कर रही थी, आपको पता है कि, क्योंकि जो लोग कोविड के लिए काम कर रहे थे, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स नर्सेज अपनी जान की बाजी पर खेलकर काम कर रहे थे, उनको देश सम्मानित कर रहा था, तो हम
3: दिया किसके लिए जलाया गया था, दिया किसके लिए जलाया गया था? कोविड भगाने के लिए। और अगर ताली और थाली और दिए से ही दिक्कत खत्म होती है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे फिर दिया जलवा दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। अगर आप दिया लगातार जलवाते रहेंगे तो पर्चा लीक नहीं होगा। कम से कम, कम से कम जो देश को प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा कर्जदार किसने बनाया, और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश, ये देश बहुत दिनों से, सालों से कर्जा लेता था, लेकिन कर्जा लेता था किसी प्रोजेक्ट के लिए। क्या अंजना जी आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे कर्जदार बना दिया, हर पर्चा लीक हो रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, अगर इस देश को सच में आर्थिक स्थिति से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा, अगर इस देश को पर्चा लीक होने से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा, महंगाई से अगर बचना इस देश को तो बीजेपी से बचना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, इस देश की असली समस्या ही बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम है।
0: चूंकि ये पॉलिटिकल आरोप है, शहजाद जी जवाब ले रहे हैं, उसके बाद से अंशु जी मैं आपके पास आ
2: रही हूं। देखिए कितनी खूबसूरती से
0: आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है।
2: और सुनील यादव जी की पार्टी ने तो क्या भरपूर समर्थन दिया है, कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन किसने बोला था जी? अखिलेश जी ने वैक्सीन ली, कभी फोटो देखा क्या आपने? हाँ, बीजेपी वैक्सीन लेने से इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इंपोर्टेंट। अब बताइए सुनील जी, आपने ली कि नहीं ली वैक्सीन भारत की? उस समय पर फाइजर और मॉडर्ना बेचने में लगे हुए थे, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, विदेशी वैक्सीन के एकदम एजेंट बन के घूम रहे थे। अच्छा दूसरी बात, इतना सपोर्ट करते, पैनिक क्रिएट करते कि डोमेस्टिक एलपीजी का शॉर्टेज होगा, फिर वो अब्दुल रहीम के घर से 50 सिलेंडर निकलता है, हैं? ये मतलब पैनिक क्रिएट करो और प्रॉफिटियर करो, मतलब आपदा में अवसर ढूंढो। तीसरी बात पे आते हैं, क्या भरपूर समर्थन दिया एआई समिट में, तो नंगे होके गए थे वो बगल वाले आपके जो खिड़की में बैठे हैं, और फिर बोल रहे थे महात्मा गांधी जी वैसा कृत्य किया। इसमें तो आप इतने एम्बेरस हो गए कि आपने भी बोला कि भाई बस कर, इतना नहीं सपोर्ट करना था। ये थी हालत देश में, कब आप साथ में खड़े रहे? ऑपरेशन सिंदूर तक को क्वेश्चन कर दिया।
0: लेकिन नीट नीट पर तो जवाब दीजिएगा ना, मतलब ये कर लेंगे हम, ब्रह्मोस बना लेंगे, ये बना लेंगे हम, नीट का एक एग्जाम नहीं करा पाएंगे इस देश में?
2: अंजना जी, क्योंकि आपने छुआ है ये टॉपिक और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इस देश में नीट एनटीए की व्यवस्था आने से पहले हर स्टेट में हर उसके अलग अलग मेडिकल एग्जाम होते थे। एक बच्चे को और खास करके गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे को 15-20 स्टेट में जाके एग्जाम देना पड़ता था। उसको खत्म करते हुए ट्यूशन कोचिंग पे डिपेंडेंट ना रहे इसलिए एक लोअर लेवल की ईजियर एग्जाम हो और स्टैंडर्ड एग्जाम पूरे देश में हो, यह व्यवस्था बनाने की प्रयास की गई, कोशिश की गई है। बिल्कुल
0: बात पेपर का है, लीक हो रहा है।
2: तो मैं बता रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ।
0: पूरा आप लोगों का आरोप क्या होता है समाजवादी पार्टी पर कि नकल होती है, पेपर लीक होता है। वही अगर राजस्थान का आपने कम से कम मेरे शो में 1000 बार कहा,
2: मैंने 100% और राजस्थान में कौन सा पेपर आज तक लीक हुआ है इतने 3 साल में? एक पेपर लीक नहीं हुआ।
0: नहीं, ये नीट का तो राजस्थान में जयपुर से लेकर तमाम जगहों पर लीक हुआ है।
2: ये नीट, लेट सीबीआई डू इट्स जॉब एंड फाइंड आउट कि कहां से वो लीक हुआ है, किसने किया है, किसके आदेश पे किया है, कोई डीप स्टेट का भी इसमें कनेक्शन है नहीं है, ये सब कुछ निकलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि पहले तो ये बताओ कि जो कैपिटेशन हाई फी करते हैं और जो कोचिंग क्लासेस के नाम पे लूटने का कुछ काम करते हैं, सब नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग करते हैं, उनके पक्ष से क्यों बोल रहे हैं भाई? ये पूरी बेबी विद द बाथ वाटर को क्यों बाहर फेंकना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि इनको कौन सा ऐसा पैसा मिल रहा है कैपिटेशन फी का कट, जिसकी वजह से ये गरीब स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि 80-80 लाख एडमिशन का दे और एक एग्जाम में पूरे देश में उनको सीट ना मिले? ये कौन सा उनका स्टेक है, ये पहले बता दो। दूसरी बात, ये बात करेंगे यूपी वाले, अरे भाई आपके समय पे एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम के अध्यक्ष को चेंज करना पड़ा हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। सुनील जी थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप जो बोलते हैं। आखिरी बात, लास्ट कर्नाटक का सीएम बोलते हैं कि भाई मैं तो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी गारंटी फुलफिल करनी है, मुझे नहीं चाहिए जीएसटी में। और यहाँ पे
0: अंशु जोशी जी एक कमेंट ले लीजिए, बहुत देर से सर आधा घंटा शो होने जा रहा है वो बोल नहीं पाई है। अंशु जी से कमेंट, उसके बाद आप दोनों के पास
2: महिला को बोलते तो महिला आरक्षण के तो खिलाफ हो।
0: फिर अंशु जी, अंशु जी आज सवाल यह है कि बचत से बचोगे वरना महंगाई में पिसोगे। आज सवाल यह है कि क्यों टाइमली स्टेप्स, देखिए तीन हिस्से में मैं आपसे सवाल करूंगी। ये सच है कि आज इस बचत की जरूरत है क्योंकि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स को 2F के लिए, फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए संभाल के रखना है। सोना कम खरीद सकते हैं लेकिन ये दोनों अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। लेकिन 4 मई के बाद ही क्यों? अब क्या हमको समझ नहीं आया था 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मूज बंद हो गया, पूरा सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ था। क्या चुनावी हार के रिस्क की वजह से यह पहले ऐलान नहीं किया गया? और तीसरी बात, हमारे पास एंड रोड मैप क्या है क्योंकि यह लंबा खिंचता दिख रहा है जैसी स्थिति दिख रही है।
4: बिल्कुल अंजना जी, इस प्रश्न के तीनों भागों के उत्तर देना चाहूंगी और अपने को पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है बीच में ना रोके टोके। शुरुआत बस यहां से करना चाहती हूं कि कोविड के समय ताली थाली जो भी बजाई हो, दिए जलाए हो, लेकिन अपने 140 करोड़ देशवासियों को होमग्रोन वैक्सीन से वैक्सीनेट करने के बाद हमने 150 देशों को अपने वैक्सीन भेजे, इसलिए पूरी दुनिया भारत को जानती और मानती है। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, अपने पास 2 महीने के रिजर्व थे ऑयल गैस और एलपीजी के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब चोक हुआ तब हमारे पास और 2 महीने के रिजर्व्स थे क्योंकि हमने अपने ये पूरे एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करके हम 42 देशों से ऑयल गैस और एलपीजी मंगा रहे थे और अभी भी अपना प्राइमरी ऑयल गैस और एलपीजी मंगाने का स्रोत रशिया है। तो एक तो मैं ये भी फैक्ट क्लियर कर दूं, एक भाई कह रहे थे कि हमने रशिया से तेल गैस लेना बंद कर दिया अमेरिका के कहने पर, अभी भी हमारा जो प्राइमरी ऑयल गैस और एलपीजी प्रोवाइडर है वो रशिया है। अब बहरहाल, तो अब हुआ ये है कि वहां पर सऊदी और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक नया थिएटर खुल गया है क्योंकि इजराइल ने एक तरफ यूएई को अपना आयरन डोम दिया है, पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा हुआ है, ईरान का एक अलग एंगल फंसा हुआ है। तो जिस तरह की स्थितियां वेस्ट एशिया में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, पूरी तरह से जो ये पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा था, तथा कथित युद्ध शांति की बात कर रहा था, वो सब युद्ध शांति की बातें विफल हो गई है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच लगातार अटैक्स जारी है अंजना जी, अगर आप न्यूज को देखें तो। तो अब वो स्थिति है, हमने पहले देशवासियों को प्राइमरी शॉक से बचाया अपनी डायनामिक एनर्जी पॉलिसी के चलते, जिसमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी फॉसिल फ्यूल बेस्ड अपनी जो कन्वेंशनल ऑयल गैस एलपीजी है इसका हम उपयोग कर रहे थे। ये भी बता दूं कि पिछले 11 वर्षों में हम जो सोलर एनर्जी की, ट्रेड एनर्जी की, विंड एनर्जी की बात करें, उसका प्रयोग करके, बायोफ्यूल्स का प्रयोग करके हम हर वर्ष 44 मिलियन बैरल तेल को बचाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आई है जिसमें हमें दिख रहा है कि वेस्ट एशिया में दूसरे युद्ध के थिएटर खुल सकते हैं। तो तब प्रधानमंत्री आए हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, 7 सूत्र उन्होंने दिए हैं। ये ईंधन को बचाने की, अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की कवायद है ताकि कोई इस प्रकार का, जैसे चीन ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, फिलीपींस ने, मलेशिया ने अपने यहां पर वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर, गाड़ियों के प्रयोग पर, एसी के प्रयोग पर रोक लगाई, हमें वो ना करना पड़े, इसलिए ये एक संदेश आया। और यहां भी एक और फैक्ट आपको बताना चाहती हूं हम हर वर्ष 721 टन सोना जो है वो मंगाते हैं, जिससे अपना फॉरेक्स रिजर्व घटता है, उस पर इंपैक्ट होता है। इसके साथ हम 20 लाख करोड़ सोना, इसमें से 7 से 8 लाख करोड़ का हम मंगाते हैं, और बाकी के 13 से 14 लाख करोड़ का हम ऑयल गैस और एलपीजी मंगाते हैं। आपने बिल्कुल सही बिंदु कहा, हम फर्टिलाइजर्स, ऑयल गैस और एलपीजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर ईंधन की बचत करने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, ज्यादा से ज्यादा हम ईंधन बचा सकते हैं, और बाकी के 13 से 14 लाख करोड़ का हम ऑयल गैस और एलपीजी मंगाते हैं। आपने बिल्कुल सही बिंदु कहा, हम फर्टिलाइजर्स, ऑयल गैस और एलपीजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर ईंधन की बचत करने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, ज्यादा से ज्यादा हम ईंधन बचा सकते हैं, और बाकी के 13 से 14 लाख करोड़ का हम ऑयल गैस और एलपीजी मंगाते हैं। आपने बिल्कुल सही बिंदु कहा, हम फर्टिलाइजर्स, ऑयल गैस और एलपीजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर ईंधन की बचत करने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, ज्यादा से ज्यादा हम ईंधन बचा सके, इसका संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, और उन्होंने खुद अपने कॉन्वॉय को भी कम किया है। और वहीं गोल्ड को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अपने देश में 25,000 टन सोना है, ये घोषित सोना है जो भारतीय परिवारों में, तो इसीलिए ये संदेश दिया गया, और ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। अब आगे का रोड मैप ये है,
0: ठीक है मैं लौट रही हूँ आलोक जी, ये सुझाव ही है ना, और सोना कम खरीदे, ये तो पी चिदम्बरम ने भी पहले सुझाव दिया था, क्योंकि हमको अगर अपने डॉलर को बचाना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसको फ्यूल फर्टिलाइजर के लिए बचा कर रखें।
3: देखिए, मुझे लगता है कि पीछे तमरम जी ने जब सुझाव दिया था तो मोदी जी ने क्या उत्तर दिया था, मोदी जी ने कहा था ये तो पूरी तरह से अब सोने को भी नहीं खरीदने देना चाहते, अस्मिता के ऊपर चोट की बात की थी, वो वीडियो भी तमाम जगह वायरल हो रहा है आज। 2013 में अक्टूबर में क्या कहा था मोदी जी ने, हम केवल ये कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करो, एब्सटेन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवाओ, कोई ऑफिशियल आंकड़े पिछले 2-3 महीने में आए हो, प्लीज मैम। अंशु जी शांत रहिए, आप मोदी नामा पढ़ना बंद कीजिए। मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, अरे भाई आपने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि मेरे बीच में कोई मत बोलना, और फिर आप बीच में कूद पड़ी, मुझे पता है आप एबीवी पीछे निकली हुई है, शांत रहिए। अंजना जी गलत बात कर रही है, डिस्कशन है, शांत रहना चाहिए प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि 2014 में मेडिकल की फीस 4 लाख रुपए थी, आज 90 लाख रुपए है मैक्सिमम स्टेट्स में, 90 लाख एंड अबाउ। अब आते हैं एनटीए पर, एनटीए के अंदर जो हालत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी एक झूठ बोला गया कि उससे पहले सब स्टेट्स अपना अपना लेते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसको सीबीएसई लेती थी। 2017 में इन्होंने अपनी पिट्ठू एनजीओ बनाई, एनटीए एक एनजीओ है, उस एनजीओ में सारे भाजपाई और संघी भर दिए, और उन्होंने पूरा गंद फैलाया, इसमें एक भी आदमी गवर्नमेंट का नहीं है, रिटायर्ड लोग हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। 1860 की जो एनजीओ होती है वो एनजीओ है, वो तो झोला उठा के मोदी जी की तरह चल देंगे। दिक्कत यह है पिछले 3 साल से लगातार पेपर आउट हो रहा है, 90 दिन में चार्जशीट 2024 में, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में अंजना जी खुद पेटिशनर था, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई से, और उसके बाद दोबारा उसी सीबीआई को दे दिया आपने जांच, उसी एनटीए को जो बार बार फेल हो रहा है उसी को फिर दे दिया। क्यों? क्योंकि भाजपाई जुड़े हुए हैं, जांच इसलिए नहीं होती कि सारे भाजपा ही जुड़े हुए हैं। 90 दिन में चार्जशीट कोई फाइल नहीं हुई,
0: कमेटी बनी, पूरा कर ले, लास्ट टाइम बोल,
3: रिकमेंडेशन आई उसको नहीं माना गया, 3 दिन की विंडो खोली गई कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कीजिए, 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, और ये सारे फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, लेकिन हमारा साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। अरे इस बार भी क्या होगा, इस बार भी सीबीआई वही लीपापोती करेगी और कुछ नहीं होगा,
2: वही हो गया भाई,
3: वही जांच करने वाले लोग हैं।
2: और जो मैं तो कहता हूँ अंजना जी, देखिए अब मेरी बारी है, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ या फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा।
0: मैंने तो किसी के बीच में
2: देखिए एक एक
0: सुनील जी ने कहा था उसका
2: सबका ही जवाब दूंगा, अकेला ही जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ, मैं देता हूँ जवाब। सुनिए, अरे सुन लीजिए आलोक जी, ऐसा है, सबसे पहले तो आप एजुकेशन की बात करें, और एक प्रोफेसर जब बोल रही थी वो भी जेएनयू की, उनको कूद पड़े ऐसे बोल रहे हो, तो एजुकेशन के प्रति और प्रोफेसर के प्रति कितना सम्मान हम देख सकते हैं आपका। दूसरी बात, भाई बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, गलत बात है
0: आलोक जी,
2: आलोक जी का तो ये तो नाराज उपाय रहते
0: हैं भाई, आप भी चुप रहिए एक सेकंड। आलोक जी देखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी बात से अगर कोई असहमत हो तो उसकी ब्रांडिंग करने की आदत ना छोड़ दीजिए, आपको बीजेपी से लड़ना है, वो अपने तरीके से अपनी बात कह रही हैं, उनको प्लीज इस तरह से किसी को मत आप टार्निश कीजिए किसी की इमेज को, दिस इज नॉट फेयर सर, प्लीज शहजादी पूरी कीजिए।
2: मैंने इनका पहला झूठ पकड़ा रशियन ऑयल का, अभी तक उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं, हिमाचल का अभी तक उस पर बात नहीं, 5 रुपए क्यों बढ़ा दिया, वहां पे तो महंगाई है ही नहीं, हिमाचल के लोगों को तो महंगाई नहीं लगती भाई है, और फिर तेलंगाना में भी महंगाई फ्री बना दिया है भाई 35% वैट करके, एक जवाब नहीं देना है केवल। अच्छा जब चिदंबरम जी बोलते थे 2012-13 में कोई क्राइसिस नहीं, बीच में फिर से बीच में बोल पड़े भाई निर्मला जी, बीच में बोलने पर जीएसटी लगा दो फिर ये चुप हो जाएंगे। अब सुन लीजिए पूरा, ऐसा है कि
1: भाई कांग्रेस शासित राज्य
2: यार रंजना जी,
0: आलोक जी अभी आप इसे खा रहे थे उनको बीच में मत बोलिए, अब सब हाथ उठाइए ना, मैं लौटूंगी आपके पास, आप ही से जवाब लूंगी इनकी बात का।
2: हाथ उठाने वाला कोई बचा नहीं वोटर, इसलिए तो समस्या है, और एक बच्चा था केरलम में तो वहां पे जमात का बना दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर। सुन लीजिए पूरी बात, ऐसा है मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ये आपके पास इतना ज्ञान था पेपर लीक को लेकर तो जाके थोड़ा सचिन पायलट के कान में बोलते, वो तो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठते थे कि गहलोत जी सब पेपर लीक वालों के साथ बैठे हुए हैं, याद है कि नहीं है कुछ, सब भूल गए। अब मैं आता हूं आज की डिबेट पर, आज की डिबेट पर मैं 2 पॉइंट बोलकर कहना चाहता हूं, रशियन ऑयल की वजह से हमारा काफी हद तक पेट्रोल प्राइस कंट्रोल रहा। अंजना जी आई वॉन्ट टू नो, मुझे पता करना है किसने बोला रशियन ऑयल मत खरीदो, कांग्रेस पार्टी ने, और जब हमने फिर भी उनको इग्नोर मारा और फिर भी खरीदते रहे तब ये आकर मनमोहन सिंह ने बोला यस मोदीज पॉलिसी ऑन रशिया वॉज राइट। यूएस का दबाव पता क्या होता है कि एक फोन आया कॉन्डोलीजा राइस से तो 26/11 पर कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान पे, उल्टा उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देकर आ गए, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान के खिलाफ 2 बार जाकर वोट किए, और इनके फैक्ट्स तो ऐसे है, वो एक है पवन खेड़ा।
0: फिर देखिए फिर वो शुरू करेंगे, फिर आप लोग का ये गेम चलता रहेगा।
2: हिमंता जी ने पवन पेड़ा बोला है तो हम हिमंता जी की बात को रिपीट नहीं कर सकते, हिमंता जी के हिसाब से जो पवन पेड़ा है बोल रहे थे शिवालिक और नंदा देवी आए नहीं, अब इतना झूठ बोलते हैं इनके नेता कि एक केस में तो बैठे हैं वहां पे क्राइम ब्रांच में बैठना पड़ रहा है। मैं आलोक जी आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके अर्थ अनर्थ शास्त्री सीएडी कितना छोड़ के गए थे 4.8% ऑफ जीडीपी, और हमारे प्रधानमंत्री चाय वाला उन्होंने 1% पे ले आए, आप चाहते फिर से बिगड़ जाए स्थिति।
0: ठीक है दो लाइन का जल्दी से सबसे कमेंट लेंगे, कंक्लूडिंग
1: केवल मैं छोटा सा कहना चाहूंगा अंजना जी, देखिए कि जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है पिछली सरकार में वो पूरा देश देख रहा है, कोई 4 आइटम ऐसे नहीं है जो सस्ते हुए।
2: मैं बताता हूँ,
1: हाँ आप विपक्षी सरकारों के पैसे आप दे दीजिए, जीएसटी के सीएसटी के जो बचे हुए हैं वो राज्य सरकारें भी अपने यहाँ पर टैक्स घटाएंगे,
0: ठीक है,
1: लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार केंद्र की हमेशा से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाती है विपक्षी सरकार। ठीक है, वो कह रहे
0: सौतेला व्यवहार आप करते हैं, जवाब दीजिएगा सुनील जी जल्दी से आप करें।
3: खत्म होने की कगार पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना पेपर लीक पर कुछ बोली, ना महंगाई पर बोली, ना बेरोजगारी पर बोली, ना अपने झूठ पर बोली। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश को बचाना है आज नहीं तो कल, देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा, इनका भ्रष्टाचार इनका झूठे सपने इस देश को बर्बाद करके मानेंगे।
0: अंशु जी
4: ये सुनील जी खुद वैक्सीनेटेड है होम ग्रोन वैक्सीन से भारत के, एक टीवी चैनल पर मैंने पूछा था इन्होंने बताया था, मैं एक फैक्ट बताना चाह रही हूँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल गलत फैक्ट बता रहे हैं, हमारी 1,29,000 के करीब मेडिकल सीट है, 456 इंस्टीट्यूट है, इसमें से 66,000 सरकारी सीटें हैं मेडिकल की, और अंजना जी इसकी फीस 10,000 से लेकर के 35,000 रुपए पर एनम है, तो इस प्रकार के झूठ फैलाने की आवश्यकता नहीं है,
1: लोग मजाक करेंगे मजाक उड़ाएंगे आपका,
4: प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फीस ये बता रहे हैं, और जो सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फीस है जो हाईली भारत सरकार ने सब्सिडाइज कर दी है उसकी ये बातें नहीं कर रहे।
0: 2006-2007
2: आलोक जी ने बोला 4 आइटम बता दो जिसके दाम घटे, मैं दाम घटे हुए बता रहा हूँ, मोबाइल का इनकमिंग कॉल, मोबाइल का डेटा इंटरनेट, ईएमआई घर पे, और सीमेंट पे जो 30% टैक्स लगता था, सैनिटरी पैड पे 15%, आज 0% और सीमेंट पे 18%।
0: व्यवहार करते राज्यों से
2: हम सौतेला व्यवहार,
0: इसलिए कह रहे वैट नहीं घटा पाते।
2: एक सेकंड, कर्नाटक मैं बता रहा हूँ, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरलम हो, इनको यूपीए के जमाने में जितना पैसा मिलता था उससे 3 गुना ज्यादा हम देते। रेवंत रेड्डी ने भी बोला मोदी जी से कि गुजरात वाला ही दे दो जो मनमोहन सिंह देते थे, तो मोदी जी ने बोला मैं गुजरात वाला दे दूंगा ना तो आधो आध हो जाएगा, तो रेवंत रेड्डी जी ने बोला मैं आप ही के साथ जुड़ता हूँ।
0: चलिए वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।
5: और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, राहुल गांधी ने कहा पेपर लीक से 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई है, ऐसे में पीएम मोदी शिक्षा मंत्र को तत्काल तुरंत पद से हटाएं। राहुल गांधी ने कहा लगभग 22 लाख छात्रों की मेहनत उनका प्रयास बेकार चला गया। आरोप लगाया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को पेपर लीक मामले से अलग बताते हुए कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं और छात्रों अभिभावकों में नाराजगी है।
6: नीट में दो साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं, अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
5: अपोजिशन का दबाव लेकिन क्या मानेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आज तक
7: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
9: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
8: to live sports action.
10: To the near side corner, to wraparound, he scores!
8: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: बहुत टाइड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट।
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: जेके मैक्स पेंट्स।
13: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
15: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
2: एक हिंट तो देते।
16: विक्रम
2: हिंट।
17: बड़े आराम से
10: यार। ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है?
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: डायरेक्टर, The taste of success.
8: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
10: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
11: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
12: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
10: शुभेंदु अधिकारी,
9: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
13: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
14: अनुपम मिश्र,
15: मेहमत भारद्वाज,
16: पीयूष मिश्रा,
17: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, come home. It's supper time.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
4: Jack FM, playing what we want.
7: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
7: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: धार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं। भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया, जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है। भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी, जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया, तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे, पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में भोजशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप, हुण किथे ने हो इस वक्त? किथे ने प्राइम मिनिस्टर? नीदरलैंड गए हुए ने। हुण मेरे ख्याल अगले 3-4 मुल्कां दा होर दौर है, लोकां नूं मना करके आप चले जांदे ने। हर एक चीज तुसीं शट डाउन कर दो, सोना ना खरीदो, है जी, ते विदेश यात्रा ना करो, घरों काम करो, प्रधानमंत्री घरों काम कर ले, प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना? ये सिर्फ लुकाउण वालियां गल्लां ने। 3 रुपए लीटर तेल दा रेट वधाता, डीजल दा, पेट्रोल दा, ठीक है ना, ताकि बस प्रधानमंत्री ने कहता तो शुक्र है, हजे थालियां ते तालियां नहीं कहा, है ना। हो सकता कोई होर जादू टूना करन नूं कह देना भी इदा करिया करो। सो देश नूं चलाउणा है जी, असीं तां विश्व गुरु बनना सी, विश्व चेले बना के रखते, जंग किते होर लगी है, पाबंदियां साडे मुल्क च लगी जांदियां, होर किसे मुल्क च क्यों नहीं लगियां? नेपाल च क्यों नहीं कीता इदां? यही गल्लां किसे होर मुल्क दे विच क्यों नहीं होईयां? क्योंकि तेल मुक गया, उदों इलैक्शनां वेले अनाउंस नहीं कर सकदे सी, हुण इलैक्शनां हो गईयां, हुण तूं कौण ते मैं कौण।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी का संबोधन, कहा ये आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो सालों तक असर, किंग और क्वीन से भी मुलाकात। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की हैरान कर देने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी।

0: कमरे में मंदिर के अंदर दिखे हिंदू प्रतीक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। यूपी में योगी 2.0 के तीसरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, एक हफ्ते पहले हो चुका है, लेकिन नए मंत्री सिर्फ अपने चैंबर और सरकारी गाड़ियों तक ही सीमित हैं। उनके विभागों का अब तक आता पता ही नहीं है, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज है। और इससे जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। यूपी में विभागों के लिए मंत्रियों को अभी दो दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, जहां पर कुछ मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क और ऊर्जा मंत्रालय समेत कई विभाग हैं, कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दो दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिसमें मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन को लेकर चर्चा हुई थी। और कल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने भी मुलाकात की थी। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि आपको ये तो पता था कि किस किस को आप कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, किसको राज्य मंत्री बना रहे हैं, लेकिन उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्या इस बारे में पहले चिंतन मंथन नहीं किया गया? हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस खबर पर जुड़ गए। कुमार अभिषेक, कहां फंसा हुआ है पेच? मतलब आपको ये क्लैरिटी दी कि किस किस को बना रहे हैं, लेकिन क्या ये क्लैरिटी नहीं थी कि किसे कौन सा विभाग दे रहे हैं? क्यों इतनी देरी हो रही है?
1: देखिए राजीव, निश्चित तौर पर पेच तो फंसा है, और पेच फंसा है मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में। सिर्फ विभागों का बंटवारा तक होता तब तो शायद ये हो भी गया होता, लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जिसमें सबसे अहम है पीडब्ल्यूडी, जो मुख्यमंत्री के पास है। इसके अलावा चर्चा सूचना विभाग की भी है, खास करके इसके अलावा देखा जाए तो ऊर्जा विभाग, नगर विकास, और इन सब से इतर ये भी चर्चा है कि क्या जो दोनों डिप्टी सीएम है उन्हें भी भारी भरकम विभाग दिया जाए, मिलने वाला है क्या। दरअसल मुख्यमंत्री ने 10 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार किया था, आज 16 तारीख हो गए, लगभग 7 दिन इसको हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात को भी 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अटका हुआ है। निश्चित तौर पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इसी बात की चर्चा है कि आखिर पीडब्ल्यूडी का विभाग किसे मिलेगा। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए डिप्टी सीएम किशोर मौर्य की बात हो रही है, क्या नगर विकास के लिए किसी और की बात हो रही है, क्या सूचना पर?
0: क्या ये भी अभिषेक ऐसा है कि क्या जो मौजूदा मंत्री हैं विभागों के, वो अपना विभाग छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से और देरी हो रही है?
1: निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा है ऊर्जा विभाग को लेकर के। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 मंत्रियों को अगर दिया जाना होता तो शायद ये हो गया होता जिन्हें अभी मंत्री बनाया गया है। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है राजीव की, जो एग्जिस्टिंग मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं, जो डिप्टी सीएम है उन्हें भारी भरकम दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भूपेंद्र चौधरी बने हैं उनको लेकर के बड़ी चर्चा है कि उनको भी भारी भरकम कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का ये प्रेरोगेटिव है, ऐसे में दिल्ली ने जो कहा है क्या उस पर पूरी तरीके से अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, यही बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आज रात से लेकर कल रात
0: तक मैटर यूपी वाला है। कुमार अभिषेक हमारे साथ थे, हिमांशु भी जुड़ गए दिल्ली से, क्योंकि मसला हल अब ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली से हो गए। हिमांशु, यूपी में किसको कौन सा विभाग मिले ये क्यों नहीं तय हो पा रहा है? अब दिल्ली इसमें कैसे जो है दखल दे सकता है, दिल्ली क्या हेल्प कर रहा है इसमें?
2: देखिए बिल्कुल, दिल्ली में खुद योगी आदित्यनाथ ने जो है वो मुलाकात की थी खुद गृह मंत्री और नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनसे, और पंकज चौधरी ने भी मुलाकात की है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि आज 7 दिन हो गए हैं राजीव, और इन 7 दिनों के अंदर अभी तक जिन नए मंत्रियों ने शपथ ली है या 2 मंत्री जिनको पदोन्नत किया गया है उन विभागों का जो है आवंटन उनको नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है, अगर आप देखें तो जिन मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा है उनमें जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उनमें सबसे बड़ा मंत्रालय जो है वो पीडब्ल्यूडी है, और साथ में जनसंपर्क विभाग, ये दोनों मंत्रालय जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हैं, और वो मंत्रालय जो है वो केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिए जाने की बात है। उसके साथ साथ जो है पावर मिनिस्ट्री उसको लेकर भी जो है ये माना जा रहा है कि AK शर्मा जो है उनसे लेकर किसी और मंत्री को देने की बात है। तो तमाम इस तरीके के चीजों को लेकर जो है अभी तक मसला जो है वो सुलझा नहीं है, और 7 दिन से ज्यादा अगर समय हो गया है तो कहीं ना कहीं एक चीज तो मानकर चला जा सकता है कि पेच फंसा हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जो है जो मुख्यमंत्री है वो गोरखपुर है, कल देर शाम वो गोरखपुर पहुंच गए थे, और अब ये माना जा रहा है कि वो कल शाम तक या फिर सोमवार सुबह लौट कर आएंगे। लेकिन अगर 7 दिन हुए तो ऐसे में पेच कहाँ है? पेच यही है कि कुछ मंत्रालयों को लेकर जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है, और सहमति बनाने का काम
0: जिनका जिक्र भी हो रहा है, हिमांशु और कुमार अभिषेक आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब वो जिनके पास में है वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये इतना आसान कार्य होने वाला भी नहीं है। बहरहाल अब विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
3: जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत इंतजार के बाद हुआ, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली का झगड़ा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन मंत्रियों को विभाग नहीं बंट पा रहे क्योंकि दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली का झगड़ा है और झगड़ा बड़ा है, विभागों का बंटवारा वो बड़ा है। और सुना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो भी गोरखपुर चले गए हैं, कुछ नाराज हैं मंत्रियों के विभागों को लेकर। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जनता परेशान है, जनता परिवर्तन चाहती, जनता स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके परेशान है, वो बदलाव चाहती है, वो पीडीए की सरकार चाहती है, इस अन्याय करने वाली सरकार को हटा देना चाहती है।
4: जब पर्ची दिल्ली से आई थी मंत्रिमंडल की, तो खर्ची भी दिल्ली से आएगी और मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली ही करेगा। उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली की हुकूमत है ना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ना अपना मंत्रिमंडल विस्तारित कर सकते हैं बगैर अपने केंद्रीय नेतृत्व के मोदी जी के, न ही उनको विभाग बांट सकते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमने 10 दिन में केरल का मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया। अरे भाई, तुम लोग तो मंत्रियों के विभाग नहीं पास 8 दिन में घोषित कर पा रहे हो तो हमारे ऊपर क्या बात करोगे। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, दोनों गुजरात से हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश को लगातार अपमान करने की कोई भी वो मौका नहीं छोड़ते। लेकिन
0: बात दिल्ली की करते हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का एक बड़ा फैसला है और रेखा गुप्ता सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट को 25% से घटा दिया है, 7% करने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है, वैट घटाया गया है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल 25% पहले चार्ज लगता था, अब 7% कर दिया गया है। सभी एयरलाइन कंपनीज के लिए बहुत बहुत बड़ा ये राहत का पल है। इस निर्णय का उन्हें निसंदेह लाभ मिलेगा क्योंकि फ्यूल के वजह से ज्यादा टैक्स की वजह से चार्जेस बढ़ रहे थे, इसकी वजह से आम आदमी के जेब पर सीधा इंपैक्ट। तो अब एटीएम पर 25% से 7% कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी भी बड़ी खबर। सीबीआई ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने बांटनी के एक सीनियर अध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है, जो कि पुणे में एक कॉलेज में टीचर है। बताया जा रहा है कि मंधारे ने बायोलॉजी के सवालों को लीक किया था और सबसे बड़ी बात, मनीषा भी नीट के पेपर बनाने वाली टीम में विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त की गई थी और उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक उनकी पहुंच थी। मंधारे ने पुणे की मनीषा वाघमारे तक उनके जरिए संभावित उम्मीदवारों को जुटाया। उन्होंने अपने पुणे स्थित आवास पर इन छात्रों के लिए एक विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की और इन कक्षाओं के दौरान बॉटनी और जूलॉजी के विषयों के विभिन्न सवालों को समझाया, लिखवाया गया बकायदा छात्रों से, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा और अपनी पाठ्यपुस्तकों में बकायदा चिन्हित करने के लिए कहा कि ये सवाल है। इनमें से अधिकांश सवाल 3/5/2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के जो वास्तविक प्रश्न पत्र से बिल्कुल मेल खाते थे। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने कार्रवाई की। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, अब एनटीए से जुड़ी हुई मनीषा का भी नाम सामने आया, एनटीए तो प्रश्न जो है सवालों में था, लेकिन अब मनीषा का किरदार, उन्होंने कैसे हेल्प की, कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचाया, विस्तार से बताएं।
5: देखिए, बॉटनी और जियोलॉजी का जो पेपर था वो पूरी तरह से एक्सेस किया हुआ था मनीषा रघुनाथ ने और उसके बाद दिल्ली में सीबीआई की टीम ने इससे पूछताछ की है और उसको गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि जो नीट का एग्जाम होता है एनटीए के जरिए, तो एनटीए की जो नीट एग्जाम जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा थी मनीषा रघुनाथ, और इसके पहले जो पीवी कुलकर्णी अरेस्ट हुए थे वो भी एनटीए की एग्जाम प्रोसेस का हिस्सा थे। यानी दोनों ही मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। और मनीषा रघुनाथ के बारे में बात की जाए तो ये पुणे में बॉटनी की टीचर है, इसने भी मनीषा वाघमारे जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था उसके साथ मिलकर एक स्पेशल कोचिंग क्लास चलाया जिसमें जो पैसे वाले रसूखदार फैमिली के जो लोग स्टूडेंट थे उनको एक स्पेशल कोचिंग क्लास दी गई। जिसमें बॉटनी और जियोलॉजी का जो सवाल और जवाब था वो दिया गया और वही जो क्वेश्चन पेपर उसमें आया था। तो सीधे सीधे मनीषा रघुनाथ ने, जिनको पेपर का एक्सेस था, उन्होंने तैयारी कराई और पेपर लीक किया। इस वजह से सीबीआई की टीम ने इनसे पूछताछ की है और गिरफ्तार किया है। दो मास्टरमाइंड अब तक सीबीआई का दावा है गिरफ्तार हो चुके हैं, दोनों एग्जाम प्रोसेस का हिस्सा थे। जी
0: बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैसे ये थे तो शिक्षक, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ पैसों के लालच में इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इस पूरे मामले में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि ये दूसरे सीनियर शिक्षिका हैं जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
6: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
7: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
6: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था, जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
7: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
6: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक मनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक से 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई है, ऐसे में पीएम मोदी शिक्षा मंत्री को तुरंत पद से हटाएं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और लगातार वीडियोस भी साझा कर रहे हैं और फिर से निशाना साधा।
8: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले

0: चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी के बंपर जीत का भी जिक्र किया और साथ ही उस झालमुड़ी की भी उन्होंने बात की जो कि बंगाल चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था।
0: साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: और शंखनाद में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal and finalize everything from home.
4: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
3: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।

0: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
1: लायन डेट नट बाइट्स।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
3: जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
10: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
11: विक्रम एक हिंट तो देते।
12: विक्रम
11: हिंट
10: बड़े आराम से।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रोफाइबर है।
13: माइक्रोफाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे।
17: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
18: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
19: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
21: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
22: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
23: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
24: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
25: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
26: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: In association with
7: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
3: जहां खबर वहां खबरदार.

वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद आज भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपने रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: भोजशाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ है कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं और हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां वहां पर रह गई, जैसे घंटे, काल सर्प और भी बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है और यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं। उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: एमपी के सीएम मोहन यादव ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, एमपी में सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे राम मंदिर के फैसले को सभी ने स्वीकार किया, वैसे ही इसका भी होना चाहिए।
4: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
5: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहाँ तो राहिर्मी और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। देश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
3: विशेष में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच फ्रॉम टुडेज हिट्स
9: समबडी सेव मी
8: टू टाइमलेस फेवरेट्स
9: लाइक अ सॉन्ग
8: एंड न्यू डिस्कवरीज
9: सो मच मोर देन अ हिस्ट्री।
8: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: You and I, so much more than a history.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
2: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
1: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
3: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रो फाइबर है।
6: माइक्रो फाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
6: हमारे सीमेंट में नहीं है,
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: The taste of success.
12: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
13: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
20: In association with
21: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
22: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है अभी हमने उसको देखा नहीं है। हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गुमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए बात यह आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है, वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए। लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था। वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening.
5: किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
6: है। भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
5: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
7: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है,
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप ने सीधा काम करने को टाल दिया।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: आज से 12 वर्ष पहले दो हजार 2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर लें भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक प्रधानमंत्री मोदी की 7 अपीलें अगर सरकार की नजर में वक्त की जरूरत और भविष्य का रोडमैप मानी जा रही हैं, तो विपक्ष के लिए यह गैर जरूरी और डराने वाला कदम है। सोना न खरीदने की सोच हो, तेल की खपत कम करने की बात हो या फिर स्वदेशी अपनाने का आह्वान, इन अपीलों का कारण क्या है? क्या भारत के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है या फिर ये कदम भारत को ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकते हैं? क्या आम लोगों की छोटी छोटी आदतें देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सकती हैं? पेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के आर्थिक पहलुओं पर श्वेत पत्र।

0: जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले।
1: कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देश से 7 वचन मांगे हैं। ये 7 वचन बचत की सलाह है, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए किसी योजना का ब्लूप्रिंट है, किसी महासंकट से पूर्व की चेतावनी है, या युद्ध से जूझती दुनिया के बीच भारत के लिए सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। देश के सामने इन दिनों कई सवाल हैं।
3: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year. And certainly during the elections.
4: 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है, फर्टिलाइजर पे भी कोई कीमतें नहीं बढ़ाई है। 3,000 रुपए के खर्च के सामने किसानों को आज भी वही पुराना रेट देना पड़ता है, 300 रुपए, यानी 90%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने बोझ अपने ऊपर उठाया।
5: हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है।
6: हर आम आदमी को अपनी जिंदगी की शैली में अगर 10-10% भी कटौती करे, अपने घूमने में, अपने गाड़ी चलाने में, अपने खाने में, तेल की खपत में, खाने के तेल की, तो ये आप ये सोचिए कि 140 करोड़ लोग अगर ये खपत करना शुरू कर दें तो हमारी कितनी बचत हो जाएगी।
2: क्या प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके लिए वो देश को पहले से तैयार करना चाहते हैं?
0: पेट्रोल, वर्चुअल मीटिंग, खाने के रेल की खपत कम करें, हम सोने की खरीद को टालें।
2: क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की अनिश्चितता, वैश्विक सप्लाई चेन का संकट, डॉलर पर बढ़ती निर्भरता और दुनिया में बनते नए आर्थिक गुट भारत के लिए भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं? आखिर क्यों 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला भारत अपने भविष्य को लेकर अलग तैयारी करता दिख रहा है?
7: भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, वो जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी।
8: हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस हो सकता है सरकार वापस दाम ले।
9: खुद विदेश चले गए और पूरे देश को कह रहे हैं कि विदेशों की यात्राएं मत करिए, और खुद विदेशी यात्रा पर निकल गए। तो दरअसल अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी रिहाई का सौदा करने के लिए, उसकी वसूली देश की जनता से की जाएगी।
10: कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
2: प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने को कहा तो इससे देश को क्या फायदा होगा? खाने वाला तेल कम खर्च करने को कहा तो इसका विदेशी मुद्रा भंडार से क्या संबंध है? गाड़ी कम चलाने को कहा तो इसका देश की बचत से क्या कनेक्शन है? प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक साल तक विदेश यात्रा टालने को क्यों कहा? हम आपको आसान शब्दों में आज ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री को 24 घंटे के अंदर 2 बार देश से ये अपीलें क्यों करनी पड़ी, क्यों वो देश की जनता को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति बनाने को पुकार रहे हैं।
11: देशी मुद्रा बदलना जरूरी है, हमारे इंडियन इकोनॉमिक को भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इससे। इस वजह से हम लोग कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर खरीद लेंगे। कोशिश करेंगे नहीं खरीदें, जितना घर में उससे काम चला लें। हम लोग तो सरकार के पक्ष में हैं, नहीं खरीदेंगे।
12: सोच यही है कि एक के बचत करने से नहीं होगा, भारत में जितने भी सदस्य हैं सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छा है सबके लिए।
9: यहाँ पे जो खरीदने आए सोना, ये अपने पुराने सोने को एक्सचेंज करके खरीदने आए हैं, ना कि नया सोना अपने नई मुद्रा से खरीदने आए हैं।
13: अन्य माध्यम ढूंढेंगे, जैसे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं या थोड़ा सा भी टाइम मिला तो चलो ऐसे घूम के आते हैं, तो उस सब पे थोड़ा सा रोक लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे मेट्रो है उसका यूज करेंगे।
14: अब रेट बढ़ जाने की वजह से आम व्यक्ति के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3-4 रुपए शायद जो रेट बढ़ा है डीजल और पेट्रोल पे, तो ऑलरेडी इतना महंगा था, तो अब वही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को।
2: देश पर जब जब संकट आया तब तब प्रधानमंत्रियों ने देश की जनता से सोने को लेकर अपील की है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा और सेना की मजबूती के लिए देश की जनता से स्वेच्छा से सोना दान करने की अपील की थी। 1967 में विदेशी मुद्रा के भारी संकट के समय इंदिरा गांधी ने देश की जनता से किसी भी रूप में सोना न खरीदने की अपील की और गोल्ड कंट्रोल एक्ट भी लागू किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या देश इस समय किसी भारी संकट से जूझ रहा है।
15: भारत में आमतौर पर सोना आभूषण और सोने के बिस्किट या सिक्कों की शक्ल में खरीदा जाता है, हालांकि अब गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं। लेकिन हम आपको आभूषण और सिक्कों की खरीद का एक आंकड़ा दिखाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में 2025 की पहली तिमाही में 82 टन सोने के आभूषण खरीदे गए, लेकिन 2026 की पहली तिमाही में यह गिरकर 66 टन पहुंच गया। हालांकि सिक्कों और बिस्किट के मामले में यह बिल्कुल उल्टा रहा, 2025 की पहली तिमाही में 47 टन सोने के सिक्के और बिस्किट खरीदे गए, जबकि 2026 में यह बढ़कर 62 टन हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान सोने की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल था और लोगों ने निवेश के लिहाज से सोना ज्यादा खरीदा। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों कह रहे हैं कि सोने की खरीद को टाल दें।
1: देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा, विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: सोना सिर्फ एक महंगी धातु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सोने के आभूषण खरीद में चीन और भारत सबसे अग्रणी देश हैं। ये दोनों देश दुनिया की आधी से अधिक ज्वेलरी डिमांड तैयार करते हैं। हर साल भारत में 700 से 800 टन तक सोने की खपत होती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील करने से पहले ही साल 2026 में खपत कम हो गई थी। जनवरी में 100 टन थी, फरवरी में 65 से 66 टन रह गई और मार्च में 20 से 22 टन ही खपत हुई। अप्रैल में सिर्फ 15 टन आयात रह गया था। सप्लाई में रुकावट, बैंकों से अनुमति में देरी, कस्टम क्लियरेंस और टैक्स से जुड़ी अनिश्चितता को आयात में गिरावट का कारण माना गया और अब पीएम मोदी की अपील के बाद भी कुछ असर मार्केट पर देखने को अभी से मिल रहा है।
16: हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें काफी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक बड़ा कहते नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान के हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम आगे करें और पूरा साल हम कैसे ये बिजनेस को आगे ले जाए।
17: अपील है प्रधानमंत्री जी और सरकार से कि जैसे कोई भी निर्णय ले
4: तो इसमें अपने हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो नेशनल बॉडी है और जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनके साथ एक संकलन करके इसमें हमें भी नुकसान कम हो और देश में भी विदेशी उन्यामण की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो।
17: ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ये है ना, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें काम करने वाले लोग हर महीने हर दिन की कमाई पे भी चलते हैं, तो इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा।
2: यहाँ कई सवाल एक साथ उठते हैं। भारत गोल्ड खपत का अग्रणी देश है तो भारत खुद कितना सोना पैदा करता है? भारत में सोने की वास्तविक स्थिति क्या है? भारत का सोना दुनिया में कहाँ कहाँ है? पीएम सोना ना खरीदने की अपील क्यों कर रहे हैं?
15: भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं में से एक है। सोना भारत में स्टेटस सिंबल है, निवेश की सुरक्षित गारंटी है, शादी विवाह की जरूरी रस्म है। देश में साल भर में जितने सोने की खपत होती है उसका 50% अकेले शादी के सीजन में खरीदा जाता है। औसतन शादियों में 30 ग्राम से 250 ग्राम तक सोने का इस्तेमाल होता है। शादियों के कुल खर्च का लगभग 25% हिस्सा आभूषण पर खर्च होता है।
2: भारत अपनी कुल खपत का 90% आयात करता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में सोने का उत्पादन बेहद कम होना। देश में कुल 4 सोने की खदानें प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से कर्नाटक की हुट्टी गोल्ड माइंस ही मुख्य उत्पादन करती है। बाकी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में जोनागिरी, ओडिशा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में उत्पादन काफी कम है। वैसे देश में 2,191.53 मीट्रिक टन से अधिक के सोने के खनिज संसाधन होने का अनुमान है, लेकिन तकनीकी और अन्य कारणों से इनका खनन सीमित है। इन सब के बीच देश में वार्षिक स्वर्ण उत्पादन लगभग 1.5 से 2 टन के बीच है, जबकि खपत बहुत अधिक है। लिहाजा भारत को अपनी जरूरत का सोना विदेश से आयात करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत सोना किन किन देशों से आयात करता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 40% सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है। स्विट्जरलैंड विश्व स्तर पर सोने की शुद्धता और रिफाइनिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद लगभग 16% सोना भारत यूएई से खरीदता है। दक्षिण अफ्रीका की खदानों से लगभग 10% कच्चा सोना भारत आता है। इसके अलावा पेरू, घाना और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ कुछ मात्रा में सोना आयात किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि सोना खरीदने को प्रधानमंत्री मना क्यों कर रहे हैं और इससे क्या असर पड़ेगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डेटा के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 690.69 बिलियन डॉलर है। आरबीआई के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। दुनिया में चल रही जंग के असर के कारण अप्रैल में ये घटकर 690 बिलियन डॉलर रह गया।
18: विदेशी मुद्रा भंडार को हमें, जो हमारे पास इस समय 700 बिलियन डॉलर के आसपास का है, उसको हमने लंबे से लंबा चलाना है, जिससे कि देश की वो बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके जो कि हमारे देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हाल पर ना ले आए।
2: अब यहाँ सवाल ये उठ सकता है कि इसका आम भारतीयों के सोना खरीदने या ना खरीदने से क्या संबंध है। तो अब ये समझिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अनुमान लगाया है कि 2026 में भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो GDP का लगभग 2% होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने का सीधा मतलब है देश में आने वाले डॉलर के

0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित कर दिया। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ये रास्ता बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील कर डाली।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ भी। इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, अगर खपत कम नहीं हुई तो महंगे आयातित तेल का बोझ संभालना मुश्किल हो सकता है। इसका असर तेल आयात बिल, विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई, रुपए की मजबूती और उद्योगों की लागत पर पड़ सकता है। सरकार की ये अपील किसी पाबंदी के तौर पर नहीं बल्कि भविष्य के आर्थिक जोखिम को कम करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है।
2: जो भी चीज हम विदेश से मंगाते हैं, अगर मैं टॉप तीन चीजों का नाम लूं जो विदेश से यहाँ आती है, सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है करीब $140 बिलियन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो कि क्योंकि हम मोबाइल फोन बहुत मात्रा में बना रहे हैं उसके जो कलपुर्जे हैं वो विदेश से आते हैं, और तीसरे नंबर पर गोल्ड आता है। तो प्रधानमंत्री जी ने देखिए जो चीज हमारी एक्सपोर्ट होती है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, तो उन्होंने इसलिए क्रूड और गोल्ड के ऊपर बात करी कि क्रूड को आप बचत करिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, स्कूल्स को सलाह दी ऑनलाइन आप क्लासेस लीजिए। तो हमें अगर थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, अगर भारत का हर नागरिक थोड़ा थोड़ा इन चीजों का इस्तेमाल कम करेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो तेजी से कम होगा अगर क्रूड ऑयल के दाम ऊपर रहे तो वो कम होने से बच जाएगा।
3: एनर्जी कंजम्पशन इज एक्चुअली गॉन अप। इफ आई लुक्ड एट सम स्टैटिस्टिक्स व्हिच माय कॉलीग्स गेव मी यस्टरडे, पेट्रोल कंजम्पशन इज गॉन अप बाय 6% इन अ क्राइसिस। देयर बीन नो शॉर्टकट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो ड्राई आउट्स। एवरी पेट्रोल पंप इन द कंट्री हैज हैड पेट्रोल डीजल, LPG supply is more than enough।
0: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर पीएम मोदी ने तेल बचाने की अपील क्यों की है? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। भारत अपनी जरूरतों का 85-90% तेल आयात करता है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल का रिफाइनरियों के पास मौजूद स्टॉक और विदेश से आ रहे तेल को मिलाकर भारत की कुल भंडारण क्षमता लगभग 10 करोड़ बैरल तक है। इसके अलावा 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है। ये आपातकालीन तेल भंडार उस हालात में काम आएगा जब तेल बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये जमीन के नीचे बने विशाल भंडार है जहां लाखों टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा जाता है ताकि सप्लाई रुकने पर देश की जरूरतें पूरी की जा सके। भारत ने अपने आपातकालीन तेल भंडार रणनीतिक तौर पर अलग अलग जगहों पर बनाए हैं। इनमें पहले चरण में विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में बड़े भूमिगत तेल भंडार तैयार किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के पहले चरण की कुल क्षमता करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। अगर पूरी तरह तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो ये भंडार भारत की जरूरतें लगभग 9.5 दिनों तक पूरा कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? दरअसल भारत के पास इसका दूसरा बैकअप भी है। भारत के पास तेल कंपनियों के कमर्शियल रिजर्व भी मौजूद हैं। सरकारी भंडार और कंपनियों के स्टॉक को मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास करीब 74 दिनों तक देश चलाने लायक तेल भंडारण क्षमता मानी जाती है। अगर अमेरिका ईरान संघर्ष लंबा खींचता है और 74 दिनों का भंडार भी घटने लगता है तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसमें पेट्रोल डीजल की राशनिंग, घरेलू कीमतों की भारी बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा भंडार

0: पर बड़ा दबाव आ जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी अभी से ईंधन बचाने पर जोर दे रहे हैं।
1: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
0: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना करीब 87.45 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल है। 2026 में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर लगभग 134.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल का होता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 37 से 39% है। डीजल का उपयोग मुख्य रूप से ट्रक, बस, खेती और दूसरे भारी वाहनों में किया जाता है। वहीं पेट्रोल की हिस्सेदारी करीब 14 से 16% है और इसका लगभग पूरा इस्तेमाल कार, बाइक और दूसरे सड़क वाहनों में होता है। एक आम भारतीय हर महीने औसतन करीब 9 लीटर ईंधन खर्च करता है, जिसमें लगभग 3 लीटर पेट्रोल और 6 लीटर से ज्यादा डीजल शामिल है। यानी साल भर में एक व्यक्ति अकेले करीब 109 लीटर ईंधन जला देता है। इसमें डीजल की खपत इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत में डीजल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं, माल ढुलाई बढ़ती है और नए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डीजल की मांग भी तेजी से बढ़ने लगती है और ये सीधे तौर पर देश में महंगाई से भी जुड़ता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील से थोड़ा सा बदलाव भी आया तो ये बड़ा कदम होगा। चलिए हम आपको बताएं कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किस देश ने पेट्रोल के दाम कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी म्यांमार में दर्ज की गई, जहां दाम करीब 89.7% बढ़े। इसके बाद मलेशिया में 56.3%, पाकिस्तान में 54.9%, यूएई में 52.4%, अमेरिका में 44.5% की बढ़ोतरी हुई। फिलीपींस में पेट्रोल 40.6%, श्रीलंका और नेपाल में 38.2%, दक्षिण अफ्रीका में 33.1%, कनाडा में 31.9% महंगा हुआ। वहीं चीन में पेट्रोल 21.7%, फ्रांस में 20.9% और ब्रिटेन में 19.2% महंगा हुआ। इसके मुकाबले में भारत में पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सऊदी अरब में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इधर भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम भी उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बड़ी डील हुई है। दोनों देशों ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई के कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत यूएई अब भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया।
2: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स टू अ लेवल ऑफ 30 मिलियन बैरल्स, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स इन इंडिया एंड लॉन्ग टर्म एलपीजी ऑफटेक सप्लाई एग्रीमेंट्स। In the field of investment, the UAE has traditionally been a significant investor in India. It's cumulatively the 7th largest investor in India over the course of the last 25 years.
3: पेट्रोल डीजल बचाने की कड़ी में वर्क फ्रॉम होम का मुद्दा जुड़ जाता है। दुनिया के कई देशों में अब वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में नेदरलैंड सबसे आगे है, जहां करीब 52% कर्मचारी नियमित रूप से घर से काम करते हैं। कनाडा दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 43% लोग घर से काम करना पसंद करते हैं। ब्रिटेन में करीब 38% कर्मचारी हाइब्रिड मॉडल पर काम करते हैं, यानी दफ्तर भी जाना है जरूरत पड़ने पर और घर से भी काम होता है। जर्मनी में करीब 25% लोग घर से काम कर रहे हैं। भारत में इस कल्चर को कोरोना के समय अपनाया जा चुका है और इस बार पीएम की अपील के बाद कई राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू भी कर दिया है।

0: तेल बचाने की अपील अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रही, ये सीधे भारत के ऑफिस कल्चर तक पहुंच चुकी है।
1: ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद देश में फिर से वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा तेज हो गई है। कई कंपनियां और सरकारी संस्थान अब सीमित वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स और कार पूलिंग जैसे विकल्पों पर काम भी कर रहे हैं।
2: गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा, और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशन उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए, ये एडवाइजरी होगी। और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा, जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें।
0: भारत ने कोरोना काल में इसका बड़ा प्रयोग देखा था, लेकिन अब इसकी वापसी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति के तौर पर हो रही है। दफ्तर जाने में तेल की खपत बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट में कम ईंधन खर्च होना सीधे भारत के आयात बिल और विदेशी निवेश दबाव को कम कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े शहरों जैसे गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और मुंबई में एक दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू हो जाए तो लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद के आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम से रोज करीब 6 लाख लीटर ईंधन बचाया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा असर शहरों में ट्रैफिक पर पड़ सकता है। हाइब्रिड वर्क से सड़क पर गाड़ियां कम होंगी, प्रदूषण घटेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव भी कम होगा। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कर्मचारियों के लिए सुविधा नहीं बल्कि कंपनियों के लिए खर्चे कम करने का तरीका भी बन चुका है। ऑफिस की बिजली, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च घटता है। वर्क फ्रॉम होम भारत के लिए सिर्फ तेल बचाने का जरिया नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने का तरीका भी है। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ सकता है, बड़े शहरों पर दबाव कम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार लगभग 40 देशों ने ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। श्रीलंका और फिलीपींस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू किया। इंडोनेशिया और म्यांमार ने ईंधन संकट के चलते रिमोट वर्क और ऑफिस आने के दिनों में कटौती की। पाकिस्तान ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम की है। वियतनाम ने कंपनियों को ऑनलाइन मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। थाईलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश जैसे देशों ने AC उपयोग सीमित करने, गैर जरूरी यात्रा रोकने और काम के समय में बदलाव जैसे उपाय अपनाए हैं। यूरोप में भी ऊर्जा संकट के दौरान कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के सीमित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। यानी दुनिया अब समझ रही है कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ईंधन और ऊर्जा बचाने का बड़ा हथियार भी है।
3: स्वदेशी अपनाने का सीधा मतलब देश में बने उत्पादों की मांग बढ़ना, लोकल उद्योगों और छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत का आयात खर्च घट सकता है, देश का पैसा देश में ही घूमे जिससे GDP और निवेश दोनों बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों की अहमियत प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार बता चुके हैं।

0: आज देश के सामने ऐसा संकट है जो सीमाओं पर हथियारों से नहीं बल्कि आम लोगों की जेब और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर लड़ा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भयंकर युद्ध के कारण दुनिया भर की आर्थिक धमनियां चोक हो चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल के पार जाने का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया एक बड़ी आर्थिक तबाही की दहलीज पर खड़ी है।
1: ईरान का देखो एक होता है हॉट वॉर, जो हम इंडियन आर्मी में यूज करते हैं कि हॉट वॉर होता है कि बिल्कुल आपका आपस में लड़ाई हुई है, जो हुई है पीछे। ये नो वॉर नो पीस वाली जो सिचुएशन चल रही है ना, ये कोरिशन की होती है, अगले को धमकाना, अगले की बाजू मरोड़नी, अगले पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना, और फिर अपनी भी जो अमेरिकन जो उनका नुकसान हुआ है, जो खत्म हो गया है एमुनिशन, उसको रीबिल्ड करना, उनकी फैक्ट्रियां, उनके भी लिमिटेशंस हैं, इतनी ज्यादा नहीं। आपको पता उन्होंने कहां कहां से अपने एयर डिफेंस सिस्टम मूव किए, पैट्रियट मिसाइल जो कितनी डिन्यूमल, कितनी कमी होगी उनके स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा इसमें समझौता होने वाला नहीं है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश से बचत की कई और अपीलों के साथ स्वदेशी 2.0 की अपील भी की है। एक बार उन्होंने कोरोना संकट के समय स्वदेशी की अपील की थी, अब वैश्विक हालात से उपजी स्थितियों को आपातकाल की दस्तक मानते हुए देश से आर्थिक राष्ट्रहित की बात कही है। स्वदेशी अपनाते हुए देश के डॉलर भंडार को बचाने का मुद्दा उठाया है।
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।
0: दुनिया दरअसल इस दशक के सबसे बड़े भू राजनीतिक संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट के अस्थिर हालात ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज के रास्ते से आयात होता है और ये पूरा क्षेत्र जंग का मैदान बना हुआ है, जिससे भारत में एक तो ऊर्जा का संकट बढ़ सकता है, दूसरे अधिक कीमत चुकाने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से कम हो सकता है। भारत पर इस समय आर्थिक दबाव इतना है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक स्तर पर गिरावट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। रासायनिक खाद खरीदने पर भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है। डीजल की जगह सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने को कहा है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के जरिए विदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की जगह स्वदेशी और घरेलू स्तर पर बने उत्पादों को अधिक से अधिक अपनाने की अपील की।
2: खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं, हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए।
0: युद्ध और उसके बाद उपजते हालात को लेकर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताते हुए दुनिया को गहन आर्थिक मंदी की ओर बढ़ने का खतरा जताया है। ऐसे में विदेशों पर जितनी अधिक निर्भरता रहेगी, देश उतना ही कमजोर होगा। प्रधानमंत्री मोदी देश से इसके लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी पद्धतियों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री ने जनता से 7 अपील की, तो जरूरत थी लीडिंग बाय एग्जाम्पल की, यानी खुद एक मिसाल बनने की। और सबसे पहले खुद पीएम ने अपने काफिले से गाड़ियां कम कर दी और सिर्फ 2 से 4 गाड़ियों को ही अपने काफिले में रखा। बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसका अनुकरण किया। देवेंद्र फडणवीस बाइक से दफ्तर पहुंचे, मनोज तिवारी ईवी से, राजनाथ सिंह ने राजस्थान के सीएम के साथ कार पूलिंग की, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ही चल निकले।

0: मोटरों का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें,
1: भारत में जरूरत का अधिकांश तेल आयात से आता है और कीमतें डॉलर में चुकानी पड़ती हैं, जिसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर दुनिया ऊर्जा आपूर्ति के संकट से गुजर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपनी 20 कारों के काफिले को घटाकर 2 कार कर दिया। देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी इसका अनुसरण किया। लोकसभा स्पीकर ने कारें कम कर दी। कानून मंत्री ई रिक्शा से आने लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बुलेट से विधानसभा पहुंचे। हरियाणा के सीएम ने काफिले से कारें कम कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या तत्काल प्रभाव से 50% घटाने को कहा है। साथ ही मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए नो व्हीकल डे मनाने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों और बड़े ऑफिसेज में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और सेमिनार, बैठक, वर्कशॉप आदि को ऑनलाइन करने को कहा है।
2: ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं।
1: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री सुरेश खन्ना तो साइकिल से ही विधानसभा आने लगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। प्राइवेट कंपनियों को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में 60% की कटौती की, जिससे अब उनके काफिले में 4 गाड़ियां रह गई हैं। इनमें से 2 इलेक्ट्रिक हैं। अधिकारियों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 20% की कटौती की और अगले 6 महीने तक कोई नई गाड़ी न खरीदने का फैसला लिया है।
3: मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर देशव्यापी है। हल्दिया के बीजेपी विधायक भी साइकिल पर आ गए। गुजरात के राज्यपाल साइकिल पर हैं।
4: मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा, और ज़्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा, 3 गाड़ी से ज़्यादा मैं कारकेट में नहीं रख रहा हूँ।
1: औरंगाबाद के जिला जज भी साइकिल से अदालत पहुंच रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम के मेयर और पार्षद साइकिलों से दफ्तर आने लगे। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि पीएम मोदी की तेल बचाने की अपील देश हित में एक अभियान बन चुकी है और तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: कूल फैंस से घर को सजाएं।
3: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
2: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
5: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: विक्रम, एक हिंट तो देते।
7: विक्रम!
6: हिंट।
5: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
5: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: जब अपना कोई

0: किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
1: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
0: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
2: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
3: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
4: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
7: Take a date, not bites.
8: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
7: Lion Date Nut Bites.
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: GK Max.
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: GK Max. Best पुट्टी?
12: JK Wall Max.
10: Best paint?
12: JK Max.
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: JK Max Paints.
10: JK Max Paints. खुशियों के रंग।
13: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
16: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
15: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है,
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
9: Take a date, not bites.
10: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
9: Lion Date Nut Bites.
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
16: इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
17: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरी और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत। वक्त है बहस बाजीगर का और आज यहाँ पर जनता में जबरदस्त जोश है, युवा हैं। तो सबसे पहले नीले गमछे वाले ये युवा हैं, आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। मोशन हम बताएंगे, लेकिन एक तरफ नीले गमछे वाले हैं, दूसरी तरफ सफेद गमछे वाले हैं। कितना उनमें जोश है, कितना एक्साइटमेंट है, कैसे अपनी अपनी टीम को वो सपोर्ट करते हैं, कौन अपने पक्ष में होती। सफेद गमछे वाले मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, मतलब इनका कोई भाव ही नहीं है दुनिया में, ये एकदम मोक्ष पा चुके हैं जीते जी। शांति प्रिय लोग हैं और बस इनको शांति चाहिए हर चीज में। और ये लाल गमछे वाले लोग हैं, आप भी तालियों के साथ बहुत स्वागत है। तो ये जोश इसलिए दिख रहा है क्योंकि टॉपिक इनको पहले बता दिया गया है, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत मंत्र लागू हो चुका है। एक एक कर बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं उन उपायों की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें कमोवेश कोविड काल जैसा ही संयम और बरता जा रहा है, जैसे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को कह दिया गया है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 1 दिन मेट्रो डे, जिसमें उनको मेट्रो से सवारी करनी है यानी कार को त्यागना है। लेकिन विपक्ष इसको कह रहा है कि ये सरकार की नाकामी के सबूत है, आपने इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की थी इसलिए आपको ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3-3 रुपए अलग बढ़ गई हैं। देखिए, राजनीति के वार पलटवार के बीच ये भी सच है कि अर्थव्यवस्था में 3F यानी फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, फ्यूअल यानी ईंधन और फर्टिलाइजर यानी खाद, जो दोनों ही फॉरेक्स से खरीदे जाते हैं, फ्यूअल भी फर्टिलाइजर भी, ये 3 सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बचत मंत्र है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी है, तो इस 3F को हमें अच्छे से संभाल कर रखना है। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन रखा है हमने, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है। पहले विषय को जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर शुरुआत करें।
1: आपको बताते हैं कि आज की इस बहस का मकसद और आधार क्या है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 विशेष अपील की।
2: वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए,
1: जिनका संदेश था नेशन फर्स्ट, स्वदेशी और बचत, तेल बचाना है, विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है।
2: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम सोने की खरीद को टालें, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए।
1: अब सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ये अपील क्यों करनी पड़ी? तो इसके पीछे है युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन का बिगड़ जाना। जब दुनिया लड़ रही है तब भारत को अपनी ताकत खुद बनना होगा। आपको ये समझना होगा कि आज इस बहस की जरूरत क्या है। आज कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, रुपया गिरेगा तो असर जेब पर होगा। इसलिए आज ये सवाल है कि इस संकट से बचना कितना मुश्किल है, क्या बचत ही संकट से बचा पाएगी, क्योंकि देश का पैसा देश में रहना जरूरी है। इसलिए आज हम पूछेंगे कि क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है।
0: तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है, आज का ये विषय है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जो हमेशा से देखते आए हैं उनको तो पता है, 3-3 लोगों की 2 टीमें यहां पर आने वाली हैं, जो फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे, और 3 जजेस यहां पर पहुंचने वाले हैं। जनता उन्हें मार्क करेगी सवाल के जवाब के आधार पर कि किस टीम ने उनको ज्यादा कन्विंस किया, लेकिन जजेस ये तय करेंगे कि आज इन 6 वक्ताओं में से बहस बाजीगर कौन बनेगा। तो आइए स्वागत करते हैं अपने 3 जजेस का। साथ स्वागत करते हैं कमलेश किशोर जी, 3 ताल के ताऊ हमारे जज बनकर आ जा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिजॉन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और सिद्धार्थ जरा भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए, ग्रुप एडिटर हैं बिजनेस टुडे के, और यहां पर सब भावी जर्नलिस्ट ही बैठे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर जर्नलिज्म के कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज टॉपिक भी उनके हिसाब से है, देखते हैं उनको कौन आज कन्विंस कर पाता है। कुछ जो आप लोग आज सुनना चाहेंगे, ताऊ
3: आपके जो प्रतियोगी होते हैं, अगर वो विषय के आसपास ही रहें तो उतना काफी होता है।
0: यही यही जबरदस्त बात कही आपने, निकल लेते हैं दाएं से बाएं से निकल लेते हैं। सिद्धार्थ जी
4: पहली बारी ये अनुभव करने वाला हूँ और होपफुली सब लोग विषय
0: पे पहली बार आ रहे हैं, वाकई जबरदस्त स्वागत है आपका, स्पेशल वेलकम,
4: बहुत बहुत धन्यवाद
0: प्रोफेसर साहब।
5: मैं भी पहली बार आ रहा हूँ।
0: क्या बात है,
5: क्या बात है,
0: आपकी गुलाबी टाई ने वैसे ही चार चांद लगा दिया मेरे शो में।
5: नहीं थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है आने पे, और हम उम्मीद करते हैं कि हंसी के साथ मजाक के साथ भी थोड़ा सीरियसनेस हो।
0: बिल्कुल सीरियसनेस होगा। और आइए अब मंच पर स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं का। पहले आइए तालियों के साथ स्वागत कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दमदार अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। प्रदीप भंडारी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से पत्रकार हैं और अब भारतीय जनता पार्टी थे और बड़ा घूम घूम कर रिपोर्टिंग करते थे। इनका अंदाज, इनका स्टाइल एकदम निराला था भंडारी जी का, लेकिन आज उनको फॉर द मोशन डिफेंड करना है तो उनकी भी टीम आएगी, दो लोग और आएंगे। अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंबईया हैं और कविता और शेरो शायरी खूब करते हैं, माधव आनंद जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। माधव आनंद जी एमएलए हैं और साथ ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलएम के, बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिनको चुप करना बहुत मुश्किल काम है, जो बोलते हैं तो रुकते नहीं है, नाम है अनुराग भदौरिया और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए और अब वो वक्त आ गया है जब बहसबाजी घर में पहले दो वक्ताओं को हम बुलाएंगे, सभी को डेढ़ डेढ़ मिनट का टाइम मिलेगा। आप जाहिर तौर पर क्योंकि आप इनका समर्थन कर रहे हैं तो आप उनके लिए ताली बजाएंगे और अगर आपको भी उनकी बात अच्छी लगती है आप लोग बजा सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें डेढ़ डेढ़ मिनट का समय सभी को मिलेगा और उसके बाद एक एक मिनट का रिबटल राउंड भी होगा। जजेस तय करेंगे कि आज सबसे अच्छा वक्ता कौन रहा, इन छह में से कौन बनेगा बहसबाजीगर, और जनता तय करेगी कि इन्होंने किसको कितना ज्यादा कन्विंस किया, क्योंकि हम आपसे कराएंगे वोटिंग। न सिर्फ यहां पर मौजूद जनता वोट करेगी बल्कि हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं, आप भी स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं उसे स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है, इस विषय पर बोलने के लिए पहले दोनों ही तरफ से प्रदीप भंडारी और अखिलेश प्रताप सिंह का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आइए अखिलेश बाबू, आइए आइए आइए अखिलेश जी। चलिए प्रदीप भंडारी जी, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है, इस विषय पर बोलने का आपका डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है।
6: मैं 10 सेकंड पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, तेल राहुल गांधी के घर से नहीं आता है, तेल 10 जनपद के घर से नहीं आता है, ना अखिलेश जी के घर से आता है, तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस पे ओछी बातें ना करें और फैक्चुअल बात करें। फैक्ट की बात करूंगा, आज ग्लोबल वैश्विक एनर्जी क्राइसिस है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, IAEA कह रहा है। क्या ग्लोबली संकट है? है। क्या भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है? पड़ा है। पर क्या सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है? सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचत मंत्र चल रहा है। म्यांमार के अंदर 112% दाम बढ़े, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% दाम बढ़े, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 30% दाम बढ़े, भारत के अंदर सिर्फ 3% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, 4 साल में पहली बार बढ़े, करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमारा 2% से कम है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $690 बिलियन का है। पर बचत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता ये क्राइसिस आगे तक कब तक जा सकता है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 1,00,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स खरीद ले, डेट ले ले और आप सबकी जनरेशन पे छोड़ दे। नहीं, हमारी एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इनके समय में देश डबल डिजिट डेफिसिट पे था। आज देश के अंदर हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत है। पर क्या ये मेजर्स जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जब सब लोग वो मेजर्स लेंगे तभी जाके बात बनेगी। 13 करोड़ से ज्यादा बाइसिकल्स और स्कूटर्स हैं, अगर 10 लीटर तेल भी हम बचाते हैं तो 160 करोड़ से ज्यादा की बचत होती है।
0: बहुत अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी कर दी इधर से, अब ओपनिंग बैट्समैन इधर से मोर्चा संभालने वाले हैं, पैड हेलमेट पहनकर तैयार हैं अखिलेश प्रताप सिंह यूपी वाले, और आपका डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
7: मोदी जी का नारा है सरकार हमारी है और समस्याएं तुम्हारी हैं। विदेश दौरे पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं और लोग विदेश ना आए, जितनी भी समस्याएं आई हैं मोदी जी ही लाए हैं। आप देखिए, आज दो दिन पहले मोदी जी बता रहे हैं कि तेल बचाओ। चुनाव के पहले से ये समस्या आ चुकी थी, फरवरी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब चुनाव लड़ना था मोदी जी को, तब उनको ये समस्याएं नहीं आई। क्या मैं देश को किस किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए तब ये बताना भूल गए? राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि ये पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान में, ये पश्चिम एशिया में ये समस्याएं आ रही हैं, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आइए हम सब मिल करके बात करें, इसके लड़ने की तैयारी कर लें। लेकिन मोदी जी ने चुनावी मोड में थे, जब जब विपक्ष ने कोई सुझाव सलाह दिया है मोदी जी ने उसका उपहास किया है। पहले सुझाव देने के पहले अपने आप को कथनी कर्मी करनी पे खरा उतरना पड़ेगा। कहा गया ना, मनसा वाचा कर्मणा, आपको एक रूपता होनी पड़ेगी तभी आपके बात पे कोई अमल करेगा। आप हमेशा देश को, जब भी देश पे कोई संकट आता है, आप उस संकट का मुकाबला करने के बजाय पलायन कर जाते हैं और देश के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया तुम लोग संकट से निपट लो, हमारे पास का नहीं है, हम तो चले अभी देश, यहां पे देख लो। ये प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड है वो एकदम भारत विरोधी। जो
0: समाप्त हुआ, गजब अखिलेश बाबू, एकदम गजब किया दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने, अच्छी बल्लेबाज ना, गुस्से में काहे देख रहे हैं ताऊ, टॉपिक पे रहे कि नहीं रहे दोनों?
3: हाँ, टॉपिक पे रहे हैं।
0: हाँ,
3: अब प्रदीप भंडारी जी और उनकी टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो एक सवाल जो अखिलेश जी ने, वो विदेश दौरे वाले तो इनका रेटरिक है, वो होना भी चाहिए, विपक्ष में है, वो घूमने तो गए नहीं है, काम से कहीं गए होंगे, पर इतनी देर, फरवरी के आखिरी दिन में युद्ध शुरू हो गया, एक हफ्ते के बाद पता था कि ये लंबा खींचेगा। ये जो सवाल इनका है कि इतनी देर क्यों कर दी हुजूर, ये बताने में कि हम संकट से गिरे हैं, आग जब लगी थी तभी चेताना था, अब बहुत कुछ जलने के बाद, चूंकि एक तरफ भोज चल रहा है उसको निपटाना था, तो उसका जवाब हम, मैं एक्सपेक्ट करता हूं भंडारी जी से, क्योंकि ये सवाल बड़ा है।
0: सिद्धार्थ जी जल्दी से
4: देखिए, ये दोनों पार्टियों ने अपना अपना तर्क रखा है, पॉलिटिकल तर्क रखा है, बीजेपी कांग्रेस के तरफ नहीं बोल सकती और वाइस वर्सा, परंतु सच्चाई ये भी है कि चार साल तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, एक बारी घटाए गए। क्या इसकी टाइमिंग पे वो सवाल बहुत बड़ा है, पर जब चार साल अगर किसी चीज को नहीं चेंज किया गया और 48 महीने के बाद दो महीने और जोड़ लीजिए अगर चेंज किया गया है, तो शायद ये रणनीति होगी, अगर ये अर्थनीति ना भी मानी जाए।
0: हाँ, चुनावी रणनीति। प्रोफेसर साहब,
8: कहा जाता है बेटर टू बी लेट देन नेवर। यू सी, यदि कोई डिसीजन लिया गया वो सोच समझ के लिया गया कि ये करेक्ट टाइम है, इसे लेना चाहिए,
0: ठीक है,
8: और ये देश का पक्ष में है,
0: ठीक है। इसी पर आपसे जवाब, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर इनसे
7: ले। ये जो समस्या है, मैंने शुरू में कहा कि मोदी जी के लाइए, आपने अमेरिका के दबाव में, हमारे प्रधानमंत्री अगर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं होते, अमेरिका के दबाव में अगर रूस और ईरान से संबंध खत्म नहीं करते, तो आज हम उनके मित्र बने रहते और आज हमें तेल की समस्या नहीं होती, वो अपने मित्र देशों को तेल दे रहा है। लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने अपने मित्र देशों से तेल खरीदना बना किया, बंद कर दिया। दूसरी बात, जब क्रूड ऑयल के दाम है दुनिया में सबसे कम रेट पे आए थे, $40-50 पर बैरल तक आए थे, आपने वो लाभ इस देश के लोगों को नहीं दिया, एक्स्ट्रा 3 गुना ज्यादा टैक्स लगा करके, 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ाकर के 42 लाख करोड़ रुपए 11 साल में आपने कमाए, तब तो जनता को लाभ जनता को नहीं दिया। आज जब बोझ पड़ रहा है तो बोझ आप जनता पे डाल रहे हैं, और जब पैसे 42 लाख करोड़ आप कमाए तो उसके बदले आपने अपने मित्रों का 40 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ किया, देश की जनता को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था, कम दाम में जो तेल मिलने चाहिए थे, वो नहीं दिया।
0: मतलब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मूज बंद हुआ, लेकिन 10 मई संकट आया, क्यों?
9: पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा कि रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया है, ये आज का ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, 1 घंटे पहले का स्टेटमेंट है कि रशिया टॉप एक्सपोर्टर है और रशिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये पहली बात झूठ। दूसरा, कहा कि भाई विदेश के दौरे पे जाते राहुल गांधी जैसे छुट्टी मनाने नहीं जाते जैसे मस्कट में जाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का यूएई का दौरा हुआ, इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म सप्लाई हमारा एलपीजी का और स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व बढ़े, तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, जज साहब ने कहा कि भाई अभी क्यों पता चला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसको पता था कौन सी तारीख को होगा? इसका काउंटर थीसिस क्या है? क्या हम ये चाह रहे थे कि पहले दिन ही हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दें, पहले हफ्ते ही बढ़ा दें, पहले महीने ही बढ़ा दें? ये हमारी कैलकुलेशन है भैया। हमको हमारे में दो महीने तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, दो सीज फायर जो है वो स्टॉल हो गए। किसी को नहीं पता था कि दो सीज फायर स्टॉल होंगे, और अभी भी सबको पता है कब तक जाएगा, किसी को नहीं पता। बात चुनाव की रही, अंजना जी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करवा दीजिए, कोई भी चीज को चुनावी लेंस से देखना बंद हो जाएगा। आज ही समर्थन।
0: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं, अगले वक्ता को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, पेपर समेट लीजिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। माधव आनंद और आनंद दुबे, आप दोनों का बहुत स्वागत है, अपनी अपनी जगह लीजिए। डेढ़ डेढ़ मिनट का टाइम मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आप टॉपिक पर रहेंगे और धारदार अंदाज में अपनी बात को कहेंगे। माधव आनंद जी, आपका डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है।
10: विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जो 7 अपीलें भारतवासियों से की है, मुझे लगता है कि इसको एक सरकारी नारा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। निश्चित रूप से जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमेशा से उस रूप में देखने की आवश्यकता है। और आज के जो वैश्विक स्थिति है, हम सब लोग जानते हैं कि आज की स्थिति क्या बनी हुई है, और उस स्थिति में चाहे कोविड हो, चाहे वैश्विक युद्ध की बात हो या सप्लाई चेन की बात हो, जो संकट है उस स्थिति में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतवासियों से अपील की है, यह अपील विकसित भारत बनाने की दिशा में एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और इसका हम लोग सब लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। आज वो भारत भारत नहीं रहा, एक समय था कि भारत को कहा जाता था टेक्नोलॉजी इंपोर्टर के रूप में कहा जाता था, आज वही भारत डिजिटल पब्लिक सप्लायर के रूप में जाना जाता है। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम बाजार नहीं है, भारत कहता है हम उत्पादक भी हैं। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम जो है आपको जो है सप्लायर के नहीं, हम इंपोर्टर ही नहीं है, आज हम जो है सो निर्यातक के रूप में भी जाने जाते हैं। आज आप पहले लोग नौकरी मांगते थे, आज स्टार्टअप के माध्यम से लोग नौकरी देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको राजनीतिक के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। विकसित भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको साकार करने के लिए, और जो उन्होंने 7 वचन जो है, 7 जो है रिक्वेस्ट हम लोगों से किया है, हम सब लोगों को मिलकर समर्थन करना चाहिए राष्ट्र हित में। और मैं तो कहता हूं, सीताराम केसरी कहा करते थे वही न खाता, जो कहे सीताराम केसरी वही सही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबको भरोसा है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबको सुननी चाहिए।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आपकी बल्लेबाजी, डेढ़ मिनट की शुरू होती है।
11: सभी को हमारा नमस्ते। देखिए, आजादी के बाद से ही जब जब इस देश पर संकट आया है, सभी दलों ने इकट्ठा आने का हमेशा काम किया है, चाहे वो दल सरकार में बैठी हो और चाहे वो विपक्ष में बैठी हो। सवाल हम पूछेंगे आपसे, जब देश भावना हमारे खून में है, हमारी रगो रगो में, और देश अगर संकट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम तो सवाल आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, आप आज से 12 साल पहले सरकार में आए थे अच्छे दिन का वादा करके, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने आपको एक सरकार सौंपी थी, तब हमारे रुपए के मुकाबले डॉलर क्या था, 60 रुपए के करीब था। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप कहते थे, जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे उस समय तो रुपया लुढ़का करता था, आज तो 95 के पार रुपया सोने के कगार पर बैठा है, सोया हुआ है, निद्रा में है, हमें उसे जगाना है, हमें आपके अंतरात्मा को जगाना है। कि जब आपको पता था कि 28 फरवरी से स्टेट ऑफ हार्बोर्स बंद हो सकते हैं, युद्ध आज चलेगा, कल चलेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा, बंद होगा, आपको जब जानकारी थी, आपने पूरे मार्च को देखा, आपने पूरा अप्रैल देखा, आप नारे लगाते रहे, 4 मई भाजपा आई, और जब 10 मई आई तब आपको चिंता सताई, तब आपको महंगाई की याद आई, तब आपको इस देश की याद आई, नौजवानों की याद आई, तब आपने कहा, भाइयों और बहनों मेरी पुकार पर सोना खरीदना छोड़ दो, अरे भैया विदेश यात्रा जाना छोड़ दो, अरे भैया डीजल पेट्रोल बचाना कम कर दो। ये क्या है, मतलब पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आप खुद पहले उदाहरण दीजिए।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ जल्दी से छोटे सवाल अगर पूछ रहे हो, पूछे प्रोफेसर साहब।
8: नहीं, हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जो पैसा इकट्ठा होता है, यदि आप क्रूड का प्राइस ज्यादा है और आप उसको पास ऑन नहीं कर रहे हो, तो उसका फायदा किसके पास जाता है? कंट्री में जाता है, आम जनता पे जाता है, क्योंकि हर बजट को फुलफिल करने के लिए हमको रकम उस वसूलना पड़ता है। तो अभी जब संकट आ जाए और जब हम जानते हैं कि अब
12: हमको सबको जोड़कर इस काम को करना होगा, तो नेचुरली नेचुरली

0: होगा, जितनी आज हमारा जीडीपी अगर ये डबल होगा तो तेल पेट्रोल डीजल गैस की खपत भी बढ़ने वाली है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक देशवासी लाभ ले और दूसरा ना ले, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तु स्थिति जो आज हमने इस ऑडिटोरियम में देखी यही है।
1: चलिए तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आइए इनको बुलाने की क्या जरूरत है, बिना इनको चुप कराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। क्या मोदी, एक टॉपिक बता दूं ताकि भूल ना जाए ये लोग, क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है?
2: कांग्रेस ने समस्याओं की जितनी लगाई थी क्यारियां क्यारी, उन सबको दूर करने की हमारी ही है जिम्मेदारी, ये मेरा जवाब कांग्रेस को है। बचत मंत्र, जब दुनिया में वैश्विक संकट आया उसके बाद 40 देशों से आयात करने के लिए और समझौते हुए, 50% एलपीजी बढ़ा, उम्मीद थी कि शांति वार्ता चलेगी, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, भारत ने सतर्कता दिखाई। एक देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है अपने नागरिकों के प्रति, वो देश को आगाह कर थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा बचत कर लेते हैं, थोड़ा सोना कम खरीदते हैं, वर्क फ्रॉम होम चले जाते हैं, थोड़ा जैविक खाद पर लौटते हैं। इस बचत में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ उठ गया कि सब उनको बुला के बात करते बचत के लिए कि चलो मिलके बचत करते हैं, अरे कहा है कूद पड़ो राष्ट्र के निर्माण में, बचत के अभियान में, नहीं गाल बजाएंगे बचत नहीं करेंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा निकल पड़ी, 11 करोड़ आमदनी, 56 करोड़ का विदेश यात्रा, 22 उनपे जाना नहीं चाहते, लेकिन बचत इस राष्ट्र की एक नॉर्मल सी गति है, हर व्यक्ति करता है, राष्ट्र एक साथ करे राष्ट्र समृद्ध होगा। अब यदि हॉर्मुज स्ट्रेट से आने लगे जहाज तो हम जितना बचत कर पाएंगे तो हमारा जो डॉलर है वो बचेगा, सोना कम खरीदेंगे, पिछले साल 71 अरब डॉलर का सोना खरीद लिया, अब कम खरीदेंगे तो चलेगा। सिक्किम 100% जैविक खाद का राज्य बन सकता है तो बिहार यूपी क्यों नहीं बन सकता है?
1: इसलिए जैविक उद्योग पर नजर है। आपका विषय है 1.5 मिनट का बोलने का पेट का दर्द, नहीं उन्होंने कहा था क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है, आपका विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है।
3: कहते हैं ना बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आपको आना चाहिए था जब चुनाव के पहले, और हमारे साथी अभी कह रहे थे कि बहुत ये सब सबको आह्वान कर रहे हैं कूद पड़ो राष्ट्र निर्माण में, अरे जनता तो राष्ट्र निर्माण में कूद पड़ रही है, विपक्ष भी कूद पड़ रहा है, लेकिन सत्ता वाले कब कूदेंगे? वो चुनाव लड़ेंगे खाली क्या? जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक उन्हें याद आएगी नहीं कि देश के अंदर क्या होने वाला है। भाई आप चुनाव लड़ रहे थे, आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, तब तो हेलीकॉप्टर आपके उड़ रहे थे, तब को आपके जहाज उड़ रहे थे, रैलियां हो रही थी, तो वर्चुअल कर लेते देश के नाम पे वर्चुअल रैलियां कर लेते, तब तो लगता कि आप राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो। आप राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे थे, आप बीजेपी निर्माण की बात कर रहे थे, बीजेपी सरकार लाने की बात कर रहे थे। जब बीजेपी की सरकार आ गई, सबने अपनी अपनी मुख्यमंत्री नोट ले ली, तब आपको राष्ट्र की याद आई, जनता की याद आई। अरे जनता तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा जब जब आपने जनता के आह्वान किया, जब जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है राष्ट्र पे संकट आया है, विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज भी विपक्ष जब राष्ट्र पे संकट है तब भी विपक्ष खड़ा है, लेकिन विपक्ष होने के नाते हमें आपको आगाह करना पड़ता है, हमें आपको बताना पड़ता है आप कहां गलत हो, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। और जब विपक्ष आपको आईना दिखाता है तो आप विपक्ष को आईना दिखाने लगते हो, विपक्ष हर बात में विरोध करता है, विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष आपको याद दिलाता है ये जो आपने आज मंत्र दिए, मंत्र आपको पहले लेने चाहिए, चुनाव के पहले जनता को बताना चाहिए था कि आर्थिक संकट आने वाला है, ये तेल जो हम बाहर से लगाते हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे इनको पता नहीं तेल बाहर से आता है सोना बाहर से आता है, क्या हिंदुस्तान को पहली बार पता चला कि बीजेपी के आने के बाद तेल और सोना बाहर से आता है? ये तो पहले से ही बाहर से आ रहा था, तो ये जिम्मेदारी आपकी थी कि इसके ऊपर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, जो आपने तैयारी नहीं की, इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष को दोष देती है और अपनी अपनी से पल्ला झाड़ती है।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छा, दोनों ही तरह से क्लोजिंग टचेस जो है जबरदस्त दिए गए हैं। जजेस के सवाल,
4: जो मोशन है वो ये है कि क्या ये बचत मंत्र जरूरी है, इसके बारे में भी एक दो लाइन बोल दीजिए।
3: मैंने सीधा बचत मैंने यही बोला
1: जो करते हैं ना, मतलब ताऊ जी,
3: नहीं,
1: ये ताऊ बात
3: नहीं,
1: है।
3: नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे, अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो, क्योंकि मैंने जो उन्होंने सवाल पूछा है उसी का जवाब दे रहा था कि बचत मंत्र आपको तब याद आता है जब आपकी सरकार बन जाती है।
1: फिर पूछ रहे हैं वो कुछ,
3: वही तो बोल रहा हूँ, बचत मंत्र जो आपने दिया है,
1: बचत मंत्र जरूरी है,
3: बचत मंत्र जरूरी बिल्कुल है, लेकिन ये तो आपने अपने ऊपर लागू करना चाहिए था ना। मैंने पहले बोला बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये बचत मंत्र जो आपको देना था, बचत मंत्र तो पहले ही देना था ना जब चुनाव के पहले, वो क्यों नहीं दिया आपने? सवाल यह है
1: ये हाँ कहने लगे कि

0: हाँ जरूरी है,
1: मैंने कहा बचत मंत्र पहले देना चाहिए था चुनाव के पहले, चुनाव के पहले,
0: ठीक है,
1: वो चुनाव के बाद में बचत मंत्र, बचत मंत्र है ना, दिक्कत ही है जी।
2: नहीं, मेरा केवल यही कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन भी देश के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल डिसीजन, जब चुनाव तो होना ही है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप चुनाव से कैसे बच सकते हो, चुनाव तो होना ही है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज चुनाव था करके वो नहीं अनाउंसमेंट हुआ, तो क्योंकि यदि सरकार ये सोचे कि हमारे पास अभी क्षमता है लेके आगे जाने के लिए, हाँ, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करें, हम क्यों लोगों के ऊपर उसको तो अभी भी नहीं बोल रहे हो किसी को कि आप बचत करो, वो एक सलाह दिए हैं कि आपको करना चाहिए क्योंकि देश का भी जरूरी है, आप इसको आप आके जोड़िए अपने को और सबको मदद कीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि सर, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए,
1: जवाब दे दो सर। वही तो मैं कह रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपको बचत मंत्र देना था तो चुनाव में वर्चुअल रैली हो सकती थी, ऐसा नहीं कि चुनाव वर्चुअल रैली नहीं हो सकती, क्या वर्चुअल रैली होती नहीं है क्या, जब नहीं पहुंच पाते तो होती है ना,
2: चुनाव में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है,
1: अरे
2: तो जब पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है उस समय हो सकता है कि वो जरूरी नहीं,
1: वर्चुअल रैली की बात कर रहा हूं, मैनिफेस्टो की बात ही नहीं कर रहा हूं सर।
0: पर अनुराग जी जरा ये बता दीजिए कि बाकी पार्टियां रैली कर रही थी नहीं कर रही थी,
1: तो सभी को करना चाहिए था, तो मंत्र पहले देना था, यही सही आ गया, अब आप सही आ गए,
3: दोनों वक्ताओं
1: करेक्ट हैं सर, देखिए आ गए
3: दोनों
1: सभी पार्टियों को बोल देना चाहिए था कि वर्चुअल रैली करो, तब सभी मान जाते वर्चुअल रैली होती।
3: अनुराग जी और अपने दूसरे साथी से ये प्रश्न है, आप दोनों कोई आप दोनों किसी भी प्रकार की बचत कर रहे हैं क्या?
4: बिल्कुल,
1: अब मैं बता रहा हूँ,
3: नहीं नहीं एक एक करके बताइए,
1: मैं अपना बता दूं, मैं अपना बता दूं, मेरा तो देखो,
4: अब मैं आपको एक चीज बताऊं,
0: लंबी सी गाड़ी से आए हैं, साइकिल इनकी का चुनाव चिन्ह है,
1: मैं बता रहा हूँ, मैं एकमात्र ऐसा हूँ जो सुबह 5:30 बजे साइकिल से निकलता हूँ, आज नहीं रोज की, मैं वर्षों से,
4: उसके बाद
1: और मैं एक मिनट पूरी बात होने दी, मैं आपके पीछे टोकूंगा तो बुरा लगेगा, वर्कआउट नहीं होता है,
0: झूठ मत बोलिए,
1: नहीं आप, अरे अपने रिपोर्टर बता देंगे, आपके आपके रिपोर्टर बता देंगे, आपके रिपोर्टर वहाँ है और आपके रिपोर्टर मुझे मिलते भी है और वो कहते हैं कि आप पूरा प्रचार या मैं पब्लिक से मिलना साइकिल के माध्यम से करता हूँ लगातार, ये मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 20 साल कर रहा हूँ, पूरी पब्लिक से मिलकर पसीने पसीने में लौटता हूँ 2 बजे घर, और आप मुझे बताएंगे, आप
0: मैं अपनी टीम से कहती हूँ, इनकी साइकिल बाहर खड़ी है, साइकिल लेके आइए स्टूडियो में, यहाँ पे हम लोग साइकिल दिखाएंगे, सबको इंस्पिरेशन मिलेगा,
1: आपकी गाड़ी
4: कोई व्यक्ति साइकिल पर नहीं घूमता, साइकिल चुनाव चिन्ह जरूर है। अब आपने पूछा आपने कोई बचत की, बहुत पर्सनल मसला हो जाएगा, मेरा 6 जून को मैरिज डे है, अर्धांगनी के लिए सोना नहीं खरीदना है, बचत है,
1: हम तो ठीक है, ये तो भाई ये क्या है, वो तो कोई भी नहीं खरीदता, हम तो वैसे नहीं खरीदते,
4: नहीं नहीं सोना जिद होता है, सोना, आप खरीदते होंगे, लेकिन एक है अस्पष्ट है कि नहीं, अभी मोदी सरकार ने कहा है,
0: अच्छा
4: कि बचत
0: कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि
4: तो सोना
0: अगर
4: नहीं खरीदना है,
0: अगर
4: एक और बता दें, अभी हम लोग दूसरे स्टूडियो से कार पुल करके यहाँ तक पहुंचे, 4 लोग थे,
0: वेरी गुड,
4: ठीक है,
0: वेरी गुड, वेरी गुड, पर कितने लोग ये मानते हैं, अरे सुनिए ना, कितने लोग मानते हैं कि सोना जो
1: सोना खरीदते हैं, पहले तो ये सवाल हो जाए, इस देश के अंदर में ज्यादातर लोग किसान हैं, गरीब हैं, कमजोर वर्ग है, वो कितना सोना खरीदता है पहले इसकी पता चल जाए,
4: $71 अरब का पिछले साल अगर सोना आयात हुआ है,
1: जो गरीब परेशान है
4: और हमारे पास $700 है तो हम सजा भुगते का
3: अंजना अंजना किसान अंजना जी ऑडियंस से एक मिनट ऑडियंस से पूछे, आप सोना खरीदेंगे अगर आपके पास ऑप्शन हो या कोई शेयर बाजार में शेयर खरीदेंगे,
1: हाथ खड़ा बताइए,
3: नहीं नहीं हाथ हाथ खड़ा, गोल्ड कितने लोग,
0: गोल्ड के लिए कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं,
1: और शेयर
0: प्रधानमंत्री शेयर
1: ज्यादातर है,
0: ठीक है, अरे और बच्चे हैं ये क्या खरीदेंगे, लेकिन एक बताइए कि अगर ये जो प्रधानमंत्री ये कॉलेज पढ़ रहे बेचारे, इनके फीस मैनेज हो जाए, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस देखिए तो सब हैरान रह जाएंगे, मुझे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने फोरेक्स को फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए बचाना है, सोना कम खरीदिए एक साल, तो आप लोग कितने लोग मानते हैं कि ये सही फैसला है, हाथ उठाइए, और कितना लोग सोना खरीदने से बचेंगे एक साल,
1: वो खरीदते ही नहीं है, बचे नहीं कहाँ पे, कोई खरीदता ही नहीं है, पहली बात तो
0: इधर वाले लोग सारे हाथ उठा रहे हैं, उधर वालों ने मन बनाया हुआ है कि नहीं,
1: खरीदते ही नहीं,
0: तालियों के साथ आप दोनों
1: सवाल है कि देश का किसान इतना परेशान है, इतना कमजोर है, वो कहाँ सोना खरीदता है, जो सोना खरीदते हैं
4: चलिए
1: खरीदते होंगे,
4: ठीक कह रहे हैं आप, जो अमीर लोग ही सोना खरीदते हैं तो भारत का रिजर्व उन चीजों में खर्च होता है, उसको बचाने के लिए उनसे ही कहा गया सोना मत खरीदो, बचेगा रिजर्व दूसरे चीज पे खर्च करेंगे,
0: आगे,
4: नहीं सवाल
1: यह है कि आपको याद चुनाव के बाद आएगी, आप सुविधा अनुसार सोचेंगे क्या? जब आप चुनाव लड़ लेंगे तब सोचेंगे क्या?
0: ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर, जजेस कह रहे हैं ऑर्डर, ऑर्डर।
5: अंजना जी, अरे आपका आपकी तो बचत हो गई कि एनिवर्सरी में आपने गोल्ड नहीं दिया, पर आप विपक्ष में होते हुए किसान तो नहीं खरीद पाते, आप तो सक्षम हैं, आप सोना खरीद लीजिए।
1: अरे भाई मैं खरीदता हूं, विरोध में खरीद लीजिए, आपने देखा मेरे सोना
4: मर्सिडीज
1: देखिए,
5: नहीं तो फिर क्या, तब तो आप मोदी जी की बात ही मान रहे हैं।
1: कहां अंगूठी बंगूठी है, कमाल की बात करते हैं, हमारे बालों में भी तेल लगा है, हम तो सिंपल लोग हैं,
4: उनका जूता है फूटे का 360,000 का जूता है,
1: कितने का देख लो,
4: सोना नहीं पहना,
1: देखो कितने का जूता, देख लो ना,
4: समाजवादी
1: माहौल बनाना है, बोल देंगे सर्दी 10 करोड़ की है,
0: समाजवाद आई बबुआ, धीरे धीरे आई, हाथी से आई बबुआ, घोड़ा से आई। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जैविक खाद
0: आइए जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आइए। प्रदीप भंडारी जी और टीम लीडर्स का एक एक मिनट का बैटल राउंड होगा, तीन सवाल लेंगे, नीला, सफेद और लाल से। सफेद से शुरू करते हैं।
6: मैम एक्चुअली मैं हूँ तो न्यूट्रल टीम में, बट मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली, लाइक जैसा कल मोदी जी ने बोला कि फ्यूल बचाइए, तो जिनका घर सिर्फ ट्रेवलिंग के बेसिस पे चलता है, जो ट्रेवलर्स हैं, वो अपनी फैमिली को कैसे बनाएंगे? वो खाना पीना उनका, रोटी कपड़ा मकान सब ट्रैवलिंग के बेसिस पे चलता है, तो उनको फ्यूल देने के लिए मतलब मोदी जी चाहते हैं कि उनका घर बंद हो जाए, उनके बच्चे ना पढ़े।
0: प्रोफेशन को लेकर कि भाई उस पूरे प्रोफेशन से जुड़े लोगों का एक सवाल आप।
7: मैम मेरा सवाल ये है कि क्या ओपोजिशन को ये लगता है कि स्पेंडिंग जो मोदी कह रहे हैं उनको उस पर ज्यादा डाउट है, या फिर जो उनका मैसेज है उस पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है?
0: अच्छा एक और सवाल लेते हैं।
8: मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अपोजिशन, हम अपोजिशन झगड़ा करना भूल के क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स में हेल्प करता है और साथ आके यूनिटी में इंडिया के लिए काम करता है?
0: मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ दें कुछ दिन के लिए, वो ऐसा कह रही हैं, मतलब उनका सवाल है। एक सवाल इधर से आप आए।
9: मैम मेरा एक सुझाव है कि जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गाड़ी से चलते हैं, सपा वाले साइकिल से और कांग्रेस वाले पैदल ही निकल लिए,
0: वो गालता में मत रहे ना,
9: तो मेरा यही सुझाव है कि अगर 4-सीटर गाड़ी हो तो आप इनको बिठा लीजिए।
0: वाह वाह वाह वाह, इतनी मीठी बात की है इस बच्चे ने। आप आइए आप आइए, इतनी नहीं नहीं, महिला को चांस दीजिए भाई आप।
10: मैम मेरा है ना सवाल, मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट को और सभी पार्टियों को कि अगर जब सब आपको पता है कि आर्थिक संकट है तो आप क्यों नहीं सारे पूर्व विधायकों की पेंशन बंद कर देते, क्यों नहीं उनके सारी फैसिलिटीज बंद कर देते, कुछ तो देश के लिए हित में होगा ना, यही मैं।
0: क्या बात है क्या बात है क्या बात है, और जो इतना इतना पैसा वीआईपी सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है वो भी अगर हो। चलिए प्रदीप भंडारी जी, जो बच्चों का बच्चे का सवाल था इधर से, जो दो सवाल आए हैं असल में बचाने के लिए, और काफिले में उसमें एक सवाल मैं भी जोड़ रही हूँ कि सिर्फ काफिले में गाड़ियां कम कर देने से थोड़ी ना बचत कम हो जाएगी। तो चलिए आपका रिबाटल राउंड का 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
4: अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद वर्चुअल में बात कर रहे हैं, एक हफ्ते में दो बार खुद वो बात कर रहे हैं कि भाई पूलिंग होनी चाहिए। अभी तक विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने जिसने ये भी कहा कि भाई ये बचत जरूरी है अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया, कोई भी विपक्ष का नेता कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि वो बचत करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज तक कमिटमेंट दे रहे हैं, इस साथ समझ सकते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रनीति नहीं। इनने तब से कहा कि दो महीने में आपने क्या किया, 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में हमारे कई टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर स्टैंडर्ड थे वो वापस आए, 29 मार्च को सरकार ने ब्रीफिंग करी जिसमें दो एलपीजी टैंकर 90,000 मेट्रिक टन के वापस आए, 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, 13 से 14 मई के बीच में हमारा एलपीजी प्रोडक्शन 30,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 50,000 मेट्रिक टन हो गया। हर दिन सरकार पिछले दो महीने के अंदर स्टेप्स ले रही थी, ये चुनाव की राजनीति में अंधे थे इसलिए इनको नहीं दिख रहा था। अब मैं बात, बिल्कुल काफिला कम करना चाहिए, हमारे लोग तो काफिला कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप है, इनने क्यों नहीं किया? और मैंने कल अंजना जी का शो देखा, अंजना जी के शो के हिसाब से 31 करोड़ जो है टू व्हीलर्स है, अगर 15 से 20 लीटर अगर एक महीने के अंदर खपत होती है, अगर 5 लीटर ही बंद हो जाएगा तो 55 करोड़ पेट्रोल और डीजल बन जाएगा, इससे किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला।
0: चलिए बहुत जबरदस्त आपने जवाब दिया है, अब जो उस बच्ची का जवाब सवाल था उसको जोड़ते हुए एक मिनट का आपका रिबटल राउंड में टाइम शुरू होता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब
11: अभी यहाँ बच्चों से पूछा गया कि तुम सोना खरीदोगे प्रायोरिटी में या शेयर, भैया पहले विश्व गुरु जी बच्चों का एक परीक्षा एनआईटी बिना पर्चा लीक की हो तो करा दो, नीट की सालों साल जब से बीजेपी आई है तब से पर्चे लीक हो रहे हैं, सारे पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? कहेंगे हम विश्व गुरु हैं, एक पर्चा ठीक से कंप्लीट नहीं करा सकते, इम्तिहान कंप्लीट नहीं करा सकते। मोदी जी दूसरों से या देश से कह रहे हैं कि बचत करो, मोदी जी वादा करें कि अब आज के बाद एक साल तक वो रैली नहीं करेंगे, एक साल तक जिले के बाहर जाके रैली नहीं करेंगे। आप लोग पता कर लीजिए, एक सीएम और एक पीएम की अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारा राज्य है, क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर के कोई रैली करते हैं तो कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। एक प्रधानमंत्री की के दिल्ली के बाहर की रैली 10 करोड़ से 60-50-60 करोड़
0: विदेश यात्रा कब बंद करेंगे?
11: मोदी जी तो विदेश यात्रा, मोदी जी अडानी जी के आदेश पे विदेश चले जाते हैं। अडानी जी को पेनाल्टी भरनी है, अडानी जी को डॉलर में पेनाल्टी भरनी है, मोदी जी कैसे कहलाता है वो डॉलर में पेनाल्टी भरे?
0: रैली का समर्थन
11: जी 18 मिलियन डॉलर
0: देश के अंदर अखिलेश यादव मिलियन
11: डॉलर मोदी जी पेनाल्टी भरेंगे, वो हम पेनाल्टी डॉलर में क्यों भरने जा रहे हैं?
0: जाना बंद करो,
11: किसने कहा विदेशी दौरे कहां से ये पैसा आएगा?
0: अच्छा कुछ पूछ रहे
5: हैं, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, एक एक करके अगर बोलेंगे तो हमें भी समझ में आएगा।
0: उसके बाद ये घुमा के बात कर रहे थे, कॉपी पर तो बात करेंगे।
5: अरे इसे लोकसभा मत बना दीजिए, ये अंजना जी का प्रोग्राम है, यहाँ सुनना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें भी।
0: चलिए कोई आप दोनों अपनी जगह जा सकते हैं, बटन राउंड का जल्दी जल्दी दुबे जी और माधव आनंद जाइए। जबरदस्त भाई, ये दोनों टीम लीडर्स तो आज एकदम पानी में आग लगा रहे हैं। आइए एक मिनट का बटन राउंड में, माधव आनंद जी आपका बोलने का समय शुरू होता है अब।
12: मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत हो यह हम लोगों की मंशा जरूर होती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष के पास भी रहती है। विपक्ष अगर सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो यही कारण है कि आज जो विपक्ष की स्थिति है, चाहे पूरे भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं तो क्या स्थिति है हम सबको पता है। जब राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जब राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होने की बात होती है, तो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए राजनीतिक विरोध को जो है सो भूल जाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में सबको सम्मिलित होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो पूरा जीवन ही समर्पित है जैसे राष्ट्रभक्ति के लिए, उन पर एक जो है सो दाग नहीं लग सकता। जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में, उसी तरह प्रधानमंत्री जो है सो यहाँ जो है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो अपील की है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा बचत करना स्टार्ट कर देंगे, जब हमारे पास डॉलर का पर्याप्त मात्रा में भंडार रहेगा, जब फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, तो स्वाभाविक है हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। तो थोड़े दिन की बात है, एक साल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के निर्माण के योगदान में सबका योगदान हो, ऐसा मैं आशा करता हूं।
0: मिठास का भी कुछ मार्क्स रखे हैं क्या आप लोग? उसमें इनको काफी मिल जाएगा, एकदम चाशनी में डुबो कर जो आपने अपनी बातें कही है ना।
5: माधव आनंद जी विजेता होंगे अगर मिठास के लिए नंबर होते,
0: मिठास के लिए अगर नंबर होता।
5: हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं।
0: हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं। दुबे जी मुझे देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कौन सा शायरी इसमें फिट बैठेगी। चलिए बोलते हैं, एक मिनट का समय आपका शुरू होता है अब।
13: अंजना जी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हमें क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई, हमें क्यों खलनायक बना रहे हो? हमारे नेता जब मेट्रो से चल रहे हैं, हमारे नेता जब पैदल चल रहे हैं, हमारे नेता जब कार पूलिंग कर रहे हैं, हमारे नेता जब खुद जाकर अपने घर में माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं कि देश संकट में है, हमको सबको साथ रहना, इस पर कोई चर्चा नहीं। केवल खलनायक बना दो विपक्ष को। मोदी जी ने कहा है बचत करना है और विपक्ष कह रहा है बचत नहीं करना है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपनी सांसों को लुटा देंगे। इस देश पर हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। दुख तब होता है ना, नहीं सुनिए सुनिए, हंसिए मत, दुख तो तब होता है प्रदीप भंडारी जी कि जब नहीं, इनकी बात है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, ये हमको बता रहे हैं बवाली, अरे इनके आंसू देश के लिए घड़ियाली।
0: जबरदस्त, आप दोनों अपनी जगह पर, माइक माइक माइक,
14: कौन सा नेता
11: आज कार पुलिंग से आए हैं, सत्य प्रकाश जी गवाह हैं, आ जाए
0: माइक लेके
14: उद्धव ठाकरे गए कार पुलिंग में, दिखाना जरा फोटो,
15: फोटो दिखाओ, कहा आनंद दुबे की फोटो दिखाओ, नहीं है भैया झूठे आदमी, आनंद भाई की कहीं नहीं है,
16: मेट्रो में भीड़ में और खड़े होकर सफर,
15: कारपूलिंग दिखाओ, कल और आज में खड़े होकर सफर, परसों नहीं दिखाओ, उद्धव ठाकरे ने कोई कारपूलिंग नहीं की, अखिलेश यादव ने जीवन में काफिला नहीं किया,
16: मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला,
15: दिखाओ
16: मेरी तस्वीर,
15: पुरानी तस्वीर, पुरानी तस्वीर, पुरानी तस्वीर,
16: एक मिनट, मेरे बच्चों पुराना नहीं, मैं सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा ट्विटर पे हूँ, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता।
0: दुबे जी बैठे दीजिए दुबे,
16: सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना जोर कितना बाजुए कातिल में।
15: दुबे जी ताली पलटने वाले हैं, सब इधर चलेगा उधर भी चलने वाला है।
0: चलिए रिबटल राउंड में आपका एक मिनट का समय बोलने का विषय पर सत्य प्रकाश मिश्रा जी शुरू होता है अब।
17: वो बोल गए मैथिली शरण गुप्त की कविता कुछ छंद पहले भी पढ़ लेते, जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। राष्ट्रीय बचत पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भरी अपील वैश्विक संकट को देखकर है। प्रधानमंत्री जी ने अगर संभावित चीजें देखी हैं और राष्ट्र से थोड़ी सी अपील कर दी, इतना दर्द उठेगा विपक्ष में इसका अंदाजा नहीं था। मत करिए आप बचत, खरीदिए सोना, मोहल्ले में जब आग लगी हो घर फूंक तमाशा, देखिए आप खूब जाइए विदेश यात्रा पर, मत करिए जैविक खेती, मत करिए वर्क फ्रॉम होम, देश आपके साथ है नहीं, नकारे गए लोग हैं हर राज्य से, अभी चुनाव कर रहे थे, हार के लौटे हैं। सवाल इस बात का है कि राष्ट्र उसको याद करेगा जिसने संकट के घड़ी में राष्ट्र का साथ दिया, और ये देश ईरान के संकट में डोनेशन करने चला था, जब वैश्विक संकट आया है क्या अपने देश के लिए बचत नहीं करेगा? प्रधानमंत्री का ये अपील राष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री है, अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
0: आप घड़ी समय शुरू होता है अब।
18: ये आज से नहीं पहले से ही, कहते हैं ना पहले जेब से खर्च चलता था, अब खर्च से जेब चलती है। महंगाई ऐसी बढ़ी कि सांस लेना भी किस्तों जैसी लगती है। ये आज से नहीं हो रहा है, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ये बार बार कह रहे थे, इनका एक ही मकसद होता है विपक्ष को कोसना, विपक्ष को टारगेट करना। अभी नीट का पर्चा जैसे मेरे साथी ने बोला लीक हुआ, अब बताइए जब वहां पे 21 जून की डेट आई है, क्या दोबारा से खर्चे नहीं बढ़ेंगे? क्या डीजल पेट्रोल खर्चा नहीं होगा? फिर वही सेंटर पड़ेंगे, फिर लोग जाएंगे, फिर टीचर आएंगे, फिर रेफ्रिजरेटर जाएंगे, फिर वही व्यवस्था होगी, क्या उसमें खर्चा नहीं आएगा? आपकी गलती की वजह से खर्चे का बोझ आम जनता सहती है, और ज्ञान आप आम जनता को और विपक्ष को देना चाहते हैं। विपक्ष आपको आईना दिखाता है बस, और आपको बताता है कि ये गलती हो रही है, इसको सुधारिए, आप सुधारते नहीं है। फिर जब हम आपको टोकते हैं तो फिर आप विपक्ष पे हावी हो जाते हो कि विपक्ष राष्ट्र के साथ नहीं है। विपक्ष तो राष्ट्र के साथ है, विपक्ष जनता के साथ है, आप धन्ना सेठों के साथ हैं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात करते हैं, किसान के साथ आप खड़े नहीं खड़े पहले ये बता दीजिए, किसान की तो बात करना ही नहीं चाहते, किसान के लिए बताइए क्या क्या सुविधाएं आपने दी वो देना नहीं चाहते,
0: लेकिन
18: किसान करे, किसान के पास बची नहीं
0: रहा
18: नहीं, आपके किसान
0: देखिए ना,
18: नहीं किसान तो बचत हो ही नहीं रही, किसान बेचारा बचाएगा क्या? हिंदुस्तान की आदत करेक्टर में, हिंदुस्तान के अंदर बचत, हर महिला अपने घर में बचत करती है, हर व्यक्ति अपने घर में बचत करता है, आपके कहने से नहीं
0: जा रहा कि हो गया, टाइम खत्म हो गया,
18: हो जाने दीजिए,
15: तो फिर हमें भी टाइम मिल जाए थोड़ा,
0: पर दर्द रस में आपने जो शायरी की है बड़ी अच्छी थी, दर्द भाव होता है ना भाई कविता का रस का, आइए बैठिए, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए,
18: किस्तों में
0: सांस किस्तों में लेनी पड़ रही है, अच्छी लिख लेते हैं आप कभी कभी गलती से, बैठिए,
18: कभी कभी नहीं मैं लिखता हूँ, लेकिन आप मार्क्स नहीं देते तो हम क्या करें?
0: अब जजेस आपस में बात कर रहे हैं, वो ये तय करेंगे कि इन 6 वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन होगा। जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, मतलब जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आपको अपना गमछा बदलना है तो आपको हम मौका दे रहे हैं, अभी आप अपना गमछा बदल सकते हैं। देखो ये बुला रहे हैं इधर से वाले, सफेद गमछे वाला एक जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर ही बैठ जाओ, नीले गमछे वाला एक आया है, लाल गमछे वाले भी जा रहे हैं, एक सफेद गमछे वाले इधर भी जा रहे हैं, चलिए इधर भी दो लोग आए हैं, ये लाल वाले भी खुश हो रहे हैं, लाल वाले भी खुश हो रहे हैं, कितने लोगों ने लाल गमछा लिया हाथ उठाइए, कितने नहीं आपको नहीं उठाना है, जिन्होंने बदल कर लिया है, बदल कर लिया है। एक इधर है, दो इधर है और इधर तीन है। चलिए अब हम लोग वोटिंग शुरू करते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप भी इस सवाल पर अपने जवाब पर देखिए आज का प्रश्न क्या है। क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है? अगर आप मानते हैं हाँ ये बचत मंत्र अगर हम फॉलो करेंगे तो देश को हम इस मुश्किल स्थिति से उबार लेंगे तो आप हाँ पर वोट करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि सरकार की नाकामी से ये हुआ है तो आप नहीं पर वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वालों को तो अपनी स्वेच्छा से कह नहीं सकते, पर वोट डाल ही सकते हैं। वोटिंग लाइन्स अब हम शुरू करें और यहां पर जितने लोग हैं आप भी क्यूआर कोड स्कैन करके वोटिंग का टाइम शुरू हो रहा है। सवाल आपके सामने है, आप अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? अब गमछा तो कई लोग नीला ले रहे थे लेकिन देखिए यहां पर फिलहाल जो टीम है वो जीत रही है। प्रदीप भंडारी की टीम 63% मार्क्स के साथ। अरे आप लोग चुप होने का क्या लेंगे, मैं अपने बचत का पैसा आप लोगों को दे दूंगी, थोड़ा सा चुप रहिए। 58% लोग कह रहे हैं हाँ बचत मंत्र जरूरी है, वहीं 34% कह रहे हैं नहीं, 8% कह रहे हैं नहीं कह सकते। यहाँ पर वैसे सफेद गमछे वाले काफी कम बचे हैं तो ये ठीक लग रहा है, जस्टिफाइड दिख रहा है। लेकिन अब 56% हो गया है हाँ कहने वाले। आखिरी के 15 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। और अब 56% 10 सेकंड आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं। नहीं कहने वाले 35% हैं, कह नहीं सकते वाले 9% हैं और 56% 55% 37 और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। टीम भंडारी जीत गई है 53% के साथ। तो 53% के साथ चलिए शो के भी अंत होते होते राष्ट्रवाद का पूरा तड़का यहां पर लग गया है। लेकिन सवाल यही है जो हमने आपसे पूछा था और फिलहाल टीम भंडारी जीती है, यानी क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है। यहां पर मौजूद ऑडियंस ये मानती है हाँ ये बचत मंत्र जरूरी है। और अब बारी है हमारे तीनों जजेस की जो ये बताएंगे कि आज इन छह, अरे इधर भी देखिए, छह वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन है।
5: आज का बाजीगर जो है वो सर्वसम्मति से चुना गया है।
0: अच्छा, ये बहुत कम होता है,
5: एक ही विचार,
3: एब्सोल्यूट यूनैनिमिटी।
5: अच्छा, और मुझे लगा कि आप लोग खास करके जो टीम अनुराग भदौरिया साहब अखिलेश जी की थी, उन्होंने कहा कि रैलियां रोक दी जाएं। आज मैंने साक्षात यहां पर रैली होते हुए देखी है। जिस तरह से इन्होंने उठ उठकर समर्थन मांगा है, पर खैर आक्रामकता और प्रभावशाली होने के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है। आज सबों ने अच्छा बोला,
0: अच्छा।
5: मैं समझता हूँ अखिलेश जी की टीम के साथ एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कैसे आप कहें कि जरूरी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अच्छा खेला। आज बिल्कुल सधे हुए अंदाज में, बिना आक्रामक हुए, पर नाप तौलकर और मोशन के कील के बिल्कुल निकट रहकर जिन्होंने अपने दोनों राउंड किए वो सत्य प्रकाश मिश्र जी हैं।
0: वाह,
5: वो
0: वा,
5: हैं
0: वा,
5: आज
0: वा,
5: के बहसबाजी।
0: वाह वाह वाह, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मिश्रा जी ने कमाल कर दिया है। मिश्रा जी ने बोला और मिश्रा जी रास में इतना भावुक हो गए कि नारे भी लगवाने लगे। तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता को दिखा दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा.
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते.
8: विक्रम!
7: हिंट.
6: बड़े आराम से
9: कूल फैंस से घर को सजाएं.
10: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें.
9: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं.
11: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है. और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद. तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद. देश का किसान, देश का हीरो.
12: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है.
13: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है. तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम.
12: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है.
14: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद.
15: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह.
16: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
15: ज्यादा बड़ी ना है.
16: छोटे ऑन कर दे,
15: ऑन कर दे, ऑन कर दे. पैक कर दे समर कूल.
16: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
2: वाव दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है अभी हमने उसको देखा नहीं है. हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे. और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गुमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे. तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई. तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. देखिए, बात यह आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है, वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए. लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था. वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.
6: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe, live from London on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: कोई ऐसा कूलर दिखा.
11: पूरी फैमिली बोले वाह.
12: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
10: ज्यादा बड़ी ना है.
12: छोटे ऑन कर दे.
13: ऑन कर दे. ऑन कर दे.
14: पैक कर दे समर कूल.
12: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी का संबोधन, कहा यह आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो सालों तक असर, किंग और क्वीन से भी मुलाकात। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चीन में बैठकर ट्रंप ने ईरान को जो संदेश दिया है वो सुनने लायक है। शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों ने माना कि हॉर्मूज को खोलना जरूरी है। यही नहीं, शी जिनपिंग के सामने ट्रंप ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग से लौटने के बाद शुरू होगा ईरान युद्ध का राउंड टू, यानी तेहरान के ऊपर फिर बारूद बरस सकता है। लेकिन ईरान भी सीधा झुकने वाला नहीं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स खुली धमकी दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले वॉर अपडेट।
1: अमेरिका का ईरान पर फिर से हमले का प्लान तैयार है। ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन ईरान में कभी भी शुरू हो सकता है। चीन के दौरे से निकलने के बाद ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने में भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने वाशिंगटन की ओर से आने वाले विरोधाभासी संदेशों को इसका मुख्य कारण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की जगह 20 साल के निलंबन को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को उन जहाजों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल रहा है जो उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी लगातार जारी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार लेबनान इसराइल युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीजफायर के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यूएई ने कहा है कि वो ईरानी हमलों को सही ठहराने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर इलाके में एक सैन्य कैंप पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। अक्टूबर 2025 के बाद ये पहली बार है जब टीटीपी ने किसी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 2 दिनों के भीतर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की के अनुसार रूस ने बुधवार से अब तक 1567 ड्रोन दागे हैं, जिसमें राजधानी कीव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया है। कम से कम 27 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना ने कीव में रूसी हमले में 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया है। इस भीषण तबाही के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 5 देशों के दौरे के तहत यूएई पहुंचे। यूएई के ओपेक से बाहर होने और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुई उथल पुथल के बीच भारत और यूएई ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा किया है। ये समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं।
0: चीन भले ईरान का सबसे बड़ा साथी हो, लेकिन बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने साफ कहा कि हॉर्मूज बंद नहीं होना चाहिए। ईरान परमाणु जिद और हॉर्मूज बंद रखने की धमकी से पीछे नहीं हट रहा। इजरायली मीडिया का दावा है कि चीन दौरे के बाद ट्रंप फिर हमला कर सकते हैं। इजरायल भी तैयार बैठा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बातचीत लगभग खत्म। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग भड़क सकती है?
1: पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त एक महायुद्ध का सायरन बज सकता है। आसमान में मिसाइल और जमीन पर धमाकों की गूंज एक बार फिर सुनी जा सकती है। उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी हैं। वजह ईरान की वो जिद जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलने पर आमादा है। चीन भले ही खुद को ईरान का सबसे सच्चा दोस्त बताता हो, लेकिन बीजिंग में शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक लकीर खींच दी है। ट्रंप और जिनपिंग दोनों ने एक सुर में साफ कह दिया है कि हॉर्मूज को खोलना ही होगा।
2: We want the straits open.
1: लेकिन तेहरान में बैठी सत्ता अपनी न्यूक्लियर जिद और हॉर्मूज को बंधक बनाए रखने की सनक से रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है। चीन से लौटते वक्त एयरफोर्स वन से ही ट्रंप ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
3: wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, and that's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it.
1: ईरानी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में छिपाए जाने की खबरों के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन के रणनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि क्या पाकिस्तान फिर दोहरी नीति अपना रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत मान रहे हैं।
4: I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, you know, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already.
1: तो अब पाकिस्तान का डबल गेम दुनिया के सामने आ रहा है। चीन जाने से पहले ही ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ जो दिखावे का सीज़फायर था, वो अब लाइफ सपोर्ट पर है।
3: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living."
1: आपको याद दिला दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो बमों की बारिश की थी, वो पाकिस्तान के बीच बचाव के बाद रुकी थी। ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि सीज़फायर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक फेवर था। ईरान ने जो शांति प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप ने उसकी पहली लाइन पढ़ते ही उसे डस्टबिन में डाल दिया था।
5: Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
3: No, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away.
1: ट्रंप ने अब ईरान को एक आखिरी टेक इट और लीव इट ऑफर दिया है। अगर ईरान अगले 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह फ्रीज कर दे बिना किसी चालबाजी के, तो अमेरिका मान सकता है।
3: 20 years is enough, but the level of guarantee from them is in other words, it's got to be a real 20 years. We're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a terrible sheep's head brought on.
1: इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप के चीन दौरे से लौटते ही ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब कह चुके हैं कि ईरान के यूरेनियम भंडार खत्म होने तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ईरान हॉर्मुज में तेल जहाजों को रोककर टोल टैक्स वसूलने की दबाव की राजनीति कर रहा है। पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने धमकी दी है कि प्रतिबंध हटने और ईरान की शर्तें माने बिना कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका युद्धपोत भेजने की तैयारी में है और इजराइल भी हमले के मौके तलाश रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है।
0: ट्रंप का चीन का दौरा खत्म हो चुका है। फारस की खाड़ी में युद्ध की आहट फिर से एक बार सुनी जा रही है। खाड़ी के देशों में बारूद की गंध पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन अब यह सवाल है कि क्या समुंदर फिर से सुलगने वाला है। खैर, ईरान और अमेरिका के बयानों से तो यही लगता है। दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान का अंत करीब है या खत्म हो जाएगी अमेरिका की बादशाहत हमेशा के लिए। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान को बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान डरकर दुबक गया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि मिसाइलें, ड्रोन अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधे हुए हैं। यानी अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा विध्वंसकारी होगा।
1: IRGC ने समंदर की लहरों पर अपनी हुंकार भर दी है। सीधा और साफ संदेश देते हुए कहा, अगर ईरान के एक भी तेल टैंकर या कमर्शियल जहाज को खरोंच भी आई, तो समंदर की लहरें अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल हो जाएंगी। ये सिर्फ कीदड़ भपकी नहीं है, ये बारूद की वो हकीकत है जो फटने को तैयार है। जनरल सरदार मुसावी ने पूरी दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलें और घातक ड्रोन्स अमेरिकी ठिकानों पर लॉक हो चुके हैं। हमलावर जहाज हमारी रडार पर है और हम बस उंगली दबने का इंतजार कर रहे हैं।
6: ईरान मैनेज कर रहा है क्योंकि उस एक तो ट्रेन है जो फ्रेट ट्रेन चलती है शांघाई से लेकर के तेहरान तक 15 दिन लेती है, तो कम से कम वो फ्रेट ट्रेन के द्वारा हो रहा है। दूसरा पाकिस्तान ने 6 अपने एंट्री पॉइंट्स खोल दिए हैं, तो वहां से भी सामान अब ईरान के अंदर जा रहा है। और तीसरा स्मगलिंग हो रहा है, ईरान की मदद हो ही रही है। और लेकिन अब जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि एक जब घेराबंदी हो जाती है, ना ईरान से कोई चीज बाहर जा सकती है, ना ईरान से कोई चीज आ सकती है। 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं ईरान का तेल का, वो सब चीन उठाता था, अब वो वहां पर भी तकलीफ हो रही है।
1: जंग शुरू होने से पहले ईरान को लेकर अमेरिका की जो भी सोच रही हो, लेकिन 75 दिन बाद वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात की तस्दीक अमेरिकी सेनेट भी कर रही है।
7: 400 million that you referred to, Under Secretary Colby's done a great job.
1: दरअसल अमेरिकी सेनेट में सवाल उठा तो वो सिर्फ मिसाइलों का ही था, बल्कि भरोसे का भी था। सेनेटर मर्फी पूछ रहे थे कि आखिर ईरान के पास कितनी मिसाइल्स बाकी हैं।
8: जनरल केन,
1: लेकिन जनरल केन और रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने चुप्पी साध ली।
9: Secretary and others in the president's cabinet have said very clearly that our war objective is to destroy Iran's missile and drone program. The president said just a week ago that Iran maybe had 18% to 19% of their missile capacity left. But there is public reporting suggesting that our intelligence agencies say that Iran still has 70% of their missile and drone capability, which would be a failure of our objectives if that were to be true. What can you tell us about the number of missiles and drones that they have left, and do you dispute that intelligence estimate?
10: Sir, I'm not going to comment. With deep respect for the question, I'm not going to comment.
1: सेनेट में शायद सबसे भारी चीज कोई दस्तावेज नहीं बल्कि वो खामोशी थी, जिसमें ये स्वीकार छिपा था कि पश्चिम एशिया की आग अभी बुझी रही है।
11: ईरान एक तो सीक्रेटिव सा एक रजीम है, और उनके सारी जो प्रोडक्शन है यहाँ तो इंडिजीनियस है, अपने आप ही बनाते हैं, या फिर कुछ चाइना रशिया से मदद लेके बनाते हैं, जो भी वो भी मतलब कॉन्फिडेंशियल सी एक चीज है। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका को पता नहीं है, वो कई बारी जो उनका इंटरनल इंटेलिजेंस है उसको बाहर नहीं दिखाते, और प्रोपागेंडा वो कह देते हैं कि इनके पास बस खत्म होने वाली है, बस 2000 ही थी, बस और है नहीं। ये अपने प्रॉप अप करने के लिए और थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए और अलाइज को थोड़ा हौसला देने के लिए, अलाइज का मतलब जो गल्फ कंट्रीज हैं या बाकी हैं, इनको थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ चलो भाई इससे ज्यादा नहीं ये लड़ सकेंगे, पर उनकी क्षमता बहुत है। और आज मिसाइल बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं और वो पता नहीं 40 साल से बना रहे होंगे, और 2015 में जाके उन्होंने एक अपना कहा कि चलो हम 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बनाएंगे।
1: दूसरी ओर ईरान की धमकियों के धुएं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की धरती पर जाकर बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के बगल में बैठकर दुनिया को एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी बल्कि ताकत के उस नए व्याकरण की थी, जिसमें दोस्तियां भी सौदे हैं और चेतावनियां भी संदेश।
12: And we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: राजनीति में कई बार शब्द नहीं बैठने की जगह बोलती है। ट्रंप की वो कुर्सी शायद यही कह रही थी कि अमेरिका अब ईरान को केवल मध्य पूर्व का मसला नहीं मानता बल्कि उसे चीन की बढ़ती वैश्विक साझेदारियों के आईने में देख रहा है।
8: If I can be of any help at all, I would like to be of help.
13: Because, he did say that.
8: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
1: आग अभी सुलगी ही थी कि ब्रिटेन ने भी अपना HMS ड्रैगन समंदर में उतार दिया है। ब्रिटेन इसे डिफेंसिव कह रहा है लेकिन ईरान इसे अपनी घेराबंदी मान रहा है। तेहरान ने उन देशों को भी चेतावनी दे दी है जो अमेरिका की गोद में बैठकर साजिश रच रहे हैं, खासकर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब ईरान की हिट लिस्ट में। तो क्या ये ट्रंप की फाइनल वॉर होगी? इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को मिटाने का जो सपना देखा है, क्या वो हकीकत बनेगा या फिर ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगी? ईरान ने लिख दिया है अपना फैसला, हमला हुआ तो इस बार तबाही पहले से ज्यादा भीषण होगी।
0: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि इजराइल लेबनन बॉर्डर कब तक सुलगता रहेगा। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
7: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: विक्रम, एक हिंट तो देते।
9: विक्रम!
8: हिंट।
7: बड़े आराम से।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: The taste of success.
13: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते।
14: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
15: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
18: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
19: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
20: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
21: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15

0: पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
2: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
4: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
0: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
2: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
6: पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छोड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप पर, हम कितने ने हो इस वक्त, कितने ने प्राइम मिनिस्टर? नीदरलैंड गए हुए ने, हम मेरे ख्याल जाकर 3-4 मुल्कों का होर दौरा है। लोगों नु मना करके आप चले जाते हैं, हर एक चीज तुसी शट डाउन कर दो, सोना ना खरीदो, है जी, ते विदेश यात्रा ना करो, घरों काम करो, प्रधानमंत्री घरों काम कर ले, प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना? ये सिर्फ लुकाउण वाली गल्लां ने। 3 रुपए लीटर तेल का रेट बढ़ाता, डीजल का, पेट्रोल का, ठीक है ना, ताकि बस प्रधानमंत्री ने कहता तो शुक्र है, हजे थालियां ते तालियां नहीं कहा, है ना, हो सकता कोई होर जादू टूना करन नूं कह देना भी इदां करिया करो। सो देश नूं चलाउणा है जी, असीं तां विश्व गुरु बनना सी, विश्व चेले बना के रखते, जंग किते होर लगी है, पाबंदियां साडे मुल्क च लगी जांदियां, होर किसे मुल्क च क्यों नहीं लगियां, नेपाल च क्यों नहीं कीता इदां, यही गल्लां किसे होर मुल्क दे विच क्यों नहीं होईयां, क्योंकि तेल मुक गया उदों इलैक्शनां वेले अनाउंस नहीं कर सकदे सी, हुण इलैक्शनां हो गईयां, हुण तूं कौण ते मैं कौण।
7: कुछ लोग बोल रहा है वार सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है, तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वार सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को, 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है? और दूसरा, स्टेट में ये जो अपोजिशन था,
8: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।

इसराइल लेबनन के बीच अमेरिका शांति वार्ता करा रहा है, लेकिन जमीन पर इसराइल लगातार बम बरसा रहा है। लेबनन में हमले, हिजबुल्ला की जवाबी फायरिंग और IDF सैनिक की मौतों ने साफ कर दिया है कि सीज फायर वहां पर केवल कागज पर बचा है। उधर ट्रंप का बयान भी धमकी जैसा है, डील करो वरना खत्म हो जाओ। चीन ने ईरान को हथियार न देने का भरोसा दिया है, लेकिन वेस्ट एशिया में बारूद अब भी बिछा पड़ा है। वॉशिंगटन में बातचीत शुरू होने से पहले ही इसराइल ने लेबनन पर हमला तेज कर दिया, यानी दुनिया शांति की बात कर रही है और मैदान में युद्ध की तैयारी चल रही है।

दुनिया जिसे सीज फायर कह रही है वो दरअसल अघोषित युद्ध का युद्ध घोष है। इसराइल और लेबनान से हिजबुल्ला लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। 16 अप्रैल को वाशिंगटन से खबर आई कि ट्रंप ने कमाल कर दिया, इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम हो गया। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान से लेकर उत्तरी इसराइल तक फिर से बम वर्षा होने लगी।

0: गुल्ला जो है और जो बफर जोन बनाया था बिटवीन द लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में, वहां पे लेबनीज की फौज ने उस वहां पे जो है अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी प्लस यूनिफिल के द्वारा, लेकिन वहां पे हिजबुल्ला आने के कारण देखते हैं कि पूरी लड़ाई के दौरान जो रॉकेट्स हैं, जो माना जाता है कि हिजबुल्ला के पास काफी उसके पास रॉकेट्स का जो भंडार है वो है। इसराइल का यह मानना है कि हिजबुल्ला जो है एक आतंकी संगठन होने के नाते जिस प्रकार से रॉकेट लगातार फायर करता रहता है, इसराइल ने अब देख लिया 1982 से 2000 तक 18 साल के बाद जब वहां से इसराइल निकला तो हिजबुल्ला ने वही वैक्यूम जो हुआ वहां पे आके हिजबुल्ला बैठ गया और जिस प्रकार से लगातार परेशान करता रहता है इसराइल को, तो उससे बचने के लिए इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला जो है ये आतंकी संगठन जिसको ईरान मदद करता है उसका खात्मा हो।
1: ये कैसा सीज फायर है जहां शांति के नाम पर सिर्फ लाशें गिनी जा रही हैं? व्हाइट हाउस में बैठकर पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरहद पर गोलियों की भाषा आम हो चुकी है।
2: October 7th, Hamas invaded us, butchered our men, beheaded our men, raped our women and then killed them, burnt our babies, did the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. And guess what? On the other border, Hezbollah from Lebanon was planning to do even more. They had 5,000 Redwan Force terrorists ready to invade the Galilee. So we pushed them back. We've got a security belt now that prevents them from doing that or shooting anti-tank missiles into our kitchens, into our living rooms. But it's not over yet. We still have missiles. We have drones, killer drones. We have to deal with them.
1: आंकड़े सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या इसे शांति कहेंगे। सीज फायर शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने 220 से ज्यादा बार इसराइल पर हमला किया। जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। लबनान में हिजबुल्ला के 1100 से ज्यादा ठिकानों को खंडहर बना दिया। इसराइल का दावा है कि उसने 350 आतंकियों को खत्म किया है, लेकिन मौत का असली चेहरा कुछ और ही है। 350 आतंकी मारे गए, ये इसराइल का दावा है। लबनान में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। सोचिए, 125,000 लोग शेल्टरों में ठूस दिए गए हैं, जहां न भविष्य है न सुरक्षा। क्या ट्रंप प्रशासन की ऐतिहासिक डील का यही अंजाम होना था? इसराइल कह रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है और हिजबुल्ला कह रहा है उसे प्रतिरोध का हक है। हिजबुल्ला का रुख साफ है। सीनियर कमांडर वकीफ सफा ने दो टूक कह दिया है कि हथियार तब तक नहीं डालेंगे जब तक इजरायली सेना लबनान की एक एक इंच जमीन खाली नहीं कर देती। हिजबुल्ला को लबनान की सरकार की परवाह नहीं है, उसे परवाह है अपने आका ईरान की।
2: Let me tell you, the Lebanese would like us to do that. Many, you know, they talk
3: eradicate Hezbollah.
2: Oh yeah, because they want freedom. Who would want a country to be taken over by these killers, these murderers? Of course they want to be free, but they've not shown yet the capacity to fight them. What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically, possibly splitting up the work, to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done as well.
1: Wahi Iran, jisne 1982 mein is sangathan ko pala posa.
4: Déséquilibré à l'image de cette guerre, de ce livre.
1: Tehran se bayan aata hai ki Israel Lebanon ki samprabhuta ka ullanghan kar raha hai. Lekin sawal ye hai ki kya Iran ki proxy war hi is pure tanav ki jad nahi hai? IRGC ke khud force ki training aur paise ke dam par ye jang rukne ka naam nahi le rahi.
2: If this regime is indeed weakened or possibly toppled, I think it's the end of Hezbollah, it's the end of Hamas, it's probably the end of the Houthis, because the whole scaffolding of the terrorist proxy network that Iran built collapses if the regime in Iran collapses. Now that's not guaranteed, but the weakening of that regime weakens the proxies as well. Still a long haul, You know, it's not something that's going to be done tomorrow.
1: इधर अमेरिका एक तरफ वो हिजबुल्ला को आतंकी संगठन कहता है, दूसरी तरफ लेबनान की सरकार से हाथ मिलाता है। ध्यान दीजिए, 14 मई को वाशिंगटन में 8 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद कहा गया सब कुछ सकारात्मक रहा और 15 मई को हिजबुल्ला के हमले में 6 इजरायली सैनिक मार दिए गए। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक रणनीति है ताकि दोनों पक्ष फिर से गोला बारूद इकट्ठा कर सके? ट्रंप का कहना है कि ये ऐतिहासिक समझौता होगा, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतिहास खून से लिखा जाएगा? एक तरफ बातचीत से शांति की अपील हो रही है तो दूसरी तरफ गोलीबारी के धमाके। लेबनान की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि सायरन का शोर है। इसराइल रुकने को तैयार नहीं, हिजबुल्ला झुकने को तैयार नहीं और ईरान आग में घी डालने से पीछे नहीं हट रहा।
2: Here we want to cease fire.
5: They do, yeah. Clearly.
2: You know why? Because they want Hezbollah to stay there and continue to torture Lebanon, continue to hold its people hostage. He understands what I'm saying. I mean, we want to get rid of that danger to our communities, to our cities. They rocket our cities all the time. They rocket our communities. And of course, would you want to live like that? I mean, would you like to live? Where do you live, Major?
1: लेकिन शोर इसराइल के अंदर भी है। सरकार पर नए मोसाद प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सवाल वहां भी उठ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपने नए मोसाद प्रमुख की नियुक्ति का बचाव किया। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इसराइल की खुफिया एजेंसियों पर आखिरी अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का है, न अदालत का, न मीडिया का। वेस्ट एशिया की इस लड़ाई में अब सच और रणनीति के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। अमेरिका शांति की भाषा बोल रहा है, इसराइल सुरक्षा की, हिजबुल्ला प्रतिरोध की और ईरान बदले की, लेकिन इन सब के बीच मर कौन रहा है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सीज फायर कब तक चलेगा, सवाल यह है कि क्या ये शांति की शुरुआत है या अगले बड़े युद्ध से पहले की खामोशी।
6: दुनिया इस वक्त किसी आम युद्ध से नहीं चिंतित है, ये बारूद की नहीं बल्कि तेल की जंग भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आज पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% युद्ध शुरू होने से पहले इसी संकरे रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज ये रास्ता एक ज्वालामुखी बन चुका है और अमेरिका की हार और जीत इसी रास्ते से होकर गुजरती है।

0: आजादी रिजीम चेंज से होते हुए वेस्ट एशिया की जंग अब तेल पर आकर रुक गई है। फरवरी 2026 से पहले हॉर्मुज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल पार होता था, लेकिन आज सन्नाटा है, सप्लाई ठप है। खाड़ी देशों में उत्पादन करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन गिर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो तेल कल तक 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था, वो आज 100 डॉलर की दीवार लांग चुका है। यानी मिसाइलें पश्चिम एशिया में गिर रही हैं और असर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है।
1: पूरा विश्व चाहता है ये लड़ाई समाप्त हो और ईरान को हरा हुआ ना देखा जाए, ना अमेरिका को जीता हुआ देखा जाए। लेकिन विश्व में अगर तेल की किल्लत ना हो, इस तरह का जो परेशानी पूरे विश्व भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर, खाना पीना तकलीफ हो रही है, उससे अगर बचना है तो मुझे लगता है हम लोगों को एक ऑनरेबल एग्जिट देना पड़ेगा ईरान को। लेकिन नहीं तो ईरान को भी तकलीफ होगी, लेकिन ईरान जिस प्रकार से जो चीन जो मदद कर रहा है, अगर चीन मदद करना बंद कर देता है, जो बहुत बहुत मुश्किल है, चीन मदद करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि चीन भी चाहता है कि ईरान किसी ना किसी तरीके से अपने आप को, उसकी अहमियत कम ना हो, उसके अस्तित्व पे चोट ना आए।
0: इस खेल में सबसे ज्यादा वो देश पिस रहे हैं जिनका अपना कोई तेल का कुआं नहीं है। एशिया और अफ्रीका के वो देश जहां आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हालत देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते भर का तेल बचा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की सांसें भी फूल रही हैं। उनके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का रिजर्व है, जबकि नियम कहता है कि कम से कम 90 दिन का भंडार होना चाहिए। वहीं अफ्रीका के कई देशों की हालत भी ऐसी ही है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की 70% आबादी उन देशों में रहती है जिनके पास इस महासंकट से लड़ने के लिए ढाल ही नहीं है।
2: इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, इंडिया अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में, यूरोप में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेट्रोल डीजल और क्रूड और गैस की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ी हैं। जबकि हिंदुस्तान में पिछले 2.5 महीने में, जब से लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, 2.5 महीने में हमने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया है कि कीमत मुश्किल से 1-5% ही बढ़ी है। लेकिन अभी क्योंकि ये जंग लंबी खींचती जा रही है, और अभी जैसे कल भी हुआ है, एक हमारा जो मर्चेंट शिप था उसको टारगेट किया गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, गल्फ ऑफ ओमान में, तो अभी आगे आगे ये जो पीड़ा है ये जारी बढ़ेगी और इसके लिए हमें पूरा तैयार रहना है।
0: बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, रसोई तक आग पहुंच चुकी है। भारत में ही देख लीजिए, पिछले 2 महीने में एलपीजी की खपत 13% कम हुई है। समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, ऊपर से ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बहता हुआ हजारों बैरल तेल। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, कुदरत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इस अंधेरे में भारत अपनी मशाल जलाए खड़ा है। दिल्ली जानती है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। मई 2026 में भारत रिकॉर्ड 23 लाख बैरल रूसी तेल हर रोज मंगा रहा है। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि हमारे लिए देश का आम नागरिक और उसकी रसोई पहले है। रूस भी कह चुका है कि वो भारत के हितों पर आंच नहीं आने देगा।
3: मूल रूप से अमेरिका ने ऐसे कई रुख अपनाए हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। उनका लक्ष्य सब कुछ हथियाना है, उन सभी ऊर्जा रूट को हथियाना है जो अहम है। ये लक्ष्य काफी स्पष्ट है और मुझे विश्वास है कि भारत समझता है कि क्या हो रहा है। अब वे हमारे गैस और तेल पर केवल इसलिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रूस को सजा देनी है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि रूसी आपूर्ति के मामले में भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे, और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये अनुचित तरीका, अनुचित प्रतिस्पर्धा हमारी व्यवस्थाओं को प्रभावित न कर सके।
0: क्या भारत सुरक्षित है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आंकड़े तसल्ली देते हैं।
4: आवर एलपीजी, द सिलेंडर गैस व्हिच यू यूज इन किचन्स, अबाउट 60% यूज्ड टू कम फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। Now we had to make arrangements. And look and behold, I mean, I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36 thousand metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आईएमएफ की वो चेतावनी सच हो सकती है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में फंसेगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। खाद, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।
5: वेस्ट एशिया में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव नहीं है, ये दुनिया की नई पावर पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। ऊपर से सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन पीछे युद्ध की तैयारी चल रही है। हॉर्मूज की खाड़ी, जहां से दुनिया के बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं, आज मिसाइलों, युद्ध पोतों और धमकियों के बीच फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी हो कि अगला धमाका जाने कब हो जाए। यूएस की नजर क्यूबा पर भी है, हालात वहां भी सामान्य नहीं है। यूएन चेतावनी दे रहा है कि युद्ध हुआ तो मानवता को खतरा है।

0: ईरान अब पहले वाला ईरान नहीं दिखता जो सिर्फ अमेरिकी सैंक्शन से डर जाए। तेहरान का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। उसकी नौसेना स्पीड बोट्स, ड्रोन, सी माइंस और छोटी पनडुब्बियों के साथ हॉर्मुज में ऐसी तैनाती कर रही है जैसे वो दुनिया को बता देना चाहता हो कि अगर दबाव बढ़ा तो तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक भी सकती है।
1: भारत के लिए ऊर्जा संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई जा रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे तब हम यहीं पास में श्री अराउची के साथ थे और अब वे यूएई में हैं। भारत के लिए ऊर्जा संकट एक गंभीर मुद्दा है।
2: भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं। इतिहास में ईरान और भारत के बीच कई समानताएं रही हैं। कूटनीतिक रूप से हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और हम निरंतर संपर्क में हैं। अन्य देशों के साथ हमारे संबंध हमेशा से भारत के विरुद्ध नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा है कि कोई भी द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के साथ हमारे संबंध आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित
3: है और
2: हम भारत के साथ स्वस्थ संबंधों को जारी रखने के लिए तत्पर
3: हैं।
0: ईरानी सेना खुले तौर पर कह रही है कि फारस की खाड़ी में उसकी डॉल्फिन पनडुब्बियां हर वक्त अलर्ट पर हैं। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जमीन पर नहीं समंदर में भी मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका है, ट्रंप प्रशासन लगातार दबाव बढ़ा रहा है। बातचीत जारी रखने की कोशिशें होती दिख जरूर रही हैं, लेकिन उसके साथ युद्ध पोत भी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और नौसैनिक बेड़े खाड़ी में तैनात हैं।
4: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. It's going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise.
0: अमेरिका अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा बल्कि ब्लॉकेड डिप्लोमेसी कर रहा है, यानी पहले आर्थिक और समुद्री घेराबंदी करो फिर बातचीत की शर्तें तय करो। ईरान के पोर्ट्स, बैंकिंग सिस्टम और तेल कारोबार पर नए सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने दबाव के बाद भी ईरान झुकेगा या और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। इस पूरे संकट में यूरोप का बदलता चेहरा भी दिलचस्प है। कुछ महीने पहले तक ट्रंप की रणनीति की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब खुद युद्धपोत भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेजने का फैसला किया है। फ्रांस अपने राफेल और फ्रिगेट्स के साथ मैदान में उतर चुका है। जर्मनी और इटली भी समुद्री रास्तों की निगरानी में लगे हैं। वजह साफ है, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल महंगा होगा, गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में किसी भी विदेशी सैन्य दखल का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यानी खाड़ी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रही, ये संभावित युद्ध का मैदान बन चुकी है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। यूएन ने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज के रास्ते खाद और जरूरी सप्लाई की आवाजाही रुकी तो दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य संकट और भूख जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर आम आदमी की रसोई तक पहुंचेगा। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ट्रंप प्रशासन की नजरें क्यूबा पर भी हैं। अमेरिका अब खुलकर उस नीति की तरफ लौटता दिख रहा है जिसमें वो अपने प्रभाव वाले इलाके में किसी भी विरोधी ताकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। क्यूबा पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है, यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि दुनिया की नई जियो पोलिटिकल लाइनें खींचने की तैयारी है। इस पूरे खेल को चीन भी बहुत ध्यान से देख रहा है। बीजिंग समझना चाहता है कि अगर कल ताइवान को लेकर अमेरिका से टकराव हुआ तो समुद्री नाकेबंदी, आर्थिक प्रतिबंध और ऊर्जा सप्लाई को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि वेस्ट एशिया का यह तनाव अब सिर्फ अरब दुनिया की खबर नहीं रहा, ये वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और यूरोप की रणनीतियों का हिस्सा बन चुका है।
5: वॉर रूम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
2: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
4: In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: अब खबर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की, जहां एक बार फिर से गर्मी शुरू होते ही जंगल धधकने लगे. इस दौरान पौड़ी से सतपुली आते समय गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जंगलों में धधकती भीषण आग को देखकर अपना काफिला तुरंत रुकवाया. मौके की गंभीरता को देखते हुए सांसद बलूनी ने वहीं से अधिकारियों को फोन करके फौरन आग बुझाने के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को तेजी से आग पर काबू पाने के लिए निर्देशित किया.
6: पौड़ी से जो सतपुली वाला रास्ता इस पे है, सड़क के ऊपर आग आ गई है. पूरी सड़क के ऊपर आग है. मतलब आप समझो कि पूरे हम लोग बीच में आग में है इस वक्त. तो ये सड़क के ऊपर आग आ गई, इसको तो तुरंत लोगों को भेजना पड़ेगा यहाँ. नहीं, कोई टीम नहीं है, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ आग में.
5: साल गर्मी, हर साल आग, हर साल सिस्टम को फोन करके जगाना पड़ता है कि यहाँ आग लग गई है, आ जाइए. रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रो फाइबर है.
10: माइक्रो फाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
10: हमारे सीमेंट में नहीं है?
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
13: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली.
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
15: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है. आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से मां का मंदिर घोषित हुआ है. ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है. आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है.
16: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा. अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, ना कि कमाल मौला मस्जिद. इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे। दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है। साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा। लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे। अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहाँ पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी का संबोधन, कहा यह आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो सालों तक असर, किंग और क्वीन से भी मुलाकात। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे।

7 فیزدی کیا ویٹ. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं. हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी.

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। देश की राजनीति में कुछ नेता चुनाव जीतते हैं और कुछ नेता चुनाव जीतने का पूरा विज्ञान बदल देते हैं। आज की कहानी ऐसे एक रणनीतिकार की जिसने बूथ को सत्ता से जोड़ा, कार्यकर्ता को सबसे बड़ी ताकत बनाया और भारतीय राजनीति का भूगोल बदल दिया। आज कहानी बात उस चेहरे की जो मंच पर कम दिखता है लेकिन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी पटकथाओं का लेखक माना जाता है। आज कहानी अमित शाह की।

0: કરી તું અત્યારે ફરી એક વાત કહી દઉં કે મારી ઓટ જોઈને કિનારે ગળ ના બાંધી દેતા સમંદર છે હું ફરી વાર પાછો આવી
1: और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ वो आप समझ लीजिए।
2: मैं कहता हूँ गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे।
3: जहाँ सफलता न हो वहाँ भी अड़िग रहने वाले एक राजनीतिक नेता, इसका मतलब है अमित शाह।
4: कठिन से कठिनतर परिस्थिति से कभी पीछे नहीं हटते। कार्यकर्ताओं को हौसला देना एक ऐसा गुण है जो उनको एकदम से अलग कर देता है।

राजनीति में कोई भी विस्तार सिर्फ नारों से नहीं होता, उसके पीछे होती है लंबी रणनीति, संगठन की परतें और जमीन पर लगातार चलने वाला राजनीतिक अभियान। अमित शाह ने भारतीय राजनीति को सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे बूथ, सामाजिक समीकरण और वैचारिक विस्तार के नए मॉडल में बदल दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी का बढ़ता हुआ राजनीतिक नक्शा सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि उस रणनीति की कहानी भी है जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरणों को बदल कर रख दिया।

0: भारत की राजनीति में कुछ चेहरे मंच पर दिखाई देते हैं और कुछ चेहरे मंच के पीछे रहकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य की दिशा तय करते हैं। अमित शाह कौन है? इस सवाल का जवाब सिर्फ उनके समर्थकों के पास ही नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों के पास भी है और हर जवाब में उनकी रणनीतिक क्षमता की झलक दिखाई देती है।
1: अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ।
2: अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सचमुच भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन कराने में कामयाबी हासिल करेगी, यह मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास।
3: पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में।
4: अपने राजनीतिक संस्कारों के द्वारा एक के बाद एक कदम पर चलने वाले और सफलता प्राप्त करने वाले, जहां सफलता न हो वहां भी अड़िग रहने वाले एक राजनीतिक नेता, इसका मतलब है अमित शाह।
0: अमित शाह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव की दशकों पुरानी सामाजिक सियासी बिसात को ध्वस्त कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत कैडर नेटवर्क को सीधी चुनौती देकर राजनीति का नया समीकरण कर दिया। ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे अजय माने जाने वाले नेता का किला ढह गया। असम में अरुण गोगोई के लंबे राजनीतिक वर्चस्व का अंत हो गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति हाशिए पर पहुंच गई। हरियाणा में कांग्रेस का जनाधार सिमटता चला गया और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कमल ने ऐसा विस्तार किया जो कभी असंभव माना जाता था। सवाल है आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरण बदल दिए? साल 2013।
2: श्री नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
0: बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां संगठन बिखरा हुआ था, स्थानीय नेतृत्व कमजोर था और जाति धर्म और राजनीति इतनी गहराई से जुड़ी थी कि राजनीतिक विशेषज्ञ साफ कह रहे थे कि यहां जीतना लगभग नामुमकिन है। 2013 में ठीक यही चुनौती सामने थी अमित शाह और यहीं से शुरू हुई भारतीय चुनावी राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक की कहानी।

0: राजनीतिक फैसला अगर आप कहते हैं, कई ऐसे हैं, कई ऐसे राजनीतिक फैसला है, पर एक अगर आप देखते हैं कि मानिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी थे राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, और कठिन प्रदेश था उत्तर प्रदेश। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या परिस्थिति था, राजनीतिक परिस्थिति आप सब जानते हैं उसको। उत्तर प्रदेश में उन्होंने तय किया कि सारे निकायों का चुनाव होगा, पंचायत से शुरू करके लोकसभा तक चुनाव होगा, और उनका प्रवास जो उत्तर प्रदेश में, ये जो माइंडसेट कि हम कोई एडजस्टमेंट कहीं नहीं करेंगे, हम अपना जो स्ट्रेंथ है, अपने पार्टी के जो पक्ष है उसको रखेंगे और उसको विस्तार करेंगे, पार्टी का विस्तार करना है और इसलिए हमको हर स्तर पे चुनाव लड़ना है। तो अब देखिए, वो जब महामंत्री थे तब उन्होंने ये तय किया, उसका एक हमने लिखा भी था कि कई लोगों ने उसका संगठनात्मक दृष्टि से विरोध भी किया, उनको लगा कि अरे ये क्या हर जगह हर चुनाव करना है, ये सब इट्स नॉट गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स। बट टुडे यू सी, किसने सोचा था उस समय 10 साल भाजपा का सरकार रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो
1: राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन इससे आगे ये अथक प्रयासों और बेहद सूझबूझ का भी खेल है।
2: आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे।
1: अमित शाह बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए थे और इसके बाद उस मिशन पर चले गए जिसमें देश के राज्य दर राज्य बीजेपी का कमल खिलाना था। इसके बाद की कहानी सब जानते हैं।
3: वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने तब पूरे देश में बहुत सी विधानसभाओं में चुनाव में जीत कर आए, सब उन्होंने जीत हासिल की सभी की, हरियाणा था, असम था, बाकी सब थे, बाद में पराजय भी हुआ। तो उतार चढ़ाव तो आता ही है, और अमित शाह की ये एक वित्त है, इसको मैं वित्त कहता हूँ, कि ऐसा है कि वो विफलता के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपत्ति को भी अवसर मानते हैं। ठीक मोदी का जो मन की प्रकृति है वही प्रकृति अमित शाह ने अपना ली है। तो ये इसी कारण पूरे देश में 2014 के बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक, और इसमें अंतिम अभी आया है बंगाल, असम तो था ही, बंगाल भी आ गया, तो ये जो तमिलनाडु की बारी है। तो पहले उत्तर भारत, फिर दक्षिण भारत, ये इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, शासन हो, इसकी एक व्यूह रचना, इसकी स्ट्रेटेजी, रणनीति, वो बनाने में अमित भाई का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: अमित शाह ने कमल के ढेर लगा दिए, उन्होंने ऐसे ऐसे राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी जहां उसका प्रवेश तक असंभव माना जाता था। त्रिपुरा और नागालैंड तक बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा तो बंगाल में भी सारे समीकरण ध्वस्त करके पहली बार सरकार बनाई।
0: में वो गए नक्सलबाड़ी में, सारे विश्व के इतिहासकार लोग नक्सलबाड़ी को पहचानते हैं, 60 के दशक में नक्सलबाड़ी से ही नक्सल आंदोलन का शुरुआत हुआ था, अर्बन नक्सल हो, ये नक्सल हो, सब सारा पूरा विचार वहां से शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी सबसे कठिन उत्तर बंग में उस समय 2017 में हमारे लिए सबसे कठिन जगह था। तो उनको पूछा गया कि आप कहां से शुरू करेंगे, उन्होंने कहा मैं वहां से शुरू करूंगा। 2017 याद रखिएगा, 2017 उन्होंने गया, वो जाकर वहां कार्यक्रम किया, और एक ही मंच पे बूथ के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष एक ही मंच पे होते थे। फिर वहां जाकर कार्यकर्ता के घर में उन्होंने भोजन किया, हर विस्तृत प्रवास में एकदम रिमोट एरिया में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और उनके घर भोजन भी करते थे। आज सोचिए निरंतर 10 साल 9 साल में आज जाकर वही नक्सलबाड़ी माटीगाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा के प्रत्याशी 1,00,000 वोट से जीता वहां से, वो नक्सलबाड़ी माटीगारा से। यही है अमित शाह। ये 10 साल, ये आज जो हम बंगाल देख रहे हैं, ये 10 साल का उनका लगातार निरंतर बिना थके बिना रुके उन्होंने जो अप्लाई किया है वहां, ये इसका नतीजा है।
1: भारत के नक्शे पर खेलता हुआ कमल इन भव्य दृश्यों में अमित शाह की रचना है। नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उन्होंने जो कमाल रचा है वो बेमिसाल तो है ही, बेशुमार भी है।
4: ने जीत ने सिर्फ बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचाया बल्कि भारतीय चुनावी राजनीति का पूरा मॉडल बदल दिया। बूथ मैनेजमेंट, सोशल इंजीनियरिंग और माइक्रो प्लानिंग अब राजनीति के नए हथियार बन चुके थे। लेकिन अमित शाह की रणनीति यही नहीं रुकी। इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी के विस्तार का सबसे बड़ा अभियान। ऐसे राज्य जहां कभी कमल का नाम तक नहीं सुनाई देता था, वहां भी पार्टी ने अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी। सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं था, ये जुनून था भारतीय राजनीति का नया भूगोल लिखने का।
1: 22 अक्टूबर 1964, गुजरात का एक छोटा सा शहर मानसा। एक साधारण व्यापारी परिवार में अमित शाह का जन्म होता है। ना कोई राजनीतिक विरासत, ना कोई बड़ा राजनीतिक सरनेम, लेकिन बचपन से ही एक आदत अलग थी, लोगों को देखना, समझना और याद रखना। स्कूल के दिनों में अमित शाह भीड़ का हिस्सा कम, भीड़ को समझने वाले छात्र ज्यादा थे।
5: 27 में यहाँ से स्कूल में से दिल्ली की टूर बनाई थी हमने। कुल 68% थे, 60 स्टूडेंट थे, 8 टीचर्स थे, इसमें अमित भाई भी साथ में थे। उस टाइम पे वो छोटे से छोटे बच्चे, यंग स्टूडेंट, करीब 14-15 साल के ही थे, लेकिन कोऑर्डिनेट करने में सबसे बढ़िया रहते थे हमारे साथ। इंदिरा गांधी से मिले हम, तो इंदिरा जी गांधी जी गए तो बैठने में सबके आगे थे, वो छोटे थे तो इंदिरा जी के पास में बैठे थे, उनके बगल में बैठे थे। क्वेश्चन आंसर भी उन्होंने गुजराती में भी किए थे, हिंदी में भी किए थे।
1: अमित शाह को जानने वाले बताते हैं कि उन्हें शुरू से संगठन बनाना पसंद था, लोगों को जोड़ना, टीम बनाना और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से चलाना।
6: पहली बार उनको इतनी बड़ी विधानसभा की टिकट मिली थी तो उसमें अहमदाबाद शहर भी था और छोटे छोटे गांव भी थे, तो उन्होंने अहमदाबाद शहर के नगरपालिका और नगर पंचायतों, उनके जो चेयरमैन, उनको सबको, क्योंकि सब टाइम उस टाइम सब भाजपा में नहीं थे, उन सबको इकट्ठा करके रात 2-2 बजे तक सबको बुला के, और प्रचार इतना, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे पूरा ऐसा एक चैन बनाया।
1: 16 साल की उम्र में अमित शाह आरएसएस से जुड़ते हैं। आरएसएस की शाखाओं में अनुशासन था, नेटवर्क था और राजनीति को समाज के जरिए समझने का तरीका था। और इसी दौरान गुजरात में 1980 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात होती है।
7: अहमदाबाद के कॉलेजियन युवाओं से बातचीत करने का, तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं जहां रहता था वो वार्ड में आए थे, नानपुरा वार्ड में आए थे, बहुत कम युवा थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आरएसएस का काम, आरएसएस के बारे में, वो उद्देश्यों की पूर्ति से देश को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और अंत में बताया कि अगर आरएसएस को जानना है तो इनको सुनना चाहिए, तो आप लोग जितने हो सके उतने युवाओं को लेकर ये कार्यक्रम में आई। उस वक्त मैं आरएसएस का स्वयंसेवक बन चुका था, परंतु पहली बार संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया।
0: 77 में जो इलेक्शन हुआ था, मणिबेन पटेल कॉन्टेस्टेड, मणिबेन पटेल कांग्रेस के खिलाफ उस समय जेबी कृपलानी सारे लोग उतर के आए कि कांग्रेस को हराना है। इमरजेंसी के बाद जेबी कृपलानी अमित भाई के घर में ठहरते थे उस समय, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो गांधीयन थे, उनका बहुत एक एक्टिव लिंक था ये पूरे सर्कल के साथ। मणिबेन पटेल लड़े उस समय इलेक्शन, अमित भाई का उस समय बहुत मुश्किल से 13 साल या ऐसा 13-14 साल की उम्र था। उन्होंने उस समय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कैंपेन में पार्टिसिपेट करना, पोस्टर्स लगाना, ये सब करना उस समय उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि उनका गुजरात के गुजरात में उनका अगर सार्वजनिक जीवन हम देखते हैं तो वो 87 ने वो 77 से कह सकते हैं कि पिछले 50 साल गुजरात में उनका सार्वजनिक जीवन 50 साल रहा। तो शायद ही एक ऐसा कोना हो, ऐसा स्थिति हो, कुछ भी हो जो वो नहीं जानते हैं 50 साल निरंतर। और ये 50 साल में आप देखिए ऐसा ग्राफ उनका बढ़ता ही गया संगठनात्मक दायित्व के दृष्टि से, इतना कठिन परिस्थिति के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे।
1: शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही जोड़ी आगे चलकर भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली गठबंधन बनेगी। एक के पास भाषण की ताकत थी, दूसरे के पास संगठन को बनाने और चलाने का हुनर था। अमित शाह समझ चुके थे कि राजनीति सिर्फ रैलियों का खेल नहीं है, राजनीति बूथ पर जीती जाती है, डेटा से जीती जाती है, नेटवर्क से जीती जाती है।
0: आपको याद होगा कि 1987 में जब पहला अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसी समय मोदी जी भी संघ से पार्टी में आए दायित्व लेकर, और वो पहला बहुत भारी बड़ा जीत हुआ भाजपा का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। उसके बाद ये जीत का जो साइकिल ये शुरू हो गया। उसी समय से ये गुजरात में संगठन का नींव मजबूत करना, ये हमने लिखा है पूरा, उसमें हमने डॉक्यूमेंट किया, संगठन का नींव मजबूत करना, लगातार प्रवास करना और कठिन परिस्थिति में प्रवास करना। आपको याद रखना चाहिए जैसे संगठन को विस्तार

0: अमित शाह के लिए हर सीट अलग युद्ध थी। 1997 में अमित शाह पहली बार गुजरात विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। फिर आता है साल 2001 और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं।
1: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: और यहीं से मोदी शाह की जोड़ी पूरी ताकत से सामने आती है। अमित शाह सरकार और संगठन दोनों में तेजी से प्रभावशाली होते जाते हैं। गुजरात की राजनीति में उनका नेटवर्क मजबूत होता गया। सहकारी संस्थाओं से लेकर स्थानीय चुनावों तक शाह ने संगठन को नीचे तक फैलाने का काम किया। 2010 में राजनीतिक विरोधी कहने लगे कि अमित शाह का करियर खत्म हो गया, लेकिन शायद यहीं से उनकी सबसे बड़ी वापसी शुरू होती है।
2: किनारे घर न बांधी देता समंदर से हूँ फरी बार पाछो आई।
0: अमित शाह ने खुद को सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ना शुरू किया और बीजेपी के भीतर एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में उभरे जो चुनावी गणित को जमीन पर बदल सकता था। 2013 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक मुश्किल सवाल से जूझ रही थी, कैसे जीता जाए उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी थी। सिर्फ कुछ महीनों का समय था अमित शाह के पास और उन्होंने उत्तर प्रदेश को नेता की तरह नहीं मैनेजर की तरह देखा। उन्होंने चुनावी राजनीति को माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल में बदल दिया।
3: अमित भाई की खुद की एक संगठनात्मक समर्पण की भावना, और मुझे लग रहा है कि वो उनके उनके फिलोसॉफी के अध्ययन से आई है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो बड़े पाठक है, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो लगता है उनको कि इसमें से ये काम लेना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अच्छा पाठक जो होता है, रीडर, वो अच्छा राजनेता भी बन सकता है, उसका उदाहरण अमित भाई है।
0: 2014 के जब नतीजे आए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उसी दिन साफ हो गया कि अमित शाह अब सिर्फ संगठन मंत्री नहीं रहे, वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बन चुके हैं। इसके बाद बीजेपी का विस्तार सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं रहा। अमित शाह ने बीजेपी को सिर्फ चुनाव जिताने वाली पार्टी नहीं बनाया, बल्कि लगातार चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक मशीन में बदल दिया। आज भारतीय राजनीति का हर दल बूथ मैनेजमेंट की बात करता है, डेटा की बात करता है, ग्राउंड नेटवर्क की बात करता है, लेकिन इस मॉडल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने वालों में सबसे बड़ा नाम अमित शाह का माना जाता है।
4: वक्त है छोटे से ब्रेक का। हौसला ब्रेक के बाद देखिए अमित शाह की कहानी।

0: शुभेंदु अधिकारी
1: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
2: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
3: अनुपम मिश्र,
4: मोहम्मद भारद्वाज,
5: पीयूष मिश्रा,
6: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: गैस भी महंगा कर दिया, कॉमर्शियल गैस भी महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया। तो दरअसल ये सरकार पूरी तरह से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसके हित में कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो तमाशा करते हैं और उनके नीचे ग्राउंड पे उनका वर्कर उसकी जो रियलिटी देश के सामने रखता है, बस मीडिया इसको सही से दिखाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है देश समझ जाए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशे में विश्वास रखती है। उनका मकसद इस क्राइसिस से निपटना नहीं है। क्राइसिस से निपटना होता तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाते आप। आपने देश को मझधार में छोड़ा, आप खुद विदेश यात्रा पर निकल गए और दाम आपने सीधे 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए।
1: कुल मिलाकर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 44% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30-40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी का संबोधन, कहा यह आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो सालों तक असर। किंग और क्वीन से भी मुलाकात। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले कि भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी।

0: भारतीय राजनीति में कई नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव के साथ साथ पूरे राजनीतिक भूगोल को ही बदल देते हैं। 2014 से 2026 तक सत्ता, संगठन और राजनीति तीनों मोर्चों पर अमित शाह ने ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसे बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति की सबसे निर्णायक शक्ति बना दिया। और यही वजह है कि आज बीजेपी हो या एनडीए, अमित शाह सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि जीत की सबसे बड़ी राजनीतिक गारंटी माने जाते हैं।
1: उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जो सियासी हवा चल रही है उसने अमित शाह को बीजेपी की राजनीति में आसमानी बना दिया है। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास देश के राजनीतिक समीकरणों को साधने की ऐसी कला हो। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक शक्ति, एक भावनात्मक आंदोलन और एक संगठनात्मक चमत्कार में बदल दिया है। 2014 के चुनाव में मोदी का संदेश था विकास, मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार, लेकिन उस संदेश को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम अमित शाह के संगठन ने किया। के बाद बीजेपी अध्यक्ष बनते ही अमित शाह ने पार्टी को राष्ट्रीय शक्ति बनाना शुरू किया। में जब मोदी सरकार पहली बार केंद्र में आई तो उस वक्त 7 राज्य और 25% आबादी पर बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन मार्च 2018 में देश के 21 राज्य और करीब 71% आबादी पर बीजेपी का शासन था। नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में बीजेपी ने या तो खुद सरकार बना ली थी या फिर सहयोगियों के साथ, जो अब तक बीजेपी के लिए असंभव था। ये सब अमित शाह ने मुमकिन किया था। अब बारी थी 2019 चुनाव की और जब नतीजे आए तो उसके बाद तो अमित शाह के लिए संगठन के तमाम ओहदे छोटे हो चुके थे। हर नेता जिस लाइन की शुरुआत में नरेंद्र मोदी पर न्यौछावर होते थे उसी लाइन के आखिर में अमित शाह पर। जीता कोई भी, दिखा कोई भी, लेकिन एक बात जो सनातन सत्य की तरह स्थापित हो चुकी थी कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जीत चाहे जहां हुई हो, विजय के सूत्रधार सिर्फ अमित शाह थे। उनके श्रेय में किसी की हिस्सेदारी नहीं थी।
2: हाँ, जिस बूथ में वो अध्यक्ष से थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आज भारत के गृह मंत्री है। तो मुझे लगता है कि संगठन को अगर समझना है, संगठन के पल्स के साथ अपने ये जो पल्स है उसको अगर मिला देना है और संगठन को अगर एकदम से समझना है तो आपको ग्रास रूट से उठकर आना पड़ेगा। और ये अमित भाई ने अपने अपने राजनीतिक ये जो पूरा सफर है, यात्रा है, इस यात्रा में हर कदम पे उन्होंने दिखाया।
1: अमित शाह ने सफलता का जो पैमाना रच दिया है वो अपने आप में शोध का विषय है। अगर नरेंद्र मोदी महानायक हैं, तो अमित शाह इस विशेषण के निर्माता। 2019 में जीत के बाद अमित शाह गृह मंत्री बन चुके थे। अब अमित शाह सिर्फ पार्टी के रणनीतिकार नहीं रह गए थे, अमित शाह भारत के सुरक्षा और नीति के नजरिए से सबसे शक्तिशाली गृह मंत्री बन गए थे। पिछले 7 सालों के दौरान उन्होंने जो किया वो ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान सीए लाया गया। नक्सलवाद के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए। आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजबूत किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में कई संगठनों के साथ समझौते किए गए। पुलिस आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया।
2: अगर पूछते हैं कि 2019 या 2024 से अभी और 2019 से जब अमित भाई का कार्यकाल शुरू हुआ, कई ऐसे सक्सेसेस हैं, पर उसमें सबसे लॉन्ग इंपैक्टिंग ये नक्सल वाला इरेडिकेशन हमारे जहन में घुस गया था ना, हमारे एकदम से साइकी में घुस गया था वो नक्सल, वो जा नहीं पाएंगे, इट इज आउट ऑफ बाउंड्स, लिबरेटेड जोन, और उनका एकदम मनमानी से चलता था। और स्वाधीनता के बाद पिछले 70 साल से ये चल रहा है और एकदम से आकर उसको खत्म करके, नॉट ओनली खत्म करना, उसका एक ऑल्टरनेट मॉडल खड़ा करना, ए बस्तर और ये पूरा नक्सल वाला जो रेड कॉरिडोर में जिस तरीके से डेवलपमेंट, विकास, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, दैट इज एन ऑल्टरनेट मॉडल. तो आपने टैकल किया, आपने खत्म किया और आपने एक ऑल्टरनेट मॉडल खड़ा किया. दिस इज हिज अप्रोच. ये हर बार एक उनके एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो गुजरात में जब वहां भी होम मिनिस्टर थे, एंड नाउ देयर इज ऑलवेज अ क्रिएटिव एंगल टू इट.
1: अमित शाह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दे दिया था, लेकिन ये सब जानते थे कि बीजेपी की सफलता की कहानी कौन लिख रहा है.
2: गुजरात में जब भाजपा विपक्ष में था, आपको याद होगा कि 1987 में जब पहला अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसी समय मोदी जी भी संघ से पार्टी में आए दायित्व लेकर, और वो पहला बहुत भारी बड़ा जीत हुआ भाजपा का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में. उसके बाद ये जीत का जो साइकिल ये शुरू हो गया. उसी समय से ये गुजरात में संगठन का नींव मजबूत करना, ये हमने लिखा है पूरा, उसमें हमने डॉक्यूमेंट किया, संगठन का नींव मजबूत करना, लगातार प्रवास करना और कठिन परिस्थिति में प्रवास करना. आपको याद रखना चाहिए, जैसे बंगाल में एक समय कांग्रेस 30 साल शासन किया स्वाधीनता के बाद, लेफ्ट में 30 साल किया शासन स्वाधीन माने कांग्रेस के बाद, वैसे ही गुजरात में भी कांग्रेस 30 साल शासन किया और एकदम बहुत, और कांग्रेस का शासन भी बहुत कठिन था. रायट स्टेट, इट यूज टू बी नोन कर्फ्यू स्टेट, वहां लगातार दंगे और ऑपोजिशन को दमन करना, उनको भय दिखाना, ये सब परिस्थिति में संगठन को विस्तार, संगठन का विस्तार करना, संगठन को मॉडर्नाइज करना, संगठन का सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट करना, सदस्यता करना, यानी गुजरात में आज जो लगातार निरंतर 27 साल भाजपा सत्ता में है, इसका नींव उस समय रखा गया था जब प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री जी तब नरेंद्र भाई के नाते गुजरात में जो उन्होंने काम किया, और उनके साथ लगातार अमित भाई ने भी जो किया, और ये सब भी फिर लगातार हमारे जो वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ धीरे धीरे एमएलए और एमपीज भी आए, ये सारा.
1: अब बारी थी 2024 की. अमित शाह जब बीजेपी के रणनीतिकार से ऊपर उठकर पूरे एनडीए के इंजीनियर बन चुके हैं, 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी, लेकिन पेज फंस गया था. ये अमित शाह का ही कमाल था कि उन्होंने चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मनाया, वापस संगठन में लेकर आए, चंद्रबाबू नायडू से रिश्ता जोड़ा. लोकसभा चुनाव के बाद जब कुछ सीटें कम पड़ गईं, दोनों ने समर्थन दिया और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार आ गई.
2: हमें रहना और सत्ता में रह के हमारे जो मौलिक विचारधारा के जो विषय है उसको कैसे कार्यान्वित करना, सत्ता में रह के सत्ता में रहना, ये भी एक है, और सत्ता में रह के भी पार्टी का विस्तार, पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को किसी तरह कॉम्प्लिसेंसी में नहीं लाना, ये मोदी और शाह एरा में हम देख रहे हैं.
1: अगर नरेंद्र मोदी सबको स्वीकार है तो अमित शाह भी सबको स्वीकार है, बिना किसी किंतु परंतु के. पूरे देश के 21 राज्यों में अकेले बीजेपी की सरकार है, और इस सत्य के समानांतर एक दूसरा सत्य जो स्थापित हो चुका है कि अमित शाह का विकल्प किसी के पास नहीं, ना बीजेपी के पास, ना एनडीए के पास.
3: भारत माता की.
0: देश की सियासत में अक्सर नेताओं को भीड़ पसंद आती है, लेकिन शाह को पसंद है साइलेंट वर्कर, यानी वो कार्यकर्ता जो चुपचाप बूथ जीत लेता है. शायद यही वजह है कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, एक मैनेज्ड मशीन दिखाई देती है, और इस मशीन का मास्टर इंजीनियर है अमित शाह. उनका सफर बताता है कि संगठन सिर्फ शाखाओं से नहीं, विजन से खड़ा होता है.
1: अमित शाह की राजनीति सिर्फ मंच और भाषणों की राजनीति नहीं है, उनकी असली ताकत उन लाखों कार्यकर्ताओं में दिखाई देती है जिन्हें वो लगातार जोड़ते रहते हैं. चुनाव हो या ना हो, अमित शाह का संगठन हमेशा चुनावी मोड में रहता है. अमित शाह सिर्फ बड़े नेताओं के साथ बैठक नहीं करते, बल्कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बनाते हैं. नाम याद रखना, छोटे कार्यकर्ता को महत्व देना और हर स्तर पर लोगों को जिम्मेदारी देना, यही अमित शाह की शैली मानी जाती है.
4: कहीं पर खड़े थे अमित जी आए, बोले कैसे हो, कंधा में हाथ दिया, हाथ मिलाए, तो अपने आप में एक असाधारण चीज है।
5: बहुत लोगों का जो मुद्दा रहता है हम लोग लिखित करके उनको देते हैं, उन लोग मतलब एकदम एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग में उसका हल, क्या इतना जल्दी जो हम लोग इस मीटिंग में कुछ बोले, कुछ चीज, कुछ मुद्दे उठाए, अगला मीटिंग में उसका हल हमको मिल जाता है।
6: जिसे हम लोग जो सीखते हैं, इतना सिंपल और इतना हाई थिंकिंग विजनरी थॉट है, जो भी बात करते हैं बहुत संक्षिप्त में बोलते हैं वो।
2: कठिन से कठिनतर परिस्थिति से कभी पीछे नहीं हटते हैं। कठिन परिस्थिति में जाकर ये दल का काम हो, पार्टी का जो संदेश है उसको बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को हौसला देना, ये उनके सबसे बड़ा एक ताकत भी है, एक ऐसा गुण है जो उनको एकदम से अलग कर देता है, सब कई लोगों से अलग करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं जो हमने किताब में इसको लिखा है। 2017 उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते एक बहुत पहले ये एक हुआ करता था प्रवास का एक प्रथा, जनसंघ के समय से ये प्रवास का एक प्रथा हुआ करता था। वो भी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते एक बहुत पहले ये एक हुआ करता था प्रवास का एक प्रथा, जनसंघ के समय से ये प्रवास का एक प्रथा हुआ करता था। वो बीच में उतना सिस्टमैटिकली नहीं होता, बीच में उतना सिस्टमैटिकली नहीं होता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने ये विस्तृत प्रवास उन्होंने शुरू किया और विस्तृत प्रवास सारा देश भर में जाकर, बीच में उतना सिस्टमैटिकली नहीं होता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने ये विस्तृत प्रवास उन्होंने शुरू किया और विस्तृत प्रवास सारा देश भर में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद, संगठन का एक जायजा लेना, लोगों से संवाद करना, प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करना। नहीं तो आप सोचिए कि एकदम कामाख्या से, अरुणाचल से, ईटानगर से और कई जगह जाकर वो पुस्तकालय भी इनॉग्रेट करते।
7: अमित शाह ने संगठन को 3 स्तरों पर मजबूत किया, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और मंडल समिति। अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ता को सिर्फ समर्थक नहीं रहने दिया है बल्कि उसे संगठन का सबसे अहम सैनिक बना दिया। आईटी सेल, डेटा टीम, बूथ नेटवर्क और माइक्रो मैनेजमेंट, इन सब को जोड़कर उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो हर दिन काम करता है, सिर्फ चुनाव के समय नहीं।
8: इस लोकसभा का सम्मेलन, जिसमें मुझे लगता है कि ये सम्मेलन है या सभा है वो मालूम ही नहीं पड़ता, इतनी विशाल संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे पन्ना प्रमुख भाई और बहनों को मेरा प्रणाम।
7: गुजरात से लेकर दिल्ली तक अमित शाह की पहचान एक ऐसे नेता की बनी है जो कार्यकर्ताओं को सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं मानते बल्कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी बूथ पर पार्टी कमजोर हो तो अमित शाह खुद वहां के समीकरण समझने लगते थे। कौन नाराज है, कौन सक्रिय है, कहां संगठन कमजोर है, हर चीज पर उनकी नजर रहती थी।
6: मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं करना है, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी करने का जरूरत नहीं है, राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी करना है। और राष्ट्र निर्माण के लिए जो पार्टी काम करता है उस पार्टी का कार्यकर्ता को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना पड़ेगा। और अमित जी से हम लोग जो सीखते हैं, इतना सिंपल और इतना हाई थिंकिंग विजनरी थॉट है, जो भी बात करते हैं बहुत संक्षिप्त में बोलते हैं वो, मगर वो बात को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमको बहुत करना पड़ेगा।
7: अमित शाह का सबसे बड़ा मंत्र रहा बूथ जीतो चुनाव जीतो, और यही वजह है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ बड़े चेहरों पर नहीं बल्कि लाखों छोटे कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर खड़ी दिखाई देती है। आज बीजेपी के संगठन में जो अनुशासन, गति और चुनावी तैयारी दिखाई देती है उसकी नींव उसी मॉडल में है जहां नेता से ज्यादा महत्व कार्यकर्ता को दिया गया।
9: आपके लेवल का जो प्रॉब्लम होगा उसका भी समाधान
10: हमारे स्तर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे, तो उसका समाधान भी वो हंस के हमें समझा देते हैं, ऐसे करो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, संगठन आगे संगठन सर्वोपरि। अमित जी के लिए अभी जो है तो हम लोग सब संतान जैसे हैं उनका, तो ऐसा प्रेसिडेंट हमें तो नहीं देखा, इससे पहले हमने नहीं देखा, एक एक दो घंटा तीन घंटा करके चल रहा है,
9: लग रहा है ज्यादा काम करना पड़ रहा
10: है। काम तो हम लोगों को भी बहुत ज्यादा ही करना पड़ रहा है, लेकिन ये अमित जी भी खुद काम करते हैं और हम लोगों को भी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि दूर से बोल दिया ये काम करो वो काम करो, ऐसा नहीं है, खुद भी करते हैं, उतना ही करते हैं जैसे हम करते हैं, हमसे ज्यादा वो भी करते हैं, पूरा देश का दौरा कर रहा है, तो हम लोग को जो काम देते हैं वो तो हमें करना पड़ता है। काम अभी बढ़ रहा है और वो भी और बढ़ा रहा है, बेंगोल को जीतना है ये उनका सपना है, हम उनको ये उपहार में देंगे।
4: एक डेढ़ घंटा दो घंटा की एक मीटिंग चल रही है, तो जिस ग्रुप में हम लोग को बुलाया जा रहा है उस ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं, उस बैठक है, जैसा सारा दिन में हमारा तीन बैठक है तो हम तीन जगह जाएंगे, मगर यहाँ पर आठ या नौ मीटिंग होंगे, तो अमित जी सब में रहेंगे। हम लोग जैसे है ऐसे ग्रुप वाइज है, जो जिस स्तर का है उनका एक एक अलग अलग अलग अलग मीटिंग चल रही है उस तरह का।
7: भारतीय राजनीति में कई नेता भाषणों से लोकप्रिय बनते हैं, लेकिन अमित शाह ने संगठन बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि बीजेपी का विस्तार सिर्फ चुनावी जीत की कहानी नहीं बल्कि बूथ स्तर तक फैले उस नेटवर्क की कहानी भी है, जिसे अमित शाह ने लगातार मजबूत किया है।
0: आज कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Flexibility is the foundation of WGU School of Education. With WGU, you have the option to take courses when it works for you. And while our programs are centered around you and your schedule, you'll never go it alone. You'll have one-on-one mentorship and support from faculty every step of the way, from day one to graduation. WGU empowers you to become the best teacher you can be. Learn more at wgu.edu.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर हैं और एक बड़ी खबर आपको देते हैं। भारत और नीदरलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ अहम करार और हुए हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और नीदरलैंड की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंपॉर्टेंट मुलाकात की है, वहाँ के किंग और क्वीन से भी वो मिले हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले हैं और एक बहुत नीदरलैंड सबसे अहम साझेदारों में से एक है, ये पीएम मोदी ने फिर से दोहराया है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट करार, खासतौर पर सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट समझौते जानकारी मिल रही है कि हुए।
3: एक्सलेंसी, मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगभग एक दशक बाद नीदरलैंड की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड पार्टनरशिप ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एक्सलेंसी, हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है। इसी बढ़ते हुए सहयोग को देखते हुए 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने नीदरलैंड को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था। हमें बहुत खुशी है कि फरवरी में भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भी नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। एक्सलेंसी, भारत विश्व का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी है। आप नीदरलैंड और यूरोपियन लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। एक बार फिर आपके स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
4: से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी।

नीट केस पर भड़के राहुल गांधी, बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें पीएम मोदी। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में 22 लाख परीक्षार्थियों का मुद्दा उठाया नेता, विपक्ष का दावा अब तक 80 बार पेपर लीक, 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित। नीट केस में 2 आरोपियों को सीबीआई हिरासत में, दोनों ही आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंडारे को 10 दिनों की हिरासत मिली। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी, एनटीए की एक्सपर्ट टीचर मनीषा मंडारे ही ने बायोलॉजी का पेपर लीक किया था। एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव, अनुजा बापट और रुचिता विज ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त। नीट प्रत्याशी की आत्महत्या के मामले में दिल्ली में एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च, घर में मिली थी छात्रा की लाश। नीट पेपर लीक में दूसरे शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन, इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने आवाज बुलंद। अयोध्या में नीट परीक्षा लीक मामले में समाजवादी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दों पर भी आक्रोश। नीट पेपर लीक पर मिजोरम में राज्यपाल वीके सिंह बोले कि नीट पेपर हो सकता है लीक, लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेना की व्यवस्था निष्पक्ष है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने धर्मेंद्र प्रधान को लिखी चिट्ठी, परीक्षा रद्द होने पर जताई चिंता, तत्काल व्यवस्थागत सुधार की मांग की। नीदरलैंड में पीएम मोदी बोले कि यह दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है, पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के राजा और रानी से भी मुलाकात की और इस मीटिंग में शानदार केमिस्ट्री और आपसी सम्मान भी दिखा। नीदरलैंड्स में 11वीं सदी के भारत की ये बेशकीमती चीज प्रधानमंत्री मोदी को लौटाई, ये तांबे की प्लेट चोल राजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के जमाने की है। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार, मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को एमईए ने नकारा, कहा कि सिंधु जल संधि भारत की ओर से रहेगी स्थगित। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, भ्रष्टाचार के केसेस की होगी जांच, अभिषेक बैनर्जी की संपत्ति की मांगी सूची। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, शुभेंदु अधिकारी बोले अफसर की कॉल डिटेल्स की होगी जांच, अभिषेक के निर्देश पर काम करने वालों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की, मदरसा शिक्षा मंत्री टुडू ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन होगा। फलता उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला, कहा कि यह सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि संविधान बहाली की लड़ाई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने सतानिशा कहा कि तथाकथित पुष्पा अब उनकी जिम्मेदारी है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, कहा कि राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपये देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ 40,000 रुपये। आंध्र प्रदेश में घटती जनदर पर चंद्रबाबू नायडू ने जताई चिंता, कहा कि समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिलकर करना होगा काम, सरकार जल्द इस योजना का विस्तृत खाका करेगी जारी। तमिलनाडु में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गृह विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग, पुलिस समेत कई विभाग अपने पास रखे। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान, कहा कि मुझे मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से मेरा पेश किया गया और मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की थी। बॉडी से सतपुरी जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जंगलों में लग भीषण आग को देखकर तुरंत रोका अपना काफिला, सांसद बलूनी ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन करके तुरंत आग बुझाने के कड़े निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भागीरथ ने पॉक्सो मामले में सरेंडर किया, साइबराबाद पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का उद्घाटन किया, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री ने प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें हुए शामिल। पंजाब के 72 शिक्षक का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना, सीएम मगमद मान ने रवाना किया। यूपी पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया रील्स पर सख्ती, आपत्तिजनक पोस्ट और रील्स डालने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर आपदा पीड़ित के परिवार वालों को 4,00,000 की आर्थिक सहायता, आंधी तूफान आसमानी बिजली से 127 की मौत। गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन समाज को संगठित शक्तिशाली बनाने की जरूरत, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का समर्थन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सूरनकोट इलाके में आतंकियों की तलाश। सीबीएसई ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं को अनिवार्य किया, 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूरी, 1 जुलाई से नियम लागू। सीबीएसई में 10वीं में तीसरी भाषा का नहीं होगी कोई भी परीक्षा, एनईपी के तहत सीबीएसई का फैसला। ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बीजेपी का देशभर में विशेष अभियान, बीजेपी दफ्तरों में 50% तक ईंधन कटौती का लक्ष्य, वर्चुअल बैठकें करने की अपील।
आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर लें भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लोगों को जागरूक करने के लिए लेक्चर का किया आयोजन, कार्यक्रम में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनको जानकारी दी गई। बोटचाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मस्जिद कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया। धार भूतशाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई का बड़ा फैसला, आप साल भर पूजा कर सकेंगे। ड्रग तस्करी के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कामयाबी, 227 किलोग्राम से ज्यादा का कैप्टेगन टैबलेट पाउडर बरामद, खाड़ी देशों में ये ड्रग की खेप जानी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी नागरिक के पास से 350 सोना जब्त किया गया और 115 गोल्ड बार भी बरामद। दिल्ली सरकार ने एयरलाइंस को दी है बड़ी राहत, जेट फ्यूल वैट 25% से घटाकर अब 7% किया। सरकार ने चांदी के आयात पर भी सख्ती की, अब 99.9% शुद्धता की चांदी के आयात पर बैन, नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू। कूचबिहार में बीएसएफ और पुलिस का साझा अभियान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 150 गज के दायरे में अवैध जूट की खेती को किया गया नष्ट। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर में हत्याकार सवार शख्स को 30 राउंड गोलियां मारी, रोहित गुदारा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी, लखनऊ पुलिस का वांटेड दिल्ली से गिरफ्तार, यूपीएसटीएफ ने नाइजीरिया ठग को अरेस्ट किया, 68 लाख के ठगे का। पटना के पतुआ में वट सावित्री पूजा के दौरान बरगद के पेड़ में लगी भीषण आग, बाल बाल बची महिला। एमपी के देवास में टोंट कला पटाखा फैक्ट्री में धमाके को लेकर कार्रवाई, एसडीएम संजीव सक्सेना, टप्पा चिड़ावत के नायब तहसीलदार रवि शर्मा सस्पेंड। सट्टा मामले में रायगढ़ की पुलिस ने गोवा के 6 बड़े सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल जब्त। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला निकला तांत्रिक, झांसी में गिरफ्तार, पिस्तौल रिवॉल्वर समेत 7 हथियार जब्त। रायगढ़ की सिंघनपुर गुफा में वैज्ञानिकों पर ही हमला हुआ, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर के किशनगढ़ में जिम ट्रेनर पर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप, आरोपी जिम वाले की पत्नी ने इसका खुलासा किया। सूरत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के टैंकर से पेट्रोल चोरी का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। रायसेन में तालाब में नहाने से 2 बच्चों की मौत हुई, चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग नहीं होने से प्रशासन पर भी सवाल। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में बने सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में जानवरों की खास देखभाल, गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजाम। गुजरात के वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में 500 किलो केसर आम का भव्य अन्नकूट सजाया गया और शनिवार अमावस्या पर भगवान को आम, आमरस, कटे फलों का विशेष भोग अर्पित किया गया। अकोला में शनि जयंती पर भव्य उत्सव, 11 किलो कलाकंद केक काटकर भक्तों ने मनाया। मादीपुरा में 37 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी से माहौल हुआ भावुक, सुमली मावत उत्सव में श्रद्धालुओं ने नंदकिशोर मंदिर में पूजा अर्चना की, भाईचारे का संदेश दिया।

0: अब आप पीएम मोदी के विदेश दौरे की उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में 2 अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: धार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन

0: उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
1: गौशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कबाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया, जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी गौशाला में सनातन की छाप है
0: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था, और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है, केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया, तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंबे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
1: गौशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी, जिसके बाद एएसआई ने गौशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की, केमिकल से इन खंभों को धोया गया, तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
2: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में गौशाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी गौशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
1: गौशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि यह स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जिसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है और यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग्देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा, और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है। सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था।

0: मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स, राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले दो हजार चौदह में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में 2 अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भूशाला है। वही भूशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भूशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भूशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहां घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं गौशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिला लेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंभे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भूशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भूशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंभे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंभों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंभे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भूशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भूशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जिसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूने से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के पूजन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है, इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया,
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
6: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
7: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
6: आप क्या करेंगे? आप
7: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग्देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
8: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
9: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
10: बाहर का जो एक और कमाल मौला
9: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में लिखा। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए
11: सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित।
4: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
12: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
4: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
13: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता।
4: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
14: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
4: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स, राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे, पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में घोष डाला कि पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: गौशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के प्रवचन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना

0: कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
1: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
0: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाघ देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाघ देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोशाला के भीतर जा रहे हैं।
1: भोशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
3: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
4: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
3: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया।
4: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
3: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
5: को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
6: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
5: अब क्या करेंगे आप?
6: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाघ देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
7: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
3: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
8: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, ASI के अधीन ये संपत्ति दी है, ASI चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो ASI को दी है।

0: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशालक में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
1: पूरे कमाल मोहल्ला जो ये भोजशाला परिसर है
2: बाहर का, तो इधर कमाल मोहल्ला
1: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मोहल्ला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
0: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
3: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
4: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना, वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
0: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
5: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
0: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
6: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: भारत नीदरलैंड्स के बीच कई करार पीएम मोदी बोले, भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स, राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है, टीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है, नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में 2 अहम आरोपियों को पेश किया, एक मनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वहीं मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: धार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीर झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार पर भोज शाला की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी भोजशाला के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: भोजशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि यह स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के पूजन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है, इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई के रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न, ये मोशन। धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके पक्ष में फैसला आया।
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भोजशाला अब अधूरी नहीं, पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है। हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है, न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद नहीं।
6: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
7: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
6: आप क्या करेंगे? आप
7: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग्देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
8: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
9: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो भोजशाला परिसर है,
10: बाहर का तो एक और कमाल मौला
9: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए
11: सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित।
4: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
12: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
4: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
13: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
4: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
14: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
4: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: इसके बीच कई करार पीएम मोदी बोले, भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंगपिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंगपिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात महंगाई की, जिसे लेकर जारी सियासत अब सड़कों पर नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद विपक्ष चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, जहां वो बैलगाड़ी से सफर करते नजर आए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां वो बाइक को ठेले पर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई।
4: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर है। बैलगाड़ी के साथ दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे बैलगाड़ी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, आपको दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे।
5: देखिए, आज मजबूरन लोगों को बैलगाड़ी पर आना पड़ा है। ये पुलिस हमको रोकना चाहती है, लेकिन ये मजबूरी देवेंद्र यादव या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली की जनता की परेशानी है। क्योंकि ये वो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, ये आपके और हमारे सबके सामने है।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है। जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भूशाला है। वही भूशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भूशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भूशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं गौशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भूशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भूशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंभे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंभों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे खंभे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भूशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भूशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खंभों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जिसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूने से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के पूजन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है।

0: लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी एएसआई के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
1: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
3: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
4: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
3: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया,
4: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
3: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
5: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
6: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
5: आप क्या करेंगे? आप
6: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
7: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
3: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
8: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
3: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो ये भोशाला।

0: बाहर का तो इधर कमाल मौला
1: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
2: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
3: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
2: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
4: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
2: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
5: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
2: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
6: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: भारत नीदरलैंड्स के बीच कई करार। पीएम मोदी बोले, भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स। राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत। विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की हैरान करने वाली तस्वीर। कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली। रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: धार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार पर घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है और यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं। उन सबके बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे यह यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया।
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
6: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
7: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
6: अब क्या करेंगे आप?
7: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग्देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
8: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
9: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है
10: बाहर का जो एक और कमाल मौला
9: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए
11: सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
4: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
12: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
4: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
13: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
4: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
14: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
4: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: करार पीएम मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में 2 अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: भोशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से जहां नमाज भी होने लगी थी, समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार पर घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो जो
0: गौशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के प्रवचन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये इमोशन

0: जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
1: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
0: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया।
1: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
0: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
2: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
3: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
2: अब क्या करेंगे आप?
3: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
4: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
0: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
5: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
0: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
5: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है
6: बाहर का, तो एक और कमाल मौला
5: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
0: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
7: जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: हिंदू पक्ष खुश है कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
8: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता।
0: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
9: कोर्ट ने जैसा मैंने भी कहा 1935

0: के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
1: अदालत ने साई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात महंगाई की, जिसे लेकर जारी सियासत अब सड़कों पर नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद विपक्ष चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, जहां वो बैलगाड़ी से सफर करते नजर आए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां वो बाइक को ठेले पर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं के पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई।
4: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर है। बैलगाड़ी के साथ दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे बैलगाड़ी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, आपको दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे।
5: देखिए, आज मजबूरन लोगों को बैलगाड़ी पर आना पड़ा है। ये पुलिस हमको रोकना चाहती है, लेकिन ये मजबूरी देवेंद्र यादव या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली की जनता की परेशानी है। क्योंकि ये वो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है ये आपके और हमारे सबके सामने है।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है। जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भूशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
1: और हम आपको लेके चलते हैं गौशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिला लेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंबों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंबों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार पर घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: गौशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां, रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है और यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया,
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
6: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
7: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
6: अब क्या करेंगे आप?
7: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग्देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
8: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
9: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है
10: बाहर का, तो एक और कमाल मौला
9: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए
11: सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
4: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
12: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
4: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
13: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
4: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
14: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
4: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: भारत नीदरलैंड्स के बीच कई करार पीएम मोदी बोले, भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स, राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में 2 अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: धार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपने रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अलग देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार में घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पर बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के पूजन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो लेकर के भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया।
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भोजशाला अब अधूरी नहीं, पूरी

0: विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोलम मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
1: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
2: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
1: आप क्या करेंगे आप?
2: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाघ देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
3: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
0: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
4: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
0: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
5: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
6: बाहर का तो एक और कमाल मौला
5: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
0: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
7: जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: हिंदू पक्ष खुश है कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
8: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता।
0: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
9: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
0: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला

0: को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
1: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर की हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंची गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था, तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात महंगाई की, जिसे लेकर जारी सियासत अब सड़कों पर नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद विपक्ष चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, जहां वो बैलगाड़ी से सफर करते नजर आए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां वो बाइक को ठेले पर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई।
4: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर है। बैलगाड़ी के साथ दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बैलगाड़ी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे।
5: देखिए, आज मजबूरन लोगों को बैलगाड़ी पर आना पड़ा है। ये पुलिस हमको रोकना चाहती है, लेकिन ये मजबूरी देवेंद्र यादव या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली की जनता की परेशानी है। क्योंकि ये वो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, ये आपके और हमारे सबके सामने है।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भोशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद है।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: गौशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी गौशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़े इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 मई की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे, पुरातत्व विभाग के महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 मई की सरकार पर घोषणा की, पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: गौशाला अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जैसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है कि इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है। और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
4: जिस पूजनीय स्थल के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में फैसला आया,
5: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
6: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
7: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
6: अब क्या करेंगे आप?
7: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग्देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
8: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
9: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
9: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है
10: बाहर का, तो एक और कमाल मौला
9: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए
11: सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित।
4: अदालत ने अपने आदेश में एसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
12: जो एसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला है, एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
4: हिंदू पक्ष खुश है कि एसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
13: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
4: एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
14: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
4: अदालत ने 11 मार्च को एसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

0: 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
1: पीएम मोदी बंगाल चुनाव और उसमें मिली बीजेपी की बंपर जीत का भी जिक्र करते हैं और साथ ही झालमुड़ी की भी बात उन्होंने की। बंगाल चुनाव में जो झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
0: भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई।
1: नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा कराने वाले संस्था एनटीए सवालों के घेरे में, क्योंकि जब दूसरी सीनियर शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है जो कि टीम का हिस्सा होने के बाद पेपर लीक में शामिल थी। इससे पहले केमिस्ट्री के एक रिटायर प्रोफेसर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
2: जिस प्रोफेसर पर जिम्मेदारी थी देश के होनहार छात्रों को डॉक्टर बनाने की, वही शिक्षक नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पूरी साजिश रची, छात्र जुटाए, परीक्षा से पहले उन्हें सवाल जवाब बताए और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी और आखिरकार एजेंसी उस आरोपी तक पहुंच ही गई जिसे पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है।
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे।
2: पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आरोपी कुलकर्णी को पता कैसे चला। दरअसल वीपी कुलकर्णी एनटीए की ओर से बनाई गई पेपर सेटिंग टीम से जुड़ा था जिसके चलते प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट्स से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
2: आज सीबीआई ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में दो अहम आरोपियों को पेश किया, एक वनीषा वाघमारे और दूसरा पीवी कुलकर्णी। दोनों पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर था, लेकिन कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है। मनीषा वाघमारे करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी, जिसे सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। तो वही मनीषा को कुलकर्णी जानता था। कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के जरिए दूसरों को सवाल दिए। वाघमारे और कुलकर्णी लीक हुए पेपर को हासिल करने और बांटने की साजिश में एक दूसरे के साथ शामिल थे। बहरहाल जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, जो बच्चों और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लातूर से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात महंगाई की, जिसे लेकर जारी सियासत अब सड़कों पर नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद विपक्ष चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाला, जहां वो बैलगाड़ी से सफर करते नजर आए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां वो बाइक को ठेले पर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई।
4: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर है। बैलगाड़ी के साथ दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे बैलगाड़ी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, आपको दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आएंगे।
5: देखिए, आज मजबूरन लोगों को बैलगाड़ी पर आना पड़ा है। ये पुलिस हमको रोकना चाहती है, लेकिन ये मजबूरी देवेंद्र यादव या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली की जनता की परेशानी है। क्योंकि ये वो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, ये आपके और हमारे सबके सामने है।
1: मध्य प्रदेश की धार की करेंगे, जहां भोजशाला को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण है। जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ी। वहीं आज तक की टीम ने भी अंदर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया।

0: बिहार की भोजशाला में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थल है और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मान दिया है कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला है। वही भोजशाला जिसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया था। आज तक की टीम आज उस ऐतिहासिक भोजशाला के अंदर पहुंची है जहां 11वीं सदी की आकृतियां और अवशेष आज भी मौजूद हैं।
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे।
0: भोजशाला के अंदर दरवाजे छोटे और कम ऊंचाई के बनाए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि देवी देवताओं के दरबार में जब भी श्रद्धालु जाए तो शीश झुका कर जाए। परिसर के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल काय शिला लेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
1: और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंबे है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
0: भोजशाला को मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आया जिसके बाद परिसर में इस्लामी स्थापत्य जोड़ा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दौर से यहाँ नमाज भी होने लगी थी। समय के साथ साथ इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिटाए जाने लगे, लेकिन आज भी भोजशाला में सनातन की छाप है
1: पुराने शिलालेखों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब घिस दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि ये चूना से पूरा ढक दिया गया था और उसके बाद जब इस पूरी परिसर की सफाई हुई है केमिकल से इसको पूरा साफ जब किया गया तब ये निकल के सामने आया इसका असली स्वरूप। और इन केमिकल्स के चूने के भीतर ये प्राचीन शिलालेख जो है सब छुपे हुए थे। ये आप देख सकते हैं धनुष की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इसके जरिए भी इसे भी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना। लेकिन इन सबके अलग अलग देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंबे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंबे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंबों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंबे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंबे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। ऐसा माना है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ऐसा कहता है यहाँ पे, और इसे सबको चूने से ढक दिया गया था।
0: भोजशाला के अंदर 104 पिलर हैं। इन खंभों में हिंदू सनातन से जुड़े अवशेष आज भी मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस परिसर की कार्बन डेटिंग की मांग उठी जिसके बाद एएसआई ने भोजशाला के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज की वैज्ञानिक साफ सफाई की। केमिकल से इन खंभों को धोया गया तब जाकर ये कलाकृतियां सामने आई। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कलाकृतियों को मिटाने के लिए खम्भों में चूना भर दिया गया था। कई जगहों पर निशान आज भी हैं कि उन्हें रगड़ कर मिटाया गया है।
1: जब 13 में लेके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग के, महिला मंत्री थी, और उन्होंने जब ये 13 महीने की सरकार में घोषणा की पूरी कार्बन डेटिंग और इसकी केमिकल सफाई के आदेश दिए थे, तो तुरंत इसकी जो है करीब 1 से 1.5 महीने तक इस पूरी घोषणा के हर खंभों की केमिकल से वॉश किया गया था, साफ किया गया था। तो जितनी भी ये जो आकृतियां हैं ये सब चूने से ढकी हुई थी, तो ये उस केमिकल से बाहर निकलने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये जो
0: घोषणा अब हिंदुओं की हुई, परिसर के अंदर कई और अवशेष हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। जो मूर्तियां यहां मिली उनका क्या, ये आगे बताएंगे। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: चाला में कई ऐसी कलाकृतियां चिन्ह मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि ये स्थल हिंदू पक्ष का है। परिसर में 104 पिलर हैं, हर खंभे पर सनातन की छाप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन खंभों से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिटाए गए, खंभों में चूना भर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ आकृतियां रह गई, जैसे घंटी, काल सर्प और बहुत कुछ आज तक के कैमरे में दिखाई दिया।

0: भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। 11वीं सदी में जब राजा भोज ने बनवाया था तो ये शिक्षा का केंद्र था। यहाँ संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस स्थान को वाग देवी यानी सरस्वती का स्थान माना जाता था। हिंदू परंपरा में सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इस लिहाज से भोजशाला उन दिनों एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान का केंद्र था। भोजशाला के अंदर आज तक कैमरे पर कई प्रतीक चिन्ह मिले जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये हिंदू स्थल ही है। हाईकोर्ट ने भी इन चिन्हों को ही आधार माना। भोजशाला के खंभों पर भगवान गणेश की आकृति, घंटियां रिद्धि सिद्धि की आकृतियां हैं। दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है।
1: ओम सरस्वती नमः।
0: गुंबज में कमल के फूल की आकृति है। इस परिसर में हिंदुओं से जुड़े कई निशान या तो मिटा दिए गए या मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां आज भी हैं। मंदिर परिसर में काल सर्प की आकृति भी है जिसे ASI ने संरक्षित रखा है।
2: वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है, काल सर्प यंत्र, जो कि इस मंदिर में जिसे हाईकोर्ट ने माना है वहां पे बना हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था, लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। और ये काल सर्प यंत्र है जो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे एक तरीके से साफ तौर पे यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हिंदू पक्ष जो है यहाँ पहुंच चुका है। और यहाँ पे लगातार हिंदू पक्ष के लोग जो है वो आकर के विसर्जन शुरू कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये कमल के फूल के आकार के जो यहाँ पे छत बनी हुई है, ये भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद इस पर भी फैसला जो है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
0: भोजशाला परिसर ऐसा बनाया गया है, इसके चारों ओर इमारत है, बीच में खाली जगह है। और इस खाली जगह को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ हवन कुंड था। इस हवन कुंड को भी ASI ने सर्वे के दौरान साफ किया है। ये मिट्टी से भरा हुआ था।
2: 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है। और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है।
0: आज भी वसंत पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो इसी यज्ञशाला में हवन किया जाता है। अब जब हाईकोर्ट ने इस परिसर को हिंदुओं का मंदिर घोषित कर दिया है तो श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। भोजशाला के अंदर अभी कोई स्थापित प्रतिमा तो नहीं है, लिहाजा एक स्थान पर पुष्प आदि अर्पित करते लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर भोजशाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि अभी ASI के संरक्षण में ये इमारत है, इसलिए मूर्ति या तस्वीर स्थापना की इजाजत नहीं है।
2: जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, इस वक्त अपने साथ माँ वाग देवी का जो तैल चित्र है और साथ ही में भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उसे लेकर के ये लोग भोजशाला के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष सुबह से पूजा के लिए पहुंचा और अब माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक फोटो जो है वो ले करके भोजशाला के भीतर जा रहे हैं।
0: भोजशाला पर भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, भले ही यह स्थल हिंदुओं का मान लिया गया है, लेकिन अभी भी ये संरक्षित है, सुरक्षा के सख्त घेरे में है। पुलिस और रैपिड एक्शन टीमें इस परिसर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है। इस निर्णय के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
4: उत्सव ये जश्न ये मोशन धार भोजशाला पर जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा।
5: ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।

0: उसके पक्ष में फैसला आया।
1: आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
0: ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है, भोजशाला अब अधूरी नहीं पूरी हो गई है। ये कोई मस्जिद नहीं, मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है। इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर रोज पूजा होगी, बिना किसी पाबंदी के होगी, विधि विधान से होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि भोजशाला एक मंदिर है न कि कमाल बोला मस्जिद। हाईकोर्ट की दौर खंडपीठ का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था जो सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भोजशाला मंदिर है मस्जिद नहीं।
2: फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
3: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
2: आप क्या करेंगे? आप
3: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
4: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
0: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उसने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर उसकी जीत हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ESI के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूदा हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया और ऐलान किया भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
5: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, ESI के अधीन ये संपत्ति दी है, ESI चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो ESI को दी है।
0: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद से मामला अदालत में लड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया कि उस जगह के ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
5: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
6: बाहर का तो एक और कमाल मौला
5: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
0: अदालत ने अपने आदेश में ESI सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था।
7: जो ESI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: हिंदू पक्ष खुश है कि ESI की रिपोर्ट के आधार पर वो हाईकोर्ट में जीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे असंतुष्ट दिखा।
8: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ESI के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना, वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता।
0: AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुलझाएगा और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
9: कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है

0: उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी।
1: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रविश पाल सिंह, धार, आज तक।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: मोदी बोले भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक नीदरलैंड्स राजा रानी से भी मिले पीएम। नीट पेपर लीक कांड में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मामले में दिल्ली से गिरफ्तार पुणे की लेक्चरर मनीषा मंधारे। दिल्ली में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत, विमान ईंधन पर 25% से घटाकर 7% किया वैट। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को पनाह देने से बाज आए वरना तय कर ले भूगोल इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर के हैरान करने वाली तस्वीर, कार सवार शख्स को मारी 30 से ज्यादा गोली, रोहित गुदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की, उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था जिनसे उन्होंने मुलाकात की। वहां मौजूद भारतवासियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। हेग में पीएम मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 16 मई का जिक्र किया और बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, वो जीते थे।
1: आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये